ओम शांति। बाबा आए हैं हमें फरिश्ता बनाने। फरिश्ते का अर्थ है डबल लाइट रहना, स्वयं को चमकती हुई आत्मा को प्रकाश के चमकते हुए शरीर में देखना, जिससे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हों, अपने सामने ही कुछ दूरी पर अपना संपूर्ण ऐसा स्वरूप देखें, फरिश्ता स्वरूप बिल्कुल देखें उसको, ये मैं हूँ। चारों ओर देखें मेरा ये फरिश्ता स्वरूप चक्र लगा रहा है और ये मैं हूँ। इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास करें पवित्रता की स्थिति को बढ़ाने का, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का और बहुत हल्का रहने का। जो बहुत लाइट रहते हैं उनमें बहुत माइट आ जाती है, और जो बात बात में भारी हो जाते हैं, जो चिंतित रहते हैं, जो परेशानियों में दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, उनकी शक्तियां दिनों दिन क्षीण होती रहती हैं। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास रखना है डबल लाइट रहने का, अर्थात मन भी हल्का और मैं आत्मा भी ज्योति। अगर हम अपने ज्योति स्वरूप में बहुत रहते हैं, अगर हम स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, तो हम बहुत ही हल्के रहते हैं। हल्का रहना बहुत बड़े विवेक की पहचान है। कोई भी भारी करने वाली बातें आए, ज्ञान के बल से उन्हें हल्का करना, यही संपूर्ण सद्विवेक है। तो दिनचर्या में ऐसा हम सीख लें, हम हल्के होंगे तो सब परिस्थितियां भी हल्की हो जाएंगी, हम हल्के होंगे तो हमारा योग भी बहुत सहज हो जाएगा और हम उड़कर बाबा के पास जा सकेंगे। यदि हमने मन पर हमेशा ही कोई बोझ रखे होंगे तो उड़ना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, तब हम बाबा की ओर केवल देखते ही रहेंगे लेकिन उनके पास नहीं जा सकेंगे। हल्का रहने के लिए ड्रामा की बहुत सारी बातों को यूज करना बहुत आवश्यक है, और स्वयं में समर्पण भाव रखना। बाबा को जब हमने सब कुछ सौंप दिया तो बाबा की शक्तियों पर हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमें छोटी बातों में परेशान भारी नहीं हो जाना चाहिए। वो सर्व समर्थ है, वो हमारे साथ साथ रहता है, और भला वो अपने बच्चों को बोझिल कैसे देखना चाहेगा, चिंताओं में दुखों में कैसे देखेगा। उसकी शक्तियों में विश्वास रखते हुए समर्पण भाव अपना कर अपने को बहुत हल्का करें, साथ ही साथ ड्रामा के ज्ञान को विशेष रूप से यूज करें। कैसे कैसे यूज करेंगे? किस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, वो होगा ही, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं।

निश्चिंत जीवन, बेफिक्र जीवन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पुरुषोत्तम संगम युग की। निर्विघ्न, निर्संकल्प, बेफिकर बादशाह, निश्चिंत जीवन जीते हुए हम ईश्वरीय आनंदों से स्वयं को भरपूर रखें। सारा दिन मैं बेफिक्र बादशाह हूँ ये स्वमान आज याद रखेंगे। हमारी सारी चिंताएं बाबा ने हर ली हैं, वो हमारे साथ है। ये छोटा सा अभ्यास, भगवान हमारा साथी है। सारा दिन हमारे मन में ये दो गीत चलते रहेंगे आज, भगवान हमारा साथी है, दूसरा ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सारा दिन ये गीत गाते रहेंगे और महसूस करते रहेंगे, बाप दादा अपने धाम छोड़कर नीचे आ गए हैं, मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे साथ साथ चलते हैं और मुझे याद दिलाते हैं, बच्चे डोंट वरी, निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा साथ होते हुए माया या और कोई चीज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आज सारा दिन हम इसका आनंद लेंगे। ओम शांति।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। प्रबंधन का तनाव क्यों होता है? कारण है किसी काम को टालते रहना, यानी कोई काम जिस समय किया जाना चाहिए था और जिस समय वह किया गया उसके बीच का समय अंतराल इस तनाव का कारण बन जाता है। टेक्नोलॉजी गैप क्या होता है? यह है काम को करने के लिए किसी बेहतर तरीके का उद्योग में आ तो जाना, लेकिन उसे अभी तक अपनाया न जाना। जो काम आखिरकार किया ही जाना है उसे आज ही क्यों न कर दिया जाए और तनाव से बचा जाए। यदि काम करने का कोई बेहतर तरीका है तो इससे पहले कि कोई और उसे अपनाकर आगे बढ़ जाए और हमें फिसड्डे बना जाए, हम ही उस तरीके को क्यों ना अपना लें। जब हम जानते हैं कि अमुक चीज बुरी है तो उसे अभी ही क्यों ना छोड़ दिया जाए। नए वर्ष का इंतजार क्यों किया जाए? कल का इंतजार क्यों किया जाए? क्या आप विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला काम करना चाहते हैं? तो हर उस चीज को, हर उस काम को रोक दें जो विश्व स्तरीय से कमतर हो। क्या आप किसी ऐसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं जो हुई तो पहले कभी थी लेकिन उसका पता आपको अभी चला है? तो ये माफी तुरंत मांग लें, वरना आप अपराध बोध में उलझे रहेंगे। क्या आपको कोई बढ़िया और शानदार बात सूझी है तो उसे तुरंत कर डालें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को भी वही काम सूझ जाए, क्योंकि फिर तो आप उसकी नकल ही करते नजर आएंगे। इसीलिए तो कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, आप समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

बुद्धिमान और मूर्ख करते तो वही काम है, लेकिन बस अलग अलग समय पर। बुद्धिमान उसे तत्काल कर देता है, लेकिन मूर्ख उसे अंतकाल में करता है। जीवन ऐसे जी जैसे आने वाला कल आज ही आ गया है। हम स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का महत्व तो समझते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी कोशिशों को टालते रहते हैं। वित्तीय प्रबंध और निवेश के महत्व को तो समझते हैं, लेकिन उस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को टालते रहते हैं। हम बोर्ड की परीक्षा का महत्व अच्छी तरह समझते तो हैं, लेकिन तैयारी तब तक नहीं करते जब तक कि परीक्षा सिर पर ही न आ जाए। कागजों को पेंडिंग फोल्डर में डाल देना हमें सबसे सुविधाजनक लगता है। जीवन में आने वाले सारे दबाव व तनाव कुछ और नहीं, बस परत दर परत बढ़ता गया मनोवैज्ञानिक बोझ है, जो इस समय अंतराल के कारण होता है कि कोई काम कब किया जाना था और आखिरकार कब किया गया। काम को कल पर टालते रहने की आदत जीवन रेखा को छोटी करने का सबसे अच्छा तरीका है। टालते रहना पिछड़ने वालों की पहचान है। जीवन हमारी मृत्यु को नहीं टालेगा, इसलिए हम भी जीवन को न टालें। किसी दिन जैसा कोई दिन नहीं होता, जो है आज ही है। यदि आने वाला कल आया तो मैं उसे बता दूंगा कि यह काम मैं बीते कल में पहले ही पूरा कर चुका हूं। भय रहित जीना ही जीना है। अगर आपने कोई चोरी नहीं की है तो किसी से डरने की क्या जरूरत है। जिसका जीवन खुली किताब हो, वही वास्तव में स्वतंत्र है। अपने बारे में की जा सकने वाली सबसे अच्छी प्रशंसात्मक टिप्पणी है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

इंतजार करने और अधीर हो उठने में बहुत ही बारीक अंतर है, और इसी में शांतिपूर्ण प्रगति और तनावपूर्ण सफलता का अंतर समाया हुआ है। किसान ने खेत में हल चला दिया है और बीज भी बो दिया है, उसे अब इंतजार करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी जहां खत्म होती है, परमात्मा की जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है। तो यदि उस किसान को इंतजार करने की कला आती है, तो वह शांतिपूर्वक ढंग से इंतजार करेगा। इसके बजाय यदि वह अंकुर फूटने के लिए अधीर हो उठेगा, तो हर बीतता पल उसे बेचैन और तनावग्रस्त करता चला जाएगा। उसका मन भुनभुनाता रहेगा, ये हो क्यों नहीं रहा है, अभी तक हुआ क्यों नहीं है। बाद में अपने समय अनुसार अंकुर निकलने के बावजूद वांछित फल पाने की ललक में वह अपनी शांति गंवा चुका होता है, यानी नुकसान तो वह पहले ही उठा चुका होता है। क्या आपने लिफ्ट के लिए बटन दबा दिया है? तो अब थोड़ा इंतजार करें, अपने अनुसार उसे जब आना होगा वह आ ही जाएगी। लिफ्ट के आने के लिए अधीर होने से आप फर्श पर पैर पटकते हैं, अपनी पुतलियों को ऊपर नीचे घुमाते हैं, जैसे आपके ऐसा करने से लिफ्ट की गति बढ़ जाएगी और वह आपके तल पर दौड़ी चली आएगी। क्या आपने वेटर को अपना ऑर्डर दे दिया है? तो अब थोड़ा इंतजार करें, यहाँ अधीर हो उठने से इंतजार कुढ़न और चिढ़ भरा हो जाता है। तो इन सारे उदाहरणों से आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि इंतजार करने और अधीर हो उठने में बहुत ही बारीक अंतर है। अगर हम इस अंतर को मिटा देते हैं, तो हम निश्चित रूप से शांतिपूर्ण प्रगति कर सकते हैं, बजाय तनावपूर्ण सफलता।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आपको जो निर्णय लेने थे क्या आपने ले लिए हैं? क्या उनके लिए आपको जो कुछ भी करना था आपने कर लिया है? यदि हाँ तो अब इंतजार करें, बस इंतजार। उस चीज या किसी भी चीज के लिए आकुल व्याकुल ना हो उठें, बल्कि इंतजार करें। इस इंतजार में आपको शांतिपूर्ण सफलता की कुंजी हाथ लग जाएगी। अधीर हो उठना भी कभी कभी सफल बना देता है, लेकिन वह सफलता बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होती है। जब यही सफलता शांतिपूर्ण रास्ते पर चलकर हासिल की जा सकती है, तो तनाव भरे रास्ते पर क्यों चले? आध्यात्मिक उत्थान के लिए जरूरी गुणों में से एक है अपने हिस्से का काम पूरा करना और फिर बस इंतजार करना। कई लोग जो आध्यात्मिक अनुभव पाने और इसकी नीरव शांति महसूस करने को बड़े व्याकुल होते हैं, वे दरअसल इसी प्रवृत्ति संबंधी रोग से ग्रस्त रहते हैं, जिसे अधीर होना कहते हैं। अधीर हो उठने पर मिलने वाले अनुभव में आप वांछित अनुभव के साक्षी होने के बजाय अपने अहम के साक्षी बनकर रह जाते हैं। वह तो केवल इंतजार में डूबा साक्षी होना ही है, जिसमें आध्यात्मिक अनुभव स्वयं को प्रकट करता है। आप अधीर हो उठना छोड़ दें तो तनाव भरी सफलता भी आपसे छूट जाएगी। अपने हिस्से का काम करना और इंतजार करना सीख लें। शांतिपूर्ण प्रगति का यही रास्ता है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, हर बार जब भी सहज स्वास्थ्य इस कार्यक्रम को लेके आते हैं तो ये बात मेरे समझ में आती है कि मैं आज कुछ नया सीखने वाला हूँ। वैसे भी ये चीज कही जाती है कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। अगर मैं ये सोच लूं कि हाँ, मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ ज्ञान का भंडार आ गया है, मैं सर्वज्ञ हो चुका हूँ, मुझे और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं है, ऐसा अगर मैं मानता हूँ तो वास्तविकता में मैं अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहा हूँ। जीवन की इस यात्रा में हर व्यक्ति को सीखने के सतत प्रयास करने हैं और जो भी अच्छी जानकारियां हम सीखते हैं उसे सीख कर जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आज स्वास्थ्य के विषय में भी हम कुछ ऐसी आवश्यक जानकारियों को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज इसी विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी पेशे से एक ऑस्टियोपैथ हैं, भारत के जाने माने स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट भी हैं, भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि इनकी मेडिकल की पढ़ाई एलोपैथी की शिक्षा होते हुए भी ये प्रकृति चिकित्सा के केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इतना वेरीड हेल्थ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। तो आज इनसे करते हैं चर्चा और समझते हैं अपने स्वास्थ्य को सहज करने के उपाय। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य कहते ही लोग ये बात समझने लगते हैं कि हाँ, हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखनी आवश्यक है। कभी कभार लोग ये कह देते हैं, अरे ये चीज हमें पहले से पता होती तो शायद ये गलती हमसे नहीं होती। और आज यही चीजें हम देखते जाते हैं कि जितनी से जितनी ज्यादा जानकारियां आज उपलब्ध होती जा रही हैं, कोई किस जानकारी को सही समझता है, कोई कहीं पर पढ़ लेता है, कोई कहीं पर कोई चीज सुन लेता है, उसके आधार पर चीजों को सही समझकर करने लगता है। ऐसे में स्वास्थ्य जगत के जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो सही जानकारी है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। खासकर आज डायबिटीज जैसी बीमारियों के बारे में जब बताया जाता है, बातचीत की जाती है, तो लोग ये भी समझ लेते हैं कि डायबिटीज आ गया मतलब अब तो हो गया, तो जिंदगी भर दवाई खानी ही है। तो सबसे पहले ही प्रश्न ये उठता है, जब डायबिटीज की बीमारी के बारे में, शुगर के बारे में बातचीत करते हैं तो लोग मन में प्रश्न आ जाता है, अच्छा डायबिटीज आ गया, अब हम क्या करें, अब हमें क्या खाना छोड़ना पड़ेगा। ये चीज एक बड़े प्रश्न के रूप में उभरता है। आप क्या उसका उत्तर देते हैं?
1: डायबिटीज हमारा मेटाबॉलिज्म का एक बीमारी है। हमारी शरीर, हमारे जो शकरा है या चीनी है या कार्बोहाइड्रेट है, उसको अपनी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पा रहा है और हमारा शरीर जो है वो चीनी से फिर भागने लगता है। ये अगर साधारण शब्दों में हम इसको समझें तो हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको काम करने के लिए चीनी चाहिए, मगर वो जो चीनी है वो कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कोशिकाओं का जो ताला है उसको खोलने के लिए जो हार्मोन चाहिए उसे इंसुलिन कहते हैं। ये हमारी पैंक्रियास में बीटा सेल ऑफ लैंगरहांस में बनता है और हम जब भी भोजन करते हैं ये हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है और हमारे पाचन तंत्र में जो शक्कर एब्जॉर्ब हो रही है, चीनी जो है वो भोजन से हमें मिल रही है, उसे कोशिकाओं के अंदर डालने का काम करता है। भारत, हमारा ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा मगर हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमारे यहाँ इस समय सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हमारे भारत में हैं। और ये कहते हुए मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है कि जितनी भी बीमारियां, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, अस्थमा हो, गठिया हो, या आप किसी और जो नॉन कॉमन ओबेसिटी मोटापा हो, हमारे देश में सबसे ज्यादा है क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और हमारे श्रोताओं का और हम सभी का ये दायित्व तो बनता है कि हम अपना स्वास्थ्य ठीक करें। अगर हम अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे तो हम अपने देश और अपने समाज के उद्धार के लिए काम कर पाएंगे। डायबिटीज हमें होती कब है, मतलब पहले तो ये ठीक है, आपको कोई पैंक्रियास की बीमारी हुई, आपका इंसुलिन निकलना बंद हो गया, या आपको कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपकी पैंक्रियास काम करना बंद कर दिए, या आप जब से जो आप पैदा हुए आपके में ठीक से पैंक्रियाज डेवलप नहीं हो पाया तो आपका इंसुलिन नहीं निकल पाया, ये बात एक है। मगर मेजॉरिटी लोगों को अपना जीवन बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हम अनियंत्रित तेज समय भोजन और बहुत सारा मीठा भोजन करने लगते हैं। और आप एक बात समझिए कि एक हम पैंक्रियास को एक नौकर की तरह इस्तेमाल समझें कि वो हमारा सहायक है, हमारा नौकर है, या हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति है, या पैंक्रियास को हम एक कुली की तरह समझें, और हम जब भोजन करेंगे उस पैंक्रियास को काम करना है, इंसुलिन निकालना है और कोशिकाओं में डालना है। तो पता चला हम सुबेरे उठ के हमने कुछ खाया तब उसको काम करना पड़ा, हम अपने स्कूल पहुंचे रास्ते में स्कूल में हमने एंटर करने से पहले या कॉलेज में घुसने से पहले हमने बाहर कोई दुकान थी उसमें कुछ खाया, फिर हमारे इंसुलिन को काम करना पड़ा, फिर हम निकले दो पीरियड के बाद या दो घंटे बिताने के बाद हम लोग ने कहा चलो थोड़ा चाय पी लें, जो छोटे बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं चलो कुछ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा लें, पता चला फिर इंसुलिन को काम करना पड़ रहा है। हाँ एक बात और बोलूंगा, जिसमें चीनी ज्यादा है उसको पचाने के लिए, उसको अपनी कोशिकाओं के अंदर डालने के लिए ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो कभी भी हम जब बहुत मीठी चीज जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हुआ, आइसक्रीम हुआ, या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जास, या इवन गुलाब जामुन, जलेबी, ये सब खाते हैं तो समोसा, तो तुरंत हमारे पैंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो पता चला दो घंटा हम लोग ने अपने क्लास में बिताया, फिर कुछ खाने चले गए, फिर उसको काम करना पड़ा। 12-1 बजे जब लंच हुआ तो हम लोग ने कहा चलो कुछ जल्दी से कुछ खा लें, और जो एक शब्द ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा है, कॉलेज में इस्तेमाल हो रहा है, वो है क्विक स्नैकिंग, मतलब झटपट। हाँ, और इसको पहले कि आप एक बात समझिए, फास्ट फूड, फास्ट फूड का मतलब ये नहीं कि वो फूड तेज भागता है, फास्ट फूड का मतलब वो भोजन है जो कि तुरंत बनता है, उसको बनाने में समय नहीं लगता है, इसीलिए उसको फास्ट फूड बोलते हैं। हम जितने भी नूडल्स खाते हैं या हम जो रेडीमेड नूडल्स खाते हैं वो क्या बोलता है, डब्बा खोलिए, 2 मिनट गर्म पानी डालिए और बन के तैयार, तो वो फास्ट फूड, इंस्टेंट फूड। और मैं सभी श्रोताओं से, सभी बच्चों से, सभी युवाओं से जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्लीज अवॉइड फास्ट फूड। मैंने ये नहीं बोला कि एकदम बंद कर दीजिए, मगर प्लीज अवॉइड फास्ट फूड। बंद करने को इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मन करेगा खाने का, अगल बगल वाले खा रहे हैं तो कभी कभार जरूर लीजिए अपने स्वाद के लिए, मगर इसको अपने दिनचर्या का भाग मत बनाइए। अब हम लोग 1-2 बजे भी लंच किए, लंच करके फिर निकले, फिर कुछ 3:30-4 बज गया, अरे बड़ी थकान हो रही है, चलो चाय पी लें, चलो कॉफी पी लें, चलो कोल्ड ड्रिंक पी लें, या चलो कुछ खा लें। फिर शाम को 6 बजे जब घर पहुंचे तो माँ ने कुछ बना के दिया है वो खा लें, अरे नहीं पसंद नहीं आ रहा है, चलो कुछ खाते हुए घर चलें। तो हम दिन भर कुछ अपने मुंह में डाल रहे हैं और हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है। मैं एक राय और देता हूं कि जरा सा भी आपको अगर हल्की सी भूख लगे तो कृपा करके आधा ग्लास पानी पी लीजिए। आप अगर आधा ग्लास भी पानी पी लेंगे तो आप उतनी देर के लिए अपने पाचन तंत्र को आराम दे देंगे, आप अपने पैंक्रियास, आपके लिवर, उन दोनों को आराम दे देंगे कि वो जो अपने जूसेस बना रहे हैं उसको बनाने के लिए उनको आराम मिल जाए। और फिर हम रात में पहुंचे तो हम लोग ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल से फास्ट फूड तो ले आए, मगर हमने ये नहीं ध्यान दिया कि पूरा जो पूरा वेस्ट है वो 7:00 to 8:00 अपना खाना खा लेता है, बिकॉज दे हैव टू कुक, दे हैव टू क्लीन एंड देन दे हैव टू स्लीप। हमारे यहाँ तो खाना कोई एक स्टाफ बनाएगा या कोई आदमी बनाएगा, उसके बाद बर्तन भी कोई और आके धोएगा, बिस्तर कोई और बनाएगा, वहां उनको ये काम खुद करना पड़ता है। तो दे हैव अ अर्ली डिनर एंड दे गो ऑफ टू स्लीप ऑल्सो आफ्टर, यू नो, खाना खाने के 1-2 घंटे बाद सोते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग लेट खाना खाने लगे हैं और खाना खाते ही बिस्तर पर लेट जा रहे हैं, तो हम अपने पैंक्रियास को आराम ही नहीं दे रहे हैं और हम इसीलिए डायबिटीज के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम कंट्रोल्ड खाना खाएं और इवन क्वांटिटाइज करके खाएं, अगर हम ये मान लें कि हम दिन में 4 बार 5 बार ही कुछ भोजन करेंगे, पानी हम जितना चाहें जितनी बार चाहें पी सकते हैं, 4-5 बार ही हम भोजन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा जल्दी भोजन करें, अर्ली भोजन करें, तो हम अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं।
0: ये बात समझ में आती है कि हमें जब भी डायबिटीज की बात कही जाती तो लोग यही कहते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। आपने ये चीज कहा कि हमें जंक फूड नहीं खाना है, रात को देर से भोजन नहीं करना है। अब ये बात समझ में आती है कि कुछ चीजों को लेकर लोग तो मतलब बहुत ही ज्यादा सोचने भी लगते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा ये चीजें नहीं खानी है, हमको उन चीजों को छोड़ देते, बट कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्या उस चीज का भी असर डायबिटीज से कनेक्टेड रखता है?
1: भैया छोड़ना क्या है, सबसे पहली चीज तो गन्ने से बनी चीनी छोड़ना है, सबसे पहली चीज, ऑल टाइप्स ऑफ शुगर्स। और उसके बाद जो और एक खतरनाक चीज है वो है कॉर्न बेस्ड शुगर, मतलब जो भुट्टे से कॉर्न सिरप से बनी हुई शुगर वो है। और अगर आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा है तो भैया ये शहद या हनी है इसको भी छोड़ना है और गुड़ को भी छोड़ना है। इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम चीनी बंद कर दी है मगर हम गुड़ खा रहे हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है। अरे हमने चीनी बंद कर दिया, हम शहद खा रहे हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा है तो आपको ये चीजें बहुत नुकसान करेंगी। एक चीज मैं यहां बोलना चाहूंगा कि पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि हमारे लिए नॉर्मल नंबर्स क्या हैं। हर जगह थोड़ा अलग, थोड़ा नंबर अलग आता है, बट अगर आपका जो ब्लड शुगर है वो 70 से 110 या 120 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तक है तो हम फास्टिंग को, कुछ जगह 100 भी लिखा गया है, कुछ जगह 120 तक लिखा गया है, हम उसको नॉर्मल मानेंगे। वर्ल्ड ओवर मेडिकल फील्ड ये बोलता है कि अगर आपका जो, कुछ लोग ये मानते हैं कि 100 से अगर 120 या 125 तक रहता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, मतलब आपके डायबिटीज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। और आपका अगर जो HbA1c है, जो आपके 3 महीने का शुगर आपके बॉडी में क्या है, वो अगर 5.7

0: परसेंट से नीचे है तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैं एक चीज और बात बोलूंगा कि आपने क्या खाना खाया है, आप कितने स्ट्रेस में हैं, आप कितने बीमार हैं, आप कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या आप बहुत किसी मेंटली बहुत आप परेशान चल रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपके शुगर को फ्लक्चुएट करती हैं, तो इनका भी थोड़ा सा हम इनको भी ध्यान में ले लें। पर ये एक मोटा मोटी सब लोग जान लें कि अगर 120 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ऊपर फास्टिंग है आपका और 5.7% से ऊपर HbA1c है तो आप एक डायबिटिक की श्रेणी में लाए हुए व्यक्ति हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, थोड़ा लोगों को सुन के अचंभा होगा कि अगर आपको डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे हुई है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फिट रहने के लिए। अगर आपका नंबर 120 की जगह 130 140 आ गया है, आपका HbA1c 6 तक आ गया है, 6.5 आ गया है, तो ये बता रहा है कि आपको अब अपने भोजन को कंट्रोल कर लेना है। और श्रोताओं मित्रों को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं, हम उसको वापस नॉर्मलसी में ला सकते हैं। वापस नॉर्मलसी में लाने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर पूरा छूट होकर जो मन चाहे वो खाते रहेंगे, आप खूब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, दिन में 7 बार 8 बार 9 बार खाएंगे, आपको लड्डू पसंद है तो भगवान को आप लड्डू चढ़ाएंगे, आपको इमरती पसंद है भगवान को आप इमरती चढ़ाएंगे, आप एक रसगुल्ला राइट हैंड के लिए खाएंगे, एक लेफ्ट हैंड के लिए खाएंगे, एक मन नहीं नहीं नहीं नहीं सर, अगर आपका नंबर बढ़ गया है और फिर आप उसको नीचे लेकर आए हैं, नॉर्मल लेवल पे लाए हैं, आप अपने भोजन को पूरा कंट्रोल करेंगे। ये बड़ी पुरानी एक बात है, मेक योर फूड योर मेडिसिन। तो प्लीज आप अपने भोजन को अपनी दवा बना लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपका नंबर थोड़ा सा बढ़ा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप प्लीज अपने आप को सुधार लीजिए, और अगर आपने अपने आप को सुधार लिया तो ये जेन जी और जेनेक्स को ये बोलने की बड़ी बात नहीं है, बट आई कैन प्रॉमिस देम कि वो ठीक हो जाएंगे, वो दवा से छूट जाएंगे।
1: ये कितनी मजेदार बात आपने कही कि जब हम डायबिटीज रिवर्सल की बात करते हैं तो ये संपूर्ण रीति से अपने आप को स्वस्थ बनाने की थीम है, और अगर आप शुगर के मरीज हो चुके हैं तो आप वापस स्वास्थ्य तक ला सकते हैं अपने आप को, आपको हर दिन गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दोनों हाथ में लड्डू लेके खाते रहेंगे और पहले जैसे खाते थे वैसे ही सब कुछ खाते रहेंगे, वो नहीं हो सकता। ये समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि दवा से मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने भोजन को ही दवा बनाने की जरूरत है। अब आप यही सोचिए कि क्या मुझे एक दवाई खानी आवश्यक है या उस दवा से मुक्त होकर स्वस्थ रहकर स्वस्थ भोजन खाने की आवश्यकता है। यही चीज हम सहज स्वास्थ्य में समझने का प्रयास भी करते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लोग अपने शुगर के बारे में, जैसे आपने कहा कि भाई एक बार शुगर हो गया तो फिर मतलब आपको ध्यान रखना है। अब डायबिटीज के मरीजों को यह भी प्रश्न होता है कि भाई हाँ, एक बार हमने चेक कराया था तब हमें बता दिया था डॉक्टर ने कि शुगर की बीमारी हो गई थी, मगर अब फिर उसके बाद से हम जांच ही नहीं करवा रहे हैं, बस अब जाएंगे तो फिर से ही निकल आएगा, फिर से वो शुगर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसलिए कई बार लोग ये समझते ही नहीं है कि क्या हमें जांच करवाने की जरूरत है, कितने महीने में एक बार जांच कराने की जरूरत है अपने शुगर, ये भी आप बताएं।
0: अगर आपका शुगर आपको एक बार मिल गया है, एक बार आपका नंबर्स कर बढ़ाए हैं, तो प्लीज, और अगर एक बाउंड्री लाइन ही क्रॉस हुई है, 120 की जगह 140 तक आ गया है, आपका HbA1c 6 तक आया है, तब आप अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं, अच्छे से भोजन कर रहे हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तभी आपको 6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट जरूर कराने चाहिए। और अगर आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको हर दूसरे महीने टेस्ट कराना चाहिए। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा सारे श्रोताओं को कि अगर आपका एक बार डायबिटीज बढ़ गया है तो हमको अपने भोजन को बहुत चबा के खाना है, न कि दबा के खाना है। तो प्लीज अपना भोजन चबाइए, अपने क्वांटिटी ऑफ फूड को कंट्रोल करिए, अपनी क्वालिटी ऑफ फूड को बेटर करिए और अपने सेहत का पूरा ध्यान रखिए। ये आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। ये तो डिनायल वाली बात हो गई कि हम कहते हैं ना कि एक सामने की कोठरी में अंधेरा है, हम जाएंगे ही नहीं तो अंधेरा कैसे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे एक बात बोलते हैं ना, हम एग्जाम देंगे ही नहीं तो फेल कैसे होंगे। अब आप कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आपको तो जांच करानी पड़ेगी, आपको अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। हम लोग ने बोला अभी अपने पिछले लेक्चर्स में कि ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर शुगर बढ़ा हो। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए और आप अपने शरीर के साथ, आप अपने को डिनायल में ले जा सकते हैं, पर एक चीज याद रखिए, आपका एक परिवार भी है, आपसे बहुत सारे लोग आश्रित भी हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पता ही नहीं करिए कि क्या बात है। ये तो वही वाली बात होगी श्री भैया की, आप हर संडे को मेरे बैंक वाला मेरे को स्टेटमेंट भेजता है कि आज आपके अकाउंट में 25,000 रुपए है, और मैं अपना स्टेटमेंट देखूं ही नहीं और सोचूं अरे अब तो आज मेरे अकाउंट में आज 1 लाख हो गया होगा, तो 2 लाख हो गया हो, मैं रोज खर्चा करता जाऊं। तो ये तो नहीं हो सकता भैया। जैसे आप अपने फाइनेंसेस के बारे में ध्यान रखते हैं, आप अपने नंबर्स के बारे में ध्यान रखते हैं, आप अपनी इनकम के बारे में, अपने श्री भैया आप तो स्टेप्स के बारे में बात करने लगे हैं और बड़े खुशी खुशी बताते हैं, यू नो आई वॉक्ड 7,000 steps, आई 8,000। तो लोग अपने चलने की भी माप रहे हैं अपने आप को। तो ये तो शुगर है और जरूरी है इसको जांचना।
1: बहुत ही आवश्यक जानकारी आज आपने हमारे दोस्तों को दी कि हम अपने कितने कदम चल रहे हैं, कितना एक्सरसाइज हुआ है, इन सब चीजों को हम फिटनेस डिवाइसेस से मेजर कर रहे हैं, हमारे फोन पे इन चीजों के एप्स आ गए हैं, वो भी हमें एक चीज बताते हैं। ऐसे में शुगर की जांच भी करानी है, खास तौर पर तब जब आप पता चल गया है कि आप डायबिटिक हैं या आपकी उम्र बड़ी होती जा रही है, तो ये चेकअप कराना है। और अगर डायबिटिक हैं तो फिर रेगुलरली आपका ब्लड चेकअप कराना भी जरूरी है। आज बहुत ही आवश्यक जानकारियां हमें डायबिटीज से संबंधित हासिल हुई है। आशा करते हैं कि आप सभी श्रोता मित्र इन जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ अपने ही स्वास्थ्य के लिए नहीं मगर अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, मित्रों के लिए, साथ में काम करने वालों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहेंगे, उन्हें भी स्वास्थ्य की ओर एक कदम लेने में मदद करेंगे। आज की चर्चा में यही विराम लेते हैं। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों आज की सेहत स्वास्थ्य में यही लेंगे विराम, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को जब एक नए परिपेक्ष में देखना शुरू किया, एक सबसे बड़ी बात जो रिश्ते आज कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होते जा रहे थे, लगता था कि उन पर बहुत काम करने की जरूरत है, कैसे ये रिश्ते सही हो सकते हैं, एक जो हमें स्ट्रेंथ मिली, जो ताकत मिली, वो ये कि जो इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ जिस रिश्ते में मैं हूँ, वो मैं खुद कर सकता हूँ। वो इमेज क्रिएट करने के बाद जो वाइब्रेशंस जानी शुरू होती हैं, तो अपने आप खुद ब खुद वो रिश्ते सुधरने लग सकते हैं। ये हमने कहा था हर बार की तरह के अनुभव करके देखें, क्योंकि जो जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते जाएंगे उनका अनुभव हमें सुदृढ़ करता जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। आगे और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते जो इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो हमें बहुत आश्वासन मिला है आपके साथ जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कि वो रिश्ते जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता, चाहे वो बच्चे के साथ का रिश्ता, साथ का रिश्ता, एक जो हमें ये मिला कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। जहाँ हम बिल्कुल हताश हो गए थे, हमें लगता था कि इसमें कोई चांस नहीं है, देयर इज़ नो अदर वे, आई डोंट हैव अ चॉइस, वहाँ ये रास्ता दिखा और अपने ही हाथ में होता हुआ दिखा। अब ठीक है, टाइम लगेगा, भी काम कर सकती हूँ मैं उसके ऊपर। आज थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
1: तो सबसे पहला सूत्र जो हमने देखा कि वेयर डज द रिलेशनशिप स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इन माय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में जब दूसरे का चित्र निर्माण करें तो ध्यान से करें कि कौन से कलर्स यूज़ करते हैं, और कोशिश करें कि उनकी एक एक विशेषताओं के रंग से Let us create that picture in our consciousness.
0: मैंने देखा, हमने मतलब देखा है हमने जब, तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है जब हम दूसरे की इमेज गंदी वाली क्रिएट कर रहे हैं,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं I don't know why it must be happening, but it must be maybe it makes me feel better about myself.
0: You know, कि मैं ठीक
1: हूँ. That could be the only logic. Otherwise, और कोई logic ही नहीं उस पर बैठता. Just by saying कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, it gives me the feeling that I am better. और दूसरा, it also शायद gives me the permission to react with your behavior. You know, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जब मैं संपर्क में आ रही हूँ तो आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। मैं कभी गुस्सा हो रही हूँ आपके साथ, कभी आपके साथ मैं परेशान हो रही हूँ, कभी आप पर मैं चिढ़ रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ when I come in interaction with you. लेकिन वो सब मेरा जो व्यवहार है वो justified कब होगा?
0: जब मैं ये कहूँ कि आप तो हो ही खराब।
1: नहीं तो वो justified नहीं है। अगर आप अच्छे हो और मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर कौन खराब हो गया?
0: मैं।
1: So that's going to be a problem.
0: तो दोनों में से एक तो खराब होगा ना,
1: क्योंकि मेरा व्यवहार मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरा व्यवहार ऐसा है क्योंकि आप ऐसे हो। So that we will have to understand कि मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है, उसके लिए पहले मुझे अपनी सोच को चेंज करना है, उसके लिए मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है। क्योंकि somewhere it depends on which color specs I'm wearing. आपने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना मैंने कौन से रंग का चश्मा पहना।
0: अगर आपने लाल पहन लिया तो ये ग्रीन भी आपको लाल दिखे।
1: यस, एंड फिर आपको उस लाल रंग के चश्मे से देखते हुए मुझे आप लाल ही दिखाई देंगे, और फिर मेरा रिश्ता किस कलर से जुड़ा? रेड से जुड़ा, बट एक्चुअली तो आपने ग्रीन पहना है। तो समवेयर माई रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द राइट फाउंडेशन। सो इट्स नॉट अबाउट आप कौन से रंग के हैं, इट्स अबाउट मेरा जो परसेप्शन का चश्मा है वो कौन से कलर का है। और जैसे आपने कहा कि हम ज़्यादा क्यों नेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि अगर हम जितना नेगेटिविटी का चिंतन करते जाएंगे तो हमारा चश्मा कौन से रंग का हो जाएगा?
0: नेगेटिव।
1: अब आपके अंदर हो सकता है बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मेरा चश्मे का रंग ही नेगेटिव है, तो आप मुझे कैसे दिखाई देंगे?
0: कंप्लीटली नेगेटिव।
1: एंड फिर मेरा जो रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ेगा वो किस आधार पर होगा? बेस्ड ऑन दैट कलर दैट आई हैव क्रिएटेड विथ यू। तो यस, बहुत ईजी है कहना कि वो है ही ऐसे, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने ऊपर बैठ कर वर्क करके अपनी परसेप्शन को चेंज करना। चॉइस इज माइन। क्योंकि जितनी बार आई एम गोइंग टू से वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी and I am transmitting negative energy, and then I will receive negative energy, and then I will stay in pain. And ye pura process maine create kiya. अब अगर मैं दर्द की बजाय खुशी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ तो मुझे अपने चश्मे का रंग चेंज करना पड़ेगा. रिलेशनशिप मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो हर स्टेप पर चेक करते जाएं मैं कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूँ. स्टॉप थिंकिंग वो कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं. लेट्स से कि आपके अंदर 99 कमजोरियाँ हैं, फिर भी एक विशेषता तो होगी. अच्छा, इफ यू आर फाइंडिंग समवन, होगा नहीं, लेकिन यू आर फाइंडिंग समवन जिसके अंदर कोई विशेषताएं नहीं है, तो भी मैं कौन सी एनर्जी फिर उसको ट्रांसमिट करता हूँ, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन माय कॉन्शियसनेस. हम जो दृष्टिकोण से दूसरे को देखते हैं वो उस पर भी डिपेंडेंट है कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, बिकॉज वो मेरे चश्मे का कलर है.
0: In fact, yes, मैं पूरी दुनिया को भी एक्चुअली किस कलर से देखता हूँ.
1: Yes. And that's why same दुनिया. And someone will say the world is so beautiful, and someone will say the world is a big mess.
0: Actually, yes, you know, agar hum deep mein jaye, jisko burai dekhne ki aadat hai, jo burai karta hai, wo sabki hi burai kar raha hota hai. Kuch bhi acha nahi lag raha hota unhe.
1: To kahin na kahin wo sare log bure nahi hain, lekin mujhe hi dekhne ka nazariya. Aur isiliye Paramatma ne aakar hume kaha ke swa parivartan karenge, to vishwa parivartan. अपने आप हो जाएगा. हमें औरों को चेंज नहीं करना. हम अपने एटीट्यूड को, अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं तो वही लोग, वो वैसे के वैसे होते हैं, दे डोंट चेंज. वही लोग हमें अलग दिखाई देने लगते हैं. व्हाट हैज हैपेंड, वेयर हैज द चेंज टेकन प्लेस, इट्स हियर. सो इट इज वेरी इजी टू लुक आउटसाइड, लिटिल चैलेंजिंग टू लुक इनसाइड, लेकिन सोल्यूशन यही पर
0: इनसाइड. यस,
1: तो अगर कोई अपने ऊपर सचमुच में काम करके रिजल्ट पाना चाहता है तो उसको फिर काम तो वहीं करना पड़ेगा जहाँ काम हो सकता है. आप ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करें, यू वर्क ऑन द रिलेशनशिप देयर, एंड फिर आपको रिजल्ट नहीं मिले, फिर आप और फ्रस्ट्रेट होते जाएं और फिर आप और एक दूसरे से कटते जाएं. वी आर गेटिंग नोवेयर.
0: एक्चुअली वेरी ट्रू. यू नो, हम कोशिश जब हम करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ आज आएंगे तो मैं ठीक रहूँगी, और फिर मैं ठीक ठीक बिहेव कर रही होती हूँ, मैं सही बातें बोलने का प्रयास कर रही होती हूँ और मैं बोलती भी हूँ सही, लेकिन तब भी वो रिश्ता ठीक नहीं हो पाता क्योंकि
1: सोचते. अब देखो, हम सब ने ये आर्ट सा मास्टर कर लिया है कि अंदर भले हम नेगेटिव सोचते हैं,
0: ऊपर से मैं कुछ
1: उसको
0: नहीं
1: कन्वर्ट करके हम पॉजिटिव बाहर देते हैं, क्योंकि हमने सोचा रिश्ता मतलब क्या, कम्युनिकेशन. रिश्ता मतलब जो मैं आपसे बोलती हूँ, रिश्ता मतलब जो मैं आपके साथ करती हूँ, रिश्ता मतलब जो हम एक दूसरे के प्रति सोचते हैं. तो कहीं भी कोई भी रिश्ते में अगर कहीं ऊपर नीचे आ रहा है, जस्ट स्टॉप एंड सी कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं इम्पोर्टेंट. आप देखो, हम जब सोचते भी हैं सारा दिन तो हम ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई फील कि मैं अच्छा तब फील करूँगी जब आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे. बट एक्चुअली मैं अच्छा तब फील करूँगी जब मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ. नो, डिफिकल्ट?
0: नो नो नो नो, यस एक्चुअली
1: सी,
0: हाँ,
1: जस्ट सी द कनेक्टिविटी. आई एम थिंकिंग कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो, आप मेरे बारे में अच्छा सोचो तो मुझे अच्छा लगेगा. बट एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस. एनर्जी इज फर्स्ट फ्लोइंग लाइक दिस. तो मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोचूंगी तो सबसे पहले मुझे अच्छा फील होगा.
0: ऑफ कोर्स, अगर वेरी ट्रू, अगर कोई मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई देख के, मतलब इफ आई लुक एट यू एंड आई फील गुड अबाउट यू,
1: सो आई फील गुड. I feel good. Now it is possible ke I don't think very good about you. It is possible ke I don't think very good about you. Ya mera vyavahar bhi shayad aapke saath utna acha nahi hai. Fir bhi aapko kaisa feel karna hai, wo fir bhi aapke hath mein hai. So let's start just working on myself. Take the control back. I am going to keep the control in my hand. पर अपने पर फोकस नहीं होगा तो ध्यान ज्यादा क्या होगा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या बोलता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, एंड देन आई कंज्यूम दैट एनर्जी. वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, वो मेरे बारे में ऐसा सोच, और ये सब कंज्यूम करके वो अच्छे नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट वो अच्छे नहीं है, एंड बुरा किसको अब फील होने वाला है?
0: मुझे, क्योंकि नहीं और होने ही लग जाता है ना, बिकॉज इट हर्ट सो डीपली कि उन्होंने मेरे बारे में ये कहा, यू नो दे थिंक दिस वे अबाउट मी, मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, और फिर मैं उनके बारे में अगर अच्छा सोचते भी होंगे तो मैं उनके बारे में बुरा सोचूंगी.
1: एग्जैक्टली. सो अगेन,
0: मैं उनके बारे में अच्छा सोचती थी, मैं उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं.
1: भले ना वो मेरे बारे में सोचे, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे क्या सोचना है. दैट्स वाई द फोकस बिकम्स मैं एंड मैं.
0: लेकिन सोच क्या रही हूँ? yes. फोकस अभी भी मैं ही था,
1: मैं ही था, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ. पहले फोकस ये था कि वो क्या सोच
0: वो
1: रहे हैं
0: मेरे बारे में.
1: तो पहले वो था कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज माई फीलिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन यू. बट नाउ आई रियलाइज माई फीलिंग इज माई क्रिएशन. That is what was important. Let's say आपने green साड़ी पहनी है, feel good about that. If you feel good, then that's your creation. अब ये जरूरी नहीं है कि दुनिया आकर उसको praise करे. उसमें क्या होगा, अगर चार लोग अप्रिशिएट करेंगे, दो लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे. लेकिन अगर मेरी मन की स्थिति बार बार ऐसे फ्लक्चुएट होने वाली है, then मेरे हाथ में क्या है? लेकिन अब जब हमें समझ में आ गया कि क्रिएट हम करने वाले हैं, आई कैन चूज वॉट टू क्रिएट एंड बी वेरी केयरफुल. सारा दिन आई एम क्रिएटिंग, जस्ट दैट मच अवेयरनेस इज नीडेड सारा दिन कि आई एम क्रिएटिंग. तो जर्नी कैसे हो जाएगी? वेरी सिंपल. द फर्स्ट पॉइंट था कि वेयर डज द रिलेशनशिप गेट क्रिएटेड, अपनी कॉन्शियसनेस में. दूसरा पॉइंट बहुत जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, जो हमने कई बार रिपीट किया है लेकिन वो फंडामेंटल है, एंड दैट इज हु हर्ट्स हु.
0: I hurt myself. ये तो एक पूरा एक स्टेटमेंट ऐसे
1: ही है. लेकिन जितना प्रोफाउंड ये स्टेटमेंट है, उतना ही ये प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट लगता है प्रैक्टिस करने के लिए. क्योंकि जब भी हम रिएक्ट करते हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
0: आपने हर्ट किया.
1: आपने हर्ट किया. तो हु हर्ट हु? आई हर्ट माई सेल्फ. दर्द मैं अपने आप को दे रही हूँ. ये जितनी बार हम बार बार अपने आप को समझाएंगे, तो हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा.
0: और इनफैक्ट फिर मुझे उन्हें समझाना तो पड़ेगा. अगेन यू नो, मुझे समझाना

0: ये नहीं करना कि मैं उनको अपने आप को जस्टिफाई ना करूं भी कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन बिना हर्ट हुए
1: स्टेबिलिटी
0: हाँ, अगर मैं कह पाऊँ कि नहीं इट वॉज नॉट लाइक दिस
1: दैट्स ओके दैट इज़ फाइन, लेकिन आई हैव टू रिमेम्बर कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं खुद अपने आप को हर्ट कर रही हूँ. इमोशनल हर्ट ये कोई और मुझे नहीं कर सकता है, फिजिकली कोई मुझे मार सकता है लेकिन यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता. यहाँ ओनली आई हैव द टोटल कंट्रोल. तो बार बार जब भी वो दर्द थोड़ा सा भी क्रिएट होना शुरू हो, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, वर्क, मूव अहेड. लेकिन जहाँ मैंने बोला दे आर हर्टिंग मी, दे आर हर्टिंग मी, तो वो दर्द तो कभी तक चलता जाएगा. वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बहुत परफेक्ट बोल रहा है. ठीक है, मे बी यू आर नॉट फाइंडिंग कि जो वो बोल रहे हैं दैट्स राइट फॉर यू, लेकिन हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? आपको पता है यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई होती है किन लोगों ने हमें हर्ट किया है, और काफ़ी लिस्ट होती है,
0: काफ़ी बड़ी होती है.
1: और, किस उस लिस्ट को हमने काफ़ी समय से पकड़ा हुआ होता है. एंड टुडे इफ आई जस्ट सिट बैक विद माई सेल्फ एंड आई से हु हर्ट मी एक्चुअली, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, कोई मेरा लाखों लेकर चला गया, किसी की वजह से तो मेरा बिजनेस ही पूरा कोलैप्स हो गया, किसी ने मुझे रिश्ते में धोखा दे दिया, व्हाट इज आई से, बट हु इज क्रिएटिंग द पेन? उन्होंने जो करना था सो किया. राइट और रॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, इम्पोर्टेंट इज दर्द फिर भी कौन क्रिएट कर रहा है, मैं कब तक. सी बाहर आप जो कर रहे हो आप कर रहे हो, बट देन यू आर नॉट इन माय कंट्रोल. यू नो यू आर नॉट. अगर आज आप मेरे साथ प्रॉपर्टी पर लड़ रहे हो, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल. आज आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन के मेरा लाखों रुपए लेके चले गए, नॉट इन माय कंट्रोल. आज आप एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में आप रिश्ता तोड़कर बाहर कहीं चले गए, नॉट इन माय कंट्रोल. लेकिन माय पेन
0: इट इज इन माय कंट्रोल,
1: दैट्स आई एम क्रिएटिंग. तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट, क्योंकि जहां सेल्फ पर मैनेज किया तो फिर सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाएगा. अभी हम कहते हैं सिचुएशन इतनी बड़ी थी, दे कॉज्ड मी हर्ट. नो, देयर इज ओनली वन वर्ड देयर हु कॉजेस पेन टू मी, दैट्स माय सेल्फ. दे कैन डू थिंग्स जो उनको करना है, वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन दर्द फिर भी मैं क्रिएट करता हूँ. मैनी पीपल विल से लेकिन आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया किया, फिर भी दर्द किसने क्रिएट किया?
0: क्योंकि दर्द मुझे इसका हुआ कि वो चला गया, या दर्द मुझे इसका ये हुआ कि उन्होंने मुझे धोखा दिया. यू नो, सो धोखा दिया एक सिचुएशन, लेकिन वो
1: दर्द किसने क्रिएट किया?
0: हाँ, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ. यस, वेरी ट्रू. यू नो
1: इट्स ओके इफ आई एम इन पेन, लेट मी वर्क एंड मैं उसको हील करूँगी. लेकिन मैं उसको हील तभी कर पाऊँगी जब आई रियलाइज कि ये दर्द मैं क्रिएट कर रही हूँ. हम कई बार जीवन भर उस दर्द को इसलिए पकड़ के रहते हैं
0: कि मैंने उसी ने किया,
1: उसने हाँ. किया तो वो आकर उसको ठीक करेगा.
0: जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, कहते हैं ना हर बार.
1: तो अब किसने दर्द दिया? हमें ही दवा देनी है ना. That is the point. We are not saying कि हाँ दर्द होता है, कुछ बात ऐसी होती है.
0: What happens? We keep on waiting that that person will come and apologize or things like that, and then things will, but things will never become same.
1: Yeah.
0: Even if that person comes, और वो माफी मांग के मुझे हील करने की कोशिश करते हैं, मैं क्या हील होंगे? मैंने वो जो वो पूरा टाइम गुजारा है, मैं उसको वो कह के मैं ना उसको जीने दूंगी ना खुद जीऊंगी,
1: क्योंकि मैंने इतना दर्द क्रिएट किया हुआ है. अब मेरे पास देने के लिए क्या है उस रिश्ते में? दर्द ही है. तो इसलिए एक दिन बैठ कर आज ही रात को सोने से पहले उस लिस्ट को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आए, हाउ मेनी पीपल हैव हर्ट मी इन माई लाइफ, एंड देन डिलीट
0: वाइप ऑफ कम्प्लीटली एक्चुअली,
1: एंड यू विल बी एबल टू वाइप ऑफ. वी आर नॉट सेइंग दैट द पेन विल गो अवे. Maybe not immediately.
0: But I think that person will go away.
1: That person will go away. That is fundamental. First, let the person go away. Phir to pain dheere dheere jaldi khatam ho jayega. Kyunki main creator hoon, to mujhe finish karna easy hai. Lekin aap creator hain.
0: To phir wo to jab tak wo nahi aayega, tab tak, jab tak uske saath waisa nahi hoga, tab tak nahi. You know, like so many things we have.
1: Yeah. So, ek ek ko lete jao. Situation ko rewind karna chahte ho, ek din ke liye kar lo. रिवाइंड करो और फिर भी देखो कि सिचुएशन बाहर थी, दर्द यहाँ था. डिवोर्स बाहर था, दर्द यहाँ था. बिजनेस कोलैप्स बाहर था, दर्द यहाँ था, हुए बहुत साल हो गए और दर्द तो अभी तक पकड़ा हुआ है। आज भी एक रिवाइंड बटन दबाओ और सारा कुछ,
0: because
1: we can cry right here.
0: Yes, yeah, I can, of course.
1: So where is the person? वो व्यक्ति तो अभी है भी नहीं, but we can cry right here.
0: Because yes, you know, somewhere deep within, I kept on feeling that he's the only one who can heal. She's the only one who can come, change the situation or do something.
1: तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ
0: भी नहीं, और वो कभी भी नहीं आने वाला।
1: एंड फिर हम जीवन दर्द में ही बिताएंगे। तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से ले लेंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ द पेन, आई हर्ट माई सेल्फ, तो अपने आप को ठीक करना बहुत इजी हो जाएगा।
0: फर्स्ट इज लाइक वाइंडिंग अप दैट पर्सन, यू नो, उसको
1: जस्ट लेट गो, बिकॉज वो लोग हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनको यहाँ क्यों घर में बिठा कर रखा है।
0: अच्छा, वो सालों पुराने होंगे, मतलब सी आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई कैन एक्चुअली स्टिल रिमेम्बर
1: ऑल द पीपल देयर,
0: लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मतलब आई एम नॉट इवन इन टच, लेकिन वो उनकी इमेज है,
1: वो फिर भी आपके घर में रहते हैं, लेकिन
0: घर पे रहते हैं, और मतलब वो जब तक मैं उनका डिलीट नहीं करूंगी अपने उससे, तब तक वो रहेंगे।
1: यस, नाउ अगर आपको अभी भी किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी मुश्किल लग रही है, इट्स ओनली बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन, आई एम क्रिएटिंग द हर्ट, आई एम क्रिएटिंग द हर्ट। जैसे ही हम अपने ऊपर इस एंगल से वर्क करना शुरू कर देंगे, तो हम दर्द को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। अब आपने तो जो किया सो किया, बट इफ़ आई गेट हील्ड, तो मेरा आपके साथ रिश्ता कैसा हो जाएगा?
0: हाँ, बिल्कुल परफेक्ट।
1: एंड द रिलेशनशिप
0: आपके साथ, मुझे वो खत्म हो जाएगा ना, आपसे जो उम्मीद थी या आपसे ये एक्सपेक्टेशन,
1: आपके ऊपर जो ब्लेम था।
0: हाँ,
1: पहली बात, आपके ऊपर जो मैंने ब्लेम लगाया था कि आप मेरे दर्द का कारण है, वो खत्म हो जाएगा, तो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। आई हैव टू ओनली फॉरगिव माईसेल्फ। एंड अगर हम दूसरे को भी देखते हैं कि दूसरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये हमने पहले भी देखा कि आई क्रिएट माई पेन एंड इसी तरह यू क्रिएट योर पेन, मैं आपका भी पेन क्रिएट नहीं करती हूँ। सो सिमिलरली, इफ आई सी यू इन पेन
0: बिकॉज ऑफ मी,
1: एंड अगर आप दर्द में बहुत कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्मृति है कि आप दर्द में हैं बिकॉज ऑफ योर ओन पेन, तो मुझे स्टेबल रहना मेरे लिए आसान है, और उसके बाद अगर मैं स्टेबल रहूं तो मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा हो जाएगा?
0: नॉर्मल, स्टेबल,
1: नॉर्मल। सो एवरीथिंग जस्ट सीम्स टू फॉल इनटू प्लेस, नॉट दैट इट विल गेट डन टुडे, बट इट बिकम्स ईजियर। ये करना संभव हो जाता है जब मुझे ये पता चलता है मुझे सिर्फ अपने को हील करना है, दूसरा जैसा है वैसा ही है, लेकिन वो तो ऐसे बात करते हैं, करने दो, लेकिन वो तो मुझे अब्यूज करते हैं, ये करते हैं, करने दो। व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आएगी दूसरी तरफ। लेकिन एक साइड भी दर्द में जाता, फिर दूसरी साइड भी जाता, तो दर्द की फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ती
0: जाती। सो गुड, मैं बात करते करते ही आई कैन सी सो मेनी रिलेशनशिप्स बिकमिंग मच बेटर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, बाप बेटे का रिलेशनशिप, यू नो, कहीं एक जो एक कहा जाता था, एक चुप कर ले और दूसरा, it can
1: absolutely
0: happen, it
1: and no one can hurt me. I met a brother and usne apni mother se bahut saalon se baat nahi ki thi because kuch hua tha, past incident, and for wo program ke end par aaye aur unhone kaha ki my mother is in lot of pain and I am in lot of pain and ab mere father nahi rahe and my mother is alone and you know whatever, I said aap apni mother se jaake baat kyun nahi kar lete and you know everything will become okay, and he says nahi but aapko nahi pata उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ऐसे, लेकिन उन्होंने जो किया सो किया, हम अब क्या कर रहे हैं? आप इतना जो दर्द अपने अंदर अब क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले आपको मिल रहा है, फिर आपकी वाइफ को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, वो एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है वो दर्द औरों में भी जाता है। टू फिनिश दिस, हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम, गो टॉक एंड इट्स फिनिश्ड, ही डिड इट। After the program, he went there. Next day, he came for another program. See, it was very easy. Because it happens, it's very easy, but we take time. That's okay. That is my journey. I can take my time.
0: Actually, jis din ye realize ho gaya ki wo karan hai hi nahi meri pain.
1: Main hu aur wo mere haath mein hai. Ab mujhe kitni jaldi usko finish karna hai.
0: To theek hai, fir main apni marzi se le raha hu. Mere ko 10 din chahiye, mujhe 1 din chahiye, mujhe 100 din chahiye, mujhe 1 second chahiye.
1: Whatever. That's my choice. But at least the power
0: is in my hand now.
1: अब मैं अपने रिश्ते को जब चाहूं तब ठीक कर सकती हूँ. पहले आई वॉज अ विक्टिम, तो मैं वेट कर रही थी और

0: इंटरेक्शन के बाद मैं उस लेबल के अंदर
1: एक एक इंसिडेंट
0: बैगेज भरते जाते हूँ, भरते जाते। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला,
1: देखा ये जस्टिफाई हुआ, yes. पुख्ता हो गई मेरी बात, ये लेबल ठीक हो गया।
0: हाँ, तो मैं वो लेबल लगाकर रोज उसमें बैगेज बैगेज भरते जाती हूँ, एंड जितना समय हम इस बैगेज को पकड़ कर रखेंगे उतना वो बैगेज
1: भारी
0: होता जाएगा, एंड इट कैन रीच अ स्टेज वेयर आई कैन स्टिंक इनसाइड बिकॉज आई हैव सो मच बैगेज।
1: मुझे ले डूबेगा ना वो, भारी इतना होगा कि मैं डूब जाऊँ।
0: यस, एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पहले तो अभ्यास कर दिया है लेबल्स लगाने का, तो कहीं ना कहीं तो वो लेबल्स ही हम लगाना बंद करें, लेकिन उसमें फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अब टाइम लगेगा इस यात्रा पर, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम हर रोज़ रात को सोने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि एक एक लेबल के साथ बैगेज आज हमने क्या ऐड कर दिया था। इज इट पॉसिबल कि मैं वो बैगेज निकाल कर फिनिश करूँ, उसको हल्का करूँ, क्योंकि वो निकालने से हु इज गोइंग टू फील बेटर?
1: आई विल फील बेटर।
0: सो दिस इज मोर अबाउट यू नो होल्डिंग थिंग्स अबाउट अदर पीपल। तो इफ आई कीप होल्डिंग दोज थिंग्स, यहाँ बहुत भारी होता जाएगा और फिर मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि मेरा ये सारा बैगेज तो और लोगों से बहुत भर जाएगा। तो बहुत इजी है इसको अगर सारा दिन में हम कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही हम कुछ भरने लगे, यहाँ ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, स्टॉप, नो आई डोंट नीड दिस, दिस इज अननेसेसरी वेट, आई एम नॉट गोइंग टू कैरी सो मच वेट, तो एंड ऑफ द डे कैसा फील होगा?
1: लाइट।
0: I will feel very, very light. तो baggage जो परमात्मा शिव बाबा भी कहते कि ये इतना बड़ा बोझ जो लेकर सारा दिन चलते हो, इसको हल्का करो। And baggage is always about
1: others.
0: जो मुझे लगता है कि हाँ नहीं मुझे कैरी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो मैंने जस्टिफाई करते जाती हूँ अपने आप को कैरी करना। तो कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही वो बैगेज रखने लगे उसी टाइम ही, क्योंकि ये बैगेज इतना भारी हो सकता है कि यहाँ तो दर्द देगा ही देगा, लेकिन यही बैगेज एक ना एक दिन कोई फिजिकल बीमारी का भी कारण बनता है।
1: और इनफैक्ट आजकल हम जितनी भी फिजिकल बीमारियाँ हैं उसमें पीछे कहीं ना कहीं जो मेंटल इलनेस है वो है।
0: कोई ना कोई हर्ट, कोई ना कोई गिल्ट, कोई ना कोई रिजेंटमेंट ये पकड़ के रखा, 5 साल 10 साल 20 साल इसको पकड़ कर रखा हुआ है, आज वो बीमारी का रूप ले लिया। वो तो वही है, दुआएं हैं, अब सफर किसको करना पड़ेगा? मी। व्हाई? जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर दैट आई एम कैरिंग
1: सो मच बैगेज। यस।
0: तो क्यों ना रोज ही, इसीलिए हमने कहा कंप्यूटर की स्कैनिंग, इसलिए जो हम वो हर एक घंटे के बाद 1 मिनट करते हैं ना, तो रात को भी क्यों हल्का करना है? हर एक घंटे के बाद ही अगर कुछ ऐसा भर गया हो, स्टॉप, इट्स ओके, वो जैसे हैं वैसे हैं, आई डोंट नीड टू कैरी इट। नहीं तो आप देखो हमने अननेसेसरली बहुत लोगों का भर लिया है।
1: अच्छा, वो जैसे हैं वो अपने परिपेक्ष में तो सही है,
0: सही है,
1: हम हमेशा दूसरे को ऐसे
0: जजमेंटल।
1: हाँ वही, जो मैं एक्चुअली आई लाइक दैट थिंग यू नो, कि जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही है उसको मैं एक जजमेंटल बन जाता हूँ कि वो चीज़ ही अच्छी नहीं है। You know, this is actually the moment we realize this difference.
0: Yeah, my dislike and judgment, ये दो different चीज़ें हैं.
1: I dislike that thing, but it does not mean that it's bad.
0: It's bad, yeah. It may be good for them. Yeah.
1: In fact, it's amazing, you know, अगर हम रिश्तों को सचमुच में देखें कि हमने क्या किया हुआ है और उसको sort out करने का भी process हमारे ही हाथ में है. Thank you so much, Sister Shivani. हर बार हम देखते हैं कि ज़िंदगी आसान होने का एक माध्यम है कि अगर हम थोड़ा सा अपना जो कलर है वो एक सारे चश्मे उतार के, सारे लेबल्स उतार के क्लैरिटी से देख पाएं, और वो हमें ज्ञान से मिल रहा है, परमात्मा का ज्ञान जो मिलता है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, स्वागत करते हैं आपका। आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-666, 0987-3-666-555, 0999-799-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन रिश्तों को एक नए रूप में देखने का ये प्रोसेस, ये खोज चलती रहेगी। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: आरव, आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। नई किरण इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। 15 जुलाई 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार देखेंगे तो राष्ट्रीय शके 1948, शके 24, गते 31, आषाढ़ बुधवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बुधवार पुष्प आज है। इसके साथ ही आज गुप्त नवरात्रि शुरू हो गया है। भारत में नवरात्रों का एक बहुत ही सुंदर जो है फेस्टिवल है। कुछ फेस्टिवल इसमें चार तरह के नवरात्र पूरे साल में होते हैं, दो गुप्त होते हैं, दो प्रत्यक्ष होते हैं, तो उसमें खास करके ये गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो गया है। तो सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और बुधवार का दिन है तो गणेश जी की आराधना की जाती है, तो आप सभी पर गणेश जी का आशीष रहे ऐसे शुभ आशा के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ विशेष मेहमान अबूधाबी से आए हुए हैं अभिजीत जी, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। आप कोडिंग का विशेष जो है एक्सपर्ट है और इसके लिए आप बच्चों को सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और ये सारी चीज़ें आपने ऐसे यूनिक तरीके से किया है जिसके लिए आपको विशेष प्रधानमंत्री के द्वारा लेटर भी प्राप्त हुआ है और आपको यंगेस्ट सीईओ का सम्मान भी प्राप्त है। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे निमंत्रण करने के लिए, मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: जी जी जी, आइए हमारे बीच एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार।
2: हेलो जी नमस्कार, बाबू जी के साथ को भी मेरा प्रणाम हो।
0: प्रणाम प्रणाम।
2: हाँ जी, तो मेरा भी एक भजन है सर
0: जी,
2: अगर जो शरीर से निकल रहा है, मत कर अभिमान बदले, झूठी है शान, झूठी है शान, लाखों आए लाखों चले गए, ये है मेरा बोल है सर। इसके ये सुना देंगे तो अच्छा रहेगा। सभी साथियों को और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गुड़ीलाल जी, शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। चलिए अभिजीत जी से बातें करते हैं। अभिजीत, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें जी।
1: जी, वैसे तो मेरा नाम अभिजीत कुमार राम है, बट लोग मुझे MAS अभिजीत के नाम से जानते हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। मेरी पढ़ाई अबूधाबी में हुई है और अभी मैंने अपनी 10वीं पास की है। वैसे तो मैं एक आवर क्रेजी कोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फाउंडर भी हूँ, जहाँ पे हम बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं, कोडिंग और AI। और हमारे पास हमारे AI टूल्स हैं, जेनी AI है जो मेरा एक क्लोन है। और जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अभिजीत जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। तो ये कोडिंग वगैरह कैसे आपने सीखा, किधर से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके बारे में थोड़ा बताइए
1: जी। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत गेम्स खेला करता था, तो क्या होता ना, गेम्स में कैरेक्टर्स होते हैं या फिर कोई चीज़ होती है, मैं सोचता था मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे डिज़ाइन करूं। तो वैसे ही मैंने अपने पापा से पूछा कैसे कर सकते हैं ये, तो उन्होंने बोला उसके लिए आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा। तो जो शब्द कोडिंग मैंने पहली बार वहाँ पर सुना था। ऐसे बच्चे होते हैं तो हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे ही फिर सिलसिला चलता रहा। और फिर जब कोविड आया, कोविड आने के बाद हम फिर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद फिर हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए। ऑनलाइन क्लासेस में हमें इंटरनेट और हाथ में हमारे लैपटॉप मिल गया, तो मुझे लगा क्यों ना हम कुछ सीखें इससे। तो बट जब मैं YouTube पे गया सर्च करना, बिकॉज वही एक प्लेटफॉर्म होता है हम जहाँ पे कुछ भी जाके अपना जो भी क्यूरियोसिटी होता है सर्च करने की, सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं वहाँ पे जाके सर्च किया मैंने कि मुझे कोडिंग सीखना है, बट ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं। जो भी कोर्सेज थे, जो भी क्लासेस थे, वो सारे बड़े बच्चों के लिए थे जो उस फील्ड में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब जब मैं एक छोटा सा बच्चा, मुझे तो बेसिक से सारी चीजें सीखने की जरूरत थी, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने अपने पापा को बोला, तो पापा ने बोला आप ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लो। तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में गया तो वो टीचर ने मुझे स्पेशली अलग से क्लासेस ली, वो भी साथ में बच्चों के क्लासेस लिया करते थे। और फिर मैंने वहाँ पे कोडिंग सीखी। बट यू नो, आप जब कुछ नया सीखते हो तो आपके जो भी मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं हमें भी सिखा दो। मैंने वेबसाइट्स बनाना, एप्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे उस एज में। तो मैंने बोला अपने दोस्तों को, ठीक है मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाता हूँ, खुद के कोर्स रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाके देख लोगे। लेकिन जब मैंने ये सब उनको बताया तो बट दोस्तों दोस्त होते, वो लोग बोलते हैं अभिजीत आप हमारे साथ ही तो रहते हो, आप हमें ये ऐसे ही सिखा दो, हम आपकी वेबसाइट पे क्यों जाएंगे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो हमारा वो आइडिया तो वहाँ पे ड्रॉप हो गया। लेकिन फिर हम जब लॉकडाउन ओपन हुआ, हम जब अबूधाबी लौटे तो हमने सोचा क्यों ना इस आइडिया को एक और बार ट्राई करके देखा जाए। बिकॉज जब हम अबूधाबी लौटे तो हमारे जो इतने भी पुराने दोस्त थे, जितने भी पुराने मित्र थे, वो कुछ भारतवर्ष में ही सेटल हो गए थे या फिर बाहर चले गए थे। तो उनको देखते हुए फिर हमने सोचा कि वहाँ पे ट्राई करते हैं। अब कुछ भी वहाँ पे ट्राई करने के लिए आपको एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। अभी मैं अपने माता पिता से तो ऐसे बोल नहीं सकता था। तो बिकॉज फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद का कुछ किया जाए। तो उसको देखते हुए फिर
0: बिल्कुल
1: मैंने रेस्टोरेंट्स में काम करना स्टार्ट किया। बिकॉज मुझे अपने आइडिया को फंड करना था। तो क्या था उस टाइम, मैं बहुत शाई भी हुआ करता था।
0: अच्छा।
1: मुझे उतना अच्छे से बात करना या फिर मैं शर्मा जाता था किसी के सामने बात करने के लिए। तो फिर मैं रेस्टोरेंट्स में जाने लगा। वहाँ पे उनसे मैं जितना भी ये पोस्टर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मेन्यू डिजाइनिंग मैं उनका करता था। ये मैंने 6 महीने ये काम किया कि मैं वहाँ से कुछ तो कमा सकूँ, कि मैं अपने आइडिया को डाल के मैं इसको स्टार्ट कर सकूँ। ये सोच के फिर बिकॉज वहाँ पे जो मैंने चीज़ें सीखी आज भी मेरे लाइफ में वो चीज़ें मदद, बिकॉज मैं उस टाइम शाई था, मुझे बात करने नहीं आता था लोगों से। अभी मैंने वहाँ पे सीखा लोगों से बात कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है, अपने जो शब्द है उनको प्रॉपरली उनके सामने कैसे रखना है, नेगोशिएट कैसे करना है। ये सारी जो चीज़ें थी मैंने वहाँ से सीखी। वो सीखने के बाद फिर मैं फिर मुझे जो भी मैंने कमाया था वो सारे काम करके 6 महीने मैंने सोचा फिर इसको डेवलप करते हैं। फिर हमने एक डेवलपर हायर किया जिन्होंने वेबसाइट बनाई। बट हमने फिर वही चीज़ यहाँ पे की कि हमने सोचा इस बार लाइव पढ़ाएंगे। जैसे हमारे मित्रों ने बोला था कि हम तुम्हारे रिकॉर्डेड वीडियोस क्यों देखेंगे, तो वैसे हमने सोचा यहाँ पे भी हम लाइव ही पढ़ाएंगे। फिर लाइव मैं ही एक टीचर हुआ करता था जो सबको पढ़ाया करता था ऐसे। तो फिर 30 बच्चे हो गए, अभी 30 बच्चे हो गए, उनको पढ़ाना और अपना जो मैं अपने स्कूल की भी पढ़ाई उनको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था एंड और भी चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ टीचर्स को और लाया जाए, बिकॉज और भी बच्चे पढ़ना चाहते थे। बच्चे आ रहे थे, खुश हो रहे थे हमसे पढ़ के, बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं पहले उनके पास कि एक बच्चे को पढ़ाता है तो वो ज़्यादा रिलेटेबल होता है उसके साथ और समझ भी उसको अच्छे से आता है। कोई आउट भी होता है तो ओपनली पूछ सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जब मैं टीचर्स को हायर करने जाता था, जब मैं अपना लैपटॉप का कैमरा ओपन करता था तो वो लोग मुझे बोलते थे आप कौन हो, आप अपने पिताश्री को बुलाओ। उनको लगता था उनका बेटा यहाँ पे गलती से कंप्यूटर के सामने आके बैठ गया होगा, बिकॉज मैं बहुत चाइल्डिश भी दिखता था। तो फिर मैं उनको बोलता था नहीं, मैं इस कंपनी में बस एक इंटर्न हूँ, मैं बस थोड़े टाइम के लिए आया हूँ और मुझे आपका इंटरव्यू लेना है और आगे कंपनी को देना है, वो आपसे फिर बात करेंगे। तो ऐसे कर करके मैं उनके इंटरव्यू लिया करता था, फिर अपने पापा के साथ बैठ के डिस्कस करता था या फिर जो भी मेरे मेंटोर्स थे उस टाइम तक बन गए थे तो उनके साथ मैं थोड़ा बैठ के डिस्कस किया करता था, ये व्यक्ति कैसा है, इसके ये स्किल्स हैं, कितने यूजफुल हो सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, ये वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते थे। फिर उनको हायर किया, उस टाइम हमने 5 पार्ट टाइम टीचर्स को हायर किया और फिर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो फिर मैं अपना थोड़ा जो स्कूल की पढ़ाई थी वो भी मैं बैलेंस कर पा रहा था।
0: जी जी।
1: अब ऐसे सिलसिला चलता रहा, फिर हमारे 1000 स्टूडेंट हो गए।
0: अरे वाह।
1: अब जब मतलब उन 5 टीचर्स को तो फुल टाइम कर दिया था, लेकिन जब हमारे 1000 टीचर हो गए तो बट हमारे क्लासेस कैसे हुआ करते थे, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट हुआ करता था।
0: अच्छा, 1-to-1।
1: 1-to-1 था। तो अभी क्या, अगर मुझे 1000 बच्चों को पढ़ाना है तो 1000 शिक्षक चाहिए। अभी इतना शिक्षक लाएंगे तो फिर और भी बच्चों की मदद कैसे कर पाएंगे। इसको देखते हुए फिर हमने सोचा नहीं, फिर हम रिकॉर्डेड बेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्टिंग बहुत बढ़ रही थी एंड ऑल सारी चीजें। तो फिर हमने सोचा कि अभी रिकॉर्डिंग करना है, इतने सारे बच्चे हैं, फिर वो पर्सनलाइज का फील कैसे रहेगा, उनको लगेगा कैसे कि हम पढ़ा रहा है टीचर हमें। फिर तो फिर वही रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा। उसको पर्सनलाइज का फील देने के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे थे पूरे ग्लोबल से आते थे, अमेरिका, यूएस और यूरोप से भी आते थे. तो हमने कोर्सेज को सोचा कि दो सेगमेंट में डिजाइन करेंगे. क्या था कि एक कोर्स जो बनाएंगे, बिकॉज जो अमेरिकन होते हैं, जो बाहर के फॉरेनर्स होते हैं, उनको चीजों डिटेल में समझनी पड़ती है, हर एक चीज को कोर में जाके समझना होता है उनको. अभी जो हम एशियंस हैं या फिर भारतीय, हम ऐसे ही स्मार्ट होते हैं, तो हमें अगर ऊपर ऊपर से भी समझाया, फिर उतने डेप्थ में भी नहीं गए, तो हम समझ जाते हैं. तो हमने कोर्सेज को वैसे डिजाइन किया. अगर वही हम डिटेल वाला भारतीयों को दिखाएंगे तो फिर उनको थोड़ा बोरिंग हो जाता था. तो ये सब देखते हुए हमने कोर्सेज को डिजाइन किया. बट कोर्सेज को डिजाइन करने के लिए हमें फंडिंग चाहिए थी. अभी मैं तो एक छोटा सा बच्चा था, स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा था. मेरी वर्ष आई थिंक मैं उस टाइम 13 वर्ष का ही था. एंड जब मैं इन्वेस्टर्स के पास जाता था तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए. आई मीन आई थिंक 25 इन्वेस्टर्स ने ऐसा बोल दिया, नहीं आपके आइडिया ये है, आप बच्चे हो, हम आप पे पैसा नहीं डाल सकते, कल के दिन कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. ऐसे करके 25 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया. फिर एक पॉइंट ऑफ ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मैं आराम से चुपचाप पढ़ाई कर सकता हूँ, अपने स्कूल की अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ, मैं क्यों दूसरों बच्चों की मदद करने के पीछे लगाऊँ. बट मुझे वो चीज़ हमेशा याद आता था जब भी इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचता था कि मैंने इसको शुरू क्यों किया था, उन बच्चों की मदद करने के लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई है तो निभाना भी मुझे ही है. ये जब मेरे जहन में रहता था तो फिर ये सब हुआ तो मैंने सोचा अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं अपनी दादी माँ को मिल के आता हूँ. तो उसके लिए हम गांव गए. मेरा गांव यूपी में गोरखपुर में है, तो प्रॉपर गांव है, वहाँ पे तो मुश्किल से इंटरनेट भी आता है. तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने, बिकॉज मैं बहुत सारे, अभी मैं जैसे कोडिंग कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर से बहुत ज्यादा हो चुका था मेरा. तो मैंने वहाँ पे भी लोगों से पूछा कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जो बच्चे थे या फिर जो भी यंगस्टर्स थे, यूथ थे, उन्होंने बोला नहीं ये हमारे लिए नहीं है, ये शहरों के लोगों के लिए है, हमें इसका कोई हक नहीं है यूज करने का, हमें आता भी नहीं है, हम क्या करेंगे इसको यूज करके. ये सब चीजें मैंने सुनी तो मुझे लगा क्यों हम इतने ग्लोबल बच्चों को मदद कर रहे हैं, जो हमारे गांव के बच्चे, उनको भी, उनकी भी मदद करनी चाहिए हमें. तो उसके लिए हमने वहाँ पे इनोवेट एक्स इंस्टीट्यूट करके हमने वहाँ पे खोला.
0: अरे वाह.
1: तो और आपको मैं बताना चाहूँगा ये कि जैसे ही हमने वहाँ पे इंस्टीट्यूट का स्थापना किया, कि हमने जैसे ही, मैं, मुझे आज भी वो दिन याद है, जैसे हम पेपर साइन करके आए कि यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे, उसके अगले दिन ही मुझे इन्वेस्टर से कॉल आता है, बोलता है अभी आपको कितना चाहिए, हम देने के लिए रेडी हैं.
0: अरे वाह.
1: तो क्योंकि पर्पस क्लियर था ना कि मुझे लोगों की मदद करनी है, तो मदद करनी है तो पूरा वर्ल्ड ही आपके पीछे लग जाता है मदद करने के लिए.
0: बिल्कुल.
1: फिर हमने वहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाई, कोर्सेज रिकॉर्ड किए. हमने उस टाइम 200 प्लस कैटेगरी में हमारे कोर्सेज थे. वहाँ पे हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की एंड फिर हम पब्लिक गए, एडवर्टाइजमेंट में डाला. और फिर आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं.
0: बहुत बढ़िया. चलिए अभिजीत जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, अपनी स्टोरी आपने शेयर किया. आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर सुनकर, और उनको भी लग रहा होगा कि ये कोडिंग क्या है, इस तरह से सोच रहे होंगे किस तरह का ये स्कूल है, ये आप सोच रहे होंगे. तो ये एक कोडिंग जो है विशेष रूप से कंप्यूटर भाषा है, जिसके माध्यम से कोर्सेस वगैरह. तो इसमें किस तरह के कोर्सेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप सिखाते हैं बच्चों को?
1: जी कोडिंग होता है ना, कोडिंग एक वे है कंप्यूटर के साथ या फिर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने के, कि उसकी भाषा है
0: जी.
1: तो हम वेबसाइट बनाना सिखाते हैं कि कैसे वेबसाइट बनाना है, ऐप्स कैसे बनाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करना है. अभी मॉडर्न युग में आते हुए एआई बहुत आ रहा है, तो एआई को इस्तेमाल कैसे करना है, एआई से अपना वर्कलोड कैसे कम करवाना है, एआई को सही डायरेक्शन में कैसे यूज करना
0: है,
1: उसका ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा हम उसका यूज करके अपना वर्कलोड कम कर पाए, उसको एजेंटिक एआई कैसे बनाना है. तो इन सब सारे फील्ड्स में हम बच्चों को सिखाते हैं.
0: बहुत बढ़िया. तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अभिजीत जी से हमारी बातचीत हो रही है. आप भी कोई सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन अभी आपको ले चलता हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं. और ये गुड़ीलाल जी ने याद किया था, मत कर तू अभिमान रे बंदे, अभी आपके लिए सुनते रहो. नमस्कार.

0: तेरे पास। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और बुधवार का दिन है, गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी शुभ आशा के साथ। आइए हम लोग बात कर रहे हैं अभिजीत जी से, जिनसे हम लोग अभी सुना कि कोडिंग वाला जो सिस्टम है उन्होंने कंप्यूटर के साथ गेम खेलना, गेम्स बनाना, कंप्यूटर में जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं उसको डिज़ाइन करना, ऐप्स जो हम लोग मोबाइल में आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे काम करते हैं, जो ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन में उसको कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ों को वो सिखाते भी हैं बच्चों को और जिनको चाहिए उनको बना के भी देते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति सुरेश जी। जी जी नमस्ते, बढ़िया बढ़िया है।
1: बस हम भी बढ़िया है, और हमारे जो अभिजीत नाम है उसका,
0: हाँ अभिजीत भाई आए हुए हैं,
1: आबू धाबी से। तो बहुत अच्छी बात बता रहे अभिजीत भाई, आपको हम वंदन करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी
0: जी।
1: देखो आज कोई शहर गांव से वो शहर जाता है तो शहर के बाद गांव में पीछे लौटकर नहीं देखता है
0: जी जी,
1: चाहे गांव में कुछ भी हो, लेकिन आपने जो काम किया है हम उसको सलाम करते हैं कि आप गांव से शहर से गए, शहर गए गांव में आए और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी। बच्चों को कुछ नहीं आता कंप्यूटर बारे में, तो आपने कुछ उसको सिखाया और एक अच्छा नया टैलेंट दिया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है सर। क्योंकि जो आज गांव वाले बेचारे, आज देखो गांव वाले को कोई पता नहीं है कि ये कंप्यूटर क्या होता है, ये चीज क्या होती है, लेकिन आप जैसे कोई अच्छे पोस्ट पर जाते हैं, बाद में आते हैं गांव में कुछ सिखाते हैं, तो एक नया जीवन मिलता है बच्चों को और कुछ करके आगे जाने की वो कोशिश करता रहता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे काम को सहारा,
1: बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको सलाम करते हैं सर। क्योंकि ऐसे काम हर भाग्य में नहीं होता है और
0: बिल्कुल,
1: हर
0: बिल्कुल।
1: लोग भी नहीं करते हैं। देखो हम भी छोटे से गांव के थे, लेकिन अब थोड़ा सा बाहर आए, लेकिन मेरे गांव का मैं आज तक रोल नहीं भूलता हूँ। देखो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ का जो कोई वहाँ हमारा एक मंदिर है और वो मंदिर का कपड़े मैं बनाता हूँ सर, और मैं आज तक कपड़े का पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं वो गांव में पैदा हुआ
0: हूँ,
1: वो मुझे याद करते हैं हम उसके लिए, और मैं वो कपड़े भगवान के कपड़े बनाता हूँ, मैं कपड़े कभी पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे गांव का एक कहते हैं गाँव में हम रहते थे, गाँव में कुछ हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, आज का बुधवार है तो आप सभी को भी हमारे तरफ से गणपति जी की बहुत कृपा बनी रहे, सब मित्रों पर आपको पल, और जैसे गोरेलाल जी ने अच्छा गाना सुना दिया कि मटकर अभिमान बंदे मटकर अभिमान, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अभिमान करना ही नहीं है, क्योंकि अभिमान तो रहता ही नहीं है, और अभिमान करो तो ऐसा करो जैसे अभी हमारा अभिजीत ने किया है, ऐसा अभिमान करो कुछ आगे करके की करने की कोशिश करो, हाँ वैसे करो। चलो एक गाना मैं भी आपको दे देता हूँ कि
0: जी, जी।
1: दुनिया में हम आए हैं तो जाना तो है जरूर, लेकिन कुछ करके जाए, तो ऐसा एक गाना है कि मैं अभी बात में थोड़ा सा
0: भूल गए, कोई बात नहीं।
1: इतिलाज आया मनवा इतिलाज वाना, साथ बिना संग बिना इकला जवाना, इकला जवाना, बस अकेला ही जाना है और अकेले ही जाना है, तो बस ऐसा कुछ काम करके जाए, लोग पूछे याद करें, आपको और हमारे सभी मित्रों को, मेहमान जी को भी हमारा नमस्ते सर
0: जी। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका सुरेश जी, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए अब अभिजीत जी, मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हैं, तो ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा आपकी स्टोरी बताइए
2: जी। तो जब मैं अपने स्टार्टिंग स्टेज पे था, जब हम कोविड के बाद अबूधाबी लौटे थे, और फिर जब मैं काम स्टार्ट कर रहा था अपनी

0: हम ज्ञान में आए, फिर हम एवरी संडे हम जब सेंटर जाने लगे, जो चीज़ें थी दीदी हमें सिखाते थे कैसे हर एक चीज़ को करना है, कैसे सोचना है, सोचने के पहले भी कैसे सोचना है, तो जो मैं ये सोच पाया कि मुझे इनोवेटेक्स ओपन करना है, ये ब्रह्मा कुमारीज और जो दीदी का जो भी एडवाइस रहता था उसको फॉलो करके, तो मैं तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मुझे मुझे इस एज में ये
1: ये
0: चीज़ें
1: चीजें प्राप्त हो गई।
0: पता चल गई। एक बोलते हैं ना, एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया मुझे चीज़ों को देखने के लिए, सोचने के लिए, और इसके वजह से मैं दूसरों को भी मदद कर पा रहा हूँ। तो मैं तो बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे दीदी मिल गए, बाबा मिल गया, एंड इस फैमिली का मैं पार्ट बन पाया। तो उसके वजह से बहुत सारी
1: नमस्कार।
0: चीज़ें मैं सीख पाता हूँ, दूसरों को सिखा भी पाता हूँ। तो बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी रही है, बहुत फनफुल जर्नी रही है मेरी ये। एंड जी
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कैसे आप अपने माता पिता के साथ सेंटर गए, और वहाँ जाने का पहली बार गए तो आपको ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, लेकिन जैसे ही आप वहाँ गए तो चीज़ें अच्छी होने लगी और आपने सुना समझा, और आपको जब दीदी ने टोली के रूप में कप दिया तो आपको बड़ा अच्छा लगा। और वो चीज़ें, क्योंकि पहली बार जिन लोगों से हम मिलते हैं एक स्पिरिचुअल टच है, तो वो चीज़ें हमें मेमोराइज हो जाती, यादें रह जाती हैं, और निश्चित तौर पे जहाँ पर हमें ज्ञान मिलता है और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा काम करता है। ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ सोर्स ऑफ इनकम। तो वो हमारी जीवन में जब हम उस नॉलेज को यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए जो अभी आपको सुन रहे हैं अभिजीत जी?
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक मेरे जो विचार थे उनको सुना है।
1: जी।
0: मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि देखो, मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता अगर मैं इस संस्था से नहीं जुड़ा होता। तो अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हैं या फिर आप कहीं से भी देख रहे हैं, तो इस डोर को पकड़ के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। इस वे में नहीं तो अनदर वे में आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो वही मेरा ये है कहना कि आप बाबा को पकड़ के रखिएगा, डू नॉट लीव हिम, ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन ऑल द वेज। जी
1: जी। तो सबसे पहला मदद आपको बाबा का कैसे एक्सपीरियंस है, क्या कुछ इससे पहले वो थोड़ा सा शेयर कीजिए
0: जी
1: बाबा की मदद का?
0: जी तो बाबा का मदद तो मेरा फंडिंग का ही है। जब जब मैं मतलब एक एक होता है ना, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 13 साल का बच्चा था, तो अगर एक बच्चे को आप कुछ भी बोल दो तो एक अंदर से हर्ट हो जाता था। अब मैं तो जब इन इन्वेस्टर्स के पास जाता था, वो लोग मुझे ऐसे ही बोलते
1: बच्चा
0: थे,
1: समझ के बना
0: बच्चा कि क्या करोगे तुम,
1: देते।
0: हम तुम्हारे ऊपर अपना पैसा क्यों डाले, तुम क्या कर लोगे, तुमको स्कूल जाके पढ़ाई करनी है। फिर ऐसा लगता था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब एक फाउंडर होता है ना, एक शेख अंदर से हिल जाता है कि मैं किस लिए ये कर रहा हूँ। मैं तो आराम से जाके अपने स्कूल में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला के अपने माता पिता को खुश कर सकता हूँ,
1: बिल्कुल।
0: मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर भी इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट बाबा बोलता है ना कि आप एक कदम अपना बढ़ाओ, मैं आपके लिए पदम कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा बस यही था कि मैंने स्टार्ट किया है, बाबा को ही करना है ये, बाबा को ही फंडिंग लानी है और बाबा को ही उन बच्चों को पढ़ाना भी है। तो वो मेरे माइंड में क्लियर था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट द मीडियम, बाबा मेरे थ्रू करा रहा है।
1: अरे वाह।
0: तो जब ये करके सोचते हैं ना, तो फिर वो टेंशन, वो रिजेक्शन, वो दिल में नहीं लगता
1: नहीं
0: है।
1: लगता, बिल्कुल साक्षी हो जाते हैं
0: जी
1: आप, अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं।
0: जी तो बाबा ने ही फंडिंग दिलाई यहाँ पे। जब ये था, अगर ये होता मेरे अंदर कि मैं अभिजीत बैठ के कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं आज यहाँ तक पहुँच पाता या फिर इतना कुछ अचीव कर पाता। तो जो वो था कि नहीं, बाबा मेरे लिए कर रहा है, ये मेरा कुछ नहीं है, तो वो जब चीज़ मेरे माइंड में, मैं कुछ भी बोलता या फिर कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो पहले बाबा से राय करके, दीदियों से पूछ के, फिर ही कोई भी डिसीजन मैं लेता हूँ। तो बोलता है ना, फिर बाबा हमारी जिम्मेवारी ले लेता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: चलिए अभिजीत जी, बहुत ही सुंदर बात है आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों को, श्रोता बंधुओं को, खास करके रेडियो जो सुन रहे हैं उन सभी को एक तो मैसेज मिल ही गया कि आप जब भी कोई काम करते हो तो आपको बहुत सारा रिजेक्शन मिल जाता है, तो आप नर्वस हो जाते हो, आप थोड़ा सा कट जाते हो, या फिर आप जो चीज़ों के लिए काम कर रहे थे वो छोड़ के नया कुछ सोचना शुरू कर देते। लेकिन जब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाता है तो आप हर रिजेक्शन पे भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, और किसी नए चीज़ को करने के लिए हमें थोड़ा सा लंबा तय करना पड़ता है रास्ता, तो इसीलिए हमें काफ़ी रिजेक्शन को भी

मत लेना होता है। और रिजेक्शन तब तक आते हैं जब तक आप कंप्लीट नहीं होते, जब आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, आप अपने आप को साबित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप जब कंप्लीट हो जाते हो अपने जॉब में, अपने टास्क में, अपने कार्य में, लोगों को जब विश्वास होने लगता है तो तुरंत आपको जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी तरह अगर आपको कहीं रिजेक्शन मिल रहा है तो आप अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाइए, मेडिटेशन करिए, परमात्मा से जुड़िए और एनर्जी को रेस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है खुशी मिलेगा और रिजेक्शन का कोई टेंशन नहीं रहेगा। रिजेक्शन आया भी तो आप फुलफिल रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद मेरे को सफलता मिलना ही मिलना है। तो आपका मेहनत, जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल निश्चित आपको मिलता है। तो इसीलिए हमें जो है एक अच्छा जो है माइंडसेट लेकर हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। और जैसे अभिजीत का बहुत ही सुंदर अनुभव है, जब उन्हें बहुत सारे रिजेक्शन मिले लेकिन उसके बाद उनको बाबा का ये बीच में ही ज्ञान मिला और फिर ज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ी और तुरंत उनको जो है ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी और आज बहुत सारे हज़ारों बच्चों को वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ये चीज़ें। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक छोटा सा जो है इतनी कम उम्र में इन्होंने एक बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश की और उसके CEO बनकर, फाउंडर मेंबर बनकर बच्चों को कोडिंग सिखाने का या वेबसाइट से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस वगैरह जो भी उनको लगता है इंटरनेट से बात कनेक्टेड चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को वो सिखाते भी हैं बच्चों को और बिजनेस ओनर्स को भी हेल्प करते हैं। तो वहीं आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं। जैसे हमारे सुरेश जी अभी फ़ोन करके याद कर रहे थे, उन्हें भी अपनी गांव की याद आ गई जब अभिजीत ने अपनी स्टोरी सुनाई तो वो बड़े बिल्कुल कनेक्ट हो गए थे और अभिजीत को बहुत ज़्यादा शुभकामना दे रहे थे, नमन कर रहे थे, सलाम कर रहे थे। तो आइए उनका एक भावना भरा गीत जो गुजराती उन्होंने याद किया है तो वो गीत अभी आपके लिए सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी सुना और आशा करूँगा ये गीत आपके मन को कहीं ना कहीं जगजोर दिया होगा कि ज़िंदगी में आप आए भी अकेले और अकेले को ही जाना है। लेकिन हम कभी कभी जो है ये भूल जाते हैं और जिसके कारण हम दुख महसूस करते हैं और परेशानी लेते हैं। तो अब हमें जो है संसार में भी रहना है लेकिन साथ में अकेला हूँ ये भी समझना है, अकेले को आना है, अकेले को जाना है, तो हमें खुद पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो कैसे हम अपने आप पर काम करें, इसके लिए आपको एक बहुत ही सुंदर इंस्टीट्यूशन है ब्रह्मा कुमारीज का। उस इंस्टीट्यूशन में आप जब जाते हैं तो खुद पे कैसे काम करना है, खुद को कैसे अपग्रेड करना है, ये सारी नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए, वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे समाचारों की तरफ चलते हैं। अभिजीत, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी?
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जो पॉडकास्ट था यहाँ तक आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अभी भाई साहब ने जैसे बोला कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। मैं यहाँ तक अगर इसको अडॉप्ट करके पहुँच सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। तो आप लोग भी एक बार तो आके ट्राई करके देखिए क्या है, समझ के तो देखिए, इससे बहुत मदद मिलेगी आपको। मुझे मिली है, इसके लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं। आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें और जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिला है उसको स्प्रेड करते हुए पूरे विश्व को जो है एनलाइटमेंट करें, ऐसी शुभ आशा के साथ थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, अब सीधे चलते हैं समाचारों की तरफ। कुछ ही पल में दिल्ली से कनेक्ट हो जाएंगे आप और समाचार सुनेंगे।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
1: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें टिकाऊ टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
5: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
6: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
7: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुँचे हैं। 3 भव्य रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में 1 की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और 15 जुलाई की विशेष बातें आप सुन रहे हैं। और आइए आज जो लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में बातें करते हैं, और निश्चित तौर पे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अपना जीवन जो है लोगों के जीवन को सुनकर, लोगों की जीवन कहानी को सुनकर आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है और आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए, दक्षिण भारत के राजनेता थे जो नाडर जाति के, उठकर मद्रास बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल निचले स्तर से अपना राजनीतिक जीवन सफर शुरू करके देश के दो प्रधानमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज साठ के दशक में कांग्रेस में सुधार के लिए बनाई गई कामराज योजना के कारण विख्यात हुए। तो आइए आज बात करते हैं कुमार स्वामी, जिन्हें के कामराज के नाम से जाना जाता है। आज उनका जन्मदिन है, जिनके बारे में हमने आपको अभी थोड़ी बातें बताई। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और तमिलनाडु के विरदूर नगर में इनका जन्म हुआ आज ही के दिन 15 जुलाई 1903 को। मूल नाम कामाक्षी कुमार स्वामी नादेर था, लेकिन बाद में के कामराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। कामराज के पिता व्यापारी थे, किंतु उनका असमय मृत्यु के कारण परिवार को काफ़ी परेशानी में डाल दिया था। परिवार में ऐसी असमस्ता जो समस्याओं के बीच उनका लालन पालन हुआ, और भारतीय राजनीति में जब वो आए तो वे किंग मेकर के रूप में जाने जाने लगे, और भारतीय आज़ादी के आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री के वो अत्यधिक निकट रहे। कामराज अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व वाले वैकम सत्याग्रह ने उन्हें आकर्षित किया, और 16 वर्ष की अल्प आयु में ही कामराज पार्टी में शामिल हो गए और आज़ादी की लड़ाई में काम करने लगे। और पहले ही कामराज कई बार जो है आज़ादी के इस लड़ाई में शामिल होते ही जेल चले गए, और जेल में उनको डाला गया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने कम्युनिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष चुन लिया गया, और किंतु रिहाई के 9 महीने बाद ही उन्हें पद से त्यागपत्र देने को कहा गया। किसी को भी तब तक कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह उसके साथ पूरा न्याय न कर सके। तो इस तरह की बातें उनके साथ हुई, लेकिन फिर भी वो अड़िग रहे और राजनीति में सफलतापूर्वक काम करते रहे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत की तरफ आपको ले चलता हूँ, और हेमंत चौहान का ये खूबसूरत गीत, अभी कवि प्रदीप जी का गाया हुआ गीत, कोई लाख करे चतुराई, अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। 9:28 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। तो चलिए, बातें कर रहे थे हम लोग कई कामराज जी के बारे में। राजनीति में उन्होंने जमकर काम किया, आंदोलन में काफ़ी काम किया और फिर धीरे धीरे जो है लाल बहादुर शास्त्री को और 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। दोनों बार दक्षिण पंथी मोरारजी देसाई जनता पार्टी को हराया, किंतु 1967 में वो अपने गृहनगर में हार गए। इसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी उन्हें पार्टी के नेतृत्व से हटाने में सफल रही और 1969 में वो पुराने नेताओं के गुट के सदस्य रहे, जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता में हटाने का प्रयास किया। लेकिन पार्टी में विभाजन हो गया, जिसमें कामराज और उनके सहयोगी एक छोटे से विभिजित गुट के साथ ही अलग अलग हो गए। माना जाता है कि कामराज योजना के कारण ही कामराज केंद्र की राजनीति में इतने सशक्त हो गए कि नेहरू जी के विधान के बाद शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में उनकी भूमिका किंग मेकर की ही रही। वो तीन बार अध्यक्ष भी रहे और दक्षिण भारत की राजनीति में कामराज एक ऐसे नेता थे जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। कामराज के राजनीतिक गुरु सत्यमूर्ति थे। कामराज में एक निष्ठावान और कुशल संगठनकर्ता देखा। डॉक्टर सुदर्शन कहते हैं कि कामराज में गजब का राजनीतिक कौशल था। उनकी छवि अच्छी थी और उन्होंने सदैव पड़ोसी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में अधिक जानकारी ये है। कामराज योजना यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत और तमिलनाडु राज्य के तीन बार मुख्यमंत्री रहे कामराज को किंग मेकर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कामराज को लेकर आए थे और कामराज ने नेहरू जी को शुरू से ही उनको अच्छा लग रहा था और कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी। उस समय नेहरू को एक नई योजना सूझी और स्वयं 2 अक्टूबर 1963 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। उनका विचार था कि पार्टी के बड़े नेता सरकार में अपने पदों से इस्तीफा दे दें और अपनी ऊर्जा नई जान फूंकने में लगाए। उनकी इस योजना से स्वयं भी त्यागपत्र दिया और लाल बहादुर शास्त्री, जगमोहन राम, मोरारजी देसाई तथा एस के पाटिल जैसे नेताओं ने भी सरकारी पद त्याग दिया और इस योजना को कामराज योजना के नाम से जाने जाने लगा। उसके बाद वो खुद मुख्यमंत्री बने और उनका नेतृत्व क्षमता भी बड़ी अजीब रही। और उनके विशेष योगदान के लिए अगर बात करें, आज़ादी के बाद जन्मी तमिलनाडु की पीढ़ी के लिए बुनियादी संरचना मजबूत की। कामराज ने शिक्षा क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। व्यवस्था की भी, कई गांव बिना प्राथमिक स्कूल के ना रहे और उन्होंने निरक्षरता हटाने का प्रण किया और कक्षा 11वीं तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी। वो स्कूलों में गरीब बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने की योजना लेकर आए। डॉक्टर सुदर्शन कहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी काम के अलावा तमिलनाडु को उन्होंने एक और उपहार दिया। वह स्कूली तथा उच्च शिक्षा में तमिल भाषा को एक माध्यम के तौर पर लेकर आए। उन्हीं के कार्यकाल के बाद वे तमिलनाडु में बच्चे तमिल में शिक्षा हासिल कर सके और इस तरह से उन्होंने शिक्षा में मजबूत काम किया। कामराज को दो पूर्व मध्य प्रधानमंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री के साथ 1964 तथा इंदिरा गांधी के साथ 1966 में काम करने का अवसर मिला। उनकी पहचान दक्षिण के गांधी के रूप में की गई थी और सादगी प्रयास कामराज को 1976 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। तो ये थी कहानी के कामराज के बारे में। और 2 अक्टूबर 1975 को कामराज का चेन्नई में निधन हो गया था। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं और ये गीत आपके मन को बहुत ही अच्छा फील कराएगा। तो ये गीत है हम हिंदुस्तानी, आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए हम हिंदुस्तानी प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: मदन भाई बोलिए, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार, आपने स्वागत किया। नमन करते हैं रेडियो मधुबन नवी किरण रमेश जी और हमारे सभी शो को, और सुबह से सुनते हैं, अच्छा लगा है सभी शो। मंत्री हमारे डॉक्टर साहब, हमारा थोड़ा सुनना मजा लगा, और आप नमस्कार करते हैं और आज के दिन को, और सभी विषय में जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जो अपने अपने हिसाब से जो पैसे से कर रहे हैं, जो पैसे बगैर कर रहे हैं, और जो भी गाय चराते हैं, बकरी चराते हैं, जो भी खेती बाड़ी किसान फौजी भाइयों को, और जो भी हमारे नेता है, जो भी है, और हमारे जो भी गाने गाने वाले हैं, जो भी है, अपने दिल से सेवा करते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं सभी को, और आज दिन का भी सभी को हम नमन करते हैं। ओम कर, और गाएंगे गाने के लिए बहुत नमस्कार सर, आगे तो आप सुनने के तो मजा आ जाएंगे, और सुनते हैं सुनाते हैं और जो जमी ने फरमाइश दी उन सभी को नमस्कार हमारे, और बस दिल से कह रहे हैं कि जाने का मन हो रहा है, मगर बड़ा भगवान है बताते रहे, और बस एक बात है, बचाते रहिए, जीवन बचाते रहिए, और सबको और ये चाहते हैं हमारे ब्रह्मा कुमारी का टेस्ट है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस आएगा जीवन में सब कुछ, तूफान तो आएंगे, तूफान आएंगे उसके पीछे तो बर्दाश्त आती है ना। नमस्कार, ओम शांति सर।
0: ओम शांति जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। आप सुना है रिमोज बन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ये थे मदन जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे, और आइए अब बात करते हैं जमशेद जी जीजाबाई के बारे में। जी हाँ, जीजाबाई की अगर बात करें तो भारतीय पारसी व्यापारी और परोपकारी व्यक्ति थे, जो बाद में एक ब्रिटिश शूरवीर और बैरोनेट थे। उन्होंने चीन के साथ कपास और अफीम के व्यापार में सफलता पाई। वो अपने व्यवसाय से अत्यंत धनी बने दानवीर थे। जमशेद जी जीजाबाई का सबसे अधिक नाम उनकी दानशीलता के कारण हुआ। तो जमशेद जी जीजाबाई का जन्म आज के दिन 1783 को एक गरीब परिवार में मुंबई में हुआ था। आर्थिक तंगी के कारण वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके और 12 वर्ष की छोटी उम्र में अपने मामा के साथ पुरानी बोतलें बेचने के धंधे में लग गए थे। कुछ दिन बाद ममेरी बहन से उनका विवाह हो गया, और 1899 में माता पिता का देहांत हो जाने से परिवार का पूरा भार जीजाबाई के ऊपर आ गया। जमशेद जी बड़ी व्यावसायिक बुद्धि के थे, और व्यवसाय में जमशेद जी जीजाबाई ने साधारण हिसाब रखना और कम चलाओ अंग्रेजी सीख ली थी। अपने व्यापार का भारत के बाहर विस्तार किया और बड़े बाड़े के जहाज़ों में चीन के साथ वस्तुओं का क्रिया विक्रिय करने लगे, और 20 वर्ष के थे तभी उन्होंने पहली चीन यात्रा की। कुल मिलाकर वे 5 बार चीन गए। कभी ये यात्राएं खतरनाक भी सिद्ध हुई। एक बार पुर्तगालियों ने उनका जहाज़ पकड़कर लूट लिया और उन्हें केप ऑफ गुड होप के पास छोड़ दिया था। किसी तरह मुंबई आकर उन्होंने फिर से अपने को संभाला, और 1914 में अपना जहाज खरीदने के बाद जहाजी बेड़ा बढ़ाने और निरंतर उन्नति की दिशा में बढ़ते हुए आगे बढ़े, और फिर कुओं बांधों का निर्माण उन्होंने किया, सड़कों का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया, औषधालय स्थापन की, शिक्षा संस्थाएं बने, पशुशालाएं बने, अनाथालय बनाए, आदि सभी के लिए उन्होंने धन दान करना शुरू कर दिया। उनकी आर्थिक सहायता से स्थापित संस्थाओं में मुख्य है जे हॉस्पिटल, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, पूना बांध और जल संस्थान। मुंबई समाचार, मुंबई टाइम्स, सब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पत्रों को भी सहायता मिली। अनुमान उस समय उन्होंने 30 लाख रुपए से अधिक का दान दे दिया था। महारानी विक्टोरिया द्वारा सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रहने वाले जीजाबाई ने महिलाओं की स्थिति सुधारने तथा पारसी समाज की बुराइयां दूर करने के लिए भी अनेक कदम उठाए। तो ये थी कुछ खास बातें जमशेद जी टाटा के बारे में, जमशेद जी जीजाबाई के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर नई किरण। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपके नाम।

नमस्कार, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे दो पंची दो तीन के तपस्या। इस एल्बम का ये गीत था किशोर कुमार का गाया हुआ। आपको बता दें कि परीक्षित सहानी और राखी पर पिक्चराइज किया गया था। एमजी हसरस हसमत जी ने इस गीत को लिखा था। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें इस गाने के बारे में। 1976 में ये गीत रिलीज हुआ था। अब आइए बात कर रहे थे हम लोग विशेष के कामराजन के बारे में और उसके बाद जमशेद जी जीजाबाई के बारे में। अब एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, बादल सरकार। जी हाँ, निर्देशक और इनके सभी जैसे कि नाटककार अभिनेता के रूप में इन्होंने काम किया, लेकिन रंगमंच के सिद्धांतकार थे इन्होंने। तीसरा रंगमंच का सैद्धांतिक प्रतिपादन इन्होंने किया, उसे मंच पर भी उतारा। बादल सरकार ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तथा टाउन प्लानिंग में डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त की और भारत और विदेश में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। भारत के बहुचर्चित नाटककारों में से एक बादल सरकार थे। सातवें दशक में पूरे देश में उनकी धूम मची थी। मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर और गिरीश कर्नाड के साथ बादल सरकार को मिलाने के बाद ही उस दौर का रंग परिवेश संपूर्ण होता था। उनके नाटक भारी संख्या में हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में मंचित हुए और वे बंगाल की परिधि से बाहर निकलकर समग्रता में भारत के नाटककार और भारतीय रंगमंच के अगुआ बने। उन्होंने रंगमंच को प्रेक्षक गृह की परिधि से बाहर निकाला और आंगन मंच का सिद्धांत रचा। कम से कम खर्च में नाटक मंचित करना और आम जन के लिए नाटक को निःशुल्क उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य था। सन 1956 में बादल सरकार ने अपना पहला नाटक सॉल्यूशन एक्स लिखा था, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्शन किया था। तो ये थी कुछ खास बातें बादल सरकार के बारे में। वैसे इनका पूरा नाम सुधीर चंद सरकार था। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं अदावत पे जाने।
1: अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होता। गाओ।
0: मुझे बहुत दुख होता है, सुनिए मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा।
1: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं।
0: मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
1: कहां से सीखी?
0: सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना अनुपमा इस एल्बम का, जो 1966 में रिलीज हुई थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। धीरे धीरे मछली ये गीत आपने सुना, सुरेखा पंडित एंड तरुण बोस पर पिक्चराइज किया गया था, स्टारकास्ट किया गया था। हेमंत कुमार के म्यूजिक डायरेक्शन में ये गाना बना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया और कैफी आजमी ने लिखा था। चलिए, अब वक्त हो गया है आपको आज के दिन विशेष के बारे में बातें करते हैं। 15 जुलाई के दिन जन्म उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। जी हाँ, गुजरात के कुशल राजनीतिक भूपेंद्र पटेल का भी जन्मदिन आज है। 1962 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। भारत के विशेष राजनीतिक भानु प्रसाद सिंह वर्मा, 1957 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। मलयालम में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार थे एम टी वासुदेव नायर, 1933 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और भारत के बहुत ही पॉपुलर व्यवसाय और अत्यंत धनी और दानवीर जमशेद जी जीजाबाई का जन्म भी आज के दिन 1883 को हुआ था। आधुनिक केरल प्रदेश के मुख्य नेता पट्टम तन्नु पिल्लई, 1885 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारत के विशेष मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित आज़ादी के दीवाने राजनेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म आज के दिन 1903 को हुआ था। आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख, इनका भी जन्मदिन आज है, 1909 में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के विशेष कमेटी की कार्यकारिणी सदस्य तथा बम्बई विधानसभा के सदस्य गणपतराव देवजी तापसे, 1909 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, भारत और पाकिस्तान के पहले युद्ध 47 और 48 में शहीद हुए थे मोहम्मद उस्मान, भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, 1912 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। बहुत ही पॉपुलर अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और इन सब के अतिरिक्त रंगमंच के सिद्धांतकार कहे जाने वाले बादल सरकार का भी जन्म आज है, 1925 में इनका जन्म हुआ आज के दिन। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राजनेता और केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सी एच मोहम्मद कोया, 1927 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। संस्कृत के जाने माने विद्वान, भाषाविद, बहुप्रकाशित लेखक कलानाथ शास्त्री, 1936 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। उड़ीसा के एक प्रख्यात समाजसेवी कार्यकर्ता तुलसी मुंडा का जन्म भी आज के दिन 1947 को हुआ था। भारत के राजनीतिक और हिंदी के विशेष कवि रमेश पोखरियाल, 1959 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और भारतीय उद्यमी है जिन्होंने पेटीएम को बाजार में उतारा, विजय शेखर शर्मा, 1978 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य में सैन्य अधिकारी थे कैप्टन निके जाखू, 1974 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारत के 8वें मुख्य न्यायाधीश कोका सुब्बा राव, 1902 में इनका जन्म हुआ। एक विशेष शिक्षाविद, ग्रंथकार और संख्याविद अंग्रेज अधिकारी विलियम विल्सन हंटर का जन्म भी आज के दिन 1840 में हुआ। और आमेर के राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह का भी जन्म आज के दिन 1600

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में नई किरण में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। माँ के चरणों से बढ़कर इस जहाँ में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। सोचिए जरा सा, अचानक मूत्र रुक जाता है या कम आता है तो सोचिए क्या करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे। और जी हाँ, तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन छोड़ता है। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में, अभी आपको बता दूंगी तो सस्पेंस कुछ रहेगा ही नहीं, बहुत ही सुंदर रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ आलू की। अब आलू की इसके आगे क्या सिखाऊंगी वो जरा अनुमान लगा करके आप जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। और प्रश्न भी बहुत ही सुंदर पूछने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहां काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे ये पीड़ा से मुक्त होकर के प्राण त्याग दे और ज्यादा पीड़ा नहीं भोगनी पड़े। महापुरुष ने बताया कि अगर जन्नत की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। अब जन्नत की मिट्टी भला कहां से आए और कैसे लाए? महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर में लौट आया जन्नत की मिट्टी लेकर के मुट्ठी के अंदर और बोला, ये लो जन्नत की मिट्टी, इसे तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर के एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। ये चमत्कार देख करके सब हैरान थे क्योंकि जन्नत की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है भला, और वो भी एक छोटा सा बच्चा, हो ही नहीं सकता। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पे कौन सा जन्नत है जहां से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? लड़का बोला, बाबा जी एक दिन हमारे स्कूल की टीचर ने बताया था कि माँ के चरणों में सबसे बड़ा जन्नत है, उसके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं, इसलिए मैं ये मिट्टी अपनी माँ के चरणों के नीचे से लेकर के आया हूँ। बच्चे के मुंह से जब ये बात सुनी तो महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत हो ही नहीं सकता, और जिस औलाद की वजह से माँ की आंखों में आंसू आए ऐसी औलाद को नरक इस जहां में ही भोगना पड़ता है। प्यारे श्रोता बंधु, अब आप समझ गए होंगे कि माँ की जन्नत से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी रुपया पैसा जमा कर ले, आसमां की ऊंचाइयों को क्यों ना छू ले, जब तक आपकी वजह से माँ खुश नहीं है तब तक वो भगवान भी आपसे खुश नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, तभी माँ की महिमा इतनी गाई जाती है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे, और आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साईराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। अगर किसी भी कारण से मूत्र रुक गया हो या फिर रह रह करके आता हो तो आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे दे रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके रखिए और इसको सुबह पीजिए, इससे लाभ मिलेगा। लगभग ऐसा सभी करते होंगे क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं इस पानी के। फिर भी ये मूत्र में भी फायदा करता है कि रात को आप तांबे के लोटे में पानी भर के रख दीजिए और इसको सुबह पीजिए नन्हे कोटे, तो फिर इससे मूत्र खुल करके आएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा नुस्खा भी आपको बहुत ही अच्छा दे रही हूँ कि भोजन के साथ छाछ को जरूर शामिल करिए। छाछ में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिए, ठीक है, गाढ़ी गाढ़ी छाछ मत पीजिए। थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल करके इसको पतली कर दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया मिला दीजिए, फिर पीजिएगा इसको, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अगला नुस्खा भी बहुत ही सुंदर है कि 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री दोनों को पीस करके ठंडे जल के साथ फाकी लीजिए। इससे रुका हुआ मूत्र खुल जाएगा और अगर मूत्र की वजह से जलन भी आती हो तो मिट जाएगी। कितनी बार जलन होती है ना, तो जलन भी ठीक हो जाएगी। ऐसी मात्रा दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है। 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री दोनों को पीसिए। पीस करके आप, मतलब इकट्ठा पीस करके भी आप रख सकते हैं इस तरह, जो मैंने मात्रा बताई ना, तो इसको बढ़ा दीजिए और एक कांच की बोतल में भर दीजिए। फिर इस तरह की समस्या हो ना तो फिर आप थोड़ा सा ले लीजिए। मात्रा यही है 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री। ज़्यादा पीस रहे हैं तो भी इस अंदाज से पीसना। फिर इतना सा ले करके आप जल के साथ, नॉर्मल सादा पानी के साथ आप फाकी ले लीजिए। इससे रुका हुआ मूत्र आ जाएगा खुल करके और अगर मूत्र की वजह से जलन हो रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी। और लास्ट नुस्खा ध्यान से सुनेंगे। एरंडी का तेल 25 से 50 ग्राम तक गर्म पानी में मिला करके पीजिए। 15-20 मिनट में ही मूत्र खुल करके आ जाएगा। जब हर प्रकार से हार जाओ ना और कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है तो ये उपाय ज़रूर काम करेगा और 15-20 मिनट में ही खुल करके बाथरूम आ जाएगा। फिर से दोहरा रही हूँ, एरंडी के तेल आप लीजिए, जिसको हम कस्टर ऑयल भी कहते हैं, 25 से 50 ग्राम तक गर्म पानी में मिलाकर पीजिए, ठीक है। 25 से 50 ग्राम की मात्रा में एरंडी का तेल लेकर के गर्म पानी में मिला दीजिए और इसको आप पी जाइए। 15-20 मिनट में देखिए आप, आराम मिल जाएगा, मूत्र खुल करके आएगा और ये नुस्खा बहुत ही सटीक है। तो ये जो नुस्खे आपको सुनाए हैं ज़रूर आप आजमा सकते हो। अगर मूत्र होता है कभी कभी अचानक कि मूत्र या तो कम आना शुरू हो जाता है या फिर एकदम बंद हो जाता है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, वहाँ पर ज़रूर जाइए, लेकिन शुरुआत में सभी घर के नुस्खे ही आजमाने की कोशिश करते हैं। फिर हॉस्पिटल जाते तो जो भी है खैर, पर इन नुस्खों को आप फॉलो कर सकते हो। और आज का प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए अकेली महिला की सुरक्षा के लिए आपके आसपास वृद्धा आश्रम या फिर नारी निकेतन है तो हाँ करिए, नहीं है तो ना करिए, ठीक है। अकेली महिला है, असुरक्षित है, उसकी सुरक्षा के लिए आपके आसपास वृद्धा आश्रम है, आपके गाँव के आसपास या फिर नारी निकेतन है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर। पुनः सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब ये विषय आपको दिया है, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और आप अपने विचार के अनुसार बात बता सकते हैं कि क्या जिंदगी में तूफान आना जरूरी है। हमारे श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार। जय माता जी।
0: हाँ जी, नमस्कार। जय माता जी, कैसे हो आप?
1: बस हम अच्छे हैं। और सबसे पहले तो थोड़ा दिमाग में है कि सुरेश भाई के किसी परिवार से बर्थडे है, तो उनको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं।
0: किसके बर्थडे है?
1: इतना तो कुछ दिमाग में नहीं है, परंतु है किसी के।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है।
1: तो उनको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं
0: जी।
1: और आज का ट्रॉफिक तो बहुत सुंदर है। तूफान मतलब तूफान देखिए जिंदगी में आना चाहिए, तभी किसी की अहमियत पता चलेगा। क्योंकि देखिए जब तक अपने जीवन में कोई ऐसा नहीं होगा ना, तब तक तो सभी एक समान होते हैं
0: जी।
1: जब कोई तूफान कोई परिस्थिति डाउन होती है ना, तो कौन अपना साथ देता है और कौन नहीं देता है, वो सब कुछ अपन को पता चल जाता है
0: जी।
1: और ऐसी परिस्थिति में जो अपना साथ देता है ना, वो ही अपना सच्चा देखती है, सच्चा मित्र है।
0: ओके।
1: कोई भी रिलेशन में हो, कोई भी हो, जो ऐसी परिस्थिति में अपन से मतलब साथ बना रहे, मतलब अपन को हर सुख दुख की बातें करे, अपन को कोई रास्ता बताए, तो वो ही सच्चा हितेशी है
0: जी।
1: बाकी तो मतलब कि देखिए अपने पास अगर धन है ना, तो इसे बहुत घूमेंगे
0: जी। सही कहा आपने। जी जी जी, सुख में सभी साथ देते हैं, दुख में दे वो अपना।
1: हाँ, तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ सभी को, देखिए मतलब दुख में तो सभी साथ देंगे ही, भाई जो दुख में साथ देता है ना
0: जी,
1: उसका आप भी बस नेक काम करते रहिए, उसको मतलब उसको कभी भी परिस्थिति आए तो उसको भी साथ देना चाहिए
0: जी जी जी।
1: परंतु ऐसा नहीं कि उसकी परिस्थिति डाउन है और उसने आपका साथ दिया और आप किसी पैसे वाले के पीछे भाग रहे हैं
0: जी,
1: ये भी नहीं होता
0: जी।
1: तो यही मैं कहना चाहूंगा। और आपका सुविचार तो बहुत सुंदर था, जो लाइनें मैंने बनाई थी वो याद दिला देता हूँ आपको।
0: हाँ जी।
1: माँ की ममता से है ना परी, सेवा कर लो, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, ओ आज से अपना वादा रहा,

0: उनकी चरणों में जन्नत है ये।
1: बहुत सुंदर सुरेश भाई, आभार आपका। सुरेश भाई कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, और बनाते हैं तो सुनाते भी हैं और अच्छी बनाते हैं। बहुत अच्छे लगे माँ के ऊपर ये प्रिया चंद पंक्तियाँ आपने सुनाई जो, और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है कि तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। हेलो।
2: हाँ दीदी, सुप्रभात।
1: हाँ जी सुप्रभात, नमस्कार मोहन जी, आप कैसे हो?
2: बस सभी को, आज के भाई बहनों को और गुजरात के भाई बहनों को शुभकामनाएं आज के दिन की।
1: जी जी जी।
2: और हमारे सुरेश जी भाई साहब जोटाना वाले हैं
1: जी,
2: जो धर्मपत्नी है उनका आज जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका जोड़ा अमर रहे और वो स्वास्थ्य लाभ करें और हमेशा
1: उनके लिए तालियां बजा देते हैं। भाई उनकी धर्म पत्नी का जन्मदिन है तो हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं जी।
2: और आज आरुषि बहन के उसके अंदर किसी बहन का एक संदेश आया था, बहुत सुंदर था
1: जी,
2: कि कांटे अपनी जगह पड़े हैं
1: जी,
2: लेकिन हमें बच के चलना है
1: जी,
2: उन कांटों को दोष नहीं देना
1: जी,
2: ये बीच में है या यूं है या गुलाब पे ये उगे हुए हैं
1: जी,
2: तो गुलाब के फूल हम कैसे तोड़े या गुलाब के फूल तोड़ रहे थे और हमारे कांटा लग गया। अरे सब ये प्रकृति की देन है, फूल और कांटे तो ये तो पैरेलल है
1: जी,
2: सुख दुख है ना
1: जी,
2: वैसे फूल और कांटे भी है। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परिस्थितियां प्रतिकूल, जैसे आपने बताया तूफान, तूफान तो ये आते रहेंगे
1: जी
2: जीवन के अंदर, यदि तूफान नहीं है तो आपको शांति का वो सुख कैसे महसूस होगा
1: जी,
2: यानी तूफान आएंगे तो व्यक्ति को शांति का महत्व मालूम पड़ेगा।
1: यहाँ पर शांति की बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर अपनों परायों का है कि अगर तूफान नहीं आएंगे जीवन में तो कैसे पता चलेगा कि कौन अपने हैं कौन पराये हैं?
2: हाँ तो दीदी, सब साथी दुख में ना होए
1: जी,
2: ये जो पंक्तियाँ है कि सुख में तो अपने सब साथी बन जाते हैं
1: जी बिल्कुल।
2: और जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मेरे को चॉकलेट दिया करती थी, मैं जेब में डाल करके जब स्कूल जाता था तो मेरे दोस्त है जो मेरे चारों तरफ घूमते थे
1: जी,
2: और वो चॉकलेट समाप्त हो जाती थी उसके बाद में बहुत दूर दूर रहते थे
1: जी,
2: बोले वापिस लाएगा जब अपन इनके साथ खेले गया
1: जी।
2: तो कहने का मतलब ये तो प्रकृति का नियम है कि यदि आपके पास कुछ वो कहते हैं ना, नाना अगर नातिया ने नाने ना,
1: जी जी ना जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपसे दूरियां बना करके आपके अपने भी दूरिया बना के रखेंगे
1: जी,
2: और यदि जो है कुछ है आपके पास किसी को दे नहीं रहे हो लेकिन वो आपके समाज के अंदर कभी भी पड़ेगा
1: जी
2: ये। और दीदी एक नारी निकेतन की आपने बात कही थी
1: जी,
2: तो अपने यहाँ आस पास में नारी निकेतन मेरा ख्याल है ब्रह्मा कुमारी का ही है
1: जी,
2: और एक हमारे जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक निकेतन था वृद्धाश्रम
1: जी,
2: तो उसमें पहले पुरुष और नारियाँ दोनों रहती थी, लेकिन आजकल पुरुषों का ही वो कर दिया गया है।
1: अच्छा।
2: तो हाँ, दो एक नारियाँ ऐसी आ गई
1: जी,
2: उन्होंने मतलब जो है स्वभाव उनका बड़ा कड़क मिजाज था
1: जी,
2: तो वो वातावरण को उनका प्रदूषण करने लगी
1: जी जी जी।
2: तो फिर वही वो जो व्यवस्था थे उन्होंने हाथ जोड़ दिया
1: जी,
2: अपने तो भाइयों का ही रखो कार्यक्रम।
1: अच्छा, तो ये आबू में है या रोहिड़ा में?
2: नहीं, यहाँ अवरोड में है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जंगल में है
1: जी जी।
2: हाँ
1: हम भी तो कभी गए थे वहाँ पर।
2: हाँ
1: लेकिन उस समय कोई नहीं था।
2: हाँ वहाँ उस समय कोई नहीं था
1: जी,
2: या तो ये कोरोना के कारण भी उनको यहाँ से मुक्त कर दिया हो।
1: कोरोना तो बाद में हुआ, कोरोना तो बाद में हुआ, हम बहुत पहले गए थे, बोले कि पहले कुछ लोग रहते थे लेकिन अभी बंद है, कोई नहीं है।
2: हाँ वो क्या व्यवस्थापक वो जो मार्शल थे ना गजानंद जी शर्मा
1: जी जी जी,
2: उनका भी देहावसान हो गया और उनकी धर्म पत्नी का भी देहावसान हो गया।
1: अच्छा।
2: और उनकी जो है मतलब वो संपत्ति को संभालने वाले कोई नहीं होने की वजह से वो थोड़ा विवादास्पद हो गया है।
1: जी जी जी
2: ये तो बहन कहीं आस पास में हो तो उसकी सूचना यदि अपने रेडियो पे मिले ना
1: जी
2: तो
1: जरूर
2: बहन का भला हो जाए।
1: जी बिल्कुल तो जरूर देंगे।
2: ये बात है ना। तो सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सुरेश भाई के विचार सुंदर है।
1: जी जी जी
2: माता ही इस संसार की धुरी है
1: जी
2: और मातृ वंदना से ही हमारा जो हमें हासिल हुआ है और इससे ही अपन को पार पड़ना है।
1: जी जी जी
2: धन्यवाद
1: जी। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई है। तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है कि भाई तूफान जीवन में नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन अपना कौन पराया। इसलिए जीवन में तूफान आना बहुत जरूरी है। तूफान बोले तो मुश्किलें जीवन में, देखिए उतार चढ़ाव मुश्किलें आएगी तो ही लगेगा ना कि कौन हमें हेल्प कर रहा है, कौन हमारी मदद कर रहा है, कौन हमसे दूर भाग रहा है। अब ये विषय तो रखा है, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, हम तो सुनाते ही हैं और भी सुना देंगे, परंतु हम आपकी राय सुनना चाहते हैं। और आज का प्रश्न तो आपने सुना ही है कि अकेली महिला को सुरक्षा के लिए आसपास में आप जहां पर भी रहते हैं आपके गांव के आसपास में वृद्धाश्रम या फिर नारी निकेतन है तो हाँ, नहीं है तो ना, ठीक है ना। ये भी एक नॉलेज मिलेगी ना सभी को। देखिए समाज में जैसे कि कल इसी विषय पर बात की थी हमने कि किस तरह माताओं की हालत है, खुद हमारे लिसनर भी जुड़े और अपना अनुभव भी सुनाया, तो कहीं कहीं पर वृद्ध लोगों के साथ बहुत ही बुरा होता है तो वो एक सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि घर में ही स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। अब इस विषय पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, आज तो हमने प्रश्न ही पूछा है हाँ या ना में जवाब देने का। बाकी इस विषय पर चर्चा करेंगे तो कल ही हम आबू के आसपास एक गांव में जा करके आए तो वहां के अनुभव में आपको सुनाऊंगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन वो जरूर आपको सुनाएंगे, एक दिन बात जरूर करेंगे सोमवार या मंगलवार को। परंतु आज की चर्चा यही है, प्रश्न तो यही है हाँ या ना में जवाब देना है, चर्चा यही है कि जीवन में मुश्किलें आनी जरूरी है ताकि पता चले कि कौन हमारा साथ दे रहे कौन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। बाकी जैसे कि मोहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब वो बचपन में चॉकलेट लेकर के जाते थे स्कूल तो दोस्त लोग आगे पीछे घूमते थे और जैसे ही चॉकलेट खत्म दोस्त भी दूर हो जाते थे। ऐसा ही होता है, सुख में सभी साथ देते हैं। आप पार्टी करिए, बर्थडे पार्टी।

0: बनाइए, आप किसी भी प्रकार की पार्टी करिए, जिनको बुलाएंगे सभी आएंगे। नहीं बुलाने वाले भी फोन करके कहेंगे हमको भूल गए आप, हमको तो बुलाया ही नहीं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई। आज बहन जी से बात करवाएंगे, उनका जन्मदिन है तो उनसे बात कर लेते।
1: क्या हुआ है, मैं बात तो करूंगा, थोड़ी देर बात कराऊंगा, वो अभी सब्जी लेने गई है।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैं कब से ट्राई कर रहा था, जब वो हाजिर थी तब तो थोड़ा बिजी आता था, मैंने सोचा चलो अब लगाओ।
0: जी जी जी,
1: मैं कराऊंगा बात आपसे बाद में।
0: जी जी जी, कोई
1: देर में आएंगे तो बात जरूर करवाऊंगा।
0: जी जी जी,
1: और बहुत अच्छी दीदी बात हो रही है, सबसे भी बहुत अच्छा रखा है आज। और आपने जो दीदी वृद्धाश्रम की बात की, तो हमारे तो यहाँ कोई नारी का कोई ऐसा नहीं है, और वृद्धाश्रम भी हमारे गाँव में नहीं है।
0: अच्छा।
1: और हमारे मेहसाना में है लेकिन हमारे यहाँ नहीं है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और हमारे दीदी बताओ,
0: मेहसाना में क्या है, नारी निकेतन है या वृद्धाश्रम?
1: नहीं, वृद्धाश्रम है दीदी।
0: अच्छा, ओके ओके।
1: हम गए तो नहीं है कभी, लेकिन जो हम जाते हैं रोड साइड में ही है।
0: तो महिला और पुरुष दोनों को रखते हैं?
1: हाँ, दोनों को रखते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो
1: हमें
0: जी जी जी जी,
1: हम गए तो नहीं लेकिन हमको पता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं।
0: जी जी जी जी, जरूर।
1: लेकिन दोनों को रखते हैं।
0: जी जी,
1: हमारे तो यहाँ आस पास में कोई नहीं है, हमारे गाँव में भी नहीं है, क्योंकि दीदी बताओ तो हमारे गाँव में ऐसा केसेस कोई हुआ भी नहीं आज तक।
0: गांवों में फिर भी
1: हमारे गांव से कोई यहाँ वहाँ गए हो, ऐसा तो कोई नहीं है हमारे यहाँ।
0: जी जी,
1: तो ये तो सही है कि अच्छा है, लेकिन देखते हैं कई प्रॉब्लम लोगों को होता है तो क्या जाना पड़ता है, माँ बाप खुद बोलते हैं कि हमको यहाँ छोड़ दे।
0: जी जी जी, और आज का विषय है कि देखिए तूफान जिंदगी में आना जरूरी है ताकि पता चले कि कौन अपने और कौन पराए।
1: जी जी जी दीदी, मैं बताऊँ कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मुझके लिए नहीं आती तो ये पता हमको कैसा चलेगा
0: जी।
1: और इसमें हमको सबको पता चलता है कि हमारा रिश्तेदार कितना अच्छा है, कितना कौन कितने हैं
0: जी।
1: तो इसके जरूरी है कि जो तूफान आएगा तो हमको भी पता चलेगा। कई बार क्या होता है दीदी, लोग बोलते हैं भाई हमको पता नहीं था, लेकिन मैं बता दूँ जो मुझे ये छोटा सा ऑपरेशन करवाया है, ऑपरेशन
0: हाँ जी,
1: तो कई रिश्तेदारों का मुझे कॉल आ गया, कई रिश्तेदार मुझे मेरी खबर लेने भी आ गए
0: जी।
1: तो कई बार क्या होता है, पता होता तो फिर भी अनजान हो जाता है कि भाई मुझे पता नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो इस वक्त हमको पता चल जाता है कि भाई हमारा कितना, हमारे कितने लोग हैं, हमारा रिश्तेदार कितना है
0: जी,
1: हमको कितना हमारे सरकार रिश्ता रखना चाहता है, नहीं रखता है
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: ये सब पता चल जाता है। और सभी की बात है, कोई एक बात नहीं, हमारी कोई पैसे की मुसीबत होती है तो अभी कई बार लोग मुंह मोड़ देते हैं कि हमको तो कुछ पता नहीं होता है। तो
0: जी,
1: इस हम तो समझ जाते हैं, पता तो सबको होता है, लेकिन वो देखते फिर भी उल्टा हो जाते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: तो हम समझ जाते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि सभी लोग
0: समझदार के लिए इशारा ही काफी है जी। उस समय बोलने की स्थिति हमारी होती नहीं है, लेकिन समझ सब आ जाता है जी। नहीं बोल, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा जी।
1: हम समझ आएंगे कि हमारे वक्त कौन कितना लोग काम आए थे।
0: जी जी जी, वो कहते हैं कि भूखा व्यक्ति शांत रहता है तो भी लोग कहेंगे अरे कहाँ बड़बड़ कर रहे हो, और जो संपूर्ण व्यक्ति है वो भले कितना भी बोलेगा तो भी कहेंगे अरे बड़े शांत है। जी जी,
1: इसमें शांत रहना है जरूरी। हम किसी से बोलेंगे भाई आप ऐसे हमको हमारे साथ आप नहीं आए, तो वो उल्टा उल्टा करेंगे भाई हमको क्या पता था, हमको पहलाना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, तो ज्यादा बातें आगे बिगड़ जाते, इससे हम बोले नहीं समझ जाएंगे कि
0: जी,
1: कितने
0: जी,
1: लोग हमारे।
0: बिल्कुल। तो सुरेश भाई बहुत बहुत आभार, बहन जी आवे तो उनसे बात जरूर करवाइएगा, ठीक है?
1: जरूर बात करवाऊंगा दीदी, जरूर बात करूंगा।
0: आभार आपका। और यहीं पर एक लेते हैं ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो आप तैयार रहिएगा, सुन लीजिएगा एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपने

0: थोड़ा बाहर गए थे तो अभी अभी आए, और सुरेश भाई की बात चल रही थी जो जोचाना से बात कर रहे थे। मैंने रेडियो चालू किया तो आवाज सुनी, और सुरेश भाई के घर से रेणुका बहन का जन्मदिन है आज, तो ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। का स्वभाव बहुत अच्छा है। हम चोटीला मिले थे, हम गए थे वहां दर्शन के लिए, और वो भी आए थे तो सुरेश भाई ने मुझे कॉल किया कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि चोटीला है
1: जी,
0: चामुंडा माता का दर्शन कर रहे हैं। तो वो भी बोले कि हमारे घर से आए हैं सब लोग दर्शन करने के लिए।
1: जी
0: तो
1: जी जी, उस समय रेडियो में आपसे बात भी हुई थी दोनों से।
0: जी। और फिर उन्होंने जो निशाने भी बताया तो हम मिला, हमको मिले थे बहन जी और सभी भाई बहन थे साथ में
1: जी।
0: तो बहुत स्वभाव बहुत अच्छा है, और जीवन में तरक्की तो की है उन्होंने काफी। जो ऐसा ही घर संसार चलाए
1: जी,
0: और हमारे सुरेश भाई भी बहुत अच्छे परम मित्र है।
1: जी जी जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और कंचन भाई, आपके गांव के आसपास कहीं नारी निकेतन या वृद्धाश्रम है?
0: नहीं बहन जी, हमारे यहाँ नहीं है। इसका कारण है
1: जी
0: कि कोई भी ऐसा, कल आपने बात की थी कि एक ही बेटा हो तो ऐसा होता है तो क्या करे, तो
1: हाँ जी
0: हम सुलेख करते हैं बहन जी इसका
1: जी।
0: जो तू नहीं रखेगा, माता पिता को नहीं रखेगा, तो ये सब माल मित्र है, जायदाद है, जमीन है, ये सब गांव वालों को मंदिर बनाने के लिए या कोई अच्छा स्कूल बनाने के लिए देने वाले है, तो क्या कहता है बोल
1: जी।
0: तो फिर वो है ना, वो आ जाता है बहन
1: जी, जी, जी
0: अपने कि नहीं मैं रखूंगा
1: जी जी जी।
0: तो हमारे नहीं है बहन जी, इसका कारण है कि हम सुले कर लेते हैं, करवा लेते हैं
1: जी जी। बहुत अच्छी बात है। तो आज का विषय है कि जिंदगी में तूफान आना भी जरूरी है, तो ही पता चले कि कौन अपना, कौन पराया, कौन साथ दे रहा है, कौन साथ छोड़ रहा है।
0: बिल्कुल, ये तो है ना, सभी को लागू पड़ता है। सामने हमारा संबंधी है, कोई जीवन में कोई मुश्किली आए, दुख आए, तो हम न जाए और कोई खबर अंतर भी न पूछे, तो हमारा हमें भी ऐसा आने वाला है। सुख तो ये जीवन में होता ही है, तो हमारे हम नहीं जाएंगे तो हमारे वहाँ कौन आएगा, कोई खबर अंतर भी नहीं पूछेगा। और दूसरी बात कि हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा कोई हमें कोई समाज में कोई बातचीत होती है तो हमें जाकर उसको सूले से लाते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा जगह मिलती है बहन जी। समाज में जाते हैं, कहीं जगह पे जाते हैं तो इधर आओ भाई, इधर बैठो, इधर बैठो, वरना हम ऐसा करेंगे तो हमें कोई बुलाएंगा भी नहीं, जाने दो नहीं। तो
1: चलिए कंचन भाई, बहुत बहुत आभार
0: जी।
1: और देखिए प्यारे श्रोता बंधु, अभी भी आपके सामने थोड़ा सा समय है, आपके पास आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो कि मुश्किलें आती है तो कौन साथ देता है, कौन साथ छोड़ देता है। तो ये बहुत ही सुंदर विषय है कि मुश्किलों में साथ निभाता है वो ही अपना है, और जो हाथ ही छोड़ देता है, और छोड़ते हैं अक्सर, जैसा कि बताया हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं ने कि जब हमारे पास काफ़ी कुछ होता है तो लोग अपने आप बिना बुलाए भी आ जाते हैं। हेलो,
2: हाँ जी जी भाई, सुरेश भाई जटाना से।
1: हाँ जी सुरेश भाई जी, बहन जी आ गए?
2: हाँ आ गए, मैं देता हूँ उसको, कोई बात नहीं, गुजराती बोलो।
1: वांदो नहीं हूँ, बोलीस गुजराती माँ।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, स्वागत, बहु बहु स्वागत तमारू अने रेडियो मधुबन मा, और जन्मदिन नी ढेरो ढेरो शुभकामना तमने। केम छो तमे?
2: बहुत मजा मजा
1: मजा मजा छो ने?
2: तो
3: गैर की है बड़ा आराम का।

मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा हिंट तो मैंने दिया ही था कि भाई आलू की, अब आलू की के इसके आगे क्या है वो आपने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, आलू की पेटीज बना देते हैं फटाफट, ठीक है ना? पसंद है सभी को? चलिए, क्यों नहीं पसंद आएगी भाई, वैरायटी खाना बनना चाहिए ना। एक जैसा खाना रोज बनाएंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे, बड़े बोर हो जाएंगे, फिर परिवार के अन्य सदस्य भी कहेंगे अरे क्या रोज रोज ये का ये। तो फिर आपको थोड़ा सा वैरायटी प्रकार के सिखाते हैं। तो आलू की पेटीज के लिए पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, उसके बाद बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। तो आधा किलो ले लीजिए आलू, आधा किलो बोले तो 500 ग्राम, ठीक है। फिर आप लीजिए 15-20 काजू, और हरा धनिया आवश्यकता के अनुसार लेना है, खसखस 2 छोटे चम्मच, और थोड़े से लीजिएगा ब्रेड क्रम, थोड़ी सी अदरक लेनी है, फिर 2 ब्रेड की स्लाइस ले लीजिए, 20 या फिर 10-15 किशमिश ले लीजिए। देखिए आपको लेने कहीं जाना नहीं है, घर में है तो काजू और किशमिश लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं चला लीजिए, ठीक है। फिर 2 चम्मच सौंफ, कटी हुई हरी मिर्च ले सकते हैं आप आवश्यकता के अनुसार, मतलब 2-1 ले लीजिए, नमक स्वाद के अनुसार लीजिए, 150 ग्राम मटर लेना है, और आधा लीजिए नारियल, आधा चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर शक्कर। ये हो गई आलू की पेटीज की सामग्री, जिसको फिर से दोहरा रही हूँ। 500 ग्राम आलू ले लीजिए, 500 ग्राम बोले तो आधा किलो, 10-15 काजू अगर घर में है तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, नहीं तो 10-15 हो तो 10-15, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर वो कहते हैं ना कि जितना डालो उतना ही टेस्ट बढ़ता है, ड्राई फ्रूट्स हो मसाले हो। हरा धनिया आवश्यकता के अनुसार लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए 2-3, 2 चम्मच खसखस लेना है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम ले लीजिए, और थोड़ी सी अदरक लेनी है, फिर 2 ब्रेड की स्लाइस लेनी है, 10-15 किशमिश ले लीजिए, 2 चम्मच सौंफ लेनी है, और नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, 150 ग्राम मटर लेना है, आधा नारियल ले लीजिए, आधा चम्मच ही गरम मसाला लेना है, और चुटकी भर लेनी है आपको शक्कर, ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए हम गीत सुनाएंगे। परंतु आज के प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। देखिए प्रश्न सिंपल सा है कि महिला की सुरक्षा के लिए आपके गांव के आसपास कहीं पर वृद्धा आश्रम है, नारी निकेतन है तो हाँ कर दीजिए फोन करके, और नहीं है तो भी आप ना कर सकते हो फोन करके, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका रेडियो से जुड़ाव रहेगा, रेडियो से जुड़ते रहेंगे तो हमको भी लगेगा कि हमारे कौन कौन श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक तो है ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं ना कि हमारे सभी श्रोता बंधु स्वस्थ रहे और मस्त रहे, तो कभी कभी फोन करके अपनी आवाज़ सुना दीजिएगा। बहुत लंबा समय निकल जाता है तो लगता है कि अरे क्या हुआ होगा, उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। परिवार में भी ऐसा ही होता है ना, अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नहीं आता है, बहुत समय बीत जाता है, तो हम क्या करते हैं, खुद करते हैं ना। अब यहाँ पर तो देखिए हम खुद तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये रूल्स नहीं है, रूल्स बोले तो हमारे पास नंबर भी नहीं होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे हमारे श्रोता बंधु सभी स्वस्थ और अच्छे हैं। तो ठीक है, चलिए अभी तो सुनेंगे एक गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं?
3: नहीं ना। आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है ताजा ताजा आलू की पैटीज। तो सामग्री आप सभी लिख चुके होंगे, फिर भी एक नज़र डाल दीजिएगा अपनी डायरी में। आलू, काजू, हरा धनिया, खसखस, ब्रेड क्रम। अब ब्रेड क्रम किसको कहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कि जो सूखे ब्रेड होते हैं ना उसका पाउडर कर दीजिए, उसको ब्रेड क्रम कहते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी सी अदरक, ब्रेड की स्लाइस, किशमिश, सौंफ, हरी मिर्च, नमक, मटर, नारियल, गरम मसाला और शक्कर। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ब्रेड को पानी में भिगो करके निचोड़ लीजिए और नमक आलू के साथ मिक्स कर दीजिए। फिर भरने के लिए थोड़ा सा मटर को दरदरा कर लीजिए, काजू को तल लेना है, मटर को मिला करके धीमी आंच में तलिए और फिर सौंफ, मिर्च, अदरक, किशमिश, खसखस, इन सब को मिला लेना है। फिर गैस से नीचे उतार दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़िए। ठीक है, इसमें चीनी भी डाल दीजिए, गरम मसाला भी मिला दीजिए। फिर इस मसाले को ठंडा होने दीजिए। अब आप आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए। आलू मैंने शायद सामग्री में नहीं बोला था, नहीं बोला था ना, सबसे पहले आधा किलो आलू जिसको उबाल लेना है, उबाल करके उसके छिलके निकाल देने, हरा धनिया साफ करके रख देना है, हरी मिर्च को भी कतर देना है। ठीक है, अब आप गैस से नीचे उतार दीजिए, आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए, फिर मसाला भर करके चपटी कर लीजिए। ठीक है, और ब्रेड क्रम से लगा करके दोनों तरफ से तवे पर घी डाल करके फ्राई करिए, फिर इसको चटनी के साथ पिरसिए। तो ये बन गई आलू की पेटीज। फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बनाने का तरीका मुश्किल नहीं है, बस खाली ध्यान से सुनिएगा कि ब्रेड को पानी में भिगो करके निचोड़ लीजिए। ठीक है, फिर नमक, उबले हुए आलू, इन सभी को अच्छी तरह मैश कर दीजिए और मिक्स करना है ब्रेड के साथ। भरने के लिए थोड़ा सा मटर को भी आप दरदरा कर लीजिए। अगर सूखे मटर को भिगा रहे हो तो आप सुबह बनाते हो तो रात को भिगोइए, शाम को बनाते हो तो सुबह भिगोइए, फिर इसको दरदरा करिए। ठीक है, और काजू को तल लीजिए, फिर मटर अलग ही रखना है आपको दरदरा करके, और धीमी आंच पर इसको फ्राई करना है। फिर इसमें ही जब मटर फ्राई हो जाए तो फिर इसमें ही सौंफ, हरी मिर्च, अदरक, किशमिश, खसखस, इन सब को मिला देना है और गैस बंद कर देना है। फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ दीजिए, फिर हरा धनिया डाल दीजिए, चीनी भी डाल दीजिए और गरम मसाला भी मिला दीजिए। अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें ये अपने आलू और ब्रेड का जो मिक्स कर रखा है ना, दोनों को इसमें ये सारा मसाला मिक्स करिए। अच्छी तरह मिक्स करके इनकी टिक्कियाँ बना लीजिए। बना करके अब आप मसाला इसमें भर दिया आपने, आलू की जो मतलब छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए और मसाला भर करके चपटा करिए इसको, और इसके ऊपर आपको ब्रेड क्रम लगाना है। आप दोनों स्थिति में बना सकते हो, या तो सारे मसाले मिक्स करके फिर ब्रेड क्रम में आपको टिक्किया बना करके चारों तरफ से लपेटना है। उसके बाद आपको सेकना है घी में, फिर चटनी के साथ खा सकते हो। या फिर मसाले को आप एक तरफ रहने दो और आलू बॉईल किए हुए, जिनके हमने ब्रेड और आलू को मिक्स कर रखा है, हल्का सा नमक डाल करके इनको चौड़ा करिए, इसमें मसाला भरिए, फिर इसको एक टिक्किया की तरह बनाइए और चपटा करके, और फिर ब्रेड क्रम में आप मिक्स करिए, मतलब चारों तरफ से लपेटिए, उसके बाद तलिए, जैसा आपको भावे वैसा करिए, ठीक है। तो इस तरह आलू की पेटीज बनाई जाती है। अब ये चटनी के साथ आप पिरस सकते हो। तो चलिए, चटनी तैयार है, आपने जरूर करी होगी ना, चटनी आपने बना ली होगी, आलू की पेटीज हमने तैयार कर ली है। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप ये सभी सामग्री रखिए, और भी आपने कुछ बनाया हो तो वो भी रख दीजिएगा, और तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगा सकते हो। उसके बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा आलू की पेटीज का। हेलो,
4: हेलो बहन जी।
3: हाँ जी, कंचन भाई, नमस्कार जी, बोलिए।
4: नमस्कार, आपने जो अचार बनाना सिखाया था ना आगे
3: जी,
4: कच्ची कैरी का अचार जो बनाना सिखाया था, तो मेरी बेटी ने, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था
3: जी,
4: और मेरी बेटी ने इस साल बनाया, तो थोड़ी गलती रहती थी, हर साल बनाती थी
3: जी,
4: लेकिन इसमें तेल आपने बोला था ना
3: जी,
4: सरसों का तेल बोला,
3: हाँ
4: था
3: जी, हाँ जी, हाँ जी,
4: हाँ, वो इस साल डाला है, हर साल तेल और तिरुपति का तेल ऐसा डालते थे
3: जी, तो जी जी,
4: इस साल आपने बोला था ना कि सरसों का तेल में
3: जी जी जी जी,
4: तो ये किया है इसने और बहुत अच्छा बना है।
3: चलिए, बहुत अच्छी बात है। अचार बनाना हो तो सरसों के तेल में ही बनाइएगा, इसका टेस्ट एक अलग ही प्रकार से बहुत ही अच्छा आता है।
4: तो हाँ जी, बेन जी,
3: अच्छा बनाना अचार,
4: बहुत अच्छा बना है।
3: पहला
4: क्या रहता था, तो थोड़ा दूसरा तेल था तो थोड़ा नहीं रहता था
3: जी जी, वो अचार का वो जो स्वाद, जो सुगंध, जो टेस्ट, वो नहीं बैठता दूसरे तेल से जी,
4: वो नहीं रहता
3: जी। चलिए, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जरूर आपकी बेटी को भी याद करिएगा, मुबारक दीजिएगा कि चलो रेसिपी को फॉलो किया उन्होंने।
4: हाँ, इसको मैं जुड़ता हूँ बहन जी, लेकिन कोई काम में बिजी रहती है ना
3: जी जी,
4: तो वो बोलती थी कि हम आने वाले हैं वहाँ,
3: जरूर पधारिए, स्वागत आपका।
4: माउंट आबू जाना है तो हम जरूर आएंगे,
3: जरूर
4: मेरे जमाई बेटी को लेके आऊंगा मैं।
3: क्या बात है, स्वागत आपका जी जी, बहुत बहुत आभार। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज का कार्यक्रम तो काफ़ी अच्छा रहा है, आपको विचार भी, हमारे श्रोता बंधुओं के फ़ोन भी आए थे, विचार बहुत पसंद आया है कि वे माँ के चरणों में जन्नत होती है, कहीं पर भी ढूंढ लो, भले चारों धाम कर लो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। और आपको नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं, तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। खुशनुमा जीवन की भी बातें अच्छी हुई है, तो रेसिपी में भी आपको आलू की पेटीज बनाना सिखाया है, आप बना सकते हो, अगर कभी गेस्ट घर पर आ गए तो एक अच्छा आइटम है, बना करके उनको खिला सकते हो। और आज का प्रश्न था कि महिलाओं की, मतलब अकेली महिला की सुरक्षा के लिए आपके गाँव के आसपास कहीं पर नारी निकेतन है या फिर वृद्धाश्रम है, तो जवाब दिया है बहुत सारा, जैसे कि विषय भी बहुत अच्छा था ना, कि भाई जीवन में तूफान आना भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि कौन अपना और कौन पराया, तो इसमें भी चर्चा में भाग लिया है। नाम बताना चाहूँगी, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, उन्होंने कहा कि हमारे पिंडवाड़ा में नहीं है वृद्धाश्रम और नारी निकेतन, लेकिन उन्होंने खुशनुमा जीवन में बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। फिर मोहन जी कुमावत आबू रोड से, उन्होंने कहा है कि आबू में है वृद्धाश्रम, लेकिन महिलाओं को नहीं रखा जाता है, पुरुषों को रखा जाता है। अभी ये वापस खुल गया हो तो पता नहीं, पहले हम एक बार जा करके आए थे तब वहाँ पर कोई नहीं थे। और पीयूष भाई ठाकुर भगवानपुरा से, आपने भी फ़ोन करके कुछ जानकारियाँ ली थी। और सुरेश भाई झोटाना से, आपने कहा कि हमारे गांव के आसपास तो नहीं है, लेकिन मेहसाना में है, वृद्धाश्रम है, वहां पर स्त्री और पुरुष मतलब दोनों के लिए है, तो अच्छी बात है। और कंचन भाई मंडाली से आपका भी फोन आया है, आपने कहा हमारे गांव के आसपास नहीं है और विषय में अच्छी आपने अपनी राय व्यक्त की है। और अभी उनका फोन फिर से आया कि भाई उनकी बेटी ने जो अचार आशियाना में सिखाया, बना कर सभी को खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट बना। तो चलिए इसके ऊपर तो वही तालियां बजनी ही चाहिए कि रेडियो मधुबन को फॉलो किया है। और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के लिए भी तालियां की प्रश्न का जवाब भाई है तो है, वृद्धा आश्रम और नारी निकेतन नहीं है तो नहीं है। विषय में भी भाग लिया, इसके लिए भी शुक्रिया। और अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे किसमें, अंताक्षरी कार्यक्रम में। शनिवार है ना, तैयार रहिएगा अंताक्षरी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। किसी के काम जो आए उसे इन

जन है कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।

को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यो भरने को

भगवान का दिल है वे नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम हिंसा को नो स्वार्थ संस्थान के सहयोग से। वैसे तो ये कार्यक्रम पहले भी आप सभी ने सुना था, लेकिन इस बार कुछ नए विषय और बदलाव की बातों को लेकर आए हैं हम आपके बीच। दोस्तों, अक्सर हम घर परिवार में लड़का लड़की को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। लड़का ये करे, लड़की वो करे, लड़की हो तो ये पहनेगी, लड़का है तो ये खेलेगा। हमारी सोच और नजरिए के अनुसार हम अपने बच्चे और समाज को भी ढलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी उनकी आवाज सुनने की कोशिश की? चलिए दोस्तों, आज उन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं। उन आवाजों में हमारी अपनी आवाज भी कहीं छुपी हुई तो नहीं है?

0: हूँ।
1: ए मीना, जा भाई ने बुला, यो तगारो तो कन छत पे रखन आवे।
2: माँ, भाई की कटे जरूरत है, ला मैं राखे ना हूँ छत पे।
1: अरे तू रेवा दे बेटा, तू छोरी है, अत्रो वजन थारा सु कोनी तो की।
2: अरे माँ, ये छोरा और छोरी काई होवे, देख मैं उठा ली दियो वजन।
1: ध्यान सु बेटा।
3: मजबूत बने बचपन सबका, शक्ति है स्वरूप बेटियों का।
4: दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं, आइए इसी कड़ी में आगे सुनते हैं।

0: दादी जी मने साइकिल चलाता देख कतरा खुश होवे। सीमा आपने लिए तो आपने ही बोलनो पड़ी, आगे तू समझदार है।
1: थैंक यू मीना, अब मारा समझ में आ गई कि मारा का ही करना है।
2: जीवन के हर मोड़ पर नारी देती है परीक्षा, कोई रोके ना उसे लेने से अच्छी शिक्षा।
3: अक्सर हम खेल के बारे में सोचते हैं, लड़का ये खेलेगा लड़की ये खेलेगी, तो कहीं यहाँ पर भी इस तरह की बातें तो नहीं हो रही है? सुनते हैं।
0: मम्मी मम्मी मारे टूर्नामेंट है, मैं क्रिकेट में भाग ले रही हूँ।
4: मीना तू और क्रिकेट, अरे कोई छोरी वालों गेम पसंद कर, यो तो गेम छोरा को है। एडा उछल कूद करवा वाला गेम आपने को नहीं खेलनो, समाज में बाता हो जाए।
5: अरे मीना की माँ, क्रिकेट में काई बुराई है? अरे भाई अपने मिताली राज ने देख लो, राजस्थान की पहली महिला क्रिकेटर रह चुकी है। आपने मीना भी किकाऊ कम कोनी है। जा बेटा जा, खेल तू पूरी छूटे।
0: थैंक यू पापा।
2: लड़का हो या लड़की, दोनों को है खेलने का समान अधिकार।
3: बेटा और बेटी के प्रति कैसी सोच होती है हमारी, तो आइए हम देखते हैं माँ बेटी बेटे के बीच किस तरह की बातें हो रही है।
4: अरे राहुल बेटा, आज मारी तबियत ठीक कोनी, थोड़ो सो सूप बना दे तो।
6: माँ तू मीना न बोला पे, मारा तेरो कम नहीं वे, मैं सो रहा हूँ।
4: बेटा मीना अबानु ही आराम करवा गई है, और यो छोरा छोरी का ही लगा रखियो, जा फटाफट सूप बना, मारे दवा लेनी है।
6: ठीक है माँ।
4: मने मीना का साथ साथ में राहुल ने भी घर को हर काम सिखानो पड़ी, ताकि काल का दिन मारी बहू का जीवन में कहीं भी समस्या नहीं आवे।
2: भूख सभी को लगती है, यह जग जाहिर है, फिर भी महिला ही खाना बनाएगी, ये कैसी लाचारी है।
7: तो बच्चों अब इस तरह से आप लोगों ने जान लिया होगा कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। एक प्रश्न का मुझे जवाब दो कि आदमी और औरत में क्या अंतर होता है।
8: मैडम आदमी कमान लावे, लुगाया तो घर को काम करे।
9: मैडम आदमी पंचायत में बैठे और औरत बच्चा ने संभाले।
0: मैडम औरत बच्चा ने जन्म देवे और पिता पालन करवा में मदद करे।
7: शाबाश बच्चों, आप सभी ने उत्तर देने की अच्छी कोशिश की है। आज के समय में तो औरतें भी पंचायत में बैठती हैं, सरपंच भी बनती हैं, औरत नौकरी भी कर रही है तो घर परिवार भी संभाल रही है, पुरुष खाना भी बनाते हैं तो बच्चों को भी संभालते हैं, तो ये सारे काम महिला और पुरुष बराबरी से करते हैं, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो कार्य करते हैं उसे जेंडर कहते हैं, और महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में जो अंतर है उसे सेक्स कहते हैं।
2: नर हो या नारी, दोनों को है जीवन जीने का अधिकार, दोनों के ही शरीर की बनावट में होता है अंतर।
3: दोस्तों आपने मुलाकात की हमारी बहादुर मीना से। इस नाटक से स्पष्ट होता है कि महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में अंतर होता है, ना कि उनके कार्य में। आइए जेंडर और सेक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं आज की हमारी जेंडर एक्सपर्ट वीथिका जी से। दोस्तों वीथिका जी यादव एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जिन्होंने मानव तस्करी, गुलामी, लैंगिक अधिकारों और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम किया है। वह लव मैटर्स इंडिया की कंट्री हेड है, जो सभी लिंग और कामुकता के लिए प्यार, सेक्स और रिश्ता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चलिए सुनते हैं वीथिका जी से कि वह क्या कहती है जेंडर और सेक्स के बारे में।
10: तो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हम अधिकतर जो है जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ वो उस चीज के आपके शरीर के जो अंग हैं, जो आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको रेफर करता है, और इसमें आपके जो आपके शरीर पे जो बाल हैं, जो आपके स्तन हैं, जो भी आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका यूट्रस है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सब कुछ आते हैं। और वही जब हम सेक्स की बात करते हैं तो वो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जनरली उनको यूज करा जाता है, उनका इस्तेमाल करा जाता है पुरुष और स्त्री के शरीर को अलग अलग तरीके से समझने में। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को जन्म के दौरान ही एक सेक्स असाइन करा जाता है, और वो सेक्स असाइन करा जाता है इस बेसिस पे कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और जो उनको शरीर, जो शरीर के जो अंग जो महिलाओं के होते हैं, अगर वो उनके साथ पैदा होते हैं तो उनको लड़की बोला जाता है, और जिनके अंग लड़कों वाले होते हैं उनको लड़का बोला जाता है। लेकिन जरूरी ये समझना है कि जो हम उनको सेक्स असाइन कर रहे हैं जब उनका जन्म हुआ है, जो लिंग हम उनको दे रहे हैं, वो उससे विपरीत उनको महसूस कर सकते हैं जब वो बड़े हों, जिसको हम बोलते हैं कि बाइनरी से हटके, जो जहाँ पे हम इंटरसेक्स की बात करते हैं, माना मानने की जो व्यक्ति जन्म में जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पुरुष के थे, हो सकता है कि वो बड़े होके महिलाओं जैसा महसूस करे, और उसी तरह से महिला जो है पुरुष जैसा महसूस करे। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसमें हमारा समाज, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चरल जो रोल्स हैं, जो हमारी बिहेवियर है, जो हमसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, चाहे मेल को लेके, फीमेल को लेके, या किसी और जेंडर आइडेंटिटी को लेकर, उसको हम जेंडर में डालते हैं। क्योंकि जेंडर, जहाँ पे सेक्स जो है वो आपके फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके देखा जा रहा है, वहां पे जेंडर जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज ये एक तरह से एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये जो समाज ने एक जो ढांचा बनाया हुआ है जेंडर को, उसके मुताबिक देखा जाता है। क्योंकि अधिकतर जब हम समाज की जब बात करते हैं तो ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि एक पुरुष और एक महिला की एक बहुत ही बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है जेंडर को लेकर। लेकिन जेंडर जो है वो सेक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसको, उसका अनुभव भी लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग हैं। कुछ लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, उनका जेंडर आइडेंटिटी जो है वो उससे विपरीत है जो उनको सेक्स जन्म के टाइम उन्हें दिया गया। बहुत सारे, जब आजकल जिन टर्मिनोलॉजी की बात बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें हम जेंडर फ्लूइड होने की बात करते हैं या फिर जेंडर क्वेयर होने की बात करते हैं, ये वो वाली आइडेंटिटीज हैं जो अपने आप को केवल पुरुष और महिला वाले सेक्शंस में नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ अलग अपने आप, अपना जेंडर जो है वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सेक्स, जहाँ पे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, आपका आपका शरीर की जो बनावट है, जो आपके शरीर के अंग हैं, उनको लेकर ज्यादा रेफर करा जाता है, वहीं जेंडर जो है वहां पे समाज का, कल्चर का, हमारी सोच का, हमारे बिहेवियर का रोल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसकी डाइवर्सिटी को, विपरीतता को हम समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे जो लेबल्स हैं वो सेल्फ आइडेंटिफाइड लेबल्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, और उसके लिए हमारे समाज में बहुत ज्यादा जगह नहीं है। तो जेंडर सिर्फ पुरुष और महिला वाला जेंडर नहीं होता, जेंडर उसके बियॉन्ड भी होता है।
3: दोस्तों, अभी हमने सुना विथिका जी को। उम्मीद करते हैं कि आप भी जेंडर और सेक्स के बीच के अंतर को बेहतर समझ सके होंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम अभी भी बाकी है। आरजे उषा आए और गीत ना गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए 107.8 FM पर सुनते रहिए रेडियो मधुबन को, और कहिए
2: सुनो समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो।

0: हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। जी हाँ, वही कार्यक्रम दोस्तों जिसमें हम आप सबसे दिव्यांग साथियों को रूबरू करवाते हैं, उनके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को, कुछ ऐसी बातों को जो शायद हम कभी सोचते नहीं है, कल्पना नहीं करते हैं, उनको आप सबके सामने रखने का प्रयास करते हैं। और आमतौर पर सफलता की कहानियां बहुत सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन संघर्ष की बातें शायद नहीं हो पाती। तो संघर्ष कौन सा? जिंदगी जीने का संघर्ष, अपने जीवन साथी को ढूंढने का संघर्ष, और उसमें समाज और परिवार के साथ जो संघर्ष होता है वो एक अलग ही तरह का संघर्ष। इस सब के बीच में कैसे हमारे मेहमान सफलता प्राप्त करते हैं और अपनी जिंदगी को, चुनौतियों को अपनी ताकत बनाते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, बस यही जानने समझने का नाम है हमराही। तो स्वागत कीजिए आज हमारे साथ राजस्थान की राजधानी यानी गुलाबी नगरी जयपुर से जुड़ रहे हैं ननिता मैम और पीयूष जी। तो ननिता जी और पीयूष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज इनवाइट किया और ये मौका दिया आपके साथ बात करने का रेडियो मधुबन और आपके हमराही प्रोग्राम की। हम लोग अक्सर तारीफ करते हैं कि ये यही एक अकेला प्रोग्राम है जो हम लोगों के लिए बना है, हमारे जैसे दोस्तों की स्टोरी सुनने के लिए बना है, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया आज हम आपके साथ अपनी स्टोरी भी कुछ बात कर सकें।
1: क्या बात है पीयूष भाई, थैंक यू सो मच, आपने पूरे कार्यक्रम की एक तरह से रूपरेखा अपनी इस बातचीत में प्रस्तुत कर दी, जबरदस्त। बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आप दोनों को। हम चाहेंगे ननिता जी, हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, पहले आप हमारे श्रोताओं को जरा अपने बारे में बताएं कि आपको कौन सी परेशानी है शारीरिक रूप से, और वर्तमान में आप क्या कर रही हैं, आपका एजुकेशन अभी तक का क्या रहा है, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड। जी ननिता जी।
3: जी बिल्कुल संदीप जी, मधुबन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा नमस्ते।
1: जी
3: नीता अग्रवाल, आई एम फ्रॉम जयपुर, और सर मेरी एजुकेशन फाइनल 2006 में हो चुका था
1: जी।
3: उसके बाद एम कॉम थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, प्रीवियस के बाद फाइनल नहीं हो पाया।
1: ओके।
3: और बेसिकली उसके बीच में काफी अप हो गया, इस बीच तो बस ट्रीटमेंट में लगे रहे, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, अवेयरनेस थी ना, मुझे पता था ना पेरेंट्स को पता था, ऐसे विजुअली इम्पैक्ट्स के लिए भी कुछ आगे है ग्रोथ हमारे लिए। और फैमिली में मम्मी पापा है, भैया भाभी है, और एक भतीजी है मेरे, मैं प्रॉपर जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ सर।
1: जी
3: 2000 कंप्यूटर विद स्क्रीन रीडर थी, आगे जॉब कंटिन्यू किया था, जॉब 2017 हमारी शादी हुई थी
1: जी।
3: और उसके बाद अभी मैंने जॉब ड्रॉप किया हुआ है, अभी मैं घर पे हूँ एज ए होममेकर, आई एम वर्किंग।
1: बहुत खूब। तो ननिता जी, आपने बताया कि 2007 में आपकी आंखों की रोशनी चली गई, तो क्या रीजन रहा उसका?
3: सर मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी की प्रॉब्लम है।
1: ओके।
3: बट तब तक इतनी डायग्नोज नहीं थी, मुझे भी एक्चुअली में पता नहीं था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। के बाद ट्रीटमेंट में धीरे धीरे डॉक्टर्स ने क्लियर किया कि आरपी की प्रॉब्लम है, और उस वक्त विजन था लेकिन काफी लो होते होते धीरे धीरे डे बाय डे कम हो गया सर। और तो 2015 में तो मैंने एज अ ब्लाइंड ही कंप्यूटर ट्रेनिंग ली, और उसके बाद
1: कहाँ से सीखा आपने ननिता जी कंप्यूटर?
3: मैंने जयपुर में ही आरएनके करके राजस्थान नेत्र कल्याण संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मैंने 2015 में कंप्यूटर ट्रेनिंग ली थी सर।
1: तो ननिता जी, आजकल आप वापस जॉब ज्वाइन करने वाली हैं, राइट?
3: जी सर, कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं।
1: ओके। कभी गवर्नमेंट जॉब की कोशिश नहीं की आपने?
3: सर एक दो बार ट्राई किया था, बट 15 में कंप्यूटर ट्रेनिंग थी, उसके बाद ट्राई किया, वो 16 में जॉब में आने के बाद, प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने के बाद इतना टाइम ही नहीं रहा, जॉब में इन्वॉल्व हो गए, 17 में शादी हो गई।
1: क्या तो मतलब हम ये मान करके चले कि कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के दौरान ही पीयूष जी से मुलाकात हुई आपकी?
3: जी सर, मेरी उसी दौरान।
1: चलिए, हमारा अनुमान ठीक निकला, लेकिन वो आगे आपसे हम जानेंगे। बहरहाल इनवाइट करते हैं पीयूष जी को। तो पीयूष भाई, आप भी हमारे सुनने वालों को अपने बारे में प्लीज बताएं।
2: जी संदीप जी,
1: जी
2: मेरा नाम पीयूष परडिया है, मैं जयपुर से हूँ। मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ।
1: क्या बात,
2: डिपार्टमेंट में सीएसआर का कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा डिपार्टमेंट है।
1: Very
2: तो रेगुलर नए लोगों से और नए इंस्टीट्यूशन से, एनजीओ से मिलने का मेरा काम रहता है। और इस कंपनी में मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ।
1: Oh my God, 20 सालों से, क्या बात है।
2: ये मेरी एक्चुअली कॉलेज के बाद फर्स्ट ही मेरी जॉब है। उस टाइम मैं साइटेड था, मेरी रोशनी नजर थी। 2011 में आई साइट में प्रॉब्लम हुई, मुझे रेटिना मेरे डिटैच हो गए और फिर वो इतने फ्रेजाइल हो गए कि उनमें रोशनी बन नहीं पाई।
1: इसको कहते क्या है जो आपको आंखों की जो परेशानी है, इसका नाम क्या है मेडिकल लैंग्वेज?
2: एक्चुअली ये मेरे हाई मायोपिया था।
1: अच्छा, हाई मायोपिया, ओके।
2: रेटिना बहुत पतला होता है, धीरे धीरे एज के साथ पतला होता जाता है। तो वैसे आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक हल्का चश्मा था जो नजर का। और 2011 में मैं दुबई गया हुआ था घूमने के लिए। वहाँ अचानक थोड़ा लगा कि कुछ आँख के बीच में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, साइड से दिखाई दे रहा है। तो वहाँ भी नहीं आया, दो तीन दिन वहाँ थे। मैंने कहा जयपुर जाके हम लोग वापस ट्रीटमेंट लेंगे। तो जैसे ही दुबई से वापस जयपुर आए, डॉक्टर के पास गए यहाँ, तो यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि आपका रेटिना में होल हो गया है, रेटिना डैमेज है। तो फिर डॉक्टर्स ने यहाँ कहा कि इसका बेस्ट इलाज यहाँ जयपुर में नहीं है, आप चेन्नई या अहमदाबाद कहीं जाएं। तो हम लोगों ने चेन्नई में शंकर नेत्रालय हम लोग नेक्स्ट डे ही चले गए थे। और वहाँ दो तीन बार उन लोगों ने ऑपरेट किया, फर्स्ट टाइम किया रोशनी नहीं आई, फिर एक महीने बाद दोबारा किया ऑपरेट, फिर भी नहीं हुआ। तीसरी बार में भी वो रेटिना तो अटैच हो गया, पर वो इतना फ्रेजाइल हो गया, कमजोर हो गया कि उनमें फिर रोशनी नहीं बन पाई। तो यही स्टोरी है कि एयू में रहते हुए ही ये प्रॉब्लम हुई और उसके बाद फिर यही वापस अपने आप को संभाल के आपके साथ जुड़ गए। और मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा ही हुआ मेरे साथ कि ये हुआ, तो मैं आप लोगों से मिल सका, नंदिता से मिल सका और बाकी लोगों से मिल सका।
1: क्या बात है, और कहीं ना कहीं इतने सारे एनजीओस की जो हेल्प की है आपने, उनके जो काम आए हैं, आप सीएसआर के तहत आप जॉब कर रहे हैं, तो ये भी एक कहानी है, मतलब कहीं ना कहीं। जी, कुछ कह रहे थे आप?
2: इससे पहले, ब्लाइंड होने से पहले मैं सेल्स में था। आई वॉज वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर जयपुर। और सीएसआर का तो नामो निशान भी नहीं था और सोशल सेक्टर के बारे में जानते भी नहीं थे उस टाइम। तो अब ये जब ब्लाइंड हो गए, तो अब ऐसा लगा कि फील्ड मूवमेंट वगैरह कम होगा, तो कोई बैकएंड का काम या जो ऑफिस से या कंप्यूटर से काम स्टार्ट हो सके वो करते हैं। तो ये भी आप सही कह रहे हैं, कोइंसिडेंट था कि मुझे वापस ये सीएसआर ब्लाइंडनेस के कारण ही मिल पाया कि मैं इस फील्ड में आ सका।
1: और मेरी जानकारी जहां तक है पीयूष भाई, बाकी तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि इस डिपार्टमेंट में और काम करते हुए आपने बहुत सारे एनजीओस की हेल्प की है और बहुत अच्छी खासी हेल्प की है।
2: इसमें भी एक स्टोरी है अगर आप?
1: जी जी, जरूर जरूर जरूर जरूर।
2: ये जब ये ब्लाइंडनेस की मुझे प्रॉब्लम हुई, तो लगभग एक सवा साल मैं घर पे ही था और थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता था। कुछ दोस्तों ने और फैमिली ने मैं मोटिवेट किया कि यार ऐसे नहीं होगा, ब्लाइंड लोग भी भाई काम तो करते हैं, जिंदगी जीते हैं, तुम ऐसे निराश होकर क्यों बैठे हो।
1: बिल्कुल,
2: तब तक शायद हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं, या मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। और फिर जब एक्सेप्ट कर लिया, तो हम लोगों ने आसपास में देखा भाई कौन हमारे फैमिली में या कोई रिलेशन में कोई ऐसे नहीं थे जिनकी नजर ना हो। फिर ऐसा ध्यान आया कि कोई एक दूर के कोई रिश्तेदार है, उनके घर के आसपास हम जाते थे, वो देखते थे। मेरे फादर ने कहा कोई ब्लाइंड थे, देखा था किसी को।
1: अच्छा,
2: हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने हमें रेफर किया कि राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ है, वहां जाके मिली है
1: जी।
2: तो हम लोग वहां गए, उन लोगों ने मुझे बताया वहां, मैं पूरा सब समझा कि क्या करते हैं। उन्होंने कहा आप कंप्यूटर सीखो क्योंकि आप जॉब में थे और पहले आपको नॉलेज है
1: जी।
2: पर वहाँ मैं एडमिशन नहीं ले सकता था क्योंकि मैं जयपुर लोकल का ही था। वो बोले कि आपको दिल्ली आना जाना पड़ेगा। उस टाइम तो मैं घबरा गया, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि दिल्ली आऊंगा जाऊंगा कैसे भाई।
1: थोड़ा सा बड़ा मुश्किल दौर होता है जी।
2: तो यही लगता था कि दिल्ली आना जाना तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो घर में ही रह रहा था। और आज के दिन मैं आपसे याद भी करना चाहूंगा, आप भी जानते होंगे एक बहुत हमारे अच्छे मित्र थे आपके, तो हैं शायद थे
1: जी। ललित जी से बहुत अच्छा परिचय रहा, बस इस कोरोना ने जिन लोगों को छीना है उनमें से वो भी एक है।
2: वो बहुत बड़ा लॉस है शायद मेरे लिए भी
1: जी।
2: और क्योंकि वो एक बहुत ही मेरे वेल विशर थे, शुभ चिंतक थे। तो जैसे ही उन्हें खबर लगी कि कोई रिसेंटली ब्लाइंड हुआ है, तो वो और उनकी श्रीमती जी हमारे घर आए
1: जी।
2: और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे साथ क्या हुआ, प्रॉब्लम समझी। फिर मैंने कहा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने मुझे रेफर किया कि AIC भी जाओ आप, वहाँ रह के ट्रेनिंग ले लो। तो फिर मैं एक महीने के लिए दिल्ली गया था AIC भी, वहाँ हॉस्टल में रह के कुछ जॉब के थ्रू कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करना थोड़ा प्रैक्टिस किया। और फिर आके मैंने AU में वापस ज्वाइन किया और कॉन्फिडेंस से कहा कि सर अब मैं काम कर सकता हूँ।
1: क्या बात है, वाह जी।
2: तो इसी बीच में फिर मैंने, जब मैं कुछ वापस बैकएंड में काम करने लगा, तो मैंने उस टाइम आपको ध्यान होगा 2013-14 में ही CSR का लॉ आया था
1: जी। जी जी बिल्कुल उसी समय
2: था। मैं बैक ऑफिस ऑपरेशंस में था, तो मैंने हमारी CSR टीम को रेकमेंड किया कि भाई ब्लाइंड लोगों का एक स्कूल है, हॉस्टल है, आप वहाँ काम क्यों नहीं करते, शुरुआत वहाँ से करें, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो वो टीम को मैं लेके गया वहाँ CSR, और वहाँ CSR टीम को लेके गया तो वहाँ उन्होंने देखा और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल को रिनोवेट किया वहाँ के
1: जी। जी जी।
2: और कुछ किचन वगैरह मैस वगैरह जो थे उस पर काम किया।
1: क्या बात।
2: तो यहीं से शुरुआत हुई और यहीं से शायद CSR और NGO सेक्टर को लेकर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। पर हालांकि मैंने ज्वाइन उस वक्त नहीं किया था CSR, CSR को मूव किया था 2018 में।
1: अच्छा।
2: तो एक और यहाँ जयपुर में ही ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है जो लुई ब्रेल शिक्षा है, हमने हॉस्टल का और स्कूल का निर्माण करवाया ब्लाइंड बच्चों के लिए।
1: बहुत
2: में लगभग 1 करोड़ का हमने CSR फंड स्पेंड करवाया इन दोनों
1: में मिला के। वाह बहुत। और मुझे जहाँ तक ये भी ध्यान है पीयूष भाई कि आपके AU में सक्सेसफुली जॉब करने के बाद AU ने कुछ और ब्लाइंड साथियों को जॉब दी है, राइट?
2: हाँ वो भी ठीक बात है। और आप मतलब इसको समझे कि शायद इसी कारण से नमिता जी से भी मिलना हो पाया मेरा।
1: क्या बात है, वाह गजब। तो इसी पर आ जाते हैं, कैसे मिलना हुआ नमिता जी से आपका?
2: मैं ही जवाब दूँ?
1: हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, फिर नमिता जी को बुलाएंगे।
2: एक्चुअली मैं जब वहाँ RNKS में जाता था इस चीजों इन कार्यों को लेके और देखने के लिए, तो मैं वहाँ फिर रेगुलर जा रहा था और फिर वहाँ मुझे वर्किंग कमेटी में भी वहाँ के जो कार्य समिति के सदस्यगण थे उन्होंने मुझे शामिल किया था। एक या दो बार मैं वहाँ जाता था तो सब वहाँ स्टूडेंट से मिलता था, मैं उसमें जाता था जहाँ काम चल रहा है वहाँ जाता था। वहीं पे नमिता जी उस वक्त ट्रेनिंग ले रही थी तो हमारी बातचीत हुई हम लोगों ने कि बहुत घंटे में मिला था क्या होता है क्या करते हैं। तो बस ये है कि हमारी बातचीत फिर वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ गई, हम लोग उधर बात करने लगे। और
1: पहली मुलाकात में नंबर नंबर लेना और ये सब हो गया था क्या?
2: ऐसा नहीं हुआ था एक्चुअली। उस टाइम तो शायद बस यही था कि मैंने एक नए ट्रेनी है और नए स्टूडेंट हैं और इनकी स्टोरी भी मेरी जैसे ही थी लगभग।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: एक्चुअली मैं भी लेट ब्लाइंड था और ये भी लेट ब्लाइंड ही थे और ये 2007 में इनके प्रॉब्लम हो गई थी, पर इन्होंने थोड़ा घर में ही रहे थे तो 2015 में जब इन्हें पता चला था तब RNKS ज्वाइन किया था ये। और मैं भी लेट ब्लाइंड था तो ये हम लोग आपस में बात करते थे, ये समझते थे कि कैसे आप काम करते हैं क्या काम हो, या थोड़ा सा मैं भी मेरा भी ये था कि मैं लोगों से बात करता था जो लेट ब्लाइंड हुए हैं शायद ये कर सकूं बात कर सके।
1: बिल्कुल।
2: इस तरह हमारी बातचीत हुई फिर नमिता जी ने AU बैंक में ही ज्वाइन किया था
1: जी।
2: वहाँ भी कुछ जैसे कुछ वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती थी तो मैं उन्हें सपोर्ट करता था
1: जी।
2: तो यहीं से हमारी बात शुरू हुई। और
1: क्या बात, बहुत खूब जी। ननिता जी, तो आप बताएं जरा कि आपको याद है आज भी पीयूष जी से जो पहली मुलाकात रही है आपकी?
4: जी सर, 2015 में अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था कंप्यूटर ट्रेनिंग RMKS में। तो लगभग अगस्त के करीब स्टार्ट हुआ था हमारा, मतलब बात हुई थी। फर्स्ट टाइम बात तभी हुई थी। फिर उस दौरान जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग में और जॉब भी करने का था, तो फिर AU में ज्वाइन किया आगे, तो इसलिए भी बातें होती थी इनसे। तो बातें होती थी, तब कोई विजन नहीं था, शादी का भी नहीं था और कुछ नहीं था, रिगार्डिंग वर्क और रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड अपनी स्किल्स प्रॉब्लम जो भी थी उनके रिगार्डिंग ट्रेनिंग सब कुछ था। 2016 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर हम वर्किंग में आए तो थोड़ी बातें और बढ़ती गई। तो ऐसे बातें करते करते फिर हमें 16 एंड में वी डिसाइडेड कि हम मैरिज कर सकते हैं।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा रानीता जी कि जीवन साथी एक दूसरे को बनाने का डिसीजन लेते समय कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है कि यार हम दोनों की कहानी तो सेम है, ये भी लेट ब्लाइंड, मैं भी लेट ब्लाइंड, ऐसा भी कुछ रहता है मन में?
4: बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं था। एक्चुअली में जब मैंने शादी के लिए डिसीजन लिया था तब तक तो मेरा शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था। मतलब कभी सोचा शादी भी करूंगी बट या तो शायद इस एनवायरनमेंट में रहते रहते ब्लाइंड लोगों को जाना और घर में स्पेंड किए तो लगा कि इस कम्युनिटी में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, कुछ प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। तो धीरे धीरे बात करते करते हमें लगा कि शादी कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे, एक दूसरे की फीलिंग सेम थी, तो फिर हमने डिसाइड किया अपनी लाइफ को आगे लीड करने।
1: अच्छा, पहला प्रपोजल किसका था?
2: मैं आपको इसमें एक बार इंटरप्ट करूंगा।
1: जी जी जी,
2: मैं आपको जैसे ललित जी की बात बता रहा था।
1: जी जी,
2: 2015 में जब इन्होंने वहाँ कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया होगा
1: जी,
2: वो शायद किसी ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे।
1: ओके,
2: मुझे फोन किया वहाँ से।
1: अच्छा,
2: वहाँ एक ब्लाइंड लड़की है, तुम्हारे लिए ठीक है। वो उनको लगता था कि हम सिमिलर कास्ट के हैं, ये अग्रवाल थे या मैं जैन था, तो उसका वो भी बनिए हैं, बात करने को आते। मैंने कहा नहीं यार, ब्लाइंड में हम लोगों को शादी नहीं करनी, ब्लाइंड से कैसे शादी, दो ब्लाइंड कैसे शादी करेंगे, और मेरी फैमिली भी मानेगी नहीं, ब्लाइंड ब्लाइंड शादी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ननिता से भी बात की थी
1: जी,
2: तुम्हारे पेरेंट्स से मैं मिल सकता हूँ, तुम चाहो तो, एक लड़का है।
1: Okay.
2: और उन्हें आउटरेजियसली मना कर दिया था कि नहीं सर, मुझे शादी नहीं करनी।
1: अच्छा, ओ
2: कैसे शादी करेंगे,
1: क्या बात है। जैसा कि ननिता जी ने अभी कहा कि कोई इरादा ही नहीं था शादी का।
2: मतलब आप कह सकते हैं उन्होंने, और फिर ये बात जब हमने कर ली थी शादी, उन्होंने हमें दो तीन बार आके मुझे बोला भी, छोटा भी बोला, मैंने तुम्हें बताया था तब तुम माने नहीं। तो ये, और जैसा आपने पूछा कि प्रपोज किसने किया था, तो शादी का डिसीजन लेना हमारे टफ हो रहा था, क्योंकि बहुत टफ इसलिए था क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे।
1: अच्छा,
2: आप कहेंगे कि हमारे, हमने अपने आप को मनाया था, क्योंकि पहले तो हम भी मानते थे कि ब्लाइंड से नहीं, दो ब्लाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हम खुद जूझ रहे थे उन चीजों से, मतलब नए नए थे
1: कि मतलब दोनों ब्लाइंड, दोनों का मतलब सेम प्रॉब्लम, और जॉब भी प्राइवेट सेक्टर में करने का कहीं ना कहीं एक डिसीजन जी,
2: तो कॉन्फिडेंस नहीं था, पर फिर थोड़ा बात करते थे और लगता था, और मेरे मतलब सर कहना तो ये चाहिए, मेरे से ज्यादा यकीन शायद ननिता को था कि नहीं आप कर सकते हैं।
1: क्या बोलते हैं, वेरी कुल मिलाकर के पहला डिसीजन ननिता जी का लगता है था,
2: उनका डिसीजन, उन्होंने कॉन्फिडेंस लाया, हालांकि प्रपोज मैंने किया था कि हाँ चलो आपको शादी करते हैं।
1: अरे वाह, क्या मानते हैं।
2: और पेरेंट्स को मनाना एक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वो था हमारे लिए।
1: मैं उसी पर आना चाह रहा हूँ भाई कि जब आप दोनों ने तो तय कर लिया, लेकिन अब पेरेंट्स से तो बात करनी थी, तो आपने कैसे बात चलाई अपने फैमिली में कि भाई ऐसे ऐसे कोई लड़की है, मैं उसको पसंद करता हूँ और अब शादी करना चाहता हूँ?
2: पहले मैं बताता हूँ, मेरे का बताता हूँ आपको। अब मैं जैसे फील्ड से जुड़ा हुआ था और ब्लाइंड कम्युनिटी से आरएनकेएस में जुड़ा था, तो मेरे फैमिली भी रेगुलर टच में रहती थी जो यहाँ सीनियर लोग थे, तो उनसे उन्होंने कहा, मेरे फादर ने उनसे बात की कि आपने शादी कर रखी है, साइटेड हैं, कैसे करी, तो क्योंकि उनके तो दिमाग में यही था कि साइटेड से ही करनी है भाई। अब वो चाहे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है, तो हम लोग एग्री थे कि शायद या कुछ इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रोमाइज होगा कि हाँ ठीक है, वो थोड़े कम पढ़ी लिखी हो या कुछ हो या कुछ मतलब पुअर बैकग्राउंड से भी हो तो भी चलेगा, पर हम शादी मतलब साइटेड ही देखनी है।
5: तो उनके दिमाग में बिल्कुल कहानी वही फिक्स थी कि भाई साइटेड लड़की इसको जो है अच्छे से संभाल लेगी, ये होता है आमतौर पर दिमाग में पेरेंट्स।
2: और आरएनकेएस वगैरह में जहाँ थे वो वहाँ जो आसपास ब्लाइंड लोग थे उनके भी स्टोरी वैसी थी कि वो बहुत कम थे, मतलब कोई थे ही नहीं जो दोनों कपल ब्लाइंड हो, मतलब जयपुर में हमारे आसपास उस टाइम जिनको हम जानते थे। तो फिर उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, और जब मैंने बताया उन्हें कि भाई मैं किसी को देख रहा हूँ वो ब्लाइंड है, तो सब तो उन्होंने और ज्यादा प्रयास कर चालू कर दिए थे। मेरे फादर मतलब आपको बता
5: दूं एक बार, अच्छा मतलब जब आपने घर वालों को बताया कि भाई किसी को आप देख रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश और तेज कर दी
2: उन्होंने बहुत, मैं ये कह रहा हूँ वो महाराष्ट्र का भी एक चक्कर लगाया है।
5: मतलब उनको लगा कि लड़का गया हाथ से।
2: हाँ
5: जी जी आगे बताएं जी।
2: हालांकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ कह रहे थे वो रुको थोड़ा, पर मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि नहीं अब आप एक बार मिल लीजिए और फिर किसको एक मौका देख के, कोई छोटा सा एक गेट टुगेदर था तो मैंने वहाँ नंदिता को भी इनवाइट किया था और वहीं मेरे पेरेंट्स को उनसे मिलवाया था, मेरी मदर को, और वहीं से फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उनसे कि हाँ नंदिता से मिले, और नंदिता भी तैयारी करके तो गई थी।
5: जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन।
2: थोड़ा बहुत वो रहा, कुछ तैयारी की, फिर बाद में और थोड़ा कन्विंस करना पड़ा, उन्हें मनाना पड़ा। तो जैसा अभी हम कह रहे थे ना कि हमारी शादी में हमने किसी को मतलब हम लोग सिर्फ हमारी दोनों तरफ की फैमिली ही सी थी और कोई
5: अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट।
2: हाँ मतलब टोटल 50 लोग भी नहीं थे।
5: जी जी नंदिता जी, तो पीयूष जी ने बहुत अच्छे से बताई अपनी स्टोरी, खासकर फैमिली को आपसे इंट्रोड्यूस कराने की। और इधर आपकी फैमिली में क्या सीन चल रहा था?
4: सर मेरे तो यही था कि जैसे मेरा तो खुद का ही विजन नहीं था कि शादी मुझे करनी है, मुझे प्रॉब्लम के साथ शादी करके क्या करेंगे, मतलब आज अपन परेशान है कल अपने साथ में कोई और भी परेशान होगा, तो सिमिलर चीजें फेस कर रहे हैं, किसी और को करनी पड़े वो नहीं चाहते।
5: आपके मन में क्यों थी मैम, कॉन्फिडेंस की वजह से थी या कोई और मतलब?
4: ब्लाइंडनेस की वजह से, ओनली ब्लाइंडनेस। लाइफ में कि जिस चीज को अपन फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं तो इतने साल घर में ही रही ना सर, मेरा तो एक तरह से लिमिटेड दायरा हो गया था कि घर में ही रहना था, तो कुछ नॉलेज नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, किससे मिले नहीं, तो एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस तो 2015 के बाद ही मिली थी, जब कंप्यूटर सीखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कुछ कर सकते हैं, एज ए ब्लाइंड भी कुछ अपन कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर सबसे बातें होने लगी, तो एक्चुअली में इस कम्युनिटी में आके ज्यादा खुश रहने लगी थी मैं, तब मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस आया कि शादी भी कर सकते हैं और एज ए ब्लाइंड कपल बहुत अच्छी लाइफ लीड भी कर सकते हैं।
5: वेरी नाइस।
4: तब तब मैंने ये डिसाइड, हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, मैं मुझे लगा कि हम आराम से शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस डिफिकल्ट टास्क यही था कि फैमिली को कैसे एग्री करें।
5: मुद्दा वही है
4: एक्चुअली में, क्या मम्मी पापा के लिए ये भी शॉकिंग था कि आज तक जिसे शादी नहीं करनी थी अचानक एक ही दिन में उसे शादी करनी है, जब उन्हें ये बताया आज तक जो हम शादी के लिए करते थे शादी शादी शादी, तो बस नहीं मुझे नहीं करनी मुझे नहीं करनी, अब एक दिन में और करनी है, तो फिर जब ये बताया कि ब्लाइंड से करनी है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए कि इतना बड़ा तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो, तो प्रॉब्लम तो काफी आई मम्मी पापा के लिए, तो एक तरीके से
5: थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जैसे उस दौरान क्या क्या बातें रही, मम्मी का ज्यादा विरोध रहा, पापा का रहा कि सिमिलर था, क्या था मतलब क्वेश्चंस क्या थे उनके, आपने कैसे उनको हैंडल किया?
4: क्वेश्चंस मीन तो ये, दोनों ही ब्लाइंड हो कैसे हैंडल करोगे, अदर डिसेबिलिटी होती तो एक बार के लिए फेस कर लेते, और कैसे सोशल फैक्टर को बैलेंस करेंगे लोग, मतलब
5: मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ बीच में, ये बात हमें 90% सुनने को मिलती कि यार अच्छा कोई भी और डिसेबिलिटी होती ना तो चलो ठीक है इट्स ओके, तो ब्लाइंडनेस को क्या मतलब डिसेबिलिटी में भी सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक माना जाता है क्या, क्या है ये? क्योंकि हमने यही अक्सर यही सुना है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है?
4: मुझे नहीं लगता ब्लाइंडनेस, तो बल्कि मुझे लगता है कि ऐसी
5: सबसे इजी होना चाहिए ये तो मेरे ख्याल से।
4: बिल्कुल सर, मुझे तो नहीं लगता कि ये डिफिकल्ट है, बट लोगों का विजन ऐसा नहीं है ना, लोगों को लगता है कि तुम दोनों ही ब्लाइंड हो, अगर एक ब्लाइंड होता और एक कोई अदर डिसेबिलिटी होती तो वो उसकी कमी को पूरा कर देता और वो उसको फुलफिल कर देता, यही लगता था पहले तो। उन्हें यही था ना कि भाई अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम शादी के लिए एग्री हैं, बट हम लड़के तुम्हारे लिए, वो तो वैसे तो नॉर्मल साइटेड लड़का ही आते थे, वो बोले हमें टाइम दो हम ढूंढते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ मम्मी पापा दोनों ही एग्री नहीं थे, भैया थोड़ा समझा था, फिर उसने मम्मी पापा को मनाया समझाया, सारे विजन दिखाए कि जब ये लोग डिसाइड कर चुके हैं मन बना चुके हैं तो अगर कहीं और भी करेंगे तो ना तो ये करेंगे और ना एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि 2015 से पहले सर मैंने भी मेरी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं किया था, कहीं ना कहीं फोबिया ही था कि किसी को बताना नहीं, बस अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो वो चीजें फेस करना बहुत मुश्किल था।
2: मतलब इनको मैं बताऊं आपको
5: जी,
2: वालों को भी पता नहीं था कि इनको नजर नहीं आता।
5: अच्छा,
2: क्योंकि ऐसे चेहरा देख के तो लगता नहीं है कुछ
5: जी,
2: और क्रीम वगैरह कुछ यूज करते नहीं थे, और आपको पता है गर्ल्स की स्टाइल होती है, हाथ पकड़ भी रखा है तो भी ऐसे छुपा लेते थे कि किसी का हाथ पकड़ रखा है इन्होंने, चलते थे मदर को।
4: ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन
5: इतनी बारीक से बारीक चीजें हमारे दोनों मेहमानों ने एक दूसरे के लिए समझ करके रखी है, ये होता है अंडरस्टैंडिंग करने वाला। जी जी बताइए।
4: लेकिन सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने कैन कभी यूज ही नहीं की, तो मुझे कभी मन भी नहीं किया कि मैं कैन यूज करूं।
2: मतलब मैं ये बता रहा हूं, पता नहीं था,
4: पता भी नहीं था आसपास, ऐसे पता नहीं था कि जैसे उनको जितना पता था बस उतना पता है, कभी डायरेक्टली किसी ने पूछा नहीं कि कितना विजन है। इसका रीजन एक ये था ना कि मेरी नॉर्मल डे टू डे की लाइफ के सारे काम मैं इजीली कर लेती थी, तो कभी किसी को पता ही नहीं चला कि मुझे दिखता नहीं है, और एजुकेशन हो ही चुकी थी, सबको लगता था हाँ शादी करेंगे करेंगे, अपने अकॉर्डिंग मिलेगा तब करेंगे। तो कुछ ये था कि पेरेंट्स को मैं मना करती थी तो वो ये रीजन दे देते थे कि हाँ इसे करनी ही नहीं है, जब ये रेडी होगी तब करेंगे, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना।
5: right.
4: तो एक था, और मुझे यही था सर कि जिस को मैं फेस कर रही हूँ उसको किसी और घर में नहीं जाना चाहती, वो फैमिली मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, इससे बेटर है कि मैं एक फैमिली में ही, आज परेशान है तो हम चार लोग परेशान है, नेक्स्ट फैमिली को परेशान करेंगे। एक शादी
5: ननिता जी, फाइनली वो दिन कब आया जब आपकी फैमिली और पीयूष जी की फैमिली मिले एक जगह?
4: सर वो दिन आया मार्च 2017 में।
5: वेरी नाइस, तो वो मतलब जी
4: नहीं थे इस चीज के लिए, उनके लिए तो मेरी का एक कॉम्प्रोमाइज था, बट आज सिचुएशन कुछ और है, वो सब खुश है, मेरी फैमिली इनकी फैमिली भी खुश है, और अब उन्हें भी ये चीज एक्सेप्टेड है कि हाँ ये लोग खुश है।
2: संदीप जी पूछ रहा, जब वो मिले थे तब क्या हुआ था बताओ थोड़ा।
4: जब पेरेंट्स
5: जी
4: सर, उनके लिए वो बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन थी,
2: वो एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे कि ये मना कर दे, वो इधर आ दे कर दे वो।
5: ये थोड़ा डिटेल में बताओ यार, ऐसे फिर मजा नहीं आएगा। देखो
4: कि देखो इसका ऐसे है, उनको ये था कि ये लोग सामने से मना कर गए।
5: अच्छा।
4: कि हाँ हम नहीं करेंगे अभी। अच्छा। तो हमारी बेटी अपने आप शादी करेगी।
5: हाँ मतलब फैमिली नहीं मानेगी तो बात वहीं खत्म हो जाएगी।
4: हाँ, तो वाली की फैमिली नहीं मानेगी तो तुम जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकते ना।
2: वो बता रहे थे कि देखो ये ऐसे काम करती है,
4: ऐसा कुछ नहीं था सर, एज ए ब्लाइंड कुछ नहीं किया था, साइटेड लाइफ में सब कुछ किया हुआ था, तो मैंने एज ए ब्लाइंड तो सब कुछ यहाँ आफ्टर मैरिज ही किया, बट मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब इजीली मैनेज, और आज हम बहुत खुश हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
2: पर उस टाइम तो ये बोला था ना कि खाना बनाना नहीं आता,
4: उस टाइम तो यही बोला था कि वो इसीलिए ना कि सामने से रिस्पॉन्स नेगेटिव हो जाए,
5: मतलब कि इसको खाना बनाना नहीं आता है, ये काम कुछ भी नहीं कर सकती है।
4: एक चीज ये भी था ना कि सामने वाला एक्सपेक्टेशंस ना रखे,
5: क्योंकि हाँ ये भी हो सकता है, ये बात भी सही है।
4: हाँ
2: संदीप जी मेरे को ये बोला था कि ये तो इनकी उम्र हो गई, अब शादी बड़े हो गए, बड़े लगते हैं।
5: मतलब ये क्या बोलते हैं कि ओवर एज हो गए मतलब है
4: सर सब कुछ ओवरऑल देखा जाए तो कोशिश यही थी कि वो लोग चाहते नहीं थे कि ये शादी हो बट हमारी खुशी के लिए दोनों ही फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज नहीं
5: किया और आज दोनों ही फैमिलीज जो है वो बहुत ज्यादा खुश है राइट
4: जी सर हमें कॉन्फिडेंस था हमने तो आगे के लिए सोचा ही नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे बस एक ही सोचा कि शादी के बाद जो होगा जो भी प्रॉब्लम्स आएगी डिफिकल्टीज आएगी सब मिलके सॉल्व करेंगे और फेस करेंगे लाइफ को
5: फैमिलीज को समझाने में किसी हमारे वीआई साथी को भी बीच में आना पड़ा या नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ी
2: मतलब बीच में आना मतलब इस तरह रहा कि एक्चुअली दो तीन लोगों को हमने ही बोला कि आप जाओ तो इनके यहाँ आप जानते होंगे चेतन शर्मा सर
5: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो ओबीसी में थे
2: जी उनको भी एक बार बोला कि आप जाइएगा और भी एक दो लोग थे जिनको हमने बोला कि
4: एक्चुअली सर मेरी फैमिली कभी किसी ब्लाइंड से मिली ही नहीं थी फर्स्ट टाइम तो उनसे हमने कई ब्लाइंड लोगों से मिलवाया था कि ये दिखाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ इजीली होता है एक दो लोगों से मिलिए बट वो ही है ना उनका तो माइंड स्टेटस वही था कि
5: यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मतलब फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि जब एक अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की और कॉलेज कर लिया जिसने इतना फैमिली का सपोर्ट करने वाली लड़की अचानक एक दिन जब घर पर बैठ जाती है अपनी आंखों की वजह से थोड़ा सा वो याद कीजिए कि फैमिली का क्या माहौल था उस समय मतलब बड़ा
4: सर लाइफ का सबसे जो पुअर पार्ट रहा है ना वो मेरी लाइफ में यही रहा है जब मेरे धीरे धीरे विजन लो होता गया 2007 के बाद एजुकेशन भी ड्रॉप हो गई शायद एमकॉम के आगे बढ़ते बट छोड़ना पड़ा तो मम्मी पापा तो बहुत हर्ट थे उन्हें तो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं थी कि हमारी बेटी ब्लाइंड नहीं हो सकती डॉक्टर्स भी यही कहते नहीं आंखों की रोशनी आ जाएगी आसपास के लोग रिलेटिव सब यही कहते कि नहीं ब्लाइंड नहीं है सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा तो उन्हें तो ये एक्सेप्ट ही नहीं था एक्चुअली मैंने खुद ने भी अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया था क्योंकि डे टू डे की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी मेजर प्रॉब्लम क्योंकि बाहर तो निकले ही नहीं थे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी फैमिली भी बहुत सपोर्टिंग है मम्मी पापा भैया भाभी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग और केयरिंग है कोई प्रॉब्लम आने से पहले वही फेस कर लेते थे मुझ तक तो कभी कुछ पहुंचने ही नहीं दिया
5: बिल्कुल सही है वही तो 2007 से 15 तक आपने बताया कि आप घर पर ही थे
4: घर पे रहे
5: आठ साल तो मतलब बड़े यानी हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 8 साल आपने कैसे एक एक दिन बिताया होगा
4: असल मम्मी पापा भी बहुत डिस्टर्ब थे मैं भी थी मैं उनके सामने खुश रहने का नाटक करती थी वो मेरे सामने खुश रहते थे कि ये रहे हम टूट जाएंगे तो इसे कौन संभालेगा और मुझे लगता था मैं कमजोर पड़ूंगी तो इन्हें कौन संभालेगा तो बस दौरान ये सब कुछ चलता रहा बहुत ट्रीटमेंट कराया आउट ऑफ इंडिया भी कराया और इंडिया में भी चेन्नई हैदराबाद कई जगह गए सर बट आरपी का ऐसा कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट हमें मिला नहीं तो सर वो टाइम पीरियड तो बहुत ही क्रिटिकल था
5: आपके जिंदगी में तो पहले और आखिरी ऑप्शन के रूप में पीयूष जी आए राइट
4: हाँ सर मतलब मैं मुझे तो शादी नहीं करनी थी ना सर तो कभी किसी से मिली ही नहीं कभी किसी से बात ही नहीं फर्स्ट और लास्ट यही रह गए
5: मतलब बड़ा हमारे मैंने कहा ना जैसा कि हम लोगों के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते कि इतने साल एकदम से जिंदगी जिसकी चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी वो जिंदगी अचानक थम जाए
4: उससे लाइफ एकदम परफेक्ट थी सारे काम खुद करते थे व्हीकल भी ड्राइव करते थे स्कूल कॉलेज सब बहुत इजी गोइंग था आसपास की दुनिया अच्छी थी लोग सामने से इन्वॉल्व होते थे लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद आप तो समझ ही सकते हैं धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती है लोग किनारा करने लग जाते हैं कि यार
5: इस पॉइंट पे आ रहा था कि जो आपके फ्रेंड्स रहे होंगे वो भी मतलब खत्म चले गए होंगे उसके बाद
4: हाँ सर कुछ एक फ्रेंड्स है जो आज तक साथ हैं बाकी तो सब दूर होते गए जब उन्हें ये पता चला कि मुझे अचानक ऐसी कोई प्रॉब्लम है
5: ननिता जी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थोड़ा सा अलग मेरे से रहा नहीं जा रहा है पूछे बिना कॉलेज में जब पढ़ते हैं और एमकॉम होते होते तो मतलब दोस्ती भी हो जाती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह सब हो जाता है तो आपके लिए कुछ था ऐसा माहौल कभी बना कि नहीं बन पाया
4: नहीं सर मेरे लिए ऐसा था कि विजन तो मेरा कम हो रहा था वो मुझे पता था
5: ओके
4: तो था ही नहीं तो कभी इस चीज के तरफ मन गया ही नहीं
5: कभी सोचा ही नहीं आपने ऐसा कुछ
4: सोचा ही नहीं सर बस एजुकेशन और अपनी लाइफ कैसे करनी है वो ही था बस कभी सोचा नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था सर कभी कॉलेज लाइफ तक कभी कुछ आया ही नहीं और एम कॉम के बाद तो घर में ही रहे सर।
5: नैनीताल जी, बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में ना टूट जाते हैं।
4: बिल्कुल सर, टूटे ही थे।
5: आपने हिम्मत कैसे रखी, मतलब फिर भी फेस तो किया ना आपने, कैसे अपने आप को संभाल करके रखा आप?
4: 2015 में मैं आर एन केस आई थी, तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर पाऊंगी। मुझे लगा कि मम्मी पापा मेरे लिए कोशिश करना चाहते हैं। किसी रिलेटिव ने उन्हें बताया था, उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि तुम ज्वाइन करो, तो मैं भी करना तो चाहती थी, तो मैंने ज्वाइन किया। तब भी मुझे लगता था कि ठीक है, अपन कोशिश करते हैं, होगा तो ठीक है। बट यहाँ की लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ऐसा लगा कि आप कुछ नया सीख रहे हो, एज ए ब्लाइंड होके भी कंप्यूटर सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है। उससे पहले तो सर यू कहो कि टाइम भी पूछना हो तो किसी से पूछना पड़ता था, और उसके बाद तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सबने लाइफ ही चेंज कर दी। फिर 16 में जॉब ने और ज्यादा लाइफ चेंज कर दी, 17 में शादी ने और ज्यादा लाइफ चेंज कर दी।
5: फिर उसके बाद भी 18 में भी चेंज हुई होगी।
4: बिल्कुल सर, यही मैं कहना चाह रही हूँ। अब हमारी एक बेटी है तो उसने और ज्यादा
5: क्या मतलब वही क्या नाम है बेटी का?
4: अनायरा जैन।
5: अनायरा, वाह, वेरी नाइस, गुड। तो अनायरा के आने के बाद लाइफ और चेंज हो गई। अच्छा, पीयूष जी, पीयूष भाई, बहुत देर से आप सुन रहे हैं
2: जी सर
5: नैनीता जी को
2: जी।
5: तो वैसे भी मुझे लगता है कि ज्यादा काम आपका सुनने का ही रहता होगा।
2: वो नेचुरली होता।
5: खैर, लेकिन पीयूष भाई आज बताएं, फैमिली मतलब सब बैठते होंगे आपस में, कभी बात होती होगी, आज दे आर सेटिस्फाइड ना कि मतलब ठीक है, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम खुश हो, हमें कोई शिकायत नहीं है
2: जी। एक्चुअली संदीप जी, मैं वही कह रहा था आपको, उन लोगों को या जो मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, वो चाहते थे हमारा अच्छा ही है ना
5: जी। बिल्कुल,
2: उन लोगों को उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था या कॉन्फिडेंस नहीं था कैसे।
5: लेकिन आज की सिचुएशन क्या है पीयूष?
2: मैं कह रहा हूँ, जब पिछले दो साल तीन साल हो गए थे जब हमारी शादी को, या कहें कि 6 महीने बाद ही चीजें समझ में आने लगी थी कि नहीं ऐसे कर सकते हैं। जैसे मेरी फैमिली को मैं बताऊं कि मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता था कि ऐसे लैपटॉप पे हेडफोन लगा के फोन काम कर लेता है, ये मोबाइल है जो टॉक करता है, ये किससे काम चल जाता है। पर नैनीता को देख के थोड़ा 6 महीने वो कैसे किचन में काम करती है, मतलब शुरुआत में तो ये होता था मेरी मदर सामने आके खड़ी रहती थी चुपचाप देखते रहती थी।
5: अच्छा,
2: क्या कर रही है, कैसे कुछ सही से कर रही है कि नहीं। बाद में आके पापा को या मेरे को बताती थी, अरे वो सही कर रही है, एकदम ऐसे रखती है, ऐसे ऐसे चीज को चेक करती है कि कितना
5: क्या। अरे वाह, बहुत खूब।
2: वो फेज था एक, पर वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा। और एक्चुअली बस किसी का वो अप्रिहेंशन कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि कंफ्यूज थे या डाउटफुल थे कि कैसे आगे बढ़ेंगे। तो थोड़े टाइम बाद ही फिर तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, उन्हें लगा नहीं सब ठीक है। हम लोग फिर मतलब पहले तो ये होता था कि मैं, हम लोग शुरुआत में अकेले नहीं जा पाते थे, वो हमारे साथ जाते थे, कहीं बाहर जाते थे।
5: आप दोनों की लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं पीयूष भाई, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एयू में आपकी जो जॉब है, अब उस पर थोड़ी सी बात की जाए आपसे। जब आप ब्लाइंड नहीं थे तब और जब दोबारा आप गए, उन दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस लगा आपको?
2: मैं आपको जैसे मैं बताऊं, शुरू में मैं सेल्स में था। सेल्स में तो आप समझते हैं कि दिन भर मार्केट में रहना, क्लाइंट से मिलना, करना, अपॉइंटमेंट्स लेके जाना, बात करना, ड्राइव करना, ट्रैवल था मेरा। तब ये सिचुएशन हुई जब मैंने, जैसे आपको बताया, फिर मैंने 1-1.5 साल घर पे ही रहा, फिर वापस ज्वाइन किया कंप्यूटर सीखने के बाद, AICD में ट्रेनिंग लेने के बाद। तो फिर वहां जाके बोला, भाई मुझे अब काम दो। क्या क्या काम करोगे? मैंने कहा मैं ट्रैवल का काम या बाहर का काम तो कर नहीं सकता, बैक एंड का काम ही मुझे। तो वहाँ मुझे मतलब मैं ऑन द रिकॉर्ड वैसे पहली बार ही बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे वो काम दिया जो लीस्ट इम्पोर्टेंस वाला था। जो मतलब शुरुआत में उनको एक्चुअली होता है ना कि उनको भी पता नहीं भाई क्या दें,
5: उनको भी एहसास नहीं था। लेकिन पीयूष भाई, इससे पहले प्रश्न ये आता है कि किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अब तो आप नहीं हमारी कंपनी में, यू आर नॉट वर्किंग विद अस?
2: नहीं, ऐसा नहीं कहा गया मुझे।
5: और ये अपने कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने वाली बात रही कि आपको पता ही था कि नहीं, मैं तो कंपनी में ही हूँ
2: जी। और मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मुझे ललित जी ने AICD का कहा था
5: जी,
2: के बाद मैं फिर क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि एक महीने की छुट्टी लेके जाऊंगा वहाँ, मैंने फिर हमारे एचआर ने बात की तो वहाँ से एक बार थोड़ा वो हुआ, फिर मैं सीधे हमारे जो कंपनी के ओनर हैं एमडी अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने गया। उनको मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे ये सीख सकते हैं वो काम, ऐसे ब्लाइंड लोग ऐसे काम करते हैं, मोबाइल भी आजकल वो, मैंने उनको ऐसे बोला कि बोलने वाले आ गए मोबाइल लैपटॉप भी तो और काम हो जाता है, मैं ऐसे कर दूंगा। तो वो बड़े खुश हुए, उन्हें भी लगा कि यार अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो जब उन्होंने मुझे कहा तो ठीक है तू जाते हो क्या करना है, और देखो मतलब ऐसा नहीं पेड लीव्स दे रहा हूँ मैं तेरे को, तू जा जो तेरे को ट्रेनिंग लेनी है। और उसी टाइम मतलब ट्रेनिंग नहीं ली थी उस पर, मैंने कहा था मुझे लैपटॉप सीखना है, उन्होंने मुझे हाथों एक लैपटॉप मंगा के दिया।
5: क्या बात है, लैपटॉप
2: मंगा के दिया और सैमसंग का फोन भी दिया मुझे साथ में लेके जा। AICP जब मैं गया तो लैपटॉप खुद का लेके गया था।
5: और मतलब एमडी बहुत ज्यादा लगता है कि आपके प्रति मतलब काफी अच्छा उनका रिस्पांस था जी।
2: इस मामले में यही कहता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी हुआ पर मेरे साथ वाले लोग मेरे साथ, मैं खुशनसीब हूँ, बहुत ही ऐसे लोग थे अजूबे तरह के लोग थे मेरे साथ, तो यही एक कारण था। और जब वो मैं वापस आया तब भी मैं फिर मैंने एचआर में बोला कि मुझे अब ये काम देना है, तो आप ये कहें कि मैं वापस आके उनसे नहीं मिला, मैं सीधे एचआर में मिला, वरना वो मिलते तो शायद और मुझे कुछ
5: है। हाँ, कि वो जो एक लाइन अभी आपने कही शायद आज वो कहने की नौबत नहीं आती।
2: तो पर ये नहीं था ऐसा, मतलब वो जो मुझे काम दिया गया बैकग्राउंड से तो वो मैंने लीस्ट इम्पोर्टेंस काम मैं कह रहा हूँ, पर वो ऐसा नहीं था कि फिर उसमें मैंने डिलीवर करके दिया कुछ दो तीन साल मैंने उसी फील्ड में था, मैं बैक ऑफिस में, मेरे पास एक टीम थी जो कस्टमर कॉलिंग वगैरह करती थी और रिपोर्ट्स वगैरह बना के हम लोग भेजते थे। तो इस तरह से ये ऐसा कुछ हुआ। और फिर 2018 में जब 2017 में AU बैंक बन गया था, पहले ये AU फाइनेंस कंपनी थी, जब बैंक बन गया तो एक CSR को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करा, उसे स्ट्रक्चर्ड किया। पहले तो वो एक फिलान्थ्रोपिक वे में होता था कि हाँ जो कंपनी को पसंद आ गया या मैनेजमेंट को सही लगा वो काम कर दिया, जैसे हॉस्टल बना दिया या जगह जगह वाटर कूलर्स लगाए या किसी SMS हॉस्पिटल में कुछ भी तरह के कई तरह के काम किए, वार्ड बनवा दिया। 2018 में ऐसा हुआ कि इसे स्ट्रक्चर किया गया कि CSR का एक डिपार्टमेंट बनेगा अलग, वहाँ चार पांच लोग होंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर इससे मुझे कॉल आया कि आप लोग, आपको भी इसमें शिफ्ट होना है, इसमें मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस था उनका, उनको लगता था कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज है और मैं क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ कुछ NGO से, तो मुझे आगे बढ़ के ये ऑफर दिया गया कि आप CSR में आओ। और जैसा आपने कहा ना, MD सर ने जो हमसे देखा था या समझा था मुझे, बाद वो जब मैं उन्हें एक बार RNKS लेके गया था और वहीं पे उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो चेयरमैन थे कि मैं 5 ब्लाइंड लोगों को AU में जॉब दूंगा।
5: क्या बात है,
2: तो आप मुझे जहाँ तक ध्यान है आप एक दो लोगों से परिचित भी हैं।
5: आलोक जी हमारे अजमेर में जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और एक हाल ही में मैं मिला पवन जी हैं उनसे मैं मिला, वो भी AU में जॉब कर रहे हैं,
2: और पहले भी एक भारत थे, भारत माली, वो अब
5: माली को भी मैं जानता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने मतलब इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि आज वो खुशी खुशी तो किसी भी कैपेबल ब्लाइंड पर्सन को जॉब देने के लिए रेडी है।
2: वो उन्हें कॉन्फिडेंस आया, उन्हें दिखा कि भाई ये काम ऐसे होता है। और क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, एक विजनरी है मैं मानता हूँ उनको, वो एक बार देखने में समझ गए। मतलब एक बार होता है ना कि HR वाले किसी पर्सन को भी आप कहो ना कि ब्लाइंड क्या काम करेंगे, वो कहेगा अरे ब्लाइंड देखना पड़ेगा क्या काम है, ऐसा तो कुछ हमारे पास काम ही नहीं है। और एक होता है विजनरी, वो खुद देखते समझ आता है ये लोग ये काम कर सकते हैं, खुद बता देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात, काम है जो मतलब बिना साइट के भी हो सकते हैं। जॉब आइडेंटिफिकेशन करना एक इम्पोर्टेंट है, और वो उसे कौन कितनी इम्पोर्टेंस देता है वो बड़ी बात है।
5: बिल्कुल,
2: कितनी इच्छा है इसको आइडेंटिफाई करने की और एक्टिविटी करने की।
5: अच्छा पीयूष भाई, मतलब सेम सिचुएशन मुझे आपके साथ भी लग रहा है कि पूछनी चाहिए कि जब आप साइटेड थे तो फिर आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था, मतलब कोई आपके भी दोस्त लोग तो हुए ही होंगे ना उस समय भी।
2: हाँ नहीं,
5: क्या पूछना चाह रहा हूँ
2: जी। वो भी एक
5: कहानी, वो भी एक कहानी है।
2: उन चीजों का भूल जाए पीछे छोड़ दें वही अच्छा है।
5: क्या बात, नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई।
2: तो ये था कि एक अलग लाइफ थी पहले, थे और फ्रेंड्स भी थे, सब थे, और वो एकदम से चेंज हो जाती है चीजें जब आपकी लाइफ चेंज आता है।
5: लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं ऐसे में फिर
2: नहीं। वो आप लोगों के आप जैसे दोस्तों का कारण है के कारण है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ पाया। मतलब मैं तो लकी हूँ कि ब्लाइंडनेस के बाद भी मुझे ऐसे के ऐसे ही दोस्त मिले जैसे मुझे चाहिए थे। और आप बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं हमें।
5: क्या बात है, ये तो बड़प्पन है आपका, नहीं तो आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और पीयूष भाई बताए जरा कि अब जो है आप दोनों का जीवन कैसा चल रहा है। ये सब बातें तो हो गई लेकिन फिर भी आप दोनों खुद के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं?
2: सच बताऊं संदीप भाई, अब तो वक्त हमारा हमारी बेटी के साथ जा रहा है ज्यादा।
5: गुड।
2: एक्चुअली 2017 में जब शादी हुई थी उसके बाद हमको डिसीजन लेने में भी टाइम लगा कि हमको बिग बी भी करना है कि नहीं।
5: ओके।
2: जो शायद मैं
5: आप रीजन कहीं ना कहीं आरपी था
2: जी, मुझे आरपी नहीं था पर इन्हें आरपी था और वो भी एक मतलब जेनेटिक है बीमारी भी, हाई मायूपिया था जो भी जेनेटिक में ही आती है।
5: अच्छा, ओहो, ये बहुत सारे लोगों के साथ मतलब है कि कई लोग इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैं जानता हूँ लिटरली कुछ लोगों को। फिर आप लोग कैसे मतलब इसमें पहुंच पाए, इस डिसीजन तक?
2: मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत टाइम लगा कि हमें फिर हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया। कुछ कंसल्टेंट से भी हम लोगों ने कंसल्ट किया जो डॉक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक थेरेपी वगैरह पे काम करते हैं। हम लोगों ने मतलब एक टेलीफोनिक काउंसलिंग भी ली, एक सेशन भी अटेंड किए एक दो।
5: ओके।
2: यही रहा कि नहीं, इसमें बहुत कम चांसेस है और मतलब जिसमें होता है तो उसका तो कुछ वो भी नहीं है कि कोई अगर कह भी रहा है कि वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो भी कोई सच नहीं कह रहा है।
5: हाँ, वो कुछ श्योर नहीं है मतलब।
2: तो फिर हमने मतलब ये आप मानिए हम लोग जब हमने ये डिसीजन लिया तो बहुत वो था कि बहुत डाउटफुल थे हम कि यार क्या होगा कैसे होगा। मतलब बेबी हमने जब लास्ट ईयर बेबी हुई हमारी तो भी हम लोग थोड़े एक दो महीने तो यही थे कि इसको अब एक बार ये थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, इसकी आंखें चेक करवानी है। तो ये था, पर सब ठीक है और अब हम बहुत खुश हैं।
5: चलिए, उस नन्ही सी बड़ी के साथ वक्त बिताने का अच्छा अवसर मिल गया।
2: बैंक है तो फिर भी जून में ही ज्वाइन करना था वापस। अब हमारी लाइफ काफी चेंज है, हम टाइम जब वो सो जाती है तभी थोड़ा हम लोगों का आपस में बात करने का और आगे के जो भी सोच है हमारे उस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो हमें लग रहा है हमारा टाइम है और ऐसे और जो भी टाइम मिल रहा है उसे क्वालिटी के साथ स्पेंड कर रहे हैं।
5: बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है मेरे दिमाग में पीयूष भाई की, जैसे नमिता जी ने कहा कि उन्होंने तो ये सोच रखा था कि मतलब शादी करनी नहीं है, कहीं ना कहीं ये ब्लाइंड होने के बाद आपके भी मन में ऐसे ही ख्यालात थे या इस बारे में कभी वक्त ही नहीं मिला सोचने का?
2: टू बी वेरी फ्रैंक संदीप जी, मेरे तो मतलब जब जैसे थोड़ा मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस आ गया, एक्सेप्ट कर लिया ब्लाइंडनेस है
5: जी,
2: तो एक होता है कि आपको एक फ्रेंड की या उसकी जरूरत होती है जिससे आप बात कर सके।
5: बिल्कुल,
2: मतलब होता ना कि एक आपको हाँ चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कर सको,
5: पेन शेयर करें जिसके साथ आप।
2: वो मुझे तो लगता था और जैसा मैंने कहा मुझे तो मतलब मेरे फैमिली को भी पहले तो यही था कि मैंने कह रखा था कुछ देखना है तो आप देखो शादी। और मैंने जैसे कहा ना कि वो पहले फिर वो इसलिए देख रहे थे कि ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड के अलावा देख रहे थे।
5: अच्छा।
2: तो मैंने भी उस वक्त यही कहा था कि नहीं मुझे इंटेलेक्चुअली तो कंपैटिबल चाहिए जो जिनके साथ मैं, जैसे हम लोग अभी नहीं था ने कहा था हमारी कंपैटिबिलिटी हमको लगती
5: है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। बहुत सही कहा आपने।
2: बस वही है क्योंकि हमें लगता है कि हम चाहे ऐसी प्रॉब्लम है पर हम एक दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं, अपने बातें एक मन की बातें शेयर करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस होती है वो हमारी एक सी होती है तो हम खुल के बात कर पाते हैं और वही सबसे सही डिसीजन था मुझे लगता है। तो वो हमें एक कंपैटिबल हमारे हमको नैनीताल जी मिल गई तो हमने मौके को जाने नहीं दिया।
5: तो नैनीताल जी क्या क्या शौक है आपके, हॉबीज क्या क्या है?
4: सर हॉबी मेरी कुकिंग और डांसिंग है।
5: अच्छा, वाह क्या बात। तो अभी तो डांस वांस आप करती हैं या छोड़ दिया सब?
4: हूँ, बट जिस लेवल पे पहले किया करते थे उतना नहीं हो पाता।
5: अनायरा के बर्थडे में करते हैं कि नहीं? अनायरा के बर्थडे में करते हैं या नहीं करते?
4: जी बिल्कुल सर। वो हमें रातें नचा ही रही है उसके साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डांस।
5: कभी पीयूष जी को कोई गाना वाना सुनाया कि नहीं आपने?
4: हाँ सर मैंने तो सुनाया, इन्होंने भी सुनाया, ऐसी कोई बात नहीं है।
5: अच्छा, कौन सा सुनाया आपने और जो पीयूष जी को बहुत पसंद हो?
4: वो तो यही बता सकते हैं सर।
5: जी सारा ही पसंद है। क्या बात है, सुना दीजिए दो लाइनें। मैंने कहा कि आज एक बार फिर दो लाइनें गुनगुना दीजिए।
4: ओके सर, आई एम ट्राइंग।
5: जी जी जी

0: तो मैं वह कहना जितना अच्छा आप गाते हो ना, हमें पता है, मैंने आपको सुना है आपकी कविताएं और गाना, तो उसके सामने मैं बहुत, आप शर्मिंदा फील करेंगे मेरे गाने को सुन के, बोलेंगे
1: नहीं, लेकिन आज रेडियो मधुबन ने जो है मुझे इसलिए बिठा रखा है कि मैं आपको गवा सकूं। जी, तो हो जाए दो लाइनें पीयूष भाई, कोई बात नहीं, तो मस्ती का माहौल है।
0: नहीं संदीप जी, मुझे लग रहा है मैं फिर भी दो लाइन गा सकता हूँ।
1: हाँ दो ही लाइन, दो ही लाइन।
0: तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, मुझे याद नहीं है, सॉरी यार।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने जो है आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना कि मैं गाने वाने की भी बात करूंगा। तो नंदिता जी, कुकिंग में क्या क्या है फेवरेट आपका?
2: कुकिंग में सर बेसिकली
1: बना लेती हैं आप?
2: मैं साउथ इंडियन बना लेती हूँ, चाइनीज बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत इटालियन, और बाकी अपना बेसिक फूड इंडियन फूड ये सब मैं कुक कर लेती हूँ सर।
1: अरे वाह, अच्छा आप लोग कोई जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं गैजेट्स वगैरह, उसका भी कुछ इस्तेमाल करते हैं?
2: हाँ सर, इनिशियल लेवल पे हम लोग करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक में, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, नॉर्मली जनरली फ्रिज वगैरह तो अपने घर में सबके होते ही हैं,
1: तो कोई इशू है ही नहीं तो। जी,
2: और इंडक्शन यूज करते हैं सर,
1: माइक्रोवेव भी टॉकिंग है पूरा?
2: जी सर टॉकिंग है सर, हमारे पास एंड्रॉइड बेस्ड टीवी है टॉकिंग, और कई गैजेट्स हैं जो टॉकिंग यूज करते हैं और नॉन टॉकिंग भी यूज करते हैं सर।
1: फैमिली फंक्शंस में जब जाना होता है आप दोनों का, तो जनरली क्या माहौल रहता है?
2: सर फैमिली फंक्शंस में तो माहौल थोड़ा नॉर्मल रहता है, वो चीज नहीं है कि दो ब्लाइंड पर्सन आए या कुछ, शायद हमें हमारे कॉन्फिडेंस को देखकर या हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग जाते हैं सबसे मिलते हैं, तो सब नॉर्मल हो चुके हैं कि हाँ ये अपने ही तरीके के लोग हैं, सबको भी कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो सर अलग से उनका बिहेवियर नहीं रहता।
1: जी
2: नॉर्मल सर, हम भी इंजॉय करते हैं और लोग भी हमारे साथ कॉपरेट भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, हमें कभी नहीं होने देते कि हम कोई डिसेबल पर्सन आए हैं या हमें कोई डिसेबिलिटी है,
0: बहुत
2: करते हैं सर।
1: वेरी नाइस। अच्छा एक हमारा सेगमेंट है सवाल एक जवाब, तो नैनीता जी तैयार हो जाएं, पहले आपसे शुरू करते हैं। पीयूष जी का फेवरेट फूड बताइए।
2: चूरमा दाल बाटी।
1: आप बनाती हैं?
2: हाँ सर मैं बना लेती हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है, राजस्थानी भोजन है, राजस्थानी फूड है जी,
2: चलता ही है।
1: अच्छा अच्छा, पीयूष की फेवरेट सिटी बताइए। सिटी
2: हैदराबाद।
1: ओ गए कभी आप दोनों?
2: हाँ सर हम कई बार गए।
1: अरे वाह क्या बात है, हैदराबाद।
2: इनके मासी और मामा जी रहते हैं वहाँ पे।
1: अच्छा
2: जाना होता ही रहता है सर।
1: और पीयूष का फेवरेट सॉन्ग?
2: इनका फेवरेट सॉन्ग जो मैंने सिंग किया वही है
1: जब कोई बात बिगड़ जाए। अच्छा बात बिगड़ने से याद आया, बात बात बिगड़ती है कि नहीं कभी भाई?
2: तो
1: होती है, नहीं होती है,
2: बहुत बिगड़ती है सर।
1: गुस्सा पीयूष को ज्यादा आता होगा मुझे लगता है, आपको ज्यादा आता है?
2: To be frank, संदीप जी गुस्सा तो मुझे ज्यादा आता है।
1: मतलब इस हंसी के पीछे बहुत गुस्सा भी है।
2: आता है जो बहुत आता है वैसे नॉर्मल।
1: हमारे पीयूष भाई बिल्कुल कूल एकदम है।
0: मुझे तो है ना इनके को बता सकते हैं, पिछले 4 साल में कभी गुस्सा आया तो?
1: अरे वाह क्या बात है, वैसे गुस्सा आना नहीं चाहिए कभी।
2: इनको भी आता है बट मुझे ज्यादा आता है ये कह सकती हूँ,
1: लेकिन आना ही नहीं चाहिए।
2: हाँ इनको तो आना ही नहीं चाहिए ना सर।
1: नहीं आपको भी नहीं आना चाहिए।
2: अब मैं तो सर मेरा तो इमोशन है तो मुझे तो आएगा।
1: पीयूष भाई अब आपकी बारी है, ननिता की फेवरेट फिल्म बताएं।
0: संदीप जी टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब एक मुझे मूवी याद है विवाह, इनको बहुत पसंद है।
1: ओ ननिता जी सही कह रहे हैं,
2: सर, बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, हम इसके सॉन्ग काफी सुनते हैं, मेरी फेवरेट मूवी रही है।
0: और इसमें पर आप इनको बिल्कुल भी शौक नहीं रहा है मूवी का?
1: अच्छा
0: मेरा मूवी देखना कम हो गया।
1: अरे बाप रे बाप। अच्छा अच्छा ननिता का फेवरेट कलर बता सकते हैं आप पीयूष भाई?
0: वो तो आप सब सब गर्ल्स का लेडीज का आप पता है एक ही कलर होता है।
1: पिंक। और पिंक सिटी भी?
0: और पिंक सिटी भी।
1: अच्छा चलिए एक थोड़ा सा टफ पूछते हैं आपको, फेवरेट फोर व्हीलर कौन सा है ननिता का?
0: वो तो बलेनो है।
1: ओ क्या बात, क्या बात है। चलिए बहुत खूब, ये आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त।

0: है, और ये हमारे फ्रेंड्स को सीखने की जरूरत है, हमारे श्रोताओं को सीखने की समझने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर सब कुछ आसान।
1: बोलना चाहिए कि किसकी चॉइस पे इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलनी चाहिए।
0: राइट राइट राइट राइट राइट, मैं उसी पर आ रहा था कि पीयूष भाई अब चलते चलते टाइम तो हो गया, आप दोनों से बातें करते करते पता नहीं कब 1 घंटा निकल गया।
1: बहुत मजा आया सुनने।
0: हाँ, चलते चलते बताएं जरा कि हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे आज इस मौके पर।
1: मेरा मैसेज तो संदीप जी देखिए यही होगा कि मैंने अभी एक कुछ दिन पहले ये गाना सुना था, पता नहीं मुझे कहना ठीक नहीं, अगर होता ऐसा था कि लाइफ अगर तुम्हें दे बनाना तो उसे अपना लेना फटाफट।
0: क्या बात है,
1: हम लोग आज क्या है बहुत सोचते हैं बहुत कि क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले ऐसा क्यों हो गया, आगे क्या होगा, लोग मतलब जैसे मतलब कहते ना कि अभी क्या है, क्या चल रहा है, इसको कैसे इसमें कैसे जिए, उस पर ध्यान ही नहीं देते। मेरा तो मेरे दोस्तों को फ्रेंड्स को सभी को मैं यही कहता हूँ, आप आज में रहो, खुश रहो, आप देखो आपके पास आसपास बहुत सी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, आपको आसपास ही मिलेंगी, बस हमें सही पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण जिसे कहते हैं उसे रखें और पॉजिटिव रहें, यही मेरा संदेश है सबके लिए।
0: क्या जी नमिता जी, आपके पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए।
2: और मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टू बी फ्रैंक, मुझे लगता है लाइफ में क्विक डिसीजन लेने चाहिए, जिसमें आपको आज खुशी मिल रही है बस वो कर डालो, कल की सोचने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर मुझे लगता है फ्यूचर पे वैसे भी अपना कंट्रोल नहीं है, तो जो right. होगा वो होगा।
0: exactly.
2: आज में खुश होने में बिलीव करती हूँ।
0: बहुत तो बहुत बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच आज टाइम देने के लिए और रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आने के लिए। पीयूष जी और नमिता जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और रेडियो मधुबन के लिसनर्स का हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इनवाइट किया, हमें अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए सर थैंक यू सो मच।
0: श्रोताओं आज सुना आपने पीयूष जी को और नमिता जी को, प्रोग्राम हमराही में, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अगले रविवार मिलूंगा आपसे एक बार फिर किसी और हमराही के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत संदीप त्रिवेदी को, नमस्कार।
3: अभी बचे हैं दोपहर के 1।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बनाए।

0: ओम शांति बाबा शिव इस संस्थान के प्रति जो है मैं पीछे कवाली गाई थी
1: जी
0: दो लाइनें सुनाता हूँ। आओ जहानवालों

0: हेलो, मैं सुभाष अरोड़ा दिल्ली NCR फरीदाबाद से हूँ। सेक्टर 11 फरीदाबाद जो हमारा बीके सेंटर है, मैं उनके साथ अटैच्ड हूँ।
1: क्या बात है।
0: आई एम रिटायर्ड चीफ मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा और मैं 1975 से हारमोनियम पर गा रहा हूँ और मेरा शौक है भजन गाना। मैं सभी प्रकार के भजन गाता हूँ। अभी बीके सेंटर शिवरात्रि वाले दिन ये हमारे बैठे हैं तो वहाँ भी हमने गाए और यहाँ आकर ऑर्गेनाइजेशन की इस संस्था की ब्रह्म कुमारी की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। सबसे बड़ा क्या है, मेंटल स्ट्रेस से फ्री करना, शांति देना, खुशी रखना, यही उनका उद्देश्य है और यही हम सबको चाहिए। यही हम सबको चाहिए। आज धन की दौलत, धन दौलत की कमी किसी के पास है या नहीं है, लेकिन इस चीज की कमी जरूर है, दिमाग की शांति, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। शीज माय वाइफ अरोड़ा,
1: स्वागत है।
0: शीज आल्सो ए रिटायर्ड असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
1: अरे
0: हम दोनों धार्मिक प्रोग्राम में ही भजन गाते हैं। हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, उनको अपने आप में मस्त रहने दो।
1: हम अपने अपने
0: आप में मस्त रहते हैं तो यहाँ आने के लिए जो बीके सेंटर सेक्टर 11 ने हमको अवसर प्रदान किया, मैं बीके सेंटर 11 सी का भी, फरीदाबाद का भी
1: जी, जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और यहाँ की संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतने वक्त, इतना साफ सुथरा, अभी शिवानी जी को सुना मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी जी, शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे?
0: हाँ, सुनने वालों को जो मैंने अभी आपके सामने गाया,
1: जी, जी।
0: आओ जहान वालों इस दर पे सर झुकाए।
1: जी जी,
0: जिनको नहीं भरोसा आ करके आजमाए, अरे एक बार आके देखिए, आपको अवश्य मिलेगा, दिमाग की शांति मिलेगी, आनंदमय जीवन मिलेगा।
1: बहुत
0: बहुत मेरा सबको
1: संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
0: मुझे रेडियो मधुबन पे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: मैं आगे अवसर की तलाश करूंगा कि मैं कैसे
1: जुड़ू
0: शांति वन में आऊं।
1: बस आपको तो सर भाई साहब को मिलना है और फिर बोलना है, चलिए।
0: मेरा विशेष होगा, मेरी विशेष रुचि होगी कि मैं शांति वन के संगीत जो आपका डिपार्टमेंट है
1: जी, जी,
0: उसके
1: जी.
0: साथ अटैच हूँ और मैं जो भी मेरे अंदर है मैं वो
1: बिल्कुल बिल्कुल आप अपने घर से भी जुड़ सकते हैं। बाबा ने आपकी सुन ली है और ऑनलाइन भी आप जो है हमारे साथ गीत गाने के लिए जुड़ सकते हैं। रोज 5 मिनट रात को 8 से 9, ठीक है, मैं आपको जोड़ूंगा। 5 मिनट आप रोज एक गाना तैयार कर लीजिए, उसमें जोड़िएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आपने जो अनुभव सुनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका भी रुचि बन गया हो कि मुझे भी शांतिवन जाना है, तो स्वागत है आपका, आइए।
2: मेरा परिचय तो दे ही
1: दिया। जी जी जी
2: जी, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
1: हाँ,
2: मैं भी इनके साथ थोड़ा थोड़ा करती हूँ, मुझे ज्यादा नहीं आता।
1: अच्छा अच्छा,
2: फिर भी एक दो लाइन तो मैं
1: सुनाइए सुनाइए।

0: अनिल सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा कि आप अपने ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
1: मैं एक्चुअली 2015 में पहली बार मैंने शिवानी दीदी को सुना था मुंबई में, तो उनसे थोड़ा सा काफ़ी इंस्पायर हुआ था। उसके बाद अभी दिसंबर में मैं थोड़ा सा फर्स्ट स्टेशन की तरफ जा रहा था।
0: जी,
1: तो मैंने कुछ सर्च करके सेक्टर 11 में मेडिटेशन के लिए प्लान किया था। मैंने वहाँ ज्वाइन किया और कुछ एक हफ्ते की क्लास थी मैंने, और उसके बाद मेरा माइंड कूल होता चला गया। फिर ये प्लान था कि भी माउंट आबू आने का, तो वो मौका भी साथ साथ ही मिल गया। और उसके बाद फिर यहाँ आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा।
0: जी,
1: यहाँ आने के लिए
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और जिस तरह से आप कनेक्टेड हैं मुंबई से शिवानी दीदी को सुनने के बाद, आपका मन जो है इस तरफ आकर्षित हुआ, तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे सबके लिए?
1: जो मैंने यह देखा आने के बाद, या मैंने कभी एक्सपीरियंस लिया है कि अगर मन शांत है तो सब कुछ शांत है। तो शांति के लिए अगर किसी को चाहिए शांति, तो यहाँ आके जरूर।
0: क्या बात,
1: सबसे ज्यादा सबसे
0: शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत साधुवाद, अपने जीवन में इस आध्यात्मिकता को बनाए रखें और इसका आनंद उठाइए।
1: धन्यवाद।

0: बहादुर जी अपना अनुभव साझा कीजिए ग्लोबल समिट का।
1: जी मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा
0: हूँ। अरे वाह,
1: मैं यहाँ से इस राजयोगा में PhD भी कर रहा हूँ। एक बार कोर्स वर्क में आया, दूसरी बार बाबा मिलन में, अभी ग्लोबल समिट में। जितनी बार भी आऊँ
0: उतना मजा आई करता है। क्या बात है।
1: और मुझे सबसे बड़ा अनुभव इधर क्या होता है कि घर की याद नहीं आती। जब मधुबन में होता हूँ घर की बिल्कुल याद नहीं, यही आनंद।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आपका मन यहाँ लग जाता है, आप बार बार यहाँ आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही एक लगन है, परमात्मा के साथ प्यार है आपका, तो ये दर्शाता है। और एक मैसेज रेडियो सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे आप?
1: जो सुन रहे हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूँगा, एक बार मधुबन आइए, राजयोग अनुभव लीजिए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, स्वच्छ बनाइए, पवित्र बनाइए, और इस भारत को, भारत वर्ष को, भारत भूमि को स्वर्ग स्थापना करने का जो कार्य था बाबा का,
0: जी जी
1: हाथ बटाइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।

0: तो आइए नेपाल से एक और शख्सियत से आपकी बात कराते हैं। हिम्मत सिंह हेरी
1: नगर
0: नेपाल से हैं आप, तो ग्लोबल सबमिट के बारे में बताइए।
1: मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। पहले से, बहुत पहले से आने का
0: विचार था।
1: मैंने, अब टाइम नहीं मिला, हम जॉब में थे, तो आने की सोच था। तो मेरे से पहले मेरे मिसेज उन्होंने ये कोर्स करके इससे पहले अगले साल वो आके गई 7 दिन के यहाँ कार्यक्रम में।
0: अच्छा।
1: उसके बाद हमारे घर में ऐसा हो गया, तो फिर खान पीन हर चीज
0: बदल
1: गया, बदल गया, लाइफस्टाइल ही बदल गया। और सुबह शाम स्मरण करना और भजन कीर्तन सारा चीज
0: चालू हो गया।
1: तो मैंने भी ऐसे वो किया कि अब विश्व शांति के लिए जो ये राजयोग यहाँ से हो रहा है काम, तो इसमें एक थोड़ा सा हमारा भी योगदान रहे। स्कूलों में हम 30-35 साल से पढ़ा रहे हैं।
0: अरे वाह।
1: तो फिर भी जो दिन प्रतिदिन जो है उच्छृंखलता बच्चों में जो दिखाई दे रहा है, अनुशासनहीनता, फिर जो मन में लगा वो बोलना, चलना, फिरना, पढ़ाई में ध्यान देना, इसके लिए इन लोगों को जो बच्चों से ही इनको पहले हमें शांति स्थापना करना है। इसके लिए कोई न कोई सूत्र होगा, कोई न कोई फॉर्मूला होगा। इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त हो तो हम पा सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसलिए मैं बड़ा कोशिश करके यहाँ आया। तो जब यहाँ आया मैं तो मुझे लगा ये तो स्वर्ग यही है। स्वर्ग है
0: जी।
1: स्वर्ग में आके जब मैं आने के लिए सोच रहा था कैसे कहाँ क्या, जब यहाँ आया तो ऐसा लगा। वो मेरे मिसेज तो कहती थी वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं करता है, तो मैं ये क्या मजाक कर रही जैसे लग रहा था उस टाइम।
0: जी।
1: जब मैं खुद आया यहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं बैठ के सेवा करके बैठूंगी जैसा लग रहा है।
0: जी।
1: क्या करें, अब हम गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं
0: तो जाना तो पड़ेगा,
1: इसलिए ये हमारा अनुभव रहा है।
0: बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और आप अपना फ़र्ज निभाते हुए वहाँ सेंटर से कनेक्ट हो जाइए, तो ये जो सुख है वो आपके लिए हमेशा याद रहेगा। और जैसा समय मिलता है बीच बीच में छुट्टी लेकर ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति।

0: विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना अनुभव साझा कीजिए हमें।
1: देखो सर, आने से पहले ये सोच रहे थे पता नहीं वहाँ पर
0: क्या है
1: क्या नहीं है, लेकिन यहाँ आने के आज दो दिन हो गए, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और खाना है ना बहुत ही अच्छा, ऐसे सोच रहे कि इतना बनता भी कहाँ से होगा। फिर रसोई वगैरह देख के सारा देखा, बहुत ही अच्छा। और यहाँ की जो दीदियाँ जो बातें बताती है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं, जीवन में उतारनी चाहिए।
0: जी
1: के शिवानी दीदी ने बहुत अच्छा बताया, अगर वो जीवन में उतार ले तो कोई प्रकार की परेशानी मेरे हिसाब से आने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, और यहाँ का जो वातावरण देखा तो विश्व में कहीं पर भी नहीं है।
0: जी चलिए, बहुत ही सुंदर अनुभव है आपका, और मैं चाहूँगा कि इस अनुभव को क्या होता है, ये आध्यात्मिक अनुभव है, ये अनसीन एनर्जी है ना, आप बता रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होगा। चलो मैं यहाँ हूँ, हम सभी अनुभव कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि मेरा अनुभव है, लेकिन जब आप दुनिया में बताने जाएंगे तो लोग कोई भी आपके बातों पे, आप कितने भी खुशी से बताएंगे, लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो उनके कन्फ्यूज़न का असर आप पर ना हो, आपकी जो ये खुशी है इसको बरकरार रखने का, इसको प्रोटेक्ट करने का आपका काम है। तो मैं चाहूँगा कि इस खुशी को बरकरार रखें, कोई आपको सुने या माने या ना माने, क्योंकि जब हम लोग इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे तो कुछ समय के बाद लोगों को ज़रूर पता चलेगा, नहीं ये आदमी सही था। और अगर आपके कहने पर या श्री राम जैसे लोग उनको पकड़ के लेके आए तो उसके बाद उनको एहसास होगा कि अरे उन्होंने तो बहुत पहले बता दिया था, मैं कितना लेट हो गया, ये ज़रूर उनका अनुभव होगा। लेकिन यहाँ पर हमारी अपना एक बहुत सुंदर खुद पे काम करना है, खुद की खुशी को बना के रखना है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे?
1: रेडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस अनुभूति का एक्सपीरियंस कीजिए एक बार, यहाँ मधुबन आइए और फिर उसको हर जगह बताइए, हम वहाँ गए और हमारे को ये मिला, पवित्रता सब बहुत अच्छा है यहाँ पर, पीस लव हैप्पीनेस सब बहुत बढ़िया है। तो लोगों को मैं ये मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार इसका मधुबन का अवश्य
0: अनुभव कीजिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: नमस्कार, अभी महिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महिपाल जी, कैसे हैं आप? जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आपका ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस कैसा है, थोड़ा सा सुनाइए।
1: बहुत शानदार रहा सर, जैसी शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आभास यहाँ करके हुआ, और पहली बार ही मेरा आना हुआ शांति।
0: जी जी जी,
1: संस्था से मैं काफ़ी उनसे जुड़ा हुआ हूँ, आने का सहयोग नहीं बना, मगर यहाँ आकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत पहले आना चाहिए था। और एक अच्छा संदेश जो है वो बीस का आध्यात्मिक मुक्ति का ध्यान के बाद प्राप्त।
0: जी ठीक है। महिपाल जी, वैसे करते क्या आप?
1: मैं प्रिंसिपल हूँ सर स्कूल में।
0: अच्छा, कौन से स्कूल में?
1: झुंझुनू से 15 किलोमीटर दूर है हमारा, 103 साल पुराना स्कूल है, शेर सिंह हाई स्कूल।
0: अरे वाह,
1: 1922 का फाउंडेशन।
0: क्या बात,
1: 29 साल से मैं वहाँ से रहता
0: हूँ। जी जी जी, चलिए मैं चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल में भी आप इस बात को ज़रूर प्रयोग में लाइए, क्योंकि आज समय है बच्चों के, अगर हम लोग दिलो दिमाग में आध्यात्मिकता का सही परिचय दे देंगे तो उनका जीवन वैसे ही सुंदर बन जाएगा और आगे चल के वो देश के काम आएंगे।
1: जी
0: जी जी, चलिए, हमने आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आप किया है, तो ये गारंटी है कि आप जाके खाली नहीं बैठेंगे और बच्चों को निश्चित तौर पे ये अंजलि ज़रूर देंगे, ऐसी शुभ आशा के साथ बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत मंगल
1: का। बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का और
0: शुक्रिया महिपाल जी, थैंक यू, धन्यवाद।

0: आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे साथ झुंझुनू के ही गांव से जुड़े हुए हैं श्रीराम क्रीडीवाल, इनसे हम लोग बात करने वाले हैं। तो श्रीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? तो मैं चाहूँगा कि इस ग्लोबल सबमिट का जो अनुभव है वो अपने अनुभव को साझा कीजिए, ताकि हमारे रेडियो लिसनर भी इसको समझ सके।
1: सितंबर 2023 में आया था।
0: हाँ।
1: किसी कैजुअल्टी के कारण मैं जल्दी चला गया था, दो दिन के बाद ही
0: जाना
1: पड़ गया।
0: बाकी
1: ये बहुत ही सौभाग्यशाली आदमी है, कोई इस चीज का मौका मिलता है। मैंने ऐसा महसूस किया जो वास्तव में अच्छी आत्माएं उन्हीं के लिए ईश्वर यहाँ चला ही देता है। और जो आते हैं वो बहुत ही
0: लकी है,
1: अच्छे होते हैं।
0: जी जी जी।
1: और ये इसका अनुभव तो आपको क्या बताएं, बहुत ही कार्यक्रम हर एक देखने लायक, एक से सुनने लायक, एक से ग्रहण करने वाली चीज है सर।
0: जी जी जी। मुझे लगता है ज्ञान की जो बरसात,
1: क्या है कि मतलब हर क्लास मंगलवार को देखते हैं हमारे वीकली।
0: अच्छा।
1: वहाँ भी अटेंड करते हैं,
0: बहुत
1: मोटिवेट करते हैं। मैं अभी मेरे साथ में भी तीन दो बंदे हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तीनों को मैंने मोटिवेट कर दिया। किशोर जी को
0: बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, पुण्य का काम किया है। और मुझे लगता है उनके आने पर उनको अगर खुशी मिल रही तो वो खुशी का शेयर आपको भी जाए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम जी, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप हरियाणा भिवानी से बिलोंग करते हैं, और इस ग्लोबल सबमिट में आकर आपको क्या अनुभव हुआ जरूर बताइए।
2: जो भी दर्शक मेरी सलाह सुन रहे हैं, सबको पहले तो ओम शांति,
0: ओम शांति,
2: ओम शांति।
0: जी जी जी।
2: मेरा यहाँ ये दूसरी बार आना हुआ है, मैं लास्ट ईयर भी आया था, सितंबर में मानसरोवर में रुका था। और अलौकिक रूप से मेरी एक सिस्टर बहादुरगढ़ सेंटर को समर्पित है।
0: अरे वाह।
2: उन्हीं के प्रयास से मैं यहाँ आया था। यहाँ जो भी बात बताई जाती है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती उसमें।
0: जी जी जी।
2: हर बात को प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है भाई, किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती ये कैसे हो सकता है, सिद्ध कर दिया जाता है।
0: जी जी जी।
2: मैं अक्सर गीत गाया करता हूँ, सिंगर भी हूँ।
0: अरे वाह।
2: और वो दो लाइने में कहूंगा है वो इसी टॉपिक पे ही।
0: जी जी जी।
2: जान सके तो जान, तेरे मन में छुप कर बैठे, तेरे मन में छुप

0: शब्द मैंने कहे वही आज शिवानिधि जी ने समझाया मस्तिष्क पर क्या है
1: समझो
0: वही मैंने वही परमपिता परमात्मा हर जीव के अंदर विराजमान है उसकी खुद इंसान को पहचान करनी चाहिए
1: बिल्कुल
0: मैं
1: बिल्कुल।
0: आत्मा हूँ सामने वाले आत्मा है जब ये प्रयास करेंगे एक दूसरे को समझने का विश्व का कल्याण होगा अपना स्वयं का भी होगा
1: क्या बात क्या बात
0: यही हमारा ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट जो विश्व में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है यही सब बातें समझाता है इसके लिए मैं सभी बहनों का बुजुर्गों का माताओं का सबका धन्यवाद करता हूँ इतनी कोऑपरेशन देते हैं कोई भी यात्री कोई भी भाई यहाँ किसी भी भाव से आता है सबकी इतनी सेवा करते हैं इतनी कोऑपरेशन मिलती है इतना प्यार मिलता है मन करता है कि यहीं रुक जाएं लेकिन गृहस्थी जीवन है जाना पड़ता है
1: जी जी जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया बहुत बहुत साधुवाद आपको और मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा इन अनुभवों को सुनकर अन्य लोग भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और अपने आप को आत्मा समझने का प्रयास थैंक यू बहुत साधुवाद ओम शांति

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: श्री विश्वास चव्हाण आहे. मी 26 साल टीचर भविष्यवाणी वृत्त हुई आहे.
1: टीचर किन बच्चों को पढ़ाते थे आप?
0: हम 5वीं से 7वीं तक.
1: अच्छा, 5th to 7th के बच्चों को पढ़ाते थे. अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे अभी यहाँ ग्लोबल में आए हैं सबमिट में, तो यहाँ आकर आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझा आपने?
0: यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद मिला.
1: और क्या सीखा आपने, क्या नया बात सुना?
0: मैंने योग साधना कैसे होती है ये सब सीखा.

0: आइए आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। अंजना जी हमारे साथ हैं। अंजना जी बताइए अपने बारे में।
1: मैं 25 साल से ज्ञान में हूँ। पहली बार मुझे इसे जब भी बाबा का ज्ञान मिला तो मुझे बहुत ऐसे मुझे लगा कि मुझे कुछ तो नया में जो ढूंढ रही थी वो मुझे मिला है। तो मैंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया। सुबह 7 बजे मैं जाके क्लास में हो गया। उसके बाद मुझे बहुत ऐसे मधुबन आने का मुझे बहुत उत्सुकता निर्माण।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो बाबा का फोटो देखा ब्रह्मा बाबा का,
0: मैंने
1: बोला कि मुझे अभी वहाँ जाना है तो कोर्स करने के बाद जाएंगे। कोर्स किया फिर मैं फिर मधुबन में आई। तो ऐसे बीच में प्रोग्राम कुछ नहीं था, परिवार को लेके आना था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनको छोड़ के भी नहीं आ सकती थी, लेकिन मुझे मधुबन में आना था। तो मैंने क्या किया, सबको लेके आई परिवार को और अकेले निकली।
0: अच्छा।
1: मालूम तो नहीं था इधर का कुछ।
0: हाँ।
1: और आई तो बस से आई, ट्रेन का भी टिकट नहीं था। बस से आई परिवार को लेके, बच्चे छोटे थे और मिस्टर और हम चारों जन आए। फिर अहमदाबाद उतरे, अहमदाबाद से टमटम पकड़ी, टमटम से हम मेहसाना, मेहसाना से फिर अब यहाँ आए।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से हम मधुबन में पहुँचे।
0: बहुत
1: उसके बाद जाते समय हमारे पास टिकट नहीं था। फिर अभी इधर बैठे हमें बाबा के सामने उधर, तो अभी जाना है, कल जाना है, तो अभी टिकट का कुछ करना चाहिए।
0: जी।
1: तो रेलवे ऑफिस में गई अपने इधर के और उनको बोला मैंने हमें टिकट चाहिए, हमारे पास टिकट नहीं है। तो बोले क्या माता जी आप चिंता करते हो, बाबा ने तो आपके लिए ट्रेन चालू की है। और उसी दिन जो हड़पसर कुंशी ट्रेन है ना, जोधपुर हड़पसर
0: कुंशी, जी।
1: तो वो ट्रेन उस दिन से चालू हुई।
0: अरे वाह।
1: तो हम बाबा ने मेरे लिए, हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए ट्रेन चालू की। मतलब इतना बड़ा, ऐसे बड़े बड़े अनुभव, इतनी खुशी हुई कि हम ट्रेन में किधर भी बैठते थे ऐसे इतना मजा करते हम पूरा पहुंचे।
0: बहुत बढ़िया।
1: तो
0: बहुत सुंदर,
1: मुझे बहुत अच्छी
0: फीलिंग आ रही है जी। चलिए, ग्लोबल
1: मुरली में आया था कि अभी मुझे थोड़ा लगता है ना कि मैं जा रही हूँ मधुबन, परिवार को लेके जा रही हूँ। मालूम ना पहली बार के साथ है मुरली में आया। बाबा बोले कि शेर कभी डरता नहीं है, हाथी झुंड में रहते हैं और शेर अकेला घूमता है। तो और ज्यादा मुझे ताकत आई।
0: जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने अनुभव सुनाया। और ग्लोबल सबमिट में आए हैं, तो ग्लोबल सबमिट की कुछ अभी की जो बातें हैं वो बताइए।
1: तो ग्लोबल सबमिट में अभी आए हम, तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारे लोग आए हैं। इन सब लोगों से हम ऐसे नहीं मिल पाते ना, तो एक जगह बाबा ने इन सब लोगों से हमें मिलाया। बहुत कुछ बातें इन लोगों को भी नया, हम तो जानते लेकिन नए लोगों को ले आए तो उनको भी कुछ बहुत सीखने को मिला, देखने को मिला।
0: जी। अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया। बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ज्योति टेकाड़े हमारे साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: अच्छे हैं
0: जी। जी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में।
1: मैं हड़पसर में रहती हूँ। मेरे दो एक बच्चा है, वो कनाडा में पढ़ता था, जॉब हो गई उसकी, बच्चे भी हो गए उसको। अभी हम एक साथ पुणे में रहते हैं। अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। इसके पहले मैं बिजनेस बनाती थी, सब घर में बेचती थी। अभी मुझे पता चला मधुबन में कि अच्छा कार्यक्रम होता है, तो मेरी बहुत इच्छा थी मुझे आने के लिए, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड को बोला। तो मुझे बोले चलो अपन जाएंगे। वैसा तो नहीं जाने देते किसी को, ऐसे जो साधना में रहते हैं उन्हीं लोगों को ले जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में, पर मैं ले जा सकती हूँ। इसलिए हमने पहले टिकट बुक किया था।
0: अच्छा,
1: तो बीच में चीन का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, फिर से हमने कैंसिल करा दिया। उसके बाद में फिर से अभी हम बाबा का ऐसा था कि हम आए बच्चे उनके, इसलिए हमें फिर से आने के टाइम मिला और अच्छा हो गया। और यहाँ आकर मुझे आप लोगों की साफ सफाई, खाना पीना, लोगों की बातचीत करना और सब बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: जी, जी।
1: जैसे हम एक अपन गांव में दूसरे जाते हैं, मायके में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, तो उनसे भी ज्यादा मुझे यहाँ खुशी मिले कि मैं मेरे मायके में आ गई, मेरे बाबा जी का घर यानी मेरे पिताजी का घर।
0: जी,
1: आप
0: जी,
1: लोग
0: जी।
1: जैसे भाई बहन उन वो मेरे सखे ऐसे लग रहे लगे मुझे, और बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत
1: अच्छा लगा। ये कार्यक्रम बनाया तो ये भी बहुत, उसमें से हमने बहुत सीखा, बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर अनुभव सुनाया आपने। बहुत बहुत साधुवाद। और जो कुछ आपने सीखा है यहाँ पर उसे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, सेंटर पे रोज जाएं। ओम शांति।

0: मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा,

0: नमस्ते दोस्तों, अगले महीने मैं जा रहा हूँ शहर अपनी मौसी के घर। मौसी के घर से याद आया, रोशनी भी तो अपनी मौसी के घर रहने गई हुई थी। आज वो पूरे एक हफ्ते बाद स्कूल आएगी। चलो जल्दी से चलते हैं स्कूल में।
1: अरे रोशनी, तुम अपनी मौसी के घर से कब लौटी?
2: कल शाम को ही आई।
3: कल शाम को ही आई, मौसी ने खिलाई मिठाई।
2: मैं अभी आती हूँ मीना, जरा बहन जी से पूछूं कि।
1: रोशनी, बहन जी को पिछले कुछ दिनों से बुखार हो रहा है, इसीलिए वो स्कूल नहीं आ रही।
2: तो फिर पढ़ाई?
1: आजकल हमें रवि सर पढ़ाते हैं।
2: रवि सर?
1: हाँ, जब तक बहन जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हमें रवि सर ही पढ़ाएंगे। क्या हुआ रोशनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो?
2: मीना, क्या रवि सर, क्या वो बहुत गुस्से वाले हैं?
1: नहीं रोशनी, रवि सर भी बहन जी की तरह है, बहुत अच्छे। खूब हंसाते हैं।
3: खूब हंसाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं।
2: मीना, ये बांसुरी की आवाज?
1: चलो रोशनी, क्लास में चलते हैं, लगता है चमेली बांसुरी बजा रही है।
2: हाँ, चलो।

0: वाह चमेली, क्या बांसुरी बजाई तुमने। देखना इस बार प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी।
1: कैसी प्रतियोगिता दीपू?
0: रोशनी, सरपंच जी संगीत की एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं शनिवार को। हर क्लास में से दो बच्चे आपस में मुकाबला करेंगे, लेकिन हमारी क्लास में तो सिर्फ चमेली ही है। काश किसी और बच्चे को भी संगीत।
2: दीपू, बांसुरी बजानी तो मुझे भी आती है।
0: है? रोशनी, तुमने बांसुरी बजानी कहाँ से सीखी?
2: अपने मौसी जी के बेटी से। ये देखो, मेरे बस्ते में एक बांसुरी भी है।
0: बस्ते में बांसुरी रखने से कुछ नहीं होता रोशनी, बजानी भी आनी चाहिए।
2: अभी लो।

0: अरे वाह, रोशनी ने तो सचमुच बहुत बढ़िया बांसुरी बजाई। वो देखो पूरी क्लास खुश होके तालियां बजा रही है। और दीपू दीपू तो डेस्क पे खड़ा होके जोर जोर से नाच रहा है।
1: मिल गया।

0: दीपू ये क्या हो रहा है बेटा?
1: सर आप
0: डेस्क पे चढ़ के क्या कर रहे थे तुम?
1: सर वो मैं सबको बता रहा था कि रोशनी भी बांसुरी बजा सकती है तो
0: अगर तुम डेस्क से गिर जाते तो बोलो?
1: अब नहीं करूंगा सर।
2: ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास।
3: हमारा देश, तुम तो कह रही थी कि रवि सर बहन जी की तरह
4: हम बाद में बात करेंगे रोशनी, अभी सर पढ़ा रहे हैं
5: भारत के पहले प्रधानमंत्री।
6: और अगले दिन स्कूल में,
7: अरे अरे रोशनी मुझे गोल गोल घुमाना बंद करो, बात क्या है?
8: मीना मैंने माँ और पिताजी से संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति ले ली है।
7: ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है, चलो क्लास में चल के सबको बताते हैं।
9: सबको बताते हैं, बांसुरी बजाते हैं।
6: और जब मीना और रोशनी क्लास में पहुंची तो
10: और ये मैंने उड़ाया अपना कागज का जहाज।
11: सुनील अब मैं डेस्क पे खड़ा होके ये जहाज उड़ाऊंगा, देखना कितनी ऊपर जाएगा।
7: रुक जाओ दीपू, याद नहीं रवि सर ने कल क्या कहा था?
12: क्या कहा था?
7: भूल गए? रवि सर ने कहा था कि डेस्क पे चढ़ने से तुम्हें चोट भी लग सकती है, अगर तुम गिर गए तो
11: कुछ नहीं होता। ये देख सुनील, ये उड़ा मेरा जहाज।
6: दीपू का पैर फिसला और वो डेस्क से नीचे गिर गया। उसे चोट तो नहीं लगी लेकिन रोशनी के बस्ते पे गिरने की वजह से रोशनी की बांसुरी टूट गई।
8: मेरी बांसुरी?
1: रोशनी मुझे माफ कर दो, गलती से मेरा पैर तुम्हारे बस्ते पे।
13: नमस्ते सर।
2: नमस्ते बच्चों। अरे तुम रो क्यों रही हो रोशनी?
8: जी वो कोई बात नहीं सर।
2: रोशनी बिना बात के तो आंखों में आंसू नहीं आते, मुझे बताओ बेटे क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
8: सर 3 दिन बाद संगीत की प्रतियोगिता है लेकिन मेरी मेरी बांसुरी टूट गई, अब मैं क्या करूंगी सर, नई बांसुरी कहां से लाऊंगी?
2: ओह तो ये बात है। रोशनी मीना बता रही थी कि तुमने 2 दिनों में ही बांसुरी बजानी सीख ली थी।
8: जी सर।
2: चलो मैं तुम्हें जल तरंग बजाना सिखाता हूँ। मीना दीपू मेरे कमरे में कांच की कुछ कटोरियां पड़ी हैं, तुम जरा उन्हें ले आओ तो।
1: जी सर।
2: ये देखो रोशनी, ये मैंने भरा इन कटोरियों में पानी, और जब इन कटोरियों को इन 2 पेंसिलों से बजाया तो ये बन गया जल तरंग। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इसे कैसे बजाते हैं।
6: और फिर रवि सर ने अगले 2 दिनों तक रोशनी को जल तरंग बजाने का अभ्यास कराया। और मुकाबले के दिन
14: बच्चों अब सुनो इस प्रतियोगिता का नतीजा, ये प्रतियोगिता जीती है रोशनी ने। रोशनी बेटे तुम तो बहुत अच्छा जल तरंग बजा लेती हो, शाबाश।
15: सरपंच जी ये सब रवि सर के कारण हुआ है, उन्होंने ही मुझे जल तरंग बजाना सिखाया। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि रवि सर बहुत गुस्से वाले होंगे, लेकिन वो तो हम सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं।
14: रोशनी बेटे टीचर को क्लास में थोड़ा सख्त तो होना ही पड़ता है, इतने बच्चों को उन्हें अकेले जो संभालना होता है, और अगर टीचर सख्त नहीं होगा तो फिर क्लास में अनुशासन कैसे रहेगा? लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रवि सर सख्त होने के साथ साथ तुम सब बच्चों के अच्छे दोस्त भी हैं। यही तो है एक अच्छे टीचर की निशानी।
9: अच्छे टीचर की निशानी? बजाओ जल तरंग कटोरियों में भर के पानी।
6: भाई वाह, मजा आ गया। रवि सर तो सचमुच कमाल के टीचर हैं। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की प्यारी सी कविता।
7: स्कूल में जाके हमको तो ये बात समझ में आई,
9: अगर कभी टीचर डांटे उसमें भी हमारी भलाई।
6: भाई वाह, छोटी सी कविता में कितनी बड़ी बात कही है मीना और मिट्ठू ने। इसी बात पे हो जाए एक बढ़िया सा गाना।

0: क्यों दोस्तों, गाना सुन के मजा आया ना? क्या कहा, बहुत मजा आया। फिर ठीक है, थोड़ा और मजा करते हैं मीना की क्लास में खेल के।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। पंख नहीं है मेरे फिर भी मैं उड़ती हूँ अक्सर, हवा जो रुक जाए तो फिर से बैठूं जमीन पे जाकर।
3: मैं समझ गया बहन जी, सही जवाब है चिड़िया, क्योंकि चिड़िया हवा में उड़ती है। और
1: अच्छा, क्या चिड़िया के पंख नहीं होते दीपू? भूल गए। पंख नहीं है मेरे फिर भी मैं उड़ती हूँ अक्सर, हवा जो रुक जाए तो फिर से बैठूं जमीन पे आकर।
3: ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था।
1: चलो चलो शाबाश, जल्दी से सोचो।
4: क्या होगा?
5: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है रोशनी। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। ध से इसका नाम शुरू है, ल पे खत्म हो जाता, खाने में ना पड़े ये आके तभी वो ढका जाता।
6: ये पहेली तो समझ ही नहीं आ रही बहन जी, तीसरी कड़ी भी बता ही दीजिए।
1: ठीक है कृष्णा। बच्चों ये रही तीसरी कड़ी। कोई किसी को धोखा दे तो यही मुहावरा कहना, धोखा देना मतलब आँखों में क्या झोंक देना।
5: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है धूल। आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना।
1: हाँ मीना, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नटखट बंटी, पात्र परिचय। पापा के रूप में सैंडी, मम्मी के रूप में कृष्णा, बंटी के रूप में आदित्य और नरेटर शशिकांत। बंटी के पापा घर के फिजूल खर्चों से बहुत परेशान थे।
3: बिजली का बिल, फोन का बिल, केबल का बिल, पेपर का बिल, ओ मेरी तो पूरी तनख्वाह इन बिलों में चली जाती है।
4: हाँ पापा, और मेरी स्कूल की फीस में भी तो काफी खर्चा होता है।
3: हाँ बेटा, कल्चर एक्टिविटी चार्ज, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, ना जाने क्या क्या चार्ज देने पड़ते हैं।
4: पापा एक आइडिया है खर्च बचाने का।
3: वो क्या है?
4: पापा मैं अपने स्कूल से नाम कटवा लेता हूँ, काफी खर्च बच जाएगा।
3: चुप रहो शरारती बंटी, जब देखो तो पढ़ाई से बचने का तरकीब सोचते रहते हो।
4: सॉरी पापा, मैं कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ खर्च कम करने की।
3: ये हुई ना बात, खर्च बचाना ही है तो फिजूल खर्च बचाओ, ना कि जरूर की चीजों की कटौती करके स्कूल जाना ही छोड़ दो।
4: पापा ये फिजूल खर्च क्या होता है?
3: फिजूल खर्च मतलब बेवजह के खर्च, जैसे बगैर जरूरत के सामान खरीदना, टीवी फालतू चलाना, थोड़ी थोड़ी दूर के लिए गाड़ी की सवारी और मुफ्त में पेट्रोल को बेकार जलाना।
4: पापा बस मैं समझ गया, आज से इस घर में फिजूल खर्च बंद।
0: वाह बंटी, बहुत समझदार हो गए हो। मैंने गलती से गैस खुला छोड़ दिया था, तुमने फौरन बंद कर दिया।
4: हाँ मम्मी, आखिर फिजूल खर्च बचाना है।
3: बंटी जाओ गोपाल के साथ मेरे स्कूटर पर और लॉटरी से मेरे कपड़े प्रेस करा लाओ।
4: नहीं पापा, स्कूटर से पेट्रोल जलेगा और लॉन्ड्री में प्रेस कराने से खर्च बढ़ेगा, मैं घर पर ही आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ।
2: पापा ऑफिस जाते वक्त अपना नया शर्ट पहन रहे थे तभी चीख उठे।
3: ओ नो, ये मेरे नए शर्ट रोशनदार कैसे बन गए?
4: सॉरी पापा, प्रेस करते वक्त प्रेस जड़ा ज्यादा गर्म हो गई थी।
3: भाई बंटी, खर्च बचाने की तुम चिंता ना करो, वो तुम्हारा काम नहीं है, इस तरह तो तुम और भी मुसीबत बढ़ा दोगे।
0: बंटी जरा देख कर आना, काम वाली बाई क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं है?
4: नहीं मम्मी, बाई को तो मैंने मना किया है, वो क्या है कि फिजूल खर्च बचाना है।
0: ओ नो, फिजूल खर्चे के चक्कर में ये लड़का जीना ही हराम कर देगा। बंटी आज से तुम खुद की फिजूल खर्चों पर कंट्रोल करो, ना कि घर बार को डिस्टर्ब करो।
2: रात को बंटी महाराज अंधेरे में बैठकर टीवी का प्रोग्राम देख रहे थे।
0: अरे शरारती बंटी, क्या तुमने होमवर्क कर लिया और ये अंधेरे करके टीवी क्यों देख रहे हो?
4: ओ मम्मी, आपने ही तो कहा था कि खुद की फिजूल खर्चे पर कंट्रोल करो, इसलिए अंधेरा करके बिजली का बिल बचा रहा हूँ।
2: मम्मी ने समझाया कि अंधेरे में टीवी देखने से आंखें खराब होती है, और इस तरह बंटी को फिजूल खर्च क्या है ये समझाने में मम्मी पापा को काफी मेहनत लगी।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: सबसे पहले कल हमने क्लास 10th का जनरल इंग्लिश का गोल्डन रेज जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ स्टार्ट किया था और काफी उसको पढ़ भी लिया था, लेकिन जहां पे छोड़ा था वहां से आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, कल हमने ये पढ़ लिया था लास्ट में, आयोटा बोलती है कि हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माय सार्जेंट, मेरे सार्जेंट से पहले मैं खा लूं, मैं इतनी असिस्ट कैसे हो सकती हूं, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती। हैंडिंग ऊ द बुक, किताब ऊ के हाथ में देते हुए एंड सेइंग ब्राइटली, और उसको कहती है सार्जेंट ऊ आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। वो कहती है मैं आपको आदेश देती हूं कि आप तुरंत इसको खाइए। अब यहां से हमें पढ़ना था, ऊप के लिए ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है, मना भी नहीं कर सकता, दो लोग ऑलरेडी मना कर चुके हैं और कहीं मना करने की बात अगर थिंक टैंक तक पहुंच गई तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ऊप कहते हैं पहले तो मेकिंग अ फेस, अपना मुंह बनाते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हु, कौन, लेफ्टिनेंट। वो लेफ्टिनेंट आयडर को पूछते कौन, मी, मैं खाऊं लेफ्टिनेंट इसको, मैं, आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग, वो दोनों उसका अभिवादन करते हैं, उसको एकदम जैसे रहता है चने के झाड़ पे चढ़ाना, अरे फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, मार्स के सम्मान का विषय भाई, मंगल के, ये तो मंगल की प्रतिष्ठा का सवाल है, मंगल की ग्लोरी के लिए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, किसके लिए, हमारे मंगल के लिए, हमारे। अब इतना सुनते ही तो फिर एकदम बंदे में जोश आ जाता है, यस ऑफ कोर्स, हाँ ठीक है ठीक है, अनहैप्पीली, ब्रैकेट में दिखा रहे ना आपको, ब्रैकेट में लिखा अनहैप्पीली, मतलब उस जब वो स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टेज पे जब वो एक्टिंग कर रहा है तो कैसा, अनहैप्पीली यानी अप्रसन्नता से, दुखी होकर के, न चाहते हुए भी, अनविलिंगली। लेकिन वो कहता है दुखी है फिर भी इमीडिएटली तुरंत। अब ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, अपने मुंह को चौड़ा खोलता है एकदम, ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, और इधर ओमेगा और आयोटा जो है उसको सांस रोक करके एकदम दम साध करके देखते हैं भाई क्या करने जा रहा है। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर, एक किताब का एक कोना काट लेता है ऑफ द बुक, एंड पैंटोमाइम्स chewing and swallowing, और वो मुंह से कैसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो उसको चबा रहा है और निकल रहा है, chewing, chewing gum जो होता है ना उसी से बना, chewing, chew, chewing, वो उसको चबाने की एक्टिंग कर रहा है, चूसने की एक्टिंग कर रहा है, एंड swallowing और पूरा निकलने की एक्टिंग कर रहा है, और pantomimes मतलब ऐसे मुंह से वो ऐसे मुद्राएं बना रहा है, gestures बना रहा है, हाव भाव ऐसे बना रहा है, ऐसा शो कर रहा है, वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और उस समय वो अपने चेहरे को भी भयानक कर रहा है, मतलब कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है हर तरीके से, बोल तो कुछ सकता नहीं है क्योंकि थिंक टैंक सुन लेगा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। ओमेगा कुछ कहती है, वेल ऊ आप ठीक है, ऊ आयोटा, वेल ऊ क्या आप ठीक है, ऊ कफ्स, ऊ को खांसी आ जाती है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और वो उसकी पीठ को रगड़ना शुरू कर देते हैं कहीं ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए करके। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊ, थिंक टैंक क्या पूछते हैं, देखिए समझिए बात को, थिंक टैंक अब इधर बेचैन होने, वो पूछते हैं कि क्या ये स्वादिष्ट नहीं था, डिलीशियस, अच्छा नहीं लगा खाने में तुमको, पर किताब कैसे अच्छी लगेगी भाई खाने में, कोई गुलाब जामुन हो तो बात भी हो। ऊ सैल्यूटिंग दैट इज करेक्ट, उसका अभिवादन करते हुए, हाँ श्रीमान आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कहते हैं, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था, आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पृथ्वीवासी बिना पानी के कैसे इनको खाते थे इन सैंडविचेस को। कैसे समझ में नहीं आ रहा मुझे। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, अरे ये तो इतने सूखे हैं जैसे कि मंगल की मिट्टी। एज ड्राई एज द डस्ट ऑफ मंगल, एज ड्राई एज द डस्ट ऑफ मार्स, मार्शियन डस्ट, डस्ट जो धूल है वहां की उसके बराबर ही तो सूखे हैं। ड्राई नूडल। सर सर वो कहता है श्रीमान श्रीमान ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, ये तो कहना जरूरी है। बात आई बेग योर पार्डन, मैं माफी मांगता हूं, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोस सैंडविच। उसने कहा कि एक महत्वहीन, एक कम महत्व वाली बात मेरे दिमाग में घूम रही है, एक ऐसी सूचना मुझे मतलब पता चली है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसके बारे में, अबाउट दोस सैंडविचेस, इन सैंडविचेस। लेकिन कहीं थिंक टैंक नाराज नहीं हो जाए इसलिए उसने पहले क्या किया, उसको सॉरी कहा, उसने माफी मांगी। ठीक है, थिंक टैंक कहते हैं कि आई कांट बी वर्थ मच, आई इट कांट बी वर्थ मच, इसका कोई महत्व नहीं है कि सूचना कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं है, बट गो अहेड, ठीक है, कहो भाई कहो, कहो तुम भी कहो, जो कुछ कहना है कही दो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, जो भी तुम्हारा तुच्छ सा तुम्हारी पास जो जानकारी है वो दे दो हमें, तुम भी पीछे मत रहो। नूडल, वेल सर, अच्छा श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोस सैंडविचेस। उसने कहा मैंने कुछ पिक्चरें, कुछ चलचित्र इन सैंडविचेस के देखे हैं, आई नोटिस दैट, और उसमें मैंने ये पाया कि द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, पृथ्वीवासी इन्हें खाते नहीं थे, दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। अरे पृथ्वीवासी तो इन सैंडविचेस को किसी संचार में काम आने वाले उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया करते, यानी हो सकता है मोबाइल फोन की तरह, वायरलेस फोन की तरह, टेलीफोन की तरह। उसका मतलब ये था कि ये किसी न किसी कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता था। थिंक टैंक, अब ब्रैकेट में लिखा है, देखिए थिंक टैंक का जो हाव भाव उस समय हो गया है, हॉटी क्रोधित होकर के गुस्से से, नेचुरली, अरे स्वाभाविक रूप से, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरा नया अगला बिंदु था भाई, यही तो मैं कहना चाहता था, मतलब क्रेडिट खुद को लेना हमेशा। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये तो संचार के लिए हैं सैंडविचेस, आपस में बातचीत करने के काम आते हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता है। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं होता है, सैल्यूटिंग, सब अभिवादन करते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर, और सब के सब क्या बोलते हैं, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होते हैं। मीनिंग साफ सबको याद करने पड़ेंगे, देखिए अगर आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते हैं तो, और साथ में अपनी बुक को भी लेना होगा। चलते हैं आगे, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसीलिए मैं आप सबको आदेश देता हूं कि इनको सुनो, अब इनको सुनने का काम करो, ये संचार के लिए है, ये सूचना आपके आदान प्रदान के लिए, ओमेगा, लिसन टू देम, ओमेगा कहती है सुनो, आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर, आयोटा रूप एक दूसरे की तरफ पजल्ड, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है पहली क्या है, पजल्ड मतलब वो बिल्कुल, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है, लिसन टू देम, और वो बोलते हैं प्रश्नवाचक मुद्रा में, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि वो अच्छा सुनना है इनको, ठीक है। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कान में वो जो कंचे हैं वो हैं, आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा उनको सुनो, मार्शियंस वो वेरी लो और मंगलवासी बहुत धीरे से, ओमेगा इट शैल बी डन सर, ओमेगा ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, आपका जो कहना है वो तो उनको मानना ही पड़ेगा। दे ईच टेक टू बुक्स They each take two books from the case and hold them to their ears. वो अपने अपने कानों में दो दो किताबें उठाते हैं और दोनों दो दो किताबों को एक एक तरफ ऐसे ऐसे लगा लेते हैं दोनों कानों पे, listening intently. और क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो जो कर रहे हैं वो दिख रहा है स्क्रीन पर, पर्दे पर, मंच पर, ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं. आयोटा whispering to omega, omega के कान में फुसफुसाते हुए, do you hear anything? क्या तुमने कुछ सुना? क्या कहा उसने धीरे से, अरे तुमने कुछ सुना? आयोटा whispering back, आयोटा भी दोबारा कान में बोलते, nothing, कुछ नहीं सुना मैंने तो. Do you hear anything? Oop, अब वो ऊप से पूछते, अरे ऊप तुमने कुछ सुना? ऊप लाउडली थोड़ा जोर से, not a thing, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. Omega and आयोटा जम इन फ्राइट, डर के मारे उछल पड़ते हैं, अरे कहीं थिंक टैंक ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगा. ओमेगा एंड आयोटा श ह ह, मतलब डर गए वो एकदम बुरी तरह से. दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं. सुनना जरूरी है वरना थिंक टैंक कह देंगे कि ये क्या हो रहा है भाई. थिंक टैंक, वेल अच्छा वेल, रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर, मुझे बताओ क्या सुना भाई तुम लोगों ने, आपस में सुन लोगे क्या? ओमेगा, नथिंग सर, कुछ नहीं श्रीमान, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, उसने कहा शायद हम ठीक जगह पे नहीं है. आयोटा, नथिंग सर, नहीं नहीं नहीं श्रीमान, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, अरे हमारे जैसे कान है उससे कई गुना जो पृथ्वीवासी उनके कान तेज हुआ करते थे, शार्पर. आई डोंट हियर एनीथिंग, आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है. मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, फिर उसने ये भी जोड़ दिया साथ में कि क्या पता ये जो सैंडविच है वो आवाज ही नहीं करते हों, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. थिंक टैंक, व्हाट, अब थिंक टैंक ने कहा क्या, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, अच्छा तो कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है क्या, कि कोई ये कहना चाहता है कि भाई जो शक्तिशाली थिंक टैंक है उन्होंने कोई गलती की है. ओमेगा, ओ नो सर, नो नो सर, ऐसा कैसे कह सकते, नहीं नहीं श्रीमान बिल्कुल नहीं. वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनेंगे, हम सुनना जारी रखेंगे, एक्चुअली कीप लिसनिंग, हम सुनने का प्रयास करते हैं, करेंगे. नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, माफी मांगना जरूरी है भाई, मुझे माफ करिएगा बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिमानों के बुद्धिमान, इसको कह रहा है थिंक टैंक को, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड, उसने कहा कि एक छोटी सी सूचना मेरे दिमाग में घूम रही है. ठीक है, कोई ना कोई सूचना हमेशा, देखो थिंक नूडल अच्छी बात करता है, काम की बात करता है. थिंक टैंक, वेल ट्विरल इट आउट, ठीक है घुमाओ बताओ उसको, हमें भी सुनाओ ऐसी कौन सी सूचना है. नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई फॉर यू, मैं तुम्हें उसको स्पष्ट करके बताऊंगा, मैं तुम्हारे तुम्हें मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा. नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट, उसने कहा कि मुझे ऐसा याद आता है कि द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, उसने कहा कि ये जो पृथ्वीवासी थे इन सैंडविचेस को सुनते नहीं थे. दे ओपन देम, वो इनको खोलते थे एंड वॉच्ड थे और इनको देखते थे. थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, सही है. आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं अब तुम्हारे लिए इसको स्पष्ट कर देता हूँ कैप्टन ओमेगा. कैप्टन ओमेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, Those sandwiches are not for ear communication. ये जो सैंडविच है वो कानों से सूचना के आदान प्रदान के लिए नहीं है, कानों से सुनने के लिए नहीं है, संचार के लिए नहीं है, they are for eye communication. अरे ये तो आंखों के काम के हैं, ये तो आंख से देखने वाले हैं, कम्युनिकेशन. तो नाउ अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच, अब वो बहुत बड़ा, देखो ओवर देवर देयर, वहां पर वो जो इधर इशारा करता है, बोलता है कि देखो वो बहुत बड़ी एक किताब रखी हुई है, उसको पढ़ो और मुझे बताओ कि

क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर मुझे ये बताओ। इट अपियर्स टू बी इम्पोर्टेंट, उसने कहा कि मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, मुझे बताओ कि तुमने क्या महसूस किया। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, एक बुक का नाम है मदर गूस, आप लोग सर्च करिएगा एक बार, तो फिर मैं बताऊंगा कल इसके बारे में। मदर गूस होल्डिंग इट सो दैट, उसको इस तरह से उन्होंने पकड़ा उस किताब को, बुक का नाम क्या है मदर गूस, कि द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उस तरह से उन्होंने हाथ में लिया कि जो दर्शक हैं सामने बैठे हुए वो भी इसका जो शीर्षक है टाइटल है उसको देख सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट, आयोटा अपनी बाईं तरफ, उसके बाईं तरफ कंधे की तरफ देखते हैं, एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ऊप कहाँ है उसके दाईं तरफ। ये कहानी होती है। अब ये मदर गूस बुक का क्या चमत्कार है, इसका क्या होने वाला है, ओमेगा क्या कहती हैं, सीखने का प्रयास करते हैं हम सब के लिए। सीखने का जो जो क्रम है वो कभी खत्म नहीं होता है, और हमें सबको सीखना है कुछ ना कुछ, आपको भी मुझको भी हम सबको। तो आज के लिए यही, और जो आप चाहें वो सवाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।

0: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: डिटेक्टिव गोपीचंद।
2: क्या बात है वर्मा, बड़े परेशान लग रहे हो।
3: क्या बताऊं गोपीचंद, मेरे साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटी है। मैं और मेरी पत्नी 3 हफ्ते के लिए छुट्टी पर गए हुए थे। हमने अपनी चाबियां पड़ोसी के पास छोड़ रखी थी। लौटकर देखा तो घर में कई कीमती चीजें गायब थी।
2: आपके पड़ोसी का इस बारे में क्या कहना है।
3: उन्होंने कहा कि हमारे जाने के एक दिन बाद हमारे घर एक डिलीवरी वैन आई थी। ड्राइवर ने पड़ोसी को बुलाकर कहा कि वह मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया अलमारी छोड़ने आए, इसलिए पड़ोसी ने मेरे घर का दरवाजा खोलकर हमारी अलमारी हॉल में रखवा दी।
2: क्या आपके पड़ोसी भी अलमारी रखवाने अंदर गए थे।
3: जी नहीं, वे दरवाजे पर खड़े होकर ही नजर रख रहे थे। जैसे ही डिलीवरी वालों ने सामान अंदर रखा, मेरे पड़ोसी ने दरवाजा लॉक कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद वह डिलीवरी वैन दोबारा लौटी और उसके ड्राइवर ने कहा कि गलती से किसी और की अलमारी उन्होंने हमारे घर रखवा दी है। हमारे पड़ोसी ने दोबारा ताला खोला और उनके जाने के बाद फिर से लॉक लगा दिया। ये रहे हमारे पड़ोसी मिस्टर पंकज। पंकज, ये है डिटेक्टिव गोपीचंद। मैं अभी अभी इन्हें अलमारी चोरी होने की बात बता रहा था।
4: मुझे बेहद अफसोस है कि मैं अपने दोस्त के घर की निगरानी ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने एक पल के लिए भी उन लोगों को अपनी नज़र से अलग नहीं होने दिया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया।
2: पुलिस क्या कहती है इस बारे में।
3: उन्हें अभी तक कोई भी सुराग हासिल नहीं हुआ।
4: कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
3: आपका क्या कहना है गोपीचंद।
2: मेरा शक तो डिलीवरी वालों पर ही जाता है।
3: लेकिन कैसे।
2: इट्स वेरी सिंपल, उन्होंने अलमारी में किसी को पहले से ही बंद कर रखा था, ताकि जैसे ही आप घर लॉक करके चले जाएं, वह आदमी अलमारी से बाहर निकलकर सारी कीमती चीजें चुरा कर दोबारा अलमारी में बंद हो जाए। अब आप समझ गए ना।
5: और इस तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्टिव गोपीचंद ने एक और केस सॉल्व किया।

से बालीनाथ जी की टोनी में चल जावे जब कहीं बात बने। देखो रामदेव जी झोंपड़ी में कुटिया में

d'accord ?

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: राघव, तुम्हें पता है मैं तो बहुत कार्टून्स देखती हूँ। तुम देखते हो कार्टून्स?
2: हाँ, मैं भी देखता हूँ।
1: शिक्षा, तुम देखती हो?
3: हाँ, मुझे भी कार्टून बहुत पसंद है।
1: कौन कौन से पसंद है?
3: मुझे तो सभी कार्टून पसंद है।
1: कुछ नाम तो बताओ।
3: डोरेमोन मेरा फेवरेट कार्टून है।
1: राघव, तुम्हारा?
2: मेरा भी सब फेवरेट कार्टून है।
1: अरे नाम तो बताओ।
2: डोरेमोन, ऐसे ही।
4: ये क्या बातें हो रही हैं? आप लोग को सबको लग रहा है कार्टून देखने का मन कर रहा है।
1: हाँ जी दीदी,
4: कार्टून्स को याद कर रहे हो इसीलिए?
1: हाँ दीदी।
4: वैसे बच्चों को तो कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं, सबको पसंद होते हैं, बट सबके फेवरेट अलग अलग होते हैं ना। क्या है,
1: कई कई बार एक फेवरेट हो जाता है, मतलब
4: फिर चेंज हो जाता है।
1: हाँ
4: ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, सबकी मेमोरीज को ताज़ा करते हैं और कार्टून्स के बारे में ही बात करते हैं आज बच्चों की दुनिया में। ठीक है, करेंगे बात?
1: हाँ जी।
4: तो बहुत मजा आने वाला है आज तो, मुझे लग रहा है, क्योंकि कार्टून्स तो बहुत इंजॉय करते हैं हम सब। बचपन में हमने भी किया, अभी आप लोग भी करते हो। तो कौन कौन है हमारे साथ, एक बार हमारे दोस्तों को आपका नाम तो बता दीजिए।
2: मेरा नाम राघव है, मैं 6th class में हूँ।
3: मेरा नाम शिक्षा है, मैं 10th class में हूँ।
1: मेरा नाम शिवांशी है, मैं 10th class में हूँ।
4: ओके, तो शिवांशी, शिक्षा और राघव, कार्टून सुनते ही क्या याद आता है आपको?
1: डोरेमोन।
4: ओके,
2: शिनचैन। डोरेमोन और पोकेमोन।
4: पोकेमोन, पोकेमोन तो हमारे बचपन में भी आता था
1: दीदी। उस टाइम तो ना उसकी ग्राफिक्स इतनी अच्छी थी, मैं भी देखती थी। बट अब ना इतनी गंदी ग्राफिक्स करी, जैसे खिलौने होते हैं ना, ऐसे खिलौने चल रहे होते हैं ऐसा लगता है। हर एक अब कार्टून की, पहले जिनकी ग्राफिक्स जितनी अच्छी थी ना, अब उतनी गंदी कर दी है, देखने में भी मजा नहीं आता।
4: मतलब पहले ज्यादा अच्छा लगता था आपको?
1: हाँ जी, अब नई वाली ग्राफिक्स में ना ऐसे लगते जो डॉल्स होती है ना, बस चल रही है,
4: वो डॉल्स को चला रहे हैं।
1: और आवाज भी इतनी अलग अलग कर दी है।
4: अच्छा, ओके। हाँ राघव।
2: दीदी, मैं तो जब टीवी पे चलाता हूँ तो मेरी किस्मत अच्छी होती है, इसीलिए पुराने वाले आते हैं।
4: आपको पुराने, मतलब कितने पुराने वाले अच्छे लगते हैं?
2: मतलब ज्यादा पुराने नहीं अच्छे लगते,
4: मतलब 2-3 साल पुराने, पहले वाले ये और पुराने एकदम,
2: मतलब जब उनकी ग्राफिक्स अच्छी थी तब अच्छे है।
4: ओके,
2: वो वाले
1: मतलब 2020 से पीछे वाले जितने भी ना, सारे अच्छे। 2020 के बाद ग्राफिक्स उन्होंने चेंज कर दिया, पहले उन्होंने ज्यादा हाई ग्राफिक्स करी, फिर उसके बाद और हाई करने के चक्कर में सारे खिलौने ही बन गया।
4: तो मतलब वो फिर इतना मजा नहीं आता
1: पहले वाले में, बहुत
4: पहले वाले में
1: जैसे थोड़ा थोड़ा ब्लर होता था ना, तो देखने में मजा आता था।
4: अच्छा,
1: कब ठीक होगा, तो ऐसे इंटरेस्ट भी आता था पीछे। अब तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता,
4: टॉयज जैसा लगता है अभी।
1: हाँ
4: ओके, शिक्षा आपको क्या लगता है?
3: दीदी, मुझे तो कार्टून अभी भी अच्छे लगते हैं।
4: कार्टून्स अच्छे तो लगते हैं क्योंकि उसमें स्टोरी भी होती है, वो फनी भी होते हैं।
3: हाँ।
4: है ना, और एक्शन भी होता है किसी किसी कार्टून में तो। हाँ
2: दीदी, वो पोकेमोन में है ना, कभी पहले तो ऐसे मतलब जब गिरते थे ना, और जब कोई थंडर शॉक मारता तभी बेहोश होते थे, अब तो ऐसे ही वो खड़े खड़े ही बेहोश हो जाते हैं,
4: खड़े खड़े बिना कुछ ऐसे किए हुए।
2: हाँ दीदी,
4: उसमें वो भी होता था ना, पिका पिका पिकाचू।
2: हाँ
4: हाँ, तो वो एक दूसरे को फाइट करते हैं ना।
2: हाँ,
4: कौन सा वाला फेवरेट लगता है पोकेमोन आप लोगों को?
1: चार्लीजार्ड।
4: ओके,
2: पिकाचू।
4: पिकाचू। राघव को कौन सा अच्छा लगता है? इतने सारे देखते हो आप।
2: मुझे सब अच्छे लगते हैं, बस पिकाचू और सब लेजेंडरी पोकेमोन।
4: लेजेंडरी पोकेमोन,
1: पहले लेजेंडरी पोकेमोन का कुछ पता ही नहीं था पोकेमोन में, अब तो गॉड पोकेमोन, मून पोकेमोन, स्पेस पोकेमोन, इतने पोकेमोन है।
2: दीदी, पहले ना पता नहीं होता था, जब ऐसे छोटे छोटे पोकेमोन के सामने वो बड़े आ जाते थे ना, तो लगता था ये कौन से आ गए, मतलब हमको लगता था कि वो इनके एनिमीज हैं, फिर हमको बाद में पता चला कि वो लेजेंडरी पोकेमोन थे।
4: ओके, तो अच्छा अच्छा ये बताओ मुझे, इतने सारे कार्टून्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं ना दिन भर में, तो उसमें से किसी का कोई एक डायलॉग है जो आप बोल सकते हो, जो बहुत बार बोलते हैं?
3: दीदी, शिनचैन में एक डायलॉग है, वो बोलता है, जब भी उसकी मम्मी उसको डांटती है ना, तो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो.
4: अच्छा, जब डांट पड़ती है तब बोलता है. अरे बाप रे.
1: और दीदी जब वो घर पे आता है ना, तो वेलकम होम बोलता है अपनी मम्मी को.
4: अच्छा,
1: शिनचैन जब घर पे आ रहा है वो कहता है वेलकम होम मम्मी.
4: अच्छा, मम्मी को भी वेलकम होम कर देता है. मम्मी तो पहले ही होम में होती है. ओके, आपको याद है कोई शागुफ? नहीं याद आ रहा, अभी बाद में याद करके बोल देना, ठीक है?
2: मैं इतना शिनचैन नहीं देखता ना.
4: नहीं, कोई भी और कार्टून, कोई भी एक ऐसे लाइन आपको याद हो तो.
1: दीदी टीटू में ना जो उसके पापा है, उसके पापा कहते हैं कि इस घर में मेरी चलती है, बस ऐसा मुझे ही लगता है. हर बार इतने भी एपिसोड है उनमें ये लाइन तो हमेशा आती है.
4: इस घर में मेरी चलती है, ऐसा मुझे ही लगता है.
1: हाँ,
4: मतलब उनकी चलती नहीं है.
1: और उसकी मम्मी कहती है, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना.
4: ओके. हाँ शिक्षा
3: दीदी, सभी कार्टून में ना डायलॉग सुन के मजा आ जाता है और हाल याद हो जाते हैं. अब टीटू के दोस्त भी अपना अपना डायलॉग बोलते हैं. और उसमें उसका दोस्त है एक, उसका नाम गन्ना प्रसाद है. अच्छा. नाम ही उसका ऐसा, उसके सिर पर बस मक्खी घूमती रहती है
4: हमेशा.
1: जब भी वो बोलता है ना, मधुमक्खियां आ जाती हैं
4: जब भी बोलता है. अरे बाप रे,
1: क्या
4: नाम भी बड़े फनी फनी होते हैं ना. कोई बात नहीं,
2: नहीं
4: भी बोलोगे तो चलेगा, कोई ऐसा बात नहीं. तो ये नाम भी बड़े फनी फनी होते हैं ना.
2: हाँ दीदी.
4: तो मतलब आप लोगों को फनी कार्टून अच्छे लगते हैं.
2: हाँ.
1: दीदी मोटू पतलू में भी है एक. मोटू का है, खाली दिमाग मेरे दिमाग की बत्ती ही नहीं जलती.
4: ओ बाप रे.
2: दीदी घसीटा राम का है कि ना, 24 साल का तजुर्बा है मुझे,
4: ऐसा बोलता है.
1: ऐसे वो तो मुझे तो इस काम में
2: 20 साल का तजुर्बा
1: है.
4: ओके. और वो होता है सच में कि नहीं होता है?
1: नहीं, वो उससे काम कभी नहीं होता, बस तजुर्बा है,
4: केवल तजुर्बा होता है.
2: दीदी कोई भी काम हो ना, बस मुझे तो इस काम में कोई भी काम हो, जैसे गड्ढा भी खोदना हो, मुझे तो 20 साल का तजुर्बा है, अभी गड्ढा खोद देता हूँ.
4: हाँ, और कर नहीं पाता उसके बाद.
2: कर पाता नहीं है.
4: इसीलिए हंसी आती है ना.
2: हाँ.
1: और दीदी डॉक्टर झटका भी ऐसे, ओ मेरे प्रा दिलदारा.
4: उसके स्टाइल में हंसी आती है ना, उसके बोलने के तरीके में.
2: दीदी.
4: हाँ जी.
2: नोबिता रोज आके बोलता है, डोरेमोन जियान ने मुझे मारा.
1: दीदी दीदी दीदी मोटू पतलू का भी है वो इंस्पेक्टर चिंगम का. चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल, तुम्हें हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, रुको. कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं.
2: जी,
1: और जब भी वो गन शूट करता है, नारियल गिर जाता है, चाहे ऊपर पेड़ ना हो.
4: अच्छा
2: दीदी, वो फिर ऐसे हाथ
4: कहीं से गिर जाता है नारियल,
1: कहीं से भी.
2: दीदी वो ऐसे हाथ आगे करता था, उसके एकदम हाथ पतले होके उस चोर को पकड़ के इधर ले आते हैं पास में.
4: वाह, कानून के हाथ है ना. बहुत ही लंबे हो रहे हैं लग रहा है. अच्छा, आप लोगों ने कुछ बहुत और पुराने कार्टून्स देखे हैं? जैसे पहले कौन से आते थे? ऑसवर्ल्ड आता था, नॉडी आता था, ऐसा कुछ देखा है कभी आप लोग?
2: ओगी एंड द कॉकरोचेस देखा है.
4: उसमें क्या होता है?
2: मतलब एक कैट होती है और 3 कॉकरोच होते हैं. वो कॉकरोच है ना, वो कैट को परेशान करते रहते हैं.
4: ओके. कॉकरोच, लेकिन कॉकरोच तो ऐसे देखते हैं बाहर तो अच्छे लगते हैं ना, या बाहर ठीक लगते हैं इंसेक्ट्स?
1: वो रंग बिरंगे कॉकरोच है.
4: अच्छा,
1: पिंक येलो और ग्रीन,
4: तो वो अच्छे लगते हैं. ओके.
2: दीदी उन तीनों का नाम भी है
4: क्या?
2: छगन मगन गगन.
4: छगन मगन गगन,
2: तीनों कॉकरोच का नाम है.
4: वाह, तो वो लोग भी क्या मतलब कुछ फनी फनी बोलते रहते हैं?
2: नहीं, वो परेशान करते रहते हैं पूरे टाइम, खाना चुरा लेते हैं फ्रिज में से.
1: ओगी को परेशान करते हैं, ओगी जो काम कर रहा होगा ना उसका काम खराब करके आएंगे.
4: अच्छा
2: दीदी, मैं एक और कार्टून देखता हूँ, उसका नाम है ओ बचम्मा. वो जब कान के मैल निकालता है ना, तो उसके अंदर से भी सोना निकलता है.
1: अरे उसमें ऐसे बता रहा है कि उसके पापा बहुत बिलियनर मिलियनर है, मतलब उनके घर में जो खाना बनता है वो भी मिलियंस का आता है.
4: अच्छा.
1: तो पैसों वाला थोड़ा वो है.
4: अच्छा, बहुत
1: फनी फनी भी है.
4: हाँ, ओके.
1: जो बच्चा है वो पैसे वाला भी है और फनी भी है. हर बात पे कछुओं पे चलता है वो. कछुओ पे चढ़ के उनकी राइड करता है.
4: कछुए की राइड करता है. वाह, कछुओ की राइड तो करना वैसे तो.
2: दीदी उसके साथ एक और बच्चा अमीर है. वो है ना, मतलब वो दोनों कंपटीशन करते रहते हैं, मेरे पापा ज्यादा, फिर लास्ट में वो ही जीतता है.
4: कौन?
1: ओबजामा.
4: वो ही सबसे ज्यादा होता है रिच. उसके जैसा कुछ करने का मन करता है क्या जो वो करता है वो कार्टून्स में ऐसे कछुओं की राइड और पता नहीं क्या क्या कभी कुछ करने का मन करता है?
2: दीदी उनका एक गरीब दोस्त है, मतलब वो ना चप्पल नीचे से घसी होती है वो डालता है, आधे कपड़े डालता है
4: तो कुछ
1: और एक बार तो ऐसा था कि ओबो चामा कहीं घूमने चला गया अपने पापा को बिना बताए, उसके पापा ने मिलिट्री कर दी खड़ी, मेरे बच्चे को ढूंढ कर आओ, मेरे बच्चे को ढूंढ कर। उस सीन पे बहुत हंसी आई, बच्चा घूमने गया उसको घूमने जाने दो, उसके पीछे मिलिट्री लगा रहे कि हाँ वो क्या क्या कर रहा है मुझे बताओ, कहाँ जा रहा है मुझे बताओ। उसके पापा भी बहुत फनी,
4: पापा भी फनी है ना, और डर गए, डर जाते पापा की क्या मतलब मेरे बच्चे,
1: वो इकलौता ही बेटा है ना उसका,
4: इसलिए। तो ऐसा कोई कार्टून है जो जिसकी तरह आपको लगता है कि ये काश हम भी कर पाते तो बड़ा मजा आता?
2: दीदी डोरेमोन है, पोकेमोन है, बेंटन है, ऐसे ऐसे ही हैं।
4: तो क्या करने का मन करता है जो वो करते हैं वो रियल लाइफ में आपको करने का मन करता है, ऐसा कुछ है?
1: दीदी निंजा हथौड़ी है, उसमें जैसे रात को बच्चे नाइट स्टे करते हैं ना अपने दोस्तों के घर, वो करने का मन करता है कभी कभी।
4: अच्छा ओके,
1: जैसे वो एक दूसरे के घर जाते हैं उधर रह के खाना खुना खा के आते हैं,
4: मस्ती करते हैं,
1: मस्ती करते हैं एक साथ रात को, वैसा कभी कभी लगता है हाँ हम भी कभी करें,
4: वैसा करने का मन करता है, हाँ होता है। ओके और
2: दीदी निंजा हथौड़ी में जैसे वो क्राइम पकड़ाता है ना निंजा बनके, तो वो भी हमको अच्छा लगता है, वो कभी कभी करने का मन कर, जैसे कोई क्राइम करता है तो हम उसके पीछे ऐसे तेजी से जाए और उसको पकड़ लें।
4: कोई ऐसे कुछ गलत कर रहा है तो उसको पकड़ लेना, इतनी पावर पावर होनी चाहिए, ऐसे ऐसा मन करता है करने का, वेरी गुड। ये तो वैसे पावर, आप तो किसी को क्राइम करते हुए पकड़ना है तो आप बड़े होकर पुलिस भी बन सकते हो, क्या लगता है राघव? बनना है, सोचना पड़ेगा अभी, अभी तो बहुत छोटा हूँ मैं, है ना, है राघव? ठीक है, बड़े होकर सोचना। हाँ आपको
3: दीदी डोरेमोन देखती हूँ ना तो उसमें वो बैम्बू कॉप्टर से उड़ता है, मेरे को तो उसी से उड़ने का मन होता है, किसको सिर पर लगा के पूरे में घूमू मैं उड़ती हुई।
4: अच्छा वो सर पे एक गैजेट फिट करते थे ना, उससे उड़ सकते हैं।
2: दीदी डोरेमोन के पास कई सारे गैजेट्स होते हैं पर उनमें से कई ज्यादा डेंजरस, मतलब वो अच्छे नहीं लगते, जो मतलब थोड़े कम डेंजरस होते हैं वो अच्छे लगते, जैसे बैम्बू कॉप्टर, एनीवेयर डोर है, एक उसके पास दो पैन होते हैं, वो ब्लैक होल और वाइट होल, तो उससे अंदर जा सकते हैं, जब तक कोई वाइट पैन से ना होल नहीं बनाएगा तब तक अब बाहर नहीं आ सकते। तो
4: उसके अंदर करते क्या है लेकिन, फिर
2: उसके अंदर अपन सामान भर के फिर दूसरा वाइट होल बनाते हैं उधर से सामान वापिस, पर कभी अगर हम उसके अंदर चले गए और अपने पास वाइट पैन नहीं है तो कोई हमको बाहर ही नहीं निकाल सकता।
4: बाप रे, तब तो मुश्किल हो जाएगी
2: क्योंकि पैन तो अपने पास है ना।
4: ओके
1: दीदी फनी कार्टून तो देखने में मजा आता है पर जब उनके हॉरर एपिसोड्स आते हैं ना उनको देखने में तो बहुत ही मजा आता है।
4: फनी के हॉरर भी होते हैं?
1: हाँ जी, डोरेमोन का है, शिनचैन का है।
4: हाँ।
1: और मतलब अभी तो मैंने इन दोनों के ही देखे और किसी के नहीं देखे।
2: दीदी मैंने निंजा हथौड़ी के देखे हैं
4: हॉरर एपिसोड्स, तो उसमें डर नहीं लगता फिर आप लोगों को ऐसे देखने में?
2: नहीं दीदी, पर उसमें मैंने निंजा हथौड़ी का एक एपिसोड था उसमें वो सब मतलब अफवाह फैली थी कि ना रात को उधर भूत आता है, तो ना उन चार दोस्तों ने जाने का प्लान किया तो वो सब गए, तो वो ऐसे गिनते रहे फिर
1: उसमें ऐसे था कि सीढ़ियाँ गिननी थी।
4: अच्छा।
1: कह रहे थे कि दिन में सीढ़ियाँ 11 होती है पर रात को 12 होती हैं।
4: अच्छा।
1: तो रात को फिर एक सीढ़ी किसी ने एक्स्ट्रा लगा दी, जिसकी एक बिल्ली थी ना, एक जो उसका फ्रेंड था उसकी बिल्ली थी, वो बिल्ली ने ऊपर अपने वो रख लिया और 12 सीढ़ियां हो गई।
2: दीदी 12 नहीं थी,
1: 12 नहीं हुई, वो 13 ही हुई। उसके बाद ऐसे ही और कुछ था कि रात को पियानो बजता है, भूत घूमता है, वो बाहर आए स्कूल के तो उन्होंने एक फोटोग्राफ खींची और फिर जब सुबह फोटोग्राफ मिली तब पता लगा उनमें से एक दोस्त तो बीमार थी, वो तो घर पे थी, और लास्ट वाला रिचुअल ये था कि दोस्त बन के आता है वो भूत।
4: अच्छा।
1: तो फिर ऐसा था,
4: ये तो काफी खतरनाक था।
1: और डोरेमोन का भी ऐसा था कि ऐसा आया था कि जिस दिन डोरेमोन के क्रिएटर की डेथ हुई थी उस दिन रात को 12 बजे के करीब ऐसा एक एपिसोड आया था कि ग्लोब है, ग्लोब के अंदर से खून निकल रहा है, नोबिता और डोरेमोन जा रहे हैं, उनके चीखने की आवाजें आ रही हैं।
4: अच्छा।
1: और जिस दिन डेथ हुई थी ना उसके बाद ये चला था, बल्कि एपिसोड बनाया भी नहीं था ये।
4: अच्छा।
1: और दीदी इंटरेस्टिंग बात तो ये है, 21 सितंबर 1961 को उसकी डेथ हुई और 21 सितंबर 2010 को मैं हुई,
4: डेट सेम है आपकी।
1: हाँ
4: ओके, तो ये जो कार्टून्स है
2: दीदी ये भी हो सकता है कि इसके अंदर वही वाला डोरेमोन का कैरेक्टर हो।
4: अच्छा शिवांशी के अंदर लगता है आपको ये डोरेमोन जैसी?
1: मेरे पास भी दीदी एक पॉकेट होगी, मैं निकालूंगी हेलीकॉप्टर।
2: दीदी वो जो था ना जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके रूम में कोई उसको परिवार को देने के लिए उसकी आखिरी वो कोई चीज होती है ना वो देखने गए थे तो उनको मतलब टाइम मशीन दिखी थी, वो बिग लाइट और स्मॉल लाइट एनीवेयर डोर ये सब उधर गैजेट्स पड़े थे डोरेमोन के, तो सबको लगता है कि वही नोबिता था।
4: अच्छा मतलब वो कार्टून के एपिसोड की बात कर रहे हो आप?
2: कार्टून के एपिसोड के नहीं असली की बात है।
4: अच्छा
2: मतलब उसने एनीवेयर डोर पकड़ के उसने बोला मैं अपने घर चला जाऊं तो उसने खोला और वो अपने घर पहुंच गया सीधा।
4: तो ये सारी बातें लेकिन सुनने सुनने में आती है ना, अभी कुछ ऐसा कंफर्म तो नहीं होता है।
2: दीदी कंफर्म है।
4: कंफर्म मतलब कंफर्म किसको बोलते हैं?
2: दीदी उसका नाम भी हिंदी में नोबिता ही है।
4: अच्छा ओके।
2: दीदी उसने मिस्ट्री बताई थी अपनी कि डोरेमोन मेरे साथ ही रहता है, ये बचपन में वो मेरे साथ ही था।
4: ओके ठीक है। देखो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसको कई बार क्या होता है कोई सिर्फ किसी के कहने पे हम सच है पूरी तरीके से नहीं मान सकते, लेकिन उसके पीछे रिसर्च होती है, उसके पीछे लोग प्रूफ्स इकट्ठा करते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन सब बातों को हम कभी भी जब तक प्रॉपरली रिसर्च्ड न्यूज़ नहीं बनती है तब तक हम 100% नहीं कह सकते। तो इस बारे में भी बात करेंगे हम लोग कभी कभी, फिलहाल कार्टून्स के बारे में बात कर रहे हैं। और कार्टून्स आपकी फेवरेट्स कौन सी है तो आपने बताया, कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को लगती है कार्टून्स में? अच्छा फ़नी कार्टून्स तो बात किए, और जो फाइटिंग वाले कार्टून्स होते हैं वो कैसे लगते हैं जिसमें लड़ाई होती है, गन्स होते हैं, ऐसे कोई कार्टून्स भी होते हैं?
3: हाँ होते हैं।
1: होते हैं दीदी।
4: देखते हो आप लोग? मज़ा नहीं आता या फिर
1: ज़्यादा मज़ा
2: दीदी,
1: नहीं
2: दीदी मुझे आता है।
1: हर बार जो हीरो होता है वो लड़ता है फिर जीत जाता है, लड़ता है फिर जीत जाता है,
4: यही होता रहता है ना।
1: और क्या पता ही है, हीरो ही जीतेगा। अगर मान लो कभी हार गया तो दूसरी बार वापस लड़ाई करने जाएगा तो वापस
4: फिर जीत जाएगा,
1: पता है हीरो ही जीतेगा, तो देखने का क्या फायदा?
4: क्या फायदा
2: दीदी मैं ऐसी चीजें नहीं देखता फालतू की। उसमें क्या होता है कि ना वो पहले हीरो के पास कुछ नहीं होता तो वो ऐसे पंच से लड़ता है, फिर वो हार जाता है, फिर उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है, फिर वो मर भी जाता है। उसके बाद उसको किसी ने जिंदा किया तो उसने बोला कि अब मेरे को इससे बदला लेना ही पड़ेगा वरना ये पूरी। ऐसे ऐसे कार्टून देखता हूँ मैं।
4: ऐसे वो वापस से आते हैं
2: मतलब वो कार्टून नहीं होते, वो एनीमे होते हैं।
4: एनीमे होते हैं ओके। और शिक्षा आप देखते हो ऐसे फाइटिंग वाले?
3: नहीं दीदी मुझे मजा नहीं आता ज्यादा।
4: मजा नहीं आता ना,
3: वो तो बस फनी कार्टून में मजा आता है।
4: हाँ फनी तो बहुत इंजॉय करते हैं, तो आपको थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं ऐसे। क्या अच्छा लगता है उसमें
2: दीदी? मैं गन्स वाले नहीं देखता। जैसे कि किसी के पास वॉच होती है और वो उसे किसी भी एलियन के डीएनए मिला के वो कोई भी एलियन बन सकता है।
4: ओके। मतलब उसमें बहुत सब वो होता है ना कि क्या होगा आगे, सस्पेंस होता है।
3: हाँ दीदी ये वाला कार्टून देखने में तो मजा आता है, उसमें एक कैरेक्टर है गोयन में को तो वो अच्छी लगती है, इसलिए मेरे को वो कार्टून पहले देखती थी, अब तो नहीं देखती, अब तो बस फनी कार्टून ही ज्यादा पसंद है।
4: कभी कभी किसी कैरेक्टर की वजह से भी कार्टून अच्छा लगता है।
3: हाँ।
4: कि उसमें ये है तो बहुत मजा आता है। ओके तो आप लोग को क्या अच्छा कोई ऐसा कार्टून है जिससे आपने कुछ सीखा हो, आपको लगा हो कि ये चीज तो बड़ी अच्छी है, ये मैंने सीख लिया इससे, कोई ऐसी बात कभी लगी या नहीं भी सीखा तो बता सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है
2: दीदी, मतलब मैं डोरेमोन का एपिसोड देख रहा था, उसमें मतलब वो कोई जादू कर रहे थे कि अगर अपन ऐसे न्यूज़पेपर में पानी डालेंगे तो वो नीचे नहीं गिरेगा, तो वो उसमें कुछ लगाना भूल गए थे तो उसने लगाया तो उसके बाद सच्ची पानी नहीं गिरा था। वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर मुझे लगता है कि वो सच है।
4: ओके ठीक है।
1: जी मैंने भी सीखा था
4: क्या
1: कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो जब हमारे साथ बुरा होगा तब हम और लोग हमारी हेल्प करेंगे। उस एपिसोड में ऐसा था कि नोबिता ने ऐसा सोचा था मैं सबकी मदद करता हूँ तो भी मेरे को डांट पड़ती है, तो नोबिता ने सोचा मैं सबका बुरा करूँगा, तो फिर डोरेमोन ने उसको एक ऐसा मतलब बेल्ट दिया कि उसको लगाने से सारे बुरे काम करेंगे, ऐसा नोबिता को बोला। पर ऐसा था जो बुरा काम करेगा उसको ठीक करने का है वो तो
4: बेल्ट। अच्छा तो उसको बताया
1: वो सारा बुरा काम करने जा रहा था पर अच्छा हो रहा था। उसने क्या करा, एक क्रेन थी उसका जो मुंह था उसको दूसरी तरफ कर दिया।
4: अच्छा
1: तो किसी और के ऊपर वो लोहे का रॉड गिरने वाला था, तो उसी टाइम उसको अपने आप हुआ कि मैं नाइंटी को धक्का मार देता हूँ, तो उसने आंटी को धक्का मारा तो रॉड, फिर वो आंटी बच गई। फिर ऐसे उसने किसी और की हेल्प करी। फिर रात को जब घर पे गंदे कपड़े करके आया ना, तो उसकी मॉम उसको डांट रही थी, तो जिस चीज की भी उसने हेल्प करी थी ना, वो सारे लोग आए उसको गिफ्ट दिया और उसकी मॉम को कहा इसने हमारी मदद की। तो इससे मेरे को ये सीख मिली कि हाँ, कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो जब हमारे साथ बुरा होगा तब वो भी हमारी मदद करेंगे।
4: सही बात है, और ये चेन ऑफ गुडनेस होती है, ये ज़रूर कनेक्टेड रहती है कहीं ना कहीं। पर एक बार शिक्षा से भी पूछ लेते हैं, उसने क्या सीखा।
3: दीदी मैं तो है ना सिंचाई नहीं देखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें वो तो 5 साल का छोटा सा बच्चा है जो अपने है ना प्ले ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। बाकी वो किसी का बुरा तो नहीं करता पूरे टाइम, उसमें हंसी हंसी होती रहती है। और वो उसमें एक चीज़ तो है, उन लोगों में लड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए पर वो हमेशा साथ रहते हैं।
4: हाँ ये एक अच्छी चीज़ है ना।
3: हाँ वो एक दूसरे को तंग करेंगे परेशान करेंगे, पर साथ में कोई दूसरा अगर परेशान करे तो वो दूसरे से लड़ जाते हैं कि नहीं ये मेरा दोस्त है इसको परेशान नहीं करना।
4: ये वो यूनिटी, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा कोई फनी वर्ड्स सीखे हैं क्या आपने कभी कार्टून से।
2: दीदी शिनचैन के कार्टून्स में तो सब फनी फनी होता है, पर जब उसकी मूवीज आती है ना तो वही हीरो होता है।
1: सारी बहादुरी दिखाता है,
4: बहादुर होता है वो। अच्छा
2: दीदी मतलब इतना बड़ा मॉन्स्टर था उससे मतलब सब डरते थे, तो उससे ना बड़े बड़े बंदे भी डरते थे, पर शिनचैन है ना उसने बोला मैं 5 साल का नोहारा फैमिली का बच्चा हूँ मैं नहीं डरूंगा, तो उसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया।
4: अच्छा
2: बीच से काट दिया उसको।
4: मतलब डरा नहीं।
1: उस मॉन्स्टर ने उसके पेरेंट्स को पकड़ लिया था, तो अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसने ये सब करा था।
4: ओके
1: तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता है वो,
4: मम्मी पापा के लिए कुछ भी।
3: दीदी उसकी एक छोटी सी बहन है जो पैरों से नहीं चलती, मतलब घुटने घुटने से ऐसे चलती है और कुछ नहीं बोलती, पूरे टाइम की करती रहती है। हीवावारी नाम है उसका। उसको स्पेस से लोग आए थे ना, उसको पकड़ के ले गए थे, ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ की स्पेस की रानी है, ये हमारी रानी बहुत पहले खो गई थी। उसको वो पकड़ के ले गए, शिनचैन भी स्पेस में चला गया उसी स्पेस वाले यूएफओ पे लटक के। वो वहां पे गए ना, उसने अपनी बहन को बचाने के लिए पूरे स्पेस में ढूंढा, महल वगैरह पता चला, उसने अपनी बहन को बचा के दोबारा स्पेस से लेके आ गया। मतलब वो 5 साल का बच्चा है पर मूवी में एक्शन इतना करता है कि बिल्कुल हीरो है वो। 5 साल का,
4: 5 साल का हीरो है वो।
3: हाँ
4: तो आपको अच्छी अच्छी बातें भी, मतलब आपको लगता है कोई फनी वर्ड्स है ऐसे लगता है जो आपने कार्टून से सीखे हो, कुछ ऐसा बोलते हो।
2: दीदी वो शिनचैन है ना, मतलब वो मतलब ऐसे किसी भी मतलब किसी भी कीड़े के ना कपड़े इंसेक्ट कपड़े डाल के फिर सबको डराता है। उसके बाद है ना वो मतलब जो भी क्राइम कर रहा होता है ना ऐसे उसके पास उड़ के चला जाता है वो इंसेक्ट्स के, क्योंकि उनमें विंग्स लगे होते हैं ना, तो वो ऐसे कूदता है और आराम आराम से उनके पास पहुंच जाता है और उसकी कमर पे लटक जाता है।
4: अच्छा
2: तो फिर वो क्राइम भी पकड़ लेता है और फन सबको हंसा भी देता है।
4: ओके ठीक है, चलो कार्टून्स तो मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी हैं, इन्जॉय भी करते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल हमें अच्छे कार्टून सिलेक्ट करके देखना बहुत ज़रूरी है जो हमारे अंदर यू नो वैल्यूज़ या कुछ अच्छी चीज़ें दे, हंसते हंसते मज़े करते करते। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोरिंग देख रहे हैं हम, कुछ मज़ा भी आए और अच्छे वैल्यूज़ भी आए, है ना। क्योंकि जो हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्या लगता है आप लोगों को।
3: पढ़ता है।
4: हाँ या नहीं?
1: पढ़ता है।
4: पहले हाँ या ना बताओ।
2: पढ़ता है।
4: पक्का पढ़ता है? ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं पढ़ता और ऐसे बोल दिया कि पढ़ता है।
2: नहीं पढ़ता है।
4: पढ़ता है। आप लोगों को पता है एक ना थ्योरी है जो मीडिया की थ्योरी है, उसको कहते हैं कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी में ये रिसर्च किया गया, जॉर्ज गर्बनर करके एक सोशल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये रिसर्च किया, बच्चों को कार्टून्स दिखाए और जो वायलेंट वाले होते हैं ना, बहुत मार धाड़ वाले कार्टून्स होते हैं, बंदूक से मारना, ऐसे तलवार से मारना, ऐसे वायलेंट वाले कार्टून्स, तो जो बच्चे ऐसे कार्टून्स ज़्यादा देख रहे थे, उन्होंने रिसर्च किया कि धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्चे बाहर निकलने में थोड़ा डरने लगे, उनको लगने लगा कि कोई मार देगा या कोई कुछ कर देगा, तो उनके वो पहले नहीं डरते थे, पहले वो इंजॉय करते थे अपनी लाइफ आराम से, लेकिन बाद में उनके अंदर डर अंदर तक बैठ गया कि वो अकेले भी जाने में डरने लगे और लग लेगा कोई मार ना दे, और कोई कुछ गुस्सा भी करता था ना तो उनका हाथ ऐसे ऊपर हो जाता था कि मुझे भी मारना है या वो मुझे मार देगा. तो इसलिए उन्होंने ये फिर रिसर्च लिखी और एक थ्योरी बनाई जिसको कहा कल्टीवेशन थ्योरी. कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है पता है आप लोगों को? कल्टीवेशन जनरली क्या कल्टीवेशन का मतलब होता है?
1: तो कल्टीवेशन का मतलब होता है खाना जो उगाते
4: हैं ना. तो उन्होंने बोला कि आप जिस तरह की चीज़ें देखोगे, जिस तरह के कार्टून्स देखोगे, उस तरह के ट्रेट्स, उस तरह की जो चीज़ें हैं आपके अंदर उग जाएंगी. पहले आप नहीं भी डरते होगे लेकिन धीरे धीरे आप डरने लगोगे. पहले हो सकता है आप बहुत ऐसी चीज़ें किसी को सरकास्टिक या चिढ़ाना या बुली नहीं करते होगे, आप अच्छे बच्चे होगे, लेकिन धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आप मजाक मजाक के उसमें बुली करने लगोगे, उसको चिढ़ाने लगोगे, किसी की हाइट पे, किसी के वेट पे कमेंट करने लगोगे, किसी को प्रैक्टिकल जोक्स आप जो होते हैं ना जो किसी को नुकसान भी जिससे पहुंच सकता है, हार्मलेस जोक्स तो कर सकते हैं, ऐसे करने लगोगे. और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता है तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हम वैसे ही बड़े होके बन जाते हैं तो फिर लोग हमसे फिर बचते हैं, हमारे दोस्त कम बनते हैं फिर धीरे धीरे. और दोस्त तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए?
1: चाहिए
4: चाहिए ना. तो इसलिए आपको जो चूज करना है कंटेंट, जो कार्टून्स है वो देख के चूज करना है ना. इंजॉय तो करना ही है, मजा तो आना ही चाहिए, लेकिन वैल्यूज भी होने चाहिए. ठीक है, चलो अभी फिलहाल करें गुड बाय.
3: बाय बाय.

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे अमित। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, पंख भाग दो। पंख भाग एक में आपने सुना कि मुन्नू भोपाल के सोनाकिरी में रहता है। बहुत ही शरारती है, लेकिन पढ़ाई में भी अव्वल आता है। उसके मोहल्ले में रहने वाले मिश्रा जी एक तोता लेकर के आते हैं जिसका नाम है तोतू। लेकिन मुन्नू की माँ जब उसे बचपन में समझाती है कि नील गगन में उड़ने वाले आजाद पंछियों को पिंजरे में बंद रखना बहुत बड़ा पाप है, तब से मुन्नू को धुन सवार हो जाती है कि वो तोतू को आजाद जरूर कराएगा। मुन्नू जब 14 साल का होता है तभी उसके पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है और अब 11 साल बाद मुन्नू भोपाल वापस आया है। अब आगे, ट्रेन से उतरते ही मुन्नू भोपाल की जमीन की मिट्टी माथे पर लगाता है। कैसे हो मेरे भोपाल, बहुत याद किया, 11 साल बाद मिल रहा हूं। वाह मेरे भोपाल की मिट्टी की खुशबू। अपने घर के सामने पहुंचकर मुन्नू वहां की मिट्टी माथे पर लगाता है। इतने में पीछे से आवाज आती है। तोतू, अरे तू कैसा है? हे भगवान, इतनी तेज धूप में बैठा है तू। अरे तू कितना सहेगा, 16 साल हो गए तुझे सहते सहते। लेकिन, और मुन्नू के गाल पर उसके आंसू छलक आते हैं। तोतू तू अब फिक्र मत कर, अब मैं आ गया हूं और हां, अब मैं अपनी नौकरी ज्वाइन ही तब करूंगा जब तू आजाद होगा। मैं ऊपर आ रहा हूं। मिश्रा अंकल, दरवाजा खोलो, मैं मुन्नू।
2: अरे कौन मुन्नू भाई?
1: अंकल मुन्नू, वो तोतू वाला मुन्नू। मिश्रा जी चौंक कर दरवाजा खोलते हैं और खुश होते हुए कहते हैं,
2: अरे मुन्नू तू कब आया, तू इतने साल बाद।
1: और फिर वो मुन्नू को गले लगा लेते हैं। मुन्नू उनके पांव छूता है। हाँ अंकल, 11 साल बाद,
2: बहुत टाइम हो गया।
1: अंकल तोतू से मिल लूं एक बार?
2: हाँ मिल ले यार। पर खोलने की बात मत करियो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे खोलूंगा नहीं। मालूम है तुझे, मैं तोतू पर महीने के काफी रुपए खर्च करता हूँ। काजू, किसमें, मिठाइयाँ, अरे महंगे महंगे फल सब खिलाता हूँ इसको मैं। बहुत खर्च होता है इस पर, बेटा है मेरा बेटा।
1: नहीं बोलूंगा अंकल। मुन्नू तोतू के पास जाता है, उसके पिंजरे पर हाथ फेर कर उसका गला भर आता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तोतू तू कैसा है मेरे भाई? मुन्नू अपने आंसू पोंछ कर एक बार फिर मिश्रा जी के घर से चला जाता है, पर मिश्रा जी इस पूरे वाक्य को नहीं देख पाते हैं। मुन्नू नीचे घूम रहा होता है और तभी उसका बचपन का दोस्त वसीम मिलता है। दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
1: वालेकुम अस्सलाम सलीम मेरे भाई।
3: अरे कहाँ गया था मेरे यार, इतने सालों से तेरे बिना ईद ही नहीं मनाई।
1: हाँ यार, तेरे बगैर मैंने भी कोई दिवाली नहीं मनाई। पर तू फिक्र मत कर, अब मैं आ गया हूँ और अब यहीं रहूंगा। और मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, तुझसे बहुत जरूरी काम है, तू मना मत करना।
3: अरे तेरे लिए जान भी हाजिर है, तू बोल तो सही।
1: तू कान इधर ला। और मुन्नू वसीम के कान में अपनी बात कह देता है। और कल होली है, अपन साथ में मनाएंगे। तभी वसीम सभी को आवाज देता है।
3: अरे भाई सभी लोग सुनो, शांति आंटी, मिश्रा अंकल, जैन साहब, करारी चचा, अरे साजिद भाई, अरे वर्मा जी, अरे सुनो तो सही। आप सभी लोगों को सुनकर खुशी होगी कि मेरा दोस्त मुन्नू, मेरा जिगरी यार, अब दिल्ली से भोपाल सेटल हो गया है और कल होली भी है, तो मैंने आप सभी के लिए एक शानदार पार्टी रखी है।
4: अरे वाह।
3: अरे हाँ भाई, सभी लोग आएंगे और मेन्यू भी सुन लीजिए, दाल बाटी,
5: वाह भाई,
3: चूरमे का लड्डू,
5: आय
3: बैंगन का भरता, कड़ी और भांग भी होगी।
5: क्या बात है
3: भाई, वाह क्या जबरदस्त होली बनेगी।
6: अब बरखुरदार वसीम, मैं समझता हूँ सोमरस की जुगाड़ तो तुमने कर ही ली होगी भाई। अरे भाई होली का असली प्रसाद तो वही है। मतलब समझ तो रहे हो गए आप कि पार्टी का मजा नहीं आएगा यार।
2: अरे बिल्कुल करारी चचा, मेरा दोस्त आया है, उसकी खुशी में आप जितनी पियोगे उतनी पिलाएंगे।
1: इसके बाद सभी चले जाते हैं और मुन्नू वसीम वहीं खड़े रह जाते हैं। मेरे भाई तूने आधा काम तो कर दिया, बस कल देख लेना मोहल्ले में कोई भी नहीं रहे, सब पार्क में आ जाएं।
2: आ तू फिकर मत कर मुन्नू, ऐसा ही होगा।
1: यार मुझे बहुत सारे काम है, कल की बहुत तैयारी बाकी है, मैं खरीदारी करने जा रहा हूँ।
2: अरे हाँ एक बात तू बता यार, आज तो तेरी नौकरी का पहला दिन था ना, तूने ज्वाइन क्यों नहीं किया?
1: मुन्नू आंख बंद करके और दोनों हाथ बांध कर कहता है, वसीम मेरे भाई एक बहुत बड़ा काम बाकी है, ऊपर वाले ने चाहा तो कल हो जाएगा और फिर परसों से नौकरी ज्वाइन कर लूंगा, तो फिक्र मत कर, मैंने एप्लीकेशन दे दी है। अच्छा अब जा और कल प्लीज सब संभाल लेना मेरे यार।
2: हो जाएगा मेरे भाई।
1: और मुन्नू खरीदारी में लग जाता है और सबसे पहले पहुंचता है एक मिठाई वाले के यहाँ। भाई साहब आपके यहाँ सबसे महंगी मिठाई कौन सी है?
2: 1200 रुपए की बादाम कतली है।
1: 1 किलो दे दीजिए और 2 बोतल पानी भी दे दीजिए।
2: ये लो भाई आपकी 1 किलो बादाम कतली और 2 बोतल पानी, 1240 रुपए दे दीजिए।
1: ये लीजिए साहब। पैसे देकर मुन्नू किराने की दुकान पर जाता है और वहां से पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश और जितने भी किस्म के मेवे होते हैं सबको वहां से पैक करा लेता है। लगभग 3450 रुपए का बिल देने के बाद मुन्नू फल वाले के यहाँ जाता है और वहां से केले, आम, अनार, चीकू, जितने भी तरह के फल उस फल वाले के पास होते हैं सब कुछ खरीद लेता है। और ये सारा सामान खरीद कर मुन्नू पहुंचता है मिश्रा जी के पास।
2: मिश्रा अंकल। अरे मुन्नू ये क्या ले आया इतना सारा सामान?
1: हाँ अंकल कल होली है, खाने पीने का सामान है, मेरे घर में तो अभी कुछ साफ सफाई हुई नहीं है तो सोचा सामान आपके यहाँ रख दूं। और हाँ आपको कुछ चाहिए तो ले लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी।
2: अरे रख दे मुन्नू, और हाँ मुझे कुछ चाहिए होगा तो जरूर ले लूंगा।
1: अंकल कल सुबह मैं आऊंगा आपको लेने के लिए, वसीम ने होली की पार्टी दी है ग्राउंड में, चलेंगे ना आप भी?
2: हाँ बिल्कुल चलूंगा, अरे फोकट की पार्टी कौन छोड़ता है।
1: ठीक है अंकल कल मिलता हूँ सुबह आपसे। अगले दिन होली का नजारा, सभी होली खेल रहे होते हैं और लगभग 11 बज चुके होते हैं। कलारी चचा सबको याद दिलाते हैं।
6: अरे भाई वसीम वर्मा जी, अरे भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, 11 बज गए यार, मुंह से खाने वाली दाल बाटी की पार्टी है, चलो ग्राउंड में चलो।
1: इधर मुन्नू मिश्रा अंकल के यहाँ पहुंचता है।
2: अंकल मुन्नू। हाँ आजा मुन्नू आजा, तेरा ही रास्ता देख रहा था, बड़ा लेट हो गया तू।
1: हाँ अंकल लेट तो हो गया, पर आप इन कपड़ों में मत जाइए, वहां सभी एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, आप पुराने कपड़े पहन लीजिए।
2: हाँ ये ठीक कही तूने, मैं 2 मिनट में कपड़े बदल लेता हूँ।
1: अंकल आपका मोबाइल दीजिए ना, एक कॉल करना है, मेरी भोपाल की सिम अभी ऑन नहीं हुई।
2: हाँ बिल्कुल ये ले।
1: और मोबाइल देकर मिश्रा जी कपड़े बदलने चले जाते हैं। मुन्नू मोबाइल को स्विच ऑफ करके बेड के पीछे छुपा देता है और सारा खाने का सामान खोलकर बेड पर रख देता है।
4: बस मुन्नू 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में बैठ तू आराम से।
2: कोई बात नहीं अंकल, आप आराम से आओ।
1: और मुन्नू बालकनी का दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगा देता है और बाहर से निकलकर मेन गेट बंद करके उसे भी ताला लगा देता है। जाते जाते बिजली का मेन स्विच भी बंद कर देता है। मिश्रा जी गुनगुनाते हुए कपड़े बदल कर निकलते हैं तो मुन्नू नहीं दिखता।
4: अरे मुन्नू कहाँ गया भाई? अच्छा लगता है नीचे होगा, फोन पे बात करते करते चला गया।
1: मिश्रा जी मेन गेट खोलने की ट्राई करते हैं।
2: अरे ये क्या, अरे लगता है किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है।
1: और उनकी नजर बालकनी के दरवाजे पर पड़ती है जो कि बंद है और उसमें ताला लगा है।
4: ये क्या मजाक है, ये मुन्नू की शरारत लगती है। मुन्नू अरे मुन्नू तो दरवाजा खोल दे बेटा, अब तेरी शरारत की उम्र थोड़ी रह गई।
1: लगभग आधे घंटे के बाद,
2: अरे मुन्नू अरे मजाक बहुत हो गया यार, आधा घंटा हो गया, अब तो खोल दे दरवाजा। देख मुझे मालूम है तू आसपास है, मेरी आवाज भी सुन रहा है, खोल दे दरवाजा प्लीज। मुन्नू अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है,
4: मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे यार मैं भी ना किसी को फोन करके बुला लेता हूँ।
1: मिश्रा जी मोबाइल ढूंढने में लग जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब मोबाइल नहीं मिलता तो उन्हें याद आता है।
4: ओह याद आया, उस दुष्ट ने मुझसे मोबाइल मांगा था, जरूर कहीं छुपा के गया होगा, पूरी प्लानिंग से बंद करके गया मुझे।
1: लगभग 2 घंटे के बाद,
2: अरे मुन्नू खोल दे यार,
4: मुझे भूख लग रही है।
1: तभी उनकी नजर उनके बेड पर पड़े खाने पर जाती है।
2: मैं भी ना इतना पागल हूं, अरे इतना स्वीट खाना मेरे पास है फिर भी भूखा हूं, चलो इसी खाने के साथ टाइम पास करता हूं।
1: मिश्रा जी मिठाई फल सब फैलाकर बैठकर आराम से खाते हैं।
2: अरे भाई बहुत ज्यादा खा लिया, अब तो नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर सो लेता हूं, जब तक मोहल्ले में सभी वापस आ जाएंगे उनसे दरवाजा खुलवा लूंगा।
1: पर मुन्नू को याद करते हुए गुस्से में बड़बड़ाते हैं।
2: मुन्नू तुझे तो नहीं छोड़ूंगा अब मैं।
1: मिश्रा जी सो जाते हैं। लगभग 5 घंटे बाद।
2: अरे यार 4 बज रहा है, कोई आया नहीं मोहल्ले में अभी तक।
1: तभी उनको कलारी चचा की आवाज सुनाई देती है।

0: अरे कलारी चचा, ओ कलारी चचा,
1: लगता है आज कुछ ज्यादा चढ़ गई। बंद घर में से भी आवाज आ रही है। अरे अरे नहीं यार, मुझे चढ़ती कहाँ है।
0: कलारी चचा सुनो,

0: कलारी सुन तो ले।
1: और कलारी चचा अनसुना करते हुए निकल जाते।
0: अरे सुन ले यार, मैं बंद हो गया हूँ अंदर। रघुबीरा अवध में।
1: इधर मिश्रा जी पूरी ताकत से चिल्लाते,
0: अरे खोल दो कलारी चचा।
1: और इधर कलारी चचा मस्ती में गाने लगते हैं
0: के होरी खेरे बरखुरदार, होरी खेरे दो बरखुरदार।
1: मिश्रा जी खड़े होकर पानी पीते हैं, गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं,
2: मनु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरी।
1: 10 घंटे बाद,
0: ए भगवान किसी को भेज दे नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे किसका मुंह देखकर उठा था भगवान, मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा किसी को भेज दे। अरे मैं ऐसे और नहीं बैठ सकता, 10 बज रहा है, अरे कोई भी नहीं आया अभी तक।
1: और इंतजार करते करते मिश्रा जी रात का खाना खाकर सो जाते हैं। 20 घंटे बाद दूसरे दिन सुबह दरवाजे के पास मिश्रा जी जाकर उसमें अपना सिर मारकर बोलते हैं,
0: अरे कोई तो सुन लो भाई, शांति भाभी वर्मा जी, जैन साहब, साजिद भाई, अरे कोई तो सुन लो, मैं पागल हो गया हूं, अरे कोई तो मेरी मदद करो। सब कहां चले गए यार, ताज्जुब की बात है, मोहल्ले में कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी आवाज नहीं सुन रहा है, क्या करूं मैं।
1: मुन्नू मिश्रा जी के घर जाकर उनका दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही वो उठ जाते हैं और मुन्नू सर झुकाकर उनके घर में घुस जाता है। मिश्रा जी बहुत गुस्से में,
3: ये क्या मजाक था, अबे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मुझे ऐसी सजा दी, ऐसा मजाक किया मेरे साथ, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया तुझे, बहुत गलत किया तूने मेरे साथ।
4: हाँ हाँ मैंने गलत किया, और आप जो 16 सालों से गलत करते आ रहे हो वो गलत नहीं है।
1: चिल्लाने की आवाज से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है।
4: मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया कि किसी मूक निरीह पंछी को बंद करके उसकी

0: जिंदगी तबाह कर दो। आप 20 घंटे भी घर में बंद नहीं रह सके, क्यों? आपके पास भी तो उससे बेहतर खाना था ना, फल थे, मिठाई थी, मेवे थे, फिर क्यों हाय हाय करने लगे? दीजिए ना जवाब।
1: मिश्रा जी कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं और मुन्नू उनको इशारे से उंगली दिखाकर बोलता है,
0: बहुत सुन ली आपकी, आज मैं बोलूंगा और सब सुनेंगे।
1: और फिर पूरे मोहल्ले वालों की ओर मुखातिब होकर के कहता है,
0: मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा खेलते खेलते अचानक दिखाई ना दे तो कैसी हालत हो जाती है आपकी?
1: मुन्नू तोतू के पास जाकर उसका पिंजरा उठाकर बोलता है,
2: क्या ये किसी के मां बाप की औलाद नहीं है? इसका भी एक परिवार था, इसका भी एक प्यारा सा घर था, इसके भी अपने लोग थे। इसकी मां ने इसे सुबह जाते हुए तो देखा होगा, पर आते हुए नहीं देखा। कुदरत ने इसे पंख दिए थे खुले आकाश में मस्ती के साथ उड़ने के लिए, जैसे तुम्हें दो पांव दिए हैं चलने के लिए। कोई आपके पांवों को न चलने की सजा दे दे तो क्या आप उसे प्यार कर सकोगे? मेरा सवाल केवल मिश्रा अंकल से नहीं, आप सभी से है, जो पक्षियों के उड़ने की आजादी छीन कर उन्हें पिंजड़ों में कैद कर देते हैं। किसने हमें हक दिया इन बेजुबान पक्षियों की जिंदगी से खेलने का? जवाब दीजिए। इस मूक प्राणी को कैद करके उसे अपना बेटा बताते हैं, क्या यही बर्ताव आप अपने बेटे के साथ करते हैं? अच्छा यही बता दो, 6x6 के कमरे में कोई आपको बंद कर दे अपनों से दूर ले जाकर और सारे पकवान सारी मिठाइयां खिलाए तो क्या आप खुश होगे? सबकी जान एक जैसी नहीं होती, हम में और इस तोते के दर्द में कितना एहसास का फर्क है। तो इसे आप इसलिए कैद कर लेते हो कि आपसे वो बोल नहीं सकता? ये आपके मनोरंजन एंटरटेनमेंट के तरीके हैं? जानते हैं पिंजरे में बंद उसे कितनी वेदना कितनी पीड़ा हो रही होगी? अगर ये बीमार है तो क्या आपसे बोल सकता है? खुले में रहता तो अपना इलाज खुद कर लेता, इसका कुछ भी खाने का मन हो तो भी आपसे नहीं बोल सकता। आप नहीं समझते इसकी बात, क्या यह अत्याचार नहीं इस पर? यह खुले आकाश में घूमने वाले आजाद परिंदे हैं, आप तो अपने अपनों के बीच में घूमते हो, लेकिन आपने तो इसे अपना परिवार ही नहीं बसाने दिया और जीते जी मार दिया, और इसे मारने में आप एक एक बराबर के हिस्सेदार हैं।
1: इतने में शांति आंटी कहती,
3: पर मुन्नू बेटा इसमें हमारा क्या कसूर है? आंटी आप ही नहीं सभी इसके गुनाहगार हैं। क्यों हम पिंजरे में बंद पक्षियों को देखकर चुप्पी साध लेते हैं या अनदेखा कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके सामने ये 16 साल से बंद था, क्या आपने कभी इसका विरोध किया? आपने तो कहा था कि मुन्नू बेटा हम कौन होते हैं उसे खुलवाने वाले, ये तो उस तोते के कर्म है जो वो पिंजरे में बंद है। हमारे पास तो 50 काम है, इन फालतू बातों में हम क्यों ध्यान दें?
1: मुन्नू वहां मौजूद एक एक शख्स की ओर मुखातिब होकर बोलता है,
0: मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, अभी तक आपने भी सैकड़ों परिंदों को कैद देखा होगा, क्या आपने कभी उनके लिए आवाज बुलंद की? क्यों इतने घोर अन्याय के बाद भी आप मूक दर्शक बने रहते हो? दीजिए ना जवाब। क्या आपको इन परिंदों का दर्द नहीं सुनाई देता? क्या आपको कुदरत के इंसाफ का इल्म और एहसास नहीं? उस मूक जानवर को बंद करके उसे परिवार का सदस्य समझते हैं, उसे बेटा बोलते हैं। अरे क्या कोई अपने बेटे के साथ ऐसा करता है? क्यों आपको इस पक्षी की तकलीफ नहीं दिखाई देती? आप लोग तो ये कहते हो ना कि जब ऊपर भगवान आपका हिसाब किताब लेगा तो पूरा एक जन्म किसी भी रूप में आपको पिंजरे में बिताना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपको सजा मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, न जाने कितने पक्षियों की जिंदगी खराब हो चुकी होगी।
1: तभी मिश्रा जी उठकर खामोशी तोड़ते हैं, मुन्नू के सामने घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर रोते हुए कहते हैं,
4: मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुन्नू, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैं कौन होता हूं अंकल आपको माफ करने वाला? माफी मांगनी हो तो तोतू से मांगिए, उसे खोलकर, और प्रायश्चित भी करना चाहिए अपने गुनाह का, मगर कैसे हो सकेगा ये सब?
1: मिश्रा जी ने कहा।
4: मुन्नू ने कहा, आज के बाद हम किसी भी पंछी को पिंजरे में कैद नहीं रहने देंगे, और अगर किसी को ऐसा करते भी देखेंगे तो उसे समझाइश देंगे, उसका विरोध करेंगे।
1: मिश्रा जी कहते हैं,
4: मैं संकल्प करता हूं मुन्नू, अपनी बाकी की जिंदगी पंछियों के हक के लिए संघर्ष करूंगा।
1: और वहां मौजूद सभी मोहल्ले वाले भी कहते हैं,
5: हाँ हाँ हम भी कसम खाते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे।
1: और फिर मिश्रा जी उठकर तूतू को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे पंख भाग दो, धर्मेंद्र शाह जी का लिखा हुआ नाटक, कहानियों के सफर में, जिसका शीर्षक है पंख। धर्मेंद्र शाह अपनी छोटी सी टीम के साथ मिशन पंख को साकार करने में संलग्न है। जहां कहीं भी उन्हें पिंजरे में बंद पंछी मिलता है, वो और उनकी टीम उस घर में पहुंचकर पंछियों के बारे में जानकारी देकर उस पंछी को आजाद कराने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, पंख एक पुस्तक है जो कि धर्मेंद्र शाह जी ने लिखी है, और अगर आपको पिंजरे में बंद कहीं पंछी मिलता है तो धर्मेंद्र शाह जी के नंबर पर संपर्क करके आप उन्हें बता सकते हैं। उनका नंबर 9039159596। पंख सुनने का अनुभव आपका कैसा रहा, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि पिंजरे में बंद पंछियों का दर्द और संवेदना उन तक भी पहुंच सके। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट? वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट? अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले

0: वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बचे हैं दोपहर के 4, एक मिनट प्रभु की याद से मन में लाए अच्छे विचार।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। आज 15 जुलाई है, 15 जुलाई को यादगार बनाते हैं। और आज स्वाति नक्षत्र है। जमशेदजी जीजा भाई, तन्नू पिल्लाई के कामरा, दुर्गा भाई देशमुख, गणपत राव देव जी, तापसे मोहम्मद उस्मान, बादल सरकार, जय सिंह, रमेश पोखरियाल, कालनाथ शास्त्री और साथ ही साथ भानु प्रताप सिंह वर्मा, भूपेंद्र पटेल, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही बाल गंधर्व, बानो जहांगीर, कोया जी, मरियम मिर्जा खानी, इनका पुण्य दिवस है। तो आइए आज के शाम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ले चलूँगा एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज के दिन को कुछ खास यादगार बनाने के लिए आप अपने जीवन के कुछ खुशनुमा पलों को ज़रूर याद कर ले। ऐसे जब मायूसी आ जाती है तो हमारे टीचर कहा करते थे कि भाई जीवन में खुश रहना आपके हाथ में है, चॉइस इज यूवर्स हमेशा। तो अब देखिए मेरी बातों को सुनते हुए भी आप कोई खुशी के पल अपने स्कूल के समय में आपको फर्स्ट क्लास मिला हो, या टीचर ने आपको किसी काम के लिए शाबाशी दिया हो, या आपका नोटबुक चेक करते हुए आपकी तारीफ क्लास में की हो, ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर याद कीजिए। मुझे आज भी याद है, हिंदी में काफ़ी अच्छा जो है हैंडराइटिंग किताब नोटबुक में लिखता था। तो एक बार हमारे होमवर्क चेक करने के लिए क्लास टीचर जो है हमारे बुक्स को सामने बैठ के चेक करती थी और करेक्शन करती थी। और फिर जैसे जैसे वो बुक निकाल के पहले नाम चेकिंग करते करते लास्ट पेज से शुरू कर देती थी, जिसकी कोई अच्छी बात लगती थी तो वो उसका नाम लेकर बोलती थी, हाँ रमेश आपने भी अच्छा हैंडराइटिंग बनाया है, अच्छा लिखा है, कीप इट अप। फिर कोई ऐसा किताब मिल जाता तो उसका नाम लेके उसकी पिटाई भी, मना ऐसे ही बोलते थे कि बंदा जो है कन्फ्यूज हो जाता। तो कहने का भाव ये है कि आप उस पल को याद कीजिए, पॉजिटिव पल को, जहाँ पर आपकी जो है अप्रिसिएशन हो रही हो, आपकी महिमा हो रही हो, ऐसी चीज़ों को हमेशा याद करते हुए आप दूसरों के लिए भी जितना खुश आपको अप्रिसिएशन से मिल जा रही है वैसी ही खुशी दूसरों को दें, दूसरों की भी अप्रिसिएशन करें, ऐसी शुभ आशा के साथ। चलिए एक बहुत ही सुंदर विचार में जोड़ना चाहूँगा, आप सभी को देना चाहूँगा। और ये सुंदर विचार आपके लिए, अब तब तक पैसा कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फ़ोन नंबर की तरह ना दिखे। मतलब पर्याप्त आपके पास पैसे हो, ये इसका भाव है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन और चलिए एक खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और निश्चित तौर पे आप सभी को अच्छा फील हो रहा होगा। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और इस गीत के साथ मैं आपको, चलिए आगे बढ़ते हुए, एक महान व्यक्ति के बारे में जोड़ना चाहूँगा। और जिस तरह से हम लोग व्यक्तियों की जीवन कहानी सुनते हैं उतना ही खुशी हमें मिलती जाती है। तो आइए जमशेद जी जीजा भाई के बारे में बात करते हैं अब। और ये एक भारतीय पारसी व्यापारी और परोपकारी थे जो बाद में एक ब्रिटिश शूरवीर और बैरोनेट थे। उन्होंने चीन के साथ कपास और अफीम के व्यापार में सफलता पाई और अपने व्यवसाय से अत्यंत धनी बने दानवीर थे। जमशेद जी जीजाबाई का सबसे अधिक नाम उनकी दानशीलता के कारण बना और इनका एक डाक टिकट भी बना हुआ है 15 पैसे का, इंडियन पोस्टेज 1783-1859। तो उनका जो है ईयर लिखा हुआ है इसमें और उनकी फ़ोटो भी डाली है, श्री जमशेद जी जीजाबाई करके उस पर लिखा हुआ है। तो जीजाबाई, जमशेद जी जीजाबाई का जन्म 15 जुलाई यानी आज के दिन 1783 को एक गरीब परिवार में मुंबई में हुआ। आर्थिक तंगी के कारण वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके और 12 वर्ष की छोटी उम्र में अपने मामा के साथ पुरानी बोतलें बेचने के धंधे में लग गए थे। और कुछ दिन बाद मामेरी बहन से उनका विवाह भी हो गया और 1899 में माता पिता का देहांत हो जाने से परिवार का पूरा भार जीजाबाई के ऊपर आ गया। जमशेद जी में बड़ी व्यवसाय बुद्धि थी और व्यापार में जमशेद जी जीजाबाई ने साधारण हिसाब रखना और काम चलाओ अंग्रेजी सीख ली। अपने व्यापार का भारत के बाहर विस्तार किया और भाड़े के जहाज़ों में चीन के साथ वस्तुओं का जो है बिक्री और खरीदी किया करने लगे। 20 वर्ष के थे तभी इन्होंने पहली चीन यात्रा की। कुल मिलाकर वे 5 बार चीन गए। कभी ये यात्रा खतरनाक भी सिद्ध हुई। एक बार पुर्तगालियों ने इनका जहाज पकड़कर लूट लिया और उन्हें कैप ऑफ गुड होप के पास छोड़ दिया था। किसी तरह मुंबई आकर उन्होंने फिर से अपने आप को संभाला और 1914 में अपना जहाज खरीदने के बाद जहाजी बेड़ा बढ़ाने और निरंतर उन्नति की दिशा में बढ़ते गए। योगदान की बात करें तो कुआं और बांधों का निर्माण, सड़कों और पुलों का निर्माण, औषधालय स्थापन करना, शिक्षा संस्थाएं, पशुशालाएं, अनाथालय आदि सभी के लिए उन्होंने धन दिया। उनकी आर्थिक सहायता से स्थापित संस्थाओं में मुख्य जे हॉस्पिटल, जे स्कूल ऑफ आर्ट, पूना बांध और जल संस्थान है। आप इन सभी के नाम, ये उनके द्वारा विशेष योगदान से बनाए गए इन चीज़ों को आज भी मुंबई में पाएंगे आप। और पूना में विशेष पूना बांध और जल संस्थान आज भी मजबूती से काम कर रहा है। मुंबई समाचार, मुंबई टाइम्स जैसे पत्रिकाओं को भी आपने सहायता मिल दी और उस समय उन्होंने 30 लाख रुपए से अधिक का दान दिया था। आप समझ सकते हैं 1800 की बात है और उस समय 30 लाख माना 30 करोड़ से भी अधिक हो सकता है ना। महारानी विक्टोरिया द्वारा सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रहने वाले जीजाबाई ने महिलाओं की स्थिति सुधारने तथा पारसी समाज की बुराइयां दूर करने के लिए भी उनके अनेक कदम उठाए थे। तो ये थी कुछ खास बातें जमशेद जी जीजाबाई के बारे में। और 14 अप्रैल 1859 को आपने इस दुनिया को अलविदा कहा। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपको जमशेद जी जीजाबाई के बारे में एक दानवीर की कहानी सुनकर काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और दुर्गा बाई देशमुख के बारे में बात करते हैं अभी। तो चलिए, दुर्गा बाई देशमुख जो है ये एक ऐसे शक्तिशाली महिला रही है और भारत या आंध्र प्रदेश की पहली महिला नेता, जिनका जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंद्री में एक मध्यम स्तर के परिवार में हुआ था। इनके पिता का बाल्यकाल में ही देहांत हो गया और उनकी माँ राजनीति में भाग लेती थी और कमेटी की सचिव भी थी। इनका प्रभाव दुर्गाबाई पर भी पड़ा और ये जीवन के उन दिनों में, दुर्गाबाई बाल्यकाल के दिनों में बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजा जाता था, पर दुर्गाबाई में पढ़ने की इतनी लगन थी कि उन्होंने अपने पड़ोसी एक अध्यापक को उनसे ही हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया और उन दिनों हिंदी का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बना। दुर्गाबाई ने शीघ्र ही हिंदी में इतनी योग्यता अर्जित कर ली कि 1923 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय खोल लिया और गांधी जी ने इस प्रयास को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हुए दुर्गाबाई को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। अब दुर्गाबाई सक्रिय रूप से आज़ादी के संग्राम में भाग लेने लगी। वह अपनी माँ के साथ घूम घूम कर खदरा बेचा करती थी और नमक सत्याग्रह में उन्होंने पॉपुलर बहुत ही प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के साथ भाग लिया। 25 मई 1930 को वे गिरफ्तार कर लिए गए और एक वर्ष की इनको सजा हुई। सजा काट कर बाहर आते ही फिर आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः गिरफ्तार करके 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब और जेल की इस अवधि में दुर्गाबाई ने अपना अंग्रेजी भाषा का ज्ञान को बढ़ाया। देखिए भाई, जहां लोगों को जो है ऐसा लगता है कि ये गंभीर जो बात है हम सभी को सीखने के लिए, लोग जेल में पढ़ाई सीख रहे हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि भाई आप जो समय का अवसर में बदल देना, शिक्षा को अवसर में बदल देना, है ना, सजा को अवसर में बदल देना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही महान लोगों से सीखने को मिलता है। और फिर बाहर आने पर दुर्गाबाई ने मद्रास विश्वविद्यालय में अध्ययन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, वे इतनी मेधावी थी कि एमए की परीक्षा में उन्होंने 5 पदक मिले और वहीं से कानून की डिग्री भी प्राप्त कर ली और 1942 में वकालत करने लगे और मुकदमे में बहस करने वाली ये पहली महिला वकील थी। और इनका विशेष योगदान 1946 में लोकसभा और संविधान परिषद में सदस्य बनी। अनेक समितियों में इन्होंने योगदान दिया और 1952 में दुर्गाबाई ने सीडी देशमुख से विवाह कर लिया। वे अनेक समाज सेवी और महिलाओं के उत्थान में संबंधित संस्थाओं की सदस्य रहीं। योजना आयोग के प्रकाशन भारत में समाज सेवा का विश्वकोश उन्हीं की देखरेख में निकला। 1953 में दुर्गाबाई देशमुख ने सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष चुनी गई। वे जीवन भर समाज सेवा के कार्य में जुड़ी रहीं और 9 अप्रैल 1981 को दुर्गाबाई देशमुख का देहांत हो गया। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और विशेष बातें सुन रहे हैं। और कभी कभी हमें जो है बड़ा आश्चर्य कर देता है जीवन के इन फलसफा को देखकर। दुर्गाबाई देशमुख की कहानी सुनकर भी आपको अच्छा लगा होगा, जहां सजा को उन्होंने अवसर में बदल दिया। तो ऐसे ही हर मुश्किल को अगर हम अवसर में चेंज कर ले तो कितनी बड़ी बात हो सकती है ना। एक बार सोच के देखिए कि आपका जो मुश्किल है उसको अवसर को अवसर में बदल दें, है ना। तो भारत के एक और राजनेता के बारे में बात करते हैं, के कामराज, जो नारर जाति से उठकर मद्रास, बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और फिर अध्यक्ष बने। तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल निचले स्तर से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और देश के दो प्रधानमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज 60 के दशक में संगठन में सुधार के लिए बनाई गई कामराज योजना के कारण विख्यात हुए। आप समझ सकते हैं इनके नाम से अगर योजनाएं बन जाए तो कितने विख्यात और कितना सामाजिक कार्य किया होगा, और इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए ऐसे कामराज के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधु नगर में हुआ था। उनका मूल नाम कामाक्षी कुम्मा स्वामी नादेर था, लेकिन बाद में वो के कामराज के नाम से पॉपुलर हुए। और इनके पिता व्यापारी थे, किंतु उनका असमय मृत्यु होने के कारण परिवार की जो परेशानी है वो पूरे इनके ऊपर आ गया और भारतीय राजनीति में वे किंग मेकर के रूप में बाद में जाने गए। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और फिर राजनीति के साथ जुड़कर 16 वर्ष की आयु में कामराज राजनीति में शामिल हो गए और आज़ादी से पहले ही कई बार गिरफ्तार हुए, जेल गए, आए, जेल गए, आए, जेल गए। तो इस तरह से इन्होंने सारी राजनीति का जो मजबूती है वो इनको पता चल गई और फिर राजनीतिक सफ़र जो है मजबूती से इन्होंने किया। और माना जाता है कि कामराज योजना के कारण कामराज केंद्र की राजनीति में इतने सशक्त हो गए थे कि नेहरू जी के निधन के बाद शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी भूमिका किंग मेकर की रही। वो 3 बार अध्यक्ष भी बने और दक्षिण भारत की राजनीति में उनका ऐसा नेता था ठीक है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आज भी जाना जाता है। और मुख्यमंत्री पद के बाद 13 अप्रैल 1954 को अनिश्चित पूर्वक तमिलनाडु का मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया और प्रदेश को एक ऐसा नेता मिला जो उनके लिए क्रांतिकारी कदम उठाने वाला था और उनके नेतृत्व को चुनौती देते सी सुब्रमण्यम और एम भक्तवत्सलम को कैबिनेट में शामिल कर सबको चौंका दिया। तो ये थी कुछ कहानी के कामराज जी के बारे में। और कामराज जी को दो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को अवसर देने के लिए पहचान मिली और 1976 में मरण उपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको प्रदान किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को कामराज जी का चेन्नई में निधन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें कई कामराज जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए, आज बड़े बड़े दिग्गजों की कहानी आप सुन रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अलग अपनी जो है पहचान बनाई है। और आइए इसके साथ ही मैं आपको एक और खास व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा, भूपेंद्र पटेल के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को और धीरे धीरे हम कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर पहुँच गए हैं। और गुजरात के कुशल राजनीतिक है और उन्हें गुजरात का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम से लेकर सहमति बनी थी, जिसके बाद पार्टी पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने अगले सीएम के तौर पर उनके नाम की घोषणा की। और भूपेंद्र पटेल इस समय अहमदाबाद की गाट लोदिया सीट में विधायक हैं और 2017 में पहली बार विधायक बने थे। उनसे पहले इसी सीट में पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी चुनाव जीता था। भूपेंद्र पटेल कड़वा पट्टीदार समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरल स्वभाव व मिलनसार भूपेंद्र पटेल को प्रदेश की राजनीति में अजात शत्रु के रूप में देखा जाता है। है ना कमाल की बात। भूपेंद्र पटेल ने 2017 में विधानसभा चुनाव में शशिकांत पटेल को हराया। इसे लेकर रोचक हिस्सा यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद आनंदीबेन के कहने पर ही भूपेंद्र पटेल को टिकट दिया गया था और भूपेंद्र पटेल ने ये चुनाव 1,70,000 से ज़्यादा मतों से जीता, तो ये उनका रिकॉर्ड है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें भूपेंद्र पटेल और आज हमने जिन लोगों के बारे में आपसे शेयरिंग की, जमशेदजी जीजाभाई जो विशेष दानवीर रहे, के कामराज, दुर्गाबाई देशमुख और भूपेंद्र पटेल, ये सारे राजनीतिक, और दुर्गाबाई विशेष आज़ादी की क्रांतिकारी में उन्हें विशेष भूमिका निभाई थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते एक और खूबसूरत विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है, यह है मुस्कान की ताकत। तो हमेशा मुस्कुराते रहे और रेडियो मधुबन को सुनते रहे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मस्...

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आंगनवाड़ी में हर वर्ग के बच्चे अपने अपने ढंग से मनोरंजन कर रहे थे। कोई झूला, कोई चक्री, तो कोई रस्सी कूदने अथवा एक लंबी चूने की रेखा पर बारी बारी से अपनी आंखों में पट्टी बांध कर चलने का खेल खेल रहे थे। उनमें से एक लड़की भी बड़ी ही तन्मयता के साथ चूने की पतली लाइन पर पारंगत तरीके से एक छोर से दूसरे छोर पर आ जा रही थी। लेकिन बच्चे उसे देखकर तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करने के बजाय उस पर कंकड़ मारकर हूटिंग कर रहे थे। लेकिन वो बड़ी ही एकाग्रता और शांत चित्त से चलने का क्रम कर रही थी, और अपने क्रम पूरा हो जाने के बाद अपनी आंखों की पट्टी खोलकर सभी बच्चों को झुककर मुस्कुराकर अभिवादन भी कर रही थी। यह नजारा देखकर वहां खड़ी एक सहायिका को अच्छा नहीं लगा और उसने उस लड़की से पूछा, बच्चे तुम्हें कंकड़ मारकर अपमानित करते हैं, तुम यहां से कहीं और क्यों नहीं चली जाती? लड़की बोली, बहन जी, दरअसल यहां से जाने के बाद मैं अपने पिता और छोटे छोटे भाई बहनों के साथ बाजारों में दो दो बांस के सहारे बंधी रस्सी पर अपनी आंखों में पट्टी बांध कर उस पर चलने का तमाशा दिखाती हूँ। यहां पर मिलने वाला आहार तो मेरे पेट की भूख मिटा देता है और ऐसे प्रदर्शन के लिए ऊर्जा भी देता है, लेकिन ये कंकड़ व फप्तियां मुझे बाजार में मेरे उस प्रदर्शन के दौरान दर्शकों से मिलने वाली तालियों व सिक्कों का एहसास कराते हैं, जो मेरे परिवार का पेट भरने में सहायक होते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे देवेंद्र काशिप जी की लिखी लघु कथा संतुलन। संतुलन यानी कि बैलेंस। सोचिए, ये बच्ची जिसका जिक्र हुआ अपने अभ्यास के सहारे बांस पकड़कर लंबी बंधी रस्सियों पर चल लेती है। हां, तमाशा दिखाती है इसलिए चलती है, मगर जिंदगी के इस तमाशे में बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, ये कितनी अहम बात है, और हम इस संतुलन बैलेंस को बिल्कुल भूल बैठे हैं। हमारा हाल वही है, या तो हम हूटिंग कर रहे हैं या फिर हूटिंग का शिकार हो रहे हैं। अगर हूटिंग कर रहे हैं तो हम किस जगह हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हूटिंग का शिकार हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस छोटी सी लघु कथा में संतुलन क्या चीज होती है, ये समझने की बात है। हमें क्या मिल रहा है और हमें किस नजरिए से उसे लेना है, बस इतनी सी तो बात छिपी हुई है इस कहानी में। कितनी सूक्ष्म बात इतनी सहजता के साथ इतने कम शब्दों में देवेंद्र काशिप जी ने लिख करके हमारे सामने रखी है। वाह, यही है लघु कथाओं का कमाल। अगले पड़ाव पर किसी कहानी या लघु कथा के साथ फिर होगी मुलाकात। कैसी लगी ये कहानी और उसमें छिपी हुई सबक वाली बात जरूर शेयर कीजिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि संतुलन जैसी अहम चीज बैलेंस हम सब अपना सकें। थैंक यू सो मच। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वक्त हो गया कार्यक्रम युवा मंच का, और युवाओं के मंच इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हितेश जी और मोनिका जी हैं। तो दोनों डिस्कशन करेंगे, टॉपिक रहेगा कि फ़ोन एडिक्शन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, ये सब हम सबको तो पता ही है, लेकिन कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, आप सोच रहे होंगे, ये भी हमें पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, पता होते हुए भी हम थोड़ा फिसल जाते हैं, थोड़ा कंट्रोलिंग पावर खो देते हैं। ये क्यों होता है, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और इसे कंट्रोल करने से फ़ायदा क्या है, ये चर्चा करेंगे आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: थैंक यू सो मच
2: जी। शुक्रिया
0: जी। तो आइए मोनिका जी की ओर चलते हैं, और हितेश जी से भी जानते हैं कि क्या क्वेश्चंस मोनिका के पास हैं और हितेश जी के पास क्या जवाब है इसका।
2: जी, टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का हमारा। ये मोस्टली आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है उनका, और जो आजकल बच्चे भी फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको आदत पड़ गई है, उनको ऐसे बोल सकते हैं उनको लत लग गई है। और कोई कोई जिन्हें पता है कि हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इसके पीछे, और वो बाहर आना चाहते हैं इसमें से, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं पर वो आ नहीं पाते हैं। तो ये सेशन खास उनके लिए है, और मैंने ऐसे सवाल तैयार किए हैं जो उनके मन में भी आ सकते हैं, आपके श्रोताओं के मन में भी आ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो हम सवाल हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। वैसे फ़ायदे तो बहुत हैं फ़ोन के और इंटरनेट के, फ़ायदे नुकसान दोनों है। आपका क्या कहना है, क्या फ़ायदे हैं तेजी? जी
1: बिल्कुल, फ़ायदे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। पहले हम कुछ करने का सोचते थे तो हमें कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता था, कोई पढ़ाई करनी है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है। आज कितना इजी हो गया है ना, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस लेनी है, इतना कि अगर कॉलेज भी नहीं जाएं तो भी उतना नॉलेज हमें घर बैठे मिल सकता है जितना पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, है ना
2: जी।
1: और चाहे दुनिया की बात करें, चाहे अपने माइंड की बात करें, कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, इतनी भर भर कर इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि इस वजह से हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, हमारा माइंड बहुत एडवांस हो गया है, हम बहुत अवेयर हो गए हैं दुनिया में क्या हुआ है, दुनिया में क्या चल रहा था, हमसे पहले क्या हुआ, सच्चाई क्या है, है ना। ये भी फ़ायदा है कि कई बार जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया कुछ और जाता है ना, लेकिन उसका सच्चाई क्या है वो भी हमें कभी कभी इंटरनेट के थ्रू पता चलती है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं जो हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं
2: जी। खास करके अभी जब लॉकडाउन हो गया था तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी थी, मुझे नहीं लगता उसके बिना हम अभी कोई बचता भी था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते ही हैं कि अगर लॉकडाउन में इंटरनेट नहीं होता ना तो लोग पागल हो जाते,
2: बीमार पड़ जाते सारे।
1: बिल्कुल,
2: वो हमको टच भी नहीं करना था कहीं पे, हमें खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ऑनलाइन जॉब होती थी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, वो सब इंटरनेट की वजह से हुआ। तो
1: Definitely.
2: कितना फ़ायदा भी है, लेकिन हमें उस फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। नुकसान नहीं, हमें अब ज़्यादा उसका एडिक्शन ना हो, हमें कोशिश करनी है। फ़ायदे
1: मतलब,
2: वैसे
1: जैसे आपने बोला ना कि हम मोबाइल को यूज़ करें, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन अभी उल्टा हो गया है, टेक्नोलॉजी हमें यूज़ कर रही है, उस चीज़ को हमें ठीक करना है।
2: जी, हमें कॉल्स करने हैं कहीं पे, कॉल करने के लिए तो ऑब्वियसली फ़ोन यूज़ करेंगे। और उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने कहा और
1: बात करना बहुत इजी हो गया है. पहले तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था बात करने के लिए. सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो गया है ना. अपने हम अपना वेयर अबाउट्स मतलब लोकेशन आ गया है. लास्ट कॉल किसको किया था, अभी हम कहाँ पर हैं. जगह ढूंढना कितना इजी हो गया है. हम लोग कहीं जाना होता था तो पहले कितने लोगों से पूछ पूछ कर जाते थे, अभी सिर्फ गूगल मैप्स डालते हैं, है ना. तो अच्छा तो बहुत कुछ हुआ है देखा जाए तो.
2: जी बिल्कुल, ये तो हम सबको पता है उसके फायदे हैं.
1: हाँ.
2: और अभी इसके नुकसान भी है काफी, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है. इसके क्या नुकसान है वैसे?
1: हाँ, नुकसान तो अगर शुरू करना चाहे तो मुझे लगता है कि काफी दिन लग जाएंगे बताने में. बट हाँ, अगर हम धीरे धीरे शुरुआत करें नुकसान की, तो जितना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ता है उतना ही ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन भी जाती है ना. जैसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन, और एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कुछ गलत भी जा रहा है, गलत भी हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, और हमें इतना समझ नहीं होती कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है ना. और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि इसकी आदत पड़ गई, अब इसके बिना चीजें ही नहीं होती है ना. बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा इजी हो गया बात करना, तो क्या हुआ, हम ज्यादा बात करने लग गए, और ज्यादा बात करने से प्रॉब्लम होने लग जाती है ना. धीरे धीरे जब हम किसी भी चीज को, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई भी चीज हम लाइफ में देखें, जब उसका ओवर यूज होने लग जाता है तो चीजें खराब होने लग जाती हैं, है ना. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को समझ आने लग गया कि ये लोग, इंसान जो है ये टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे एडिक्टेड होता जा रहा है. तो क्या हुआ, धीरे धीरे और चीजें डालने लग गए. मतलब पहले आपको पता होगा, बहुत साल पहले एक दूरदर्शन होता था या एक दो चैनल ही होते थे, है ना. हफ्ते में एक बार एक मूवी आती थी. लेकिन अभी क्या हुआ, धीरे धीरे समझ आ गया लोगों को, दुनिया को, कि अरे ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, लो एक और वेब सीरीज डाल देते हैं, एक और मूवी बना देते हैं. और आजकल कौन सी मूवी चल रही है, कौन सा जॉनर चल रहा है, क्राइम थ्रिलर, है ना, मर्डर मिस्ट्री, किसी ने चीट किया, किसी ने गलत किया. तो क्या हुआ, ये हमारी लाइफ में इतना अंदर घुस गए हैं ना, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में इतना अंदर चली गई हैं ये चीज़ें, कि वही हमारा थॉट पैटर्न हो गया है.
2: जी.
1: वही हमारा वे ऑफ लिविंग हो गया है, वही हमारा वे ऑफ थिंकिंग हो गया है. और किसी पर विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि मूवी में क्या देखते हैं, क्राइम पेट्रोल में क्या देखते हैं, कि पड़ोसी किसी को मार रहा है, तो हमें भी लगने लग जाता है पूरा दिन कि अरे कहीं ये पड़ोसी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर दे. बात नहीं करते, चलो अपने चार दीवारी में ही रहते हैं. तो धीरे धीरे वो जो एक वॉर्म्थ था आपस में बात करना, ट्रस्ट करना, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है. और ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये टेक्नोलॉजी ओवर यूज का या इंटरनेट ओवर यूज का.
2: जी, हम फ़ोन में ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं. सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं.
1: हाँ.
2: फैमिली में ज़्यादा मम्मी पापा से बात नहीं, ज़्यादा नहीं कर पाते. फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में कभी लगता है, कभी हम बाहर हॉस्टल में चले गए या फिर, तो फिर हमें ऐसे लगता है कि यार जब पास में थे तब हम बात नहीं कर पाए, फिर याद बहुत आती है, फिर तब पता चलता है इम्पोर्टेंस घर वालों की.
1: हाँ.
2: और फ़ोन से हमें क्या ही आउटपुट मिल रहा है, ज़ीरो आउटपुट मिल रहा है. और हमें नुकसान कितने होते हैं, आईज़ में पेन होता है और नेक में पेन हो सकता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है एक जगह पर बैठ के. हमको मिल क्या रहा है एक्चुअली, एक चीज़ है ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं और जो भी वेबसाइट्स हैं, इनके पास है ना, ये रिसर्च करके इन्होंने बनाया है.
1: हाँ.
2: कि लोगों का ध्यान खींचे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड करें. लोगों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें हमारा अटेंशन कहाँ देना है, हमारा ध्यान कहाँ देना है, टाइम कहाँ देना है, ये बहुत ज़रूरी है. और ये उन लोगों के लिए उनका बिजनेस है.
1: Yes.
2: तो वो इसमें सफल हो जाते हैं अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं. तो उनका फ़ायदा हो रहा है लेकिन नुकसान हमारा हो रहा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया कि ये होता है कि पूरा टीम होती है उनकी, साइकोलॉजिस्ट की, जो प्रॉपर उन्हें गाइड करते हैं कि ये देखो ह्यूमन माइंड ना ऐसे काम करता है, थोड़ी सी ना इसमें क्यूरियोसिटी डाल दो, थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी डाल दो, लोग देखेंगे. आपने देखा ना न्यूज़ कौन सी ज़्यादा लोग देखते हैं या वीडियोस वायरल कौन सी होती हैं जिसमें नेगेटिविटी होती है, है ना. तो इस वजह से जैसा आपने कहा ना कि इवन अगर हम किसी क्रिकेट की बात करें तो वो भी कैसा बना दिया है, इसी तरीके से बना दिया है कि अच्छा इसमें और क्या मसाला डालें कि लोग ज़्यादा देखें उस चीज़ को, है ना. अपनी दुनिया भूल जाएं कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है क्या है, बस उसी चीज़ के अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं. वो तो बेचारे अपनी लाइफ, हम बेचारे वो तो अपनी लाइफ में करोड़ों कमा रहे हैं, अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उनको देखते हैं सिर्फ, अरे बड़ा अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा. सिमिलरली जैसा आपने कहा कि हम मूवीज़ देखते हैं, हम सोचते हैं अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी सी मिली मूवी देख कर, पर अल्टीमेटली वो खुशी नहीं मिली. वो फ़ायदा किसका हुआ, उन्हीं लोगों का हुआ जिनका वो बिजनेस है, अटेंशन स्पैन, है ना. और आपने एक चीज़ और अच्छा कहा कि जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हम कैसे यूज़ करते हैं, हमारा जो सिर है वो झुका हुआ होता है, है ना. और इसे टेक नेक बोलते हैं. कि ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक 8 साल का बच्चा आपने अपने गर्दन पर रखा हो, इतना प्रेशर हमारी गर्दन पर पड़ता है जब हम टेक्स्ट करते हैं नीचे सिर करके. इसलिए एक चीज़ और प्लीज़ यूज़ करें कि अपने सिर को सीधा रखकर सामने मोबाइल यूज़ करें. मुझे पता है ऑकवर्ड होगा, मुझे पता है कि आपको ऐसे लगेगा अरे लोग क्या सोचेंगे, पर नहीं, मुझे यहाँ पेन फील नहीं करना है ना, तो इसलिए इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है, है ना
2: जी.
1: और बिल्कुल स्लीपिंग साइकिल की तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि वो पूरी तरह ही डिस्टर्ब हो गई है. क्यों? क्योंकि कोई भी, चाहे मोबाइल का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन, वो ब्लू लाइट रेडिएट करता है. और वो ब्लू लाइट से क्या होता है, हमारे ब्रेन में केमिकल होता है मेलाटोनिन, जो नींद के लिए ज़रूरी होता है. और जब ब्लू लाइट उस पर पड़ती है ब्रेन पर, तो वो रिलीज नहीं होता. क्यों? क्योंकि ब्रेन को लगता है अरे अभी तो दिन है, इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, राइट. तो इस वजह से हम जब रात को सोने लगते हैं, 10 बजते हैं 10:30 बजते हैं, हम कहते हैं नींद नहीं आ रही, मोबाइल यूज़ कर लेते हैं. इनफैक्ट मोबाइल देखने से ही नींद नहीं आ रही है, हमें समझना है. जो ये स्लीपिंग पिल्स होती है ना, उसमें मेलाटोनिन डाला जाता है कि चलो नींद आ जाए लोगों को. तो हम अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो हमारी स्लीप साइकिल में, हमारी नींद में बहुत बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा. और फिर वही स्टोरी सेम पूरा दिन चलती रहेगी कि नींद पूरी नहीं होगी तो इरिटेटेड रहेंगे तो कहेंगे चलो रील्स देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, राइट. और बस इसमें एक लाइन और ऐड करूँगा कि हुआ क्या, अगर इसके नुकसान की बात करें तो हम रियल लाइफ से दूर होकर रील लाइफ में चले गए, है ना, सोशल मीडिया की लाइफ में चले गए. और वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, है ना, सच नहीं है वो बिल्कुल भी. इसी में एक और चीज़ अगर मैं ऐड करूँ, जैसे नींद ना आने को इंसोमेनिया कहते हैं, है ना. और इसी से कनेक्टेड एक बात कहूँ तो इंसोमेनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फोमेनिया हो रहा है. अच्छा. अगर बहुत ज़्यादा पूरा दिन, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि इलेक्शन चल रहे हैं या बहुत सी चीज़ें सुनते रहते हैं, तो रात को क्या चलेगा, जब सोएंगे तो वही सब तो चलेगा ना जो पूरा दिन अपने आप को खिलाया हमने, राइट. तो इस वजह से माइंड बहुत एक्टिव रहता है. और सही बताऊं तो 90% पीपल, लोगों को यही नींद का इशू है, क्वालिटी स्लीप नहीं है, इसी वजह से वो पूरा दिन इरिटेटेड रहते हैं.
2: जी, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी. मैंने ना एक्चुअली शिवानी दीदी का एक वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि हम जब सोने से पहले जो चीज़ हम सुनते हैं या अगर हमने फ़ोन में कुछ देखा तो हमारे दिमाग में वही सब चीज़ें चलती है, और सोने से एक घंटा पहले हमने अगर फ़ोन यूज़ किया ना तो हमारी नींद अच्छे से नहीं होती है, ब्रेन को उतना आराम नहीं मिलता है, ब्रेन वही थॉट्स प्रोसेस करता है और फिर हमारा उतना आराम नहीं हो पाता है. आराम बहुत ज़रूरी है हमारी ब्रेन के लिए, तो नेक्स्ट डे पे हमें थकान फील हो सकती है. और जब हम खाना खाते हैं, हम जिस टाइप का, अगर हम खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं या फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वही सब चीज़ें जाती है. अगर हम खाना शांति से बैठ के खाएंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी ताकत आती है, और ख़ास करके अगर भगवान को याद करके खाया तो उसमें और ज़्यादा पावर्स, बहुत ताकत मिलती है। तो वो कंटेंट हम जो देख रहे हैं वो भी नेगेटिव उस हद तक वो असर कर रहा है हमारे ऊपर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक एक कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे, जैसे बच्चे कहते हैं कि भैया क्या हुआ, देख लिया तो क्या हुआ, ये रील देख लिया तो। एक एक चीज़ जो हमने देखी है ना आज तक, उसका इम्पैक्ट हमारे, उसका असर हमारे मन पर हुआ है। वो अलग बात है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, वो पीछे की तरफ चला जाता है, मतलब गहराई में चला जाता है हमारे मन के, उसका पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत टॉक्सिक, बहुत जहरीला हो रहा है और हमें उसकी उसका पता भी नहीं है, है ना। इसलिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन का, अब इसी में अगर मैं एक लाइन ऐड करूँ तो, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं किसी इंसान की एडिक्शन के ना, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। मतलब मान लीजिए आप रील्स देख रहे हैं, एकदम से रील में कुछ ऐसी वीडियो आ गई जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, तो किसी इंसान को ट्रिगर हो जाता है। जैसे चाय पीने वाले इंसान को क्या होता है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया, उसको ट्रिगर हो जाता है चाय पीने का, है ना। ऐसे ही मान लो, अगर हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आजकल मूवीज़, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, इसमें हर तरह का कंटेंट है ना, नेगेटिव भी है, अजीब सा भी है, वो जैसी देखते हैं लोगों को ट्रिगर हो जाता है नेगेटिविटी का, उनकी जो गलत आते हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं। तो इसलिए एक एक चीज़ मैं क्या देख रहा हूँ उसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है।
2: जी बिल्कुल। इसके अलावा कितने नुकसान है, हमें नुकसान भी पता है, फ़ायदे भी पता है, और ये भी पता है कि अगर आदत लग गई, उसकी लत लग गई तो हमें कितना नुकसान हो जाता है। हम पढ़ाई, अगर जो पढ़ाई करते हैं या जिनके पास बहुत सारा काम है, वो काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के फिर वो फ़ोन यूज़ करते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस चीज़ की लत लग गई है, कि क्या मतलब लक्षण होते हैं?
1: देखिए, सबसे पहला लक्षण तो वही होता है कि जैसे ही फ्री हुए, है ना, कुछ काम कर रहे हैं, जैसे ही फ्री हुए तो आप देखना एकदम से ध्यान आपका आपके मोबाइल की तरफ जाएगा। कुछ करना भी नहीं होगा, बस एकदम से क्या होगा, कुछ देख लेते हैं, शायद किसी का मैसेज आया होगा, नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं, या लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए, वो देखने लग जाते हैं। कुछ नहीं हुआ तो चलो रील्स देख लेते हैं, है ना। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो दिखाना नहीं चाहते कि मैं अकेला हूँ। मान लो जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, ये मेरे साथ भी होता था पहले, कि मैं दिखाना नहीं चाहता था कि मैं फ्री हूँ या अकेला हूँ, तो मैं क्या करता था, कुछ काम नहीं, ऐसी मोबाइल खोलकर कुछ नहीं कर रहा, बस रील्स देख रहा हूँ, या प्रिटेंड कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये कि जब आप फ्री होते हो तो क्या सीधा ध्यान मेरा मेरे मोबाइल की तरफ जाता है, इट मीन्स वो चीज़ एडिक्शन का रूप ले चुकी है। जैसे ही सुबह उठे तो क्या ये थॉट आता है कि मोबाइल कहाँ है मेरा, मोबाइल कहाँ है, चलो कुछ किसी का मैसेज आया होगा। पहली चीज़ अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या है कि वो एडिक्शन का रूप ले चुकी है ना। ये भी चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि जैसे ही आप फ्री भी होते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी, आप घर के काम से फ्री हुए, अब आप सोचते हो चलो यार अब वो एपिसोड में क्या हुआ था पिछला, अब नेक्स्ट एपिसोड देख लेते हैं, या चलो यार देखते हैं कि मूवी कौन सी आई है नई, है ना। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेते रहने का अगर आपका आदत हो गई है, इसका मतलब आप एडिक्टेड हो गए हो।
2: जी, हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि कोई ना कोई बहाना चाहिए फ़ोन यूज़ करने का, कोई ना कोई, कुछ भी हो, मूवी हो या कोई न्यूज़ हो या कोई सॉन्ग प्ले करना है, किसी से फ़ोन पे बात करना है, मतलब कोई भी बहाना हो, पर फ़ोन से दूर नहीं रह सकते, बार बार हमको फ़ोन यूज़ करना है, उसको हम एडिक्शन बोल सकते हैं।
1: यस यस। दूसरा मैं ये कह रहा था कि आजकल एक टर्म है नोमोफोबिया, मतलब कि नो मोबाइल फोबिया, कि जैसे ही आपको एकदम से ध्यान आता है अरे मेरा फ़ोन कहाँ है, मान लीजिए वो फ़ोन दूर है या नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, तो बहुत अजीब सा होने लग जाता है। सेम जो हम बात कर रहे थे कि कि एक एडिक्टेड इंसान को जब वो चीज़ नहीं मिलती तो वो कैसा रेस्टलेस हो जाता है।
2: जी बिल्कुल,
1: है ना, ये विड्रॉल सिम्टम्स इन्हें कह सकते हैं। तो ये कुछ साइंस हैं चेक करने के कि क्या सही में ये एडिक्शन हो गई है क्या।
2: जी, ऐसे बार बार चेक करना फ़ोन, और कभी कोई ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है किसी में और ज़्यादा डिप्रेस भी रहता है, तो वो भी जब ये एक्सपीरियंस करते हैं तो वो भी ज़रा ज़रा सी बात पे अगर किसी ने कुछ बोल दिया और मूड ख़राब हो गया और वो फिर फ़ोन यूज़ करेंगे। ये भी चीज़ होती है।
1: यस यस, सेम एज एडिक्शन है ना, जब स्ट्रेस आ जाता है ना एकदम से, तो वो इंसान उसी तरफ भागता है जो उसको, जिस बात की उस इंसान को एडिक्शन है। तो अगर हम मोबाइल की तरफ जा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो एडिक्शन हो गया है उसका, क्योंकि अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। जो हमने कल भी बात की ना, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इमोशंस जो आ जाते हैं उसको फेस करने की बजाय उसे अवॉइड करते हैं। इट मीन्स वो उसने एडिक्शन का रूप ले लिया है।
2: जी, और हम अपने जो ज़रूरी काम होते हैं हम उनको छोड़ के फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो भी एक एडिक्शन हम पता चलता है कि हमें इसकी आदत लग गई है। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज़ करना और लोगों की प्रोफाइल्स चेक करना, बार बार कुछ भी करते रहो फ़ोन पे। हाँ। और काम हमारे टालते रहना, बाद में करना, और सोशल लाइफ, हम लोगों से बातचीत कम कर देते हैं, फ़ोन में ही ज़्यादा लगे रहते हैं, वो भी तो लग गई है ना फ़ोन की।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और ऐसे हम ऐसे बोलते हैं ना, फोमो बोलते हैं जिसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अगर हम फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों से अलग होंगे, बाकी सब यूज़ कर रहे हैं हम भी यूज़ करेंगे, अगर हम
1: हमें पीछे ना रह जाऊं,
2: पीछे ना रह जाऊं। जी वही, तो वही एक चीज़ होती है बहुत। और जब फ़ोन यूज़ करके हमें अच्छा फील होता है ना, डोपामिन रिलीज़ होता है, तो वो भी एक कारण बोल सकते हैं। तो और ये इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि यार हमको लत लग गई है फ़ोन की। तो इसके कॉजेज़ क्या है, इसके कारण क्या है?
1: कारण किसी भी एडिक्शन के कुछ होते हैं। सिमिलरली सेम बात हम मोबाइल एडिक्शन की या इंटरनेट एडिक्शन की, सोशल मीडिया एडिक्शन की बात कर सकते हैं। पहला तो क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी मतलब कि हमारा एक हैबिट है, एक इंसान का हैबिट होता है नॉलेज लेना।
2: जी।
1: तो उसे क्या होता है, उसे पूरी दुनिया की नॉलेज चाहिए होती है, राइट?
2: जी।
1: जैसे
0: मोड पर एक दोस्त है हमारे साथ, आइए उनसे बात कर लेते हैं और फिर लौटते हैं हितेश जी और मोनिका जी की ओर। हेलो, नमस्ते।
3: तो शुभा जी, एक ऐसा सवाल है
0: जी
3: कि ये जो फेक न्यूज आते हैं, फेक मैसेज आते हैं
0: जी,
3: अभी हम पुराने जमाने के सीनियर सिटीजन है, कभी कभी कुछ समझता है, कभी नहीं समझता है, और कभी कभी क्लिक भी वो हो जाता है, तो उसके बारे में कुछ प्लीज सर हितेश जी भाई जी को कहना कि इसके बारे में फेक न्यूज से कैसे बचे, और जिनको ज्ञान नहीं है वो भाई बहने कैसे बचे, इसके बारे में बोलना प्लीज, जानकारी दीजिए।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। लौटते हैं हमारे मेहमानों के पास।
1: जी, जो मैं कारण बता रहा था उसी से कनेक्ट करके ये बात बता देता हूँ कि हमारा एक स्वभाव होता है नॉलेज लेना, है ना, मतलब हम चाहते हैं हमें हिस्ट्री का भी पता हो, क्या हुआ था, मुगल कब आए थे, दुनिया कैसे शुरू हुई, है ना, हमें सब जानना होता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह हम सबके अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है, वो रहनी भी चाहिए, है ना। लेकिन जैसे कि फेक न्यूज की बात उन्होंने कहा कि अब क्या होता है, लोग इसका फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं कि समझ आ गया कि इंसान क्यूरियस है। अब आप देखना वही बात कि वेब सीरीज भी ऐसी दिखाई जाती है कि जब एंड होता है ना तो क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी के साथ, हाय आगे क्या होगा, मन करता है कि यार अगला भी अभी देख लो, है ना।
2: हाँ।
1: और भी जो भी हम चीज़ें हैं, सोशल मीडिया की बात करें, है ना, तो वो उसी पर निर्धारित होती हैं कि ह्यूमंस आर क्यूरियस, हम क्यूरियस हैं, हम जानना चाहते हैं चीज़ों को। अब उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। अब इसमें एक, अगर मैं सॉल्यूशन अभी बात नहीं करेंगे, है ना
2: जी,
1: तो उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर दूँ तो यही कहूँ कि अगर जो फेक न्यूज़ है, पहली चीज़ तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो होते हैं ना, जैसे दुनिया में बोलते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी है वैसे ही एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है. मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड भेजते हैं, ऐसा हो गया इसने ऐसा कर दिया. वो बिल्कुल भी सच नहीं होता है. इसलिए पहली चीज, व्हाट्सएप पे जो भी फॉरवर्डेड मैसेजेस है उसे मुझे देखना ही नहीं है. पढ़ना तो दूर की बात है, मुझे बस इग्नोर कर देना है उसे. क्योंकि वो अगर सच होता तो वो सही जगह से आ जाता. इस चीज़ को मुझे छोड़ना है, पहली बात तो ये करनी है. ठीक है. दूसरा, मैं मानता हूँ कि अब न्यूज़ में जो दिखाया जाता है वही हम सच मानते हैं. इसलिए अपना बुद्धि को पावरफुल, शक्तिशाली बनाना बहुत ज़रूरी है. खुद परखना ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, है ना. और उसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं देखता हूँ. आप मुझसे पूछोगे इलेक्शन कहाँ पे, कौन सी डेट को चल रहा है, कब है, क्या है, कोई आइडिया नहीं है. लेकिन फिर भी जो बहुत ज़रूरी न्यूज़ होती है ना, बहुत ज़रूरी, वो पहुँच ही जाती है. कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई कुछ बता ही देता है जो मेरे जीवन में शायद कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, जो शायद ज़रूरी होगा. वो कोई ना कोई तो मुझे ज़रूर बता ही देता है, है ना. इसलिए किसी फ्रेंड ने कहा, किसी पड़ोसी ने कहा, या व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड भेजा, वो सब फेक है. उसको तो मुझे देखना ही नहीं है, पहली बात तो ये करनी है ना. तो बाकी कॉजेज की अगर हम बात करें सोशल मीडिया एडिक्शन की, तो दूसरा कारण होता है कि हमारा जो इंसान का मन है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा उसका प्रभाव होता है. उसे नेगेटिविटी थोड़ा अट्रैक्ट करती है. ये कारण हो जाता है एडिक्शन का. जैसा आपने कहा ना कि प्रॉपर टीम बैठी होती है लोगों की, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें दूसरों की लाइफ को देखना बड़ा अच्छा लगता है. अब बात सिंपल सी है. अगर आज से हम 30-40 साल पहले जाएं, जब मोबाइल नहीं थे, तो गांव के लोग क्या करते थे, अपने घर के बाहर एक प्लेटफॉर्म होता है ना, उस पर बैठ जाते थे. आपने देखा होगा गांव में पेड़ के नीचे बैठ जाते थे. फिर क्या करते थे, वो आसपास लोगों को देखते थे जो गुजर रहे हैं, और उनके बारे में कमेंट करते थे. बात वही है, लेकिन अभी क्या हो गई, अभी ऑनलाइन हो गई, अभी डिजिटल हो गई. पर इंसान की आदत तो वही है ना, कि दूसरों की लाइफ में झांकने की आदत है.
2: बैठते थे कभी साथ में, बैठ के गपशप करते थे,
1: इधर उधर की बातें करते थे. अभी हम क्या करते हैं, जैसा आपने कहा, किसी की प्रोफाइल चेक कर ली, कौन कहाँ घूम रहा है वो चेक कर लिया. क्योंकि वो आदत है, एक आदत हो चुकी है. मैं ये नहीं कहूंगा आदत है, आदत हो चुकी है. हम अगला कारण एडिक्शन का होता है, हम अकेले नहीं रहना चाहते.
2: जी बिल्कुल.
1: और अकेले वैसे भी नहीं रहना है, बट हमें क्या लगता है कि 24 घंटे कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, किसी से बात होती रहे, कुछ ना कुछ देखता रहूं. डर लगता है हमें, जैसे हमने बात की थी कि अपने आप का डर लगता है.
2: ये बहुत आजकल सबकी कंप्लेंट रहती है कि अकेला नहीं रहना है. हाँ, कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए.
1: और ये लोनलीनेस तो, अगेन जैसे मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे सब कुछ है क्या, पर असली में 80% लोग लोनलीनेस फील करते हैं, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो 30 साल से भी मैरिड हो, 40 साल भी हो, फिर भी वो अकेलापन फील करते हैं. क्यों, उसके कारण बहुत सारे हैं. बट ये समझना ज़रूरी है कि ये सोशल मीडिया से, मोबाइल से, ये अकेलापन जाने वाला नहीं है. ये और ज़्यादा फील होगा मुझे, है ना. कहते हैं ना, हमारे दोस्त तो बहुत बन गए, लेकिन जो रियल कनेक्शन होते हैं ना, वो नहीं बने हैं. वो बस कहने की बातें हैं कि इतने लोगों से मैं बात कर रही हूँ, पर वो काम की बात नहीं हो पाती है. ठीक है
2: जी.
1: और रीज़न होता है पीयर प्रेशर. जैसा आपने कहा कि मेरे सभी दोस्त मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सभी दोस्त, मान लो आप कॉलेज में हो, तो कॉलेज में क्या बातें होती हैं, अरे तुमने वो लेटेस्ट वेब सीरीज़ देखी क्या. अब सभी दोस्त वो बात कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर भी तो पीयर प्रेशर आएगा ना. आपके सभी दोस्त रील्स बना रहे हैं, डांस की वीडियोस डाल रहे हैं, तो आपको भी प्रेशर आ जाएगा.
2: बोलते, अरे तूने नहीं देखा, अरे यार क्या बात हुई.
1: तो हमारा मन इतना पावरफुल अभी नहीं है, काफी चीजों की वजह से, तो हम भी अफेक्ट हो जाते हैं उन बातों से.
2: जी हाँ.
1: तो ये कारण है जो हम एडिक्टेड हो जाते हैं.
2: जी, और टेक्नोलॉजिकल रीजंस होते हैं, गेम्स होती है, और हमें गेम्स इस तरह से डिजाइन की होती है जो हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट, हम उसमें घुस जाते हैं,
1: तो मुझे याद है निकलना। हाँ, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, मैंने पूछा क्यों गेम खेल रहे हो, बोलते कि इतने पॉइंट्स ले लूंगा ना भैया मुझे टी शर्ट मिलेगी। तो मैंने बोला यार मैं टी शर्ट दिला देता हूँ आपको, आप ये गेम छोड़ दो। तो वो रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाते ना, तो बिल्कुल आपने सच बोला, रियल लाइफ में कुछ अच्छा सा नहीं होता है ना, तो हम गेम में ढूंढते अपने आप को कि मैं गेम में अच्छा करूंगा, मैं ऐसा दिखता हूँ गेम में, मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं, इतना कुछ है, तो बहुत फेक लाइफ हो गई है
2: जी।
1: और कोई पॉइंट इसमें?
2: जी, नोटिफिकेशन आते हैं हमको फोन पे, वो हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम ये सारे हमने देख लिए, इसके कॉजेज तो वैसे बहुत हैं, पर कॉजेज हमें, हम सब जानते हैं इसके कारण, हमें पता होते हैं कि क्या कारण है, क्यों हमें फ़ोन की लत लग गई है, पर हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है कि उस लत से बाहर कैसे आना है, इसकी हम अच्छे से चर्चा करेंगे आगे।
0: ब्रेक ले ले यहाँ पर एक।
2: जी बिल्कुल,
0: तो लेते हैं यहाँ पर एक अल्प विराम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे मध्य आज हैं हितेश जी, आप एक लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इसके साथ साथ आप राजयोगा भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हितेश जी से पूछ सकते हैं, आप एक इंजीनियर भी हैं, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी डेप्यूटी डायरेक्टर रूम नंबर 116 इविंग शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001 फोन नंबर 0112338587 ईमेल prabhudat.sharma@nic.in या CISCELL-MOIB@NIC.IN।

0: आप सभी का फिर से स्वागत है प्रोग्राम युवा मंच पर, और आज हमारे मध्य मोनिका और हितेश जी हैं। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडिक्शंस के बारे में, फ़ोन के एडिक्शंस के बारे में, और बहुत सारे रीजंस आपको पता चला और कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने जाना, और इसके साथ साथ जो बैड इफ़ेक्ट्स है उससे कैसे हम दूर रह सकते हैं उस बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। जी, हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में हम देखेंगे कि हमें यार कोई लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी काफ़ी श्रोता हमें सुन भी रहे होंगे, उनको पता भी है कि ये हमें इससे बाहर आना है, लेकिन वो सीरियसली नहीं भी लेंगे शायद कोई। पर हमें पता होगा कि यार इसका नुकसान क्या है, इसके नेगेटिव साइड्स क्या है, हमारे लाइफ में क्या नेगेटिव हो रहा है उसकी वजह से, फिज़िकल बॉडी में या मतलब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कुछ, और मेंटली हम कैसे उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम एक क्विक चर्चा करेंगे इस पर कि क्या क्या क्या होते हैं, जस्ट पॉइंट्स अगर आप बता
2: सॉल्यूशन ना,
1: सॉल्यूशन के पहले हम जानेंगे कि क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, क्या प्रभाव बनाता है ये।
2: हमने वैसे काफ़ी बात कर लिया इस बारे में कि पहली चीज़ तो वही कि ये हमारा रियलिटी से कनेक्शन तोड़ देता है
1: जी।
2: मतलब जो सही में जीवन में ज़रूरी है उससे हमारा ध्यान हटकर गलत चीज़ों में चला जाता है
1: जी।
2: मतलब मेंटल हेल्थ की बात करें तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, हमारे अंदर कन्फ्यूजन रहती है, हमारी खुशी गायब हो जाती है, एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक अजीब सा गिल्ट रहता है पूरा दिन, क्योंकि अच्छा काम नहीं किया ना, टाइम वेस्ट किया है ना। और फिजिकल हेल्थ की बात करें तो वही बात कि बहुत से लोगों को आँखों में पेन होता है, बहुत से लोगों को, मुझे याद है जब मैं इतना अवेयर नहीं था तो आँखों में पेन होता था, बॉडी पूरा स्टिफ हो जाता है, और अगर प्रॉपरली आप लैपटॉप भी प्रॉपरली यूज़ ना करो तो जैसे मैंने टेकनेक कहा वो भी हो जाता है, पोस्चर ख़राब हो जाता है, तो ओवरऑल हमारा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और हमें उसका समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। अगर हम सर्वाइकल की बात करें वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये इस चीज़ को ऐड करता है ना
1: जी।
2: और इमोशनली स्लीप की तो हमने बात की ही कि अगर नींद ही ठीक नहीं होगी तो उसका असर हमारे पूरे दिन में, हमारे काम में, हर जगह पे पड़ेगा
1: जी। और हमारे काम हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, फ़ोन जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतनी हमारी काम करने की जो क्षमता रहती है ना वो कम होती है, हम पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जॉब हमारी है तो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, असाइनमेंट्स हैं स्कूल के कॉलेज के, और हेल्थ के इश्यूज़ अलग हैं, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है हमारी, हमारा सोने का स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हमारे स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाते हैं, और हमारा मीन्स फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, लाइक हम ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं, सब्सक्रिप्शन होते हैं, अगर हमें लगता है कि यार ज़्यादा मूवीज़ देखनी है तो हम उसमें उसको ख़रीद भी लेते हैं, कि नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे अमेज़ॉन प्राइम हो गया,
2: शॉपिंग भी हो गया ना,
1: शॉपिंग भी हो गया।
2: इजी है कि घर में बैठे बैठे मिलेगा तो खर्चा कर देते हैं, बाद में फिर सोचते हैं, ये भी बहुत बड़ा
1: बहुत
2: डिटेल में बात करने वाली बात है ये, कि लोग क्रेडिट कार्ड लोन ले लेकर गलत मतलब सही डिसीजन नहीं लेते हैं, और फिर बाद में प्रेशर आता है हर महीने।
1: जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि उनके पास टेक्निक रहती है लोगों का ध्यान खींचने वाली, वही सब काम करती है, उनका तो फ़ायदा हो रहा है ना, हमें पता नहीं चलता, हम उसमें इतने डूब जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमारा नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं।
2: राइट।
1: और इसके अलावा हमारे कभी फ़ोन, गाड़ी चलाते वक्त हमने फ़ोन यूज़ किया तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, और
2: वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमें लगता है अरे मेरा ध्यान तो पूरा है रोड पर, लेकिन एक सेकंड का ध्यान हटता है तो वो एक्सीडेंट हो जाता है
1: जी। और हमें कभी काम पे जाना है और हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो हम लेट पहुँचते हैं, या फ़ोन पे बात कर लिया ज़्यादा, इतने 2-3 घंटे, तो ये तो आजकल मतलब जो यूथ है बहुत बातें करते हैं फोन पे, ये चीज़ बहुत कॉमन है यूथ में, फ़ोन पे बहुत देर बात करते हैं, फिर उससे ना बहुत रेडिएशंस, अगर हम ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है. मीन्स क्या मिल रहा है आपको, अगर बात करनी है ठीक है, दो तीन घंटे
2: ज्यादा बात करने से उल्टा प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती है.
1: बात करनी है, हम फेस टू फेस अच्छे से बात कर सकते हैं, फोन पे बात करना वो दो तीन घंटे वो कुछ आउटपुट नहीं होता है ना
2: मिल,
1: लेकिन हाँ वो जैसे हमने बोला कि डोपामिन रिलीज होता है उसका कोई सोल्यूशन.
2: हाँ वही ना कि कुछ और, वही बात है कुछ और लाइफ में करने को नहीं है ना, तो हम सोचते चलो यही कर लेते हैं
1: जी, हमें खुशी मिलती है जिसमें
2: कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, पता नहीं आज क्या करना है कल क्या करना है, कुछ बड़ा करना है कुछ वैल्यूएबल करना है, वो सब लाइफ में नहीं होता. मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं एक ओलंपिक मेडल की तैयारी कर रहा हूँ, ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये सब चीज़ें करूँगा क्या, ये क्या मैं लेट नाइट किसी से बात करूँगा, तीन तीन घंटे बात करूँगा क्या किसी
1: से,
2: क्यों नहीं करूँगा,
1: क्योंकि हमारे पास लक्ष्य है हमें
2: exactly.
1: हम उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं.
2: यस, मिलिट्री में मैं हूँ, आर्मी में मैं हूँ, तो क्या मैं तीन तीन घंटे बात करूंगा किसी से, मन होगा तो भी नहीं कर पाऊंगा. तो एक लाइफ में बहुत बड़ा एम होना बहुत जरूरी है और वो हम सबकी लाइफ में मिसिंग है, इस वजह से वो इशू आने लग जाते हैं.
1: जी एक बात बताना चाहूँगी, मुझे भी एक बार फ़ोन एडिक्शन हो गया था और फिर अभी मैं इतनी सारी चीज़ों में बिजी हो गई हूँ ना, फिर अभी लगता है कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ, इतना सीख भी रही हूँ, इतना जितना हम करते हैं ना लाइफ में, पढ़ाई कर ली या जॉब कर ली या कुछ भी सेवा कर ली, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और फ़ोन में तो, और मुझे अभी लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट किया था और मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं था उसमें से, उल्टा मेरा नुकसान होता था. मुझे भी नेक का पेन अभी थोड़ा बहुत वो क्योर हो गया, एक्सरसाइज स्टार्ट की है ना, तो वो तो ठीक हो गया है, पर अभी तो मैं फिर से फ़ोन एडिक्शन में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मैंने देखा हुआ है. तो अभी हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी बढ़ेंगे.
2: सबसे ज़रूरी बात जो हमें करनी चाहिए
1: जी,
2: अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊँ ना, पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए जो मैं करता हूँ कि एक दिन में मैं दो घंटे का ब्रेक लेता हूँ कि मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना है.
1: ओके.
2: और एक हफ्ते में एक दिन का, जैसे मंडे को हम एक इनिशिएटिव करते हैं कि नो इंटरनेट मंडे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मुझे इंटरनेट यूज़ नहीं करना है. ठीक है. अब बहुत से लोगों का क्या आता है, मोबाइल काम होता है, मेल होता है, ठीक है आप कीजिए, बट आई विल नॉट चेक सोशल मीडिया, कैन आई डू इट और नॉट, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं. ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है, आपको इतना अच्छा लगेगा करने के बाद और आपको समझ आएगा कि ये इशू था मेरी लाइफ में, है ना. इसलिए दो घंटे का, बीच में एक दिन का डिजिटल फास्टिंग, है ना, डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें. और दूसरा, जितना हो सके हम नेचर में टाइम स्पेंड करें, जितना सुबह सुबह जाएंगे, पार्क में जाएंगे, बेयर फुट नंगे पांव चलेंगे, जितना सनलाइट को अपने अंदर लेंगे, तो क्या होगा, हमारी स्लीप साइकिल अच्छी होगी और जो डोपामीन है वो अच्छी जगह से रिलीज होगा, हेल्दी रिलीज होगा. तो आप अपने आप देखना, आप सुबह एक घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, आपका मोबाइल देखने का मन ही नहीं करेगा. आप ये ट्राई करके देखना
1: जी, बिल्कुल.
2: स्पोर्ट्स खेलिए, कुछ बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, योगा, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आप इन्वॉल्व हों, बाहर ज़्यादा रहे, चार दीवारी में कम से कम हमें रहना है. और जैसा आपने कहा कि सर्व कीजिए, सेवा कीजिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन कीजिए, कोई कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कीजिए, चाहे वो बच्चों का ध्यान रखने वाले हों, चाहे वो महिलाओं का ध्यान रखने वाले हों, चाहे वो एडिक्शन का ध्यान रखने वाले हों, चाहे वो मेडिटेशन का ध्यान रखने वाले हों, किसी ना किसी काम में अपने आप को अच्छे से इन्वॉल्व कर लीजिए, है ना. ऐसे बहुत से मिलेंगे, आप करने वाले बनिए. वॉलंटियर्स तो सबको चाहिए होते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, आप देखना बहुत बहुत लाइफ डिफरेंट हो जाएगी
1: जी. उसमें कितना पुण्य भी जमा होता है हमारा,
2: वो
1: उसमें से फायदा हो रहा है.
2: यस यस, इनडायरेक्टली बहुत पुण्य हमारा जमा होता है. और एक बात मैं कहूँगा कि स्ट्रेस फ्री रहिए अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन से बचना चाहते हो, क्योंकि आप ध्यान देना कब मन करता है ये सब चीजें देखने का, जब स्ट्रेस हो जाता है, अंदर खालीपन अकेलापन फील होता है. इसलिए बहुत खुश रहना है, लाइट रहना है, मजे में रहना है और ये रियल लाइफ को एंजॉय करना है. जब आप पार्क में वॉक कर रहे हैं ना,

0: तो ये अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि ये रियल लाइफ है, इसको मुझे एंजॉय करना है, ना कि वो सोशल मीडिया वाली लाइफ।
1: जी, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है
0: हाँ
1: जब नेचर में जाते हैं, खुली हवा में ऐसे लंबी सांस लेके, इतना
0: हाँ
1: अच्छा
0: वो
1: लगता है
0: असली
1: ना,
0: लाइफ है,
1: बहुत अच्छा
0: अपने आप को
1: लगता
0: बार
1: है।
0: बार बताना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी सेल्फ टॉक और मेडिटेशन, ये वो तो अल्टीमेट है, वो करना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, बार बार समझाना पड़ेगा कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, भरपूर हूँ, मुझे बाहर की चीज़ें, बाहर की नॉलेज, बाहर की मूवीज़, बाहर की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फील नहीं करवा सकती, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, है ना। और जैसे न्यूज़ की बात कर रहे थे, मुझे नहीं जानना किसी की लाइफ में इधर उधर क्या हो रहा है ना।
1: जी
0: बहुत सी ऐसी
1: हाँ,
0: चीज़ें हैं जो वो अननेसेसरी सुनते हैं, नहीं जानना मुझे कि आईपीएल में कौन जीत रहा है ना। ऐसे थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मुझे नहीं देखना दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, पर मैं किसी भी अकाउंट को देखता भी नहीं हूँ। मैं मजाक में कहता हूँ कि मेरे अकाउंट में सिर्फ आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। थोड़ा रूल बनाना पड़ेगा कि मुझे नहीं देखना किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, जो बात मेरे काम की नहीं है मुझे देखना ही नहीं है। ऐसे
1: जी
0: बात अपने आप से करनी पड़ेगी, और मेडिटेशन में अपने आप को हीलिंग करना, क्योंकि हीलिंग नहीं होती तभी ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो अच्छे से मेडिटेशन सीख कर अपनी हीलिंग करेंगे, अपने अंदर खालीपन अकेलापन दूर करेंगे, तो ये बाहर बाहर से ढूंढना हम बंद कर देंगे।
1: जी, इसके अलावा आपके पास और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं?
0: और
1: मेरे
0: प्रैक्टिक,
1: पास है
0: हाँ
1: एक्चुअली,
0: आप थोड़ा
1: मैंने
0: सा
1: भी
0: बताइए। हाँ
1: जी हमें, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हम अगर हमें बहुत आलस हो रहा है या हम टाल टाल रहे हैं, हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उसको करते हैं कि इसमें मिल रही है यार, ये मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो मैंने जैसे बोला था 5 मिनट रूल वाला, वो हम कर सकते हैं, उससे
0: जी
1: भी हम फ़ोन की लत से बाहर आ सकते हैं। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ हम कर सकते हैं। आपके जो सॉल्यूशंस थे वो तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत अच्छे, नेचर में टाइम स्पेंड करना, एक्सरसाइज करना, उसमें ये भी हम ऐड कर सकते हैं 5 मिनट रूल्स, और फ़ोन फ्री एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हमने एक्सरसाइज कर ली, कुकिंग कर ली, हमारी हॉबीज़ होती हैं, और क्रिएटिव चीज़ें कर ली, क्राफ्ट कर लिया। हमने एक बार इसका सेशन भी लिया था कि हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं घर में, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना सकते हैं, बॉटल में से, आइसक्रीम स्टिक्स में से, कितना हमने इस पर डिस्कशन भी किया था, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो वैसे यूट्यूब पे भी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, और हम इसको बेच भी सकते हैं, ऐसे काफ़ी हम क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। और हम म्यूज़िक तो सुन सकते हैं, म्यूज़िक के लिए हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फ़ोन यूज़ करो, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, फ़ोन यूज़ करने के लिए मना बिल्कुल नहीं है।
0: हाँ फोन यूज़ करो, फोन आपको यूज़ ना करे, बस ये ध्यान रखना है।
1: जी, और अगर हम आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, हम नहीं आ पा रहे इससे बाहर, तो हम किसी प्रोफेशनल की भी सहायता ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि स्टक हो तो किसी ना किसी से गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है।
1: जी,
0: जी
1: और हम अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली में किसी को बोल सकते हैं कि वो हमें चेक करें कि हम फ़ोन का कितना यूज़ कर रहे हैं, और हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और हम ऐसे ऐप्स भी आते हैं जो ब्लॉक करते हैं कोई भी ऐप, हमें अगर ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो हमें लगता है कि हमें हमें पता है कि हम इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं, हमें इसकी आदत छोड़नी है। तो हम ऐसा ऐप होता है जो ब्लॉक करता है इन ऐप्स को, अगर हमने खोला तो वो तुरंत उसको बंद कर देता है। तो ऐसे ऐप्स भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और ऐसे काफ़ी सॉल्यूशंस हैं, इनको हम कर
0: हाँ,
1: सकते हैं।
0: मेन सॉल्यूशन जो हमें ट्राई करना है कि मंडे को इंटरनेट नहीं यूज़ करना, वो ट्राई करके देखिए, फिर बहुत बहुत चेंज आएगा और बहुत मज़ा आएगा।
2: जी बिल्कुल, तो इन्हीं सभी बातों के साथ यहीं पर रुकना चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। फैक्ट चेक्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ टूल्स हैं, वो आपको बताएंगे, लेकिन अगली कड़ियों में बताएंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। अगला कार्यक्रम है उड़ान मोना जी के साथ। मोनिका एंड हितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत
1: थैंक यू।
0: धन्यवाद।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: पहले की बात है, दूर दूर तक पहले हरे भरे पहाड़ों और चमकती झीलों के बीच एक अद्भुत जंगल था जिसका नाम था बर्ड लैंड। इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ केवल पक्षी ही रहते थे। सुबह होते ही पूरा जंगल मीठी चहचहाहट से गूंज उठता और ऐसा लगता मानो प्रकृति खुद कोई मधुर संगीत गा रही हो। इस सुंदर जंगल पर शासन करते थे बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा गरुड़ विहंगराज। उनकी एक ही सीख थी, जिस जंगल में सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं वही जंगल सबसे सुखी होता है। उनके राज में हर पक्षी की अपनी एक खास जिम्मेदारी थी। सारिका पूरे जंगल में खुशियों के गीत गाती थी। पीहू तोता दूर दूर की खबरें लाकर सबको सुनाता था। कोकिला अपनी मीठी आवाज से वातावरण को मधुर बना देती थी। धवर बगुला झील की देखभाल करता था और चतुर कौवा कागेश अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। इसी जंगल में रहता था एक बेहद सुंदर मोर जिसका नाम था मयंक। जब भी सूरज की पहली किरणें उसके रंग बिरंगे पंखों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो हजारों नीलम और पन्ने एक साथ चमक उठे हों। आसपास के जंगलों से भी पक्षी केवल उसे देखने आया करते थे। धीरे धीरे इस तारीफ ने मयंक के मन में घमंड भर दिया। अब वह किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, जहां जाता बस अपनी सुंदरता की बातें करता। एक दिन झील के किनारे कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे।
2: देखो फिर वही घमंडी चाल।
3: इसे लगता है कि पूरी दुनिया इसकी सुंदरता की दीवानी है।
4: सच कहूं, इसके पंख जितने सुंदर हैं, इसका व्यवहार उतना ही खराब है।
1: उसी समय मयंक वहां से गुजरा। उसे महसूस हो गया कि सभी उसी की बातें कर रहे हैं। वो और भी अकड़कर चलने लगा और झील के किनारे जाकर अपना प्रतिबिंब देखने लगा।
5: वाह, आखिर इतनी सुंदरता सबको कहां नसीब होती है। मेरे जैसे पंख पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। मैं सचमुच सबसे अलग हूँ।
1: पास की डाल पर बैठा कागेश ये सब देख रहा था। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला,
6: जिसे अपनी सुंदरता का घमंड हो जाए उसे जीवन कभी न कभी विनम्र होना सिखा ही देता है, लेकिन अगर ये अपनी गलती खुद समझ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं।
1: कागेश के मन में एक योजना जन्म ले चुकी थी। उस शाम सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। पूरा बर्डलैंड सुनहरी रोशनी से नहा गया था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, लेकिन कागेश के मन में एक योजना चल रही थी। वो उड़ता हुआ सीधे मयंक के पास पहुंचा। उस समय मयंक झील के किनारे अपने रंग बिरंगे पंखों को बड़े गर्व से सवार रहा था।
6: वाह मयंक, सच कहूं तुम्हारी सुंदरता की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो।
1: इतनी तारीफ सुनकर मयंक का सीना और चौड़ा हो गया।
5: अरे कागेश, आखिर किसी ने तो मेरी असली कीमत पहचानी, बाकी पक्षी तो बस मुझसे जलते हैं।
6: चलेंगे क्यों नहीं, आखिर पूरे जंगल में तुम्हारे जैसे पंख किसी के पास है ही नहीं।
1: मयंक गर्व से मुस्कुराया।
5: बिल्कुल सही कहा, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ।
1: कागेश ने धीरे से अगला दाव चला।
6: लेकिन एक बात समझ में नहीं आती।
5: क्या?
6: अगर तुम सच में सबसे सुंदर हो तो पूरे जंगल ने अभी तक तुम्हारी असली खूबसूरती देखी ही कहाँ है।
1: मयंक चौंक गया।
7: मतलब?
6: सोचो, जब सुबह सूरज निकले और तुम बादलों की ऊंचाई तक उड़ जाओ, उस समय सुनहरी किरणें तुम्हारे पंखों पर पड़ेंगी, तब तो पूरा जंगल तुम्हें देखकर दंग रह जाएगा।
1: मयंक की आंखें चमक उठीं।
5: वाह, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं।
6: यही तो कह रहा हूँ, कल सुबह झील के किनारे सबको बुलाते हैं, फिर तुम अपनी शानदार उड़ान से सबको दिखा देना कि तुम सबसे महान और सबसे सुंदर पक्षी हो।
1: मयंक बिना सोचे समझे तुरंत तैयार हो गया।
5: ठीक है, कल सुबह पूरा जंगल मेरी महानता देखेगा।
1: कागेश मन ही मन मुस्कुराया।
6: कभी कभी घमंड को हराने के लिए ताकत नहीं बुद्धि की जरूरत होती है। उम्मीद है कल इसे अपनी असली गलती समझ आ जाएगी।
1: अगले दिन की खबर पूरे बर्डलैंड में आग की तरह फैल गई। हर कोई उत्सुक था कि आखिर मयंक ऐसा कौन सा कारनामा करने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ ही झील के किनारे सैकड़ों पक्षी इकट्ठा होने लगे। सभी की निगाहें अब सिर्फ एक ही पक्षी पर थीं, मयंक। अगली सुबह बर्डलैंड जंगल में एक अलग ही उत्साह था। झील के किनारे लगभग सभी पक्षी इकट्ठा हो चुके थे। कोई उत्सुक था तो कोई हैरान कि आखिर मयंक क्या करने वाला है। पास ही एक ऊंचा टीला था, उसी पर मयंक पूरे आत्मविश्वास के साथ चढ़ गया। उसने अपने रंग बिरंगे पंख पूरी शान से फैला दिए।
5: आज तुम सब अपनी आंखों से देखोगे कि इस जंगल का सबसे सुंदर और सबसे महान पक्षी कौन है।
1: वीर में हलचल मच गई।
7: क्या सच में मयंक बादलों तक उड़ पाएगा?
4: मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन देखते हैं।
1: एक, दो, तीन, और वो टीले से छलांग लगा दी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन उसके भारी और लंबे पंख उसे ऊंचाई तक नहीं ले जा सके। नीचे खड़ा कागेश चुपचाप सब देख रहा था। मयंक ने गहरी सांस ली। उसने पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए। वो जितनी तेजी से पंख फड़फड़ाता उतनी ही तेजी से नीचे आने लगता।
5: अरे ये क्या, मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा?
1: अगले ही पल धड़ाम, वो सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके कुछ सुंदर पंख भी बिखर गए। कुछ पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक कई पक्षियों की हंसी छूट गई। पिहू अपनी हंसी रोक नहीं पाया। सारिका ने मुंह पर पंख रख लिया। धवल भी मुस्कुराने लगा। मयंक शर्ण से जमीन की ओर देखने लगा। उसी समय आसमान से एक तेज आवाज सुनाई दी।
8: यहाँ क्या हो रहा है?
1: सभी पक्षियों ने सम्मान से सिर झुका लिया। राजा गरुड़ नीचे उतरे और मयंक की ओर देखा।
8: मयंक, तुमने ऐसी मूर्खता क्यों की?
1: कभी कागेश आगे आया।
6: महाराज, मयंक को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया था। इसे लगता था कि ये सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैंने इसे ऐसा अवसर दिया कि ये स्वयं अपनी गलती समझ सके।
1: राजा गरुड़ ने गंभीर नजरों से मयंक की ओर देखा। मयंक की आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। झील के किनारे गहरा सन्नाटा छा गया था। कुछ देर पहले जो मयंक अपनी सुंदरता पर घमंड कर रहा था, वही अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था।
5: महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी सुंदरता के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मुझे किसी की अच्छाई दिखाई ही नहीं दी। मैं सोचता था कि सुंदर पंख ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज समझ आया कि बिना अच्छे स्वभाव के सुंदरता की कोई कीमत नहीं होती।
1: राजा विहंगराज मुस्कुराए और बोले,
8: मयंक, गलती करना बुरा नहीं होता, अपनी गलती मानकर उसे सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी है।
1: फिर उन्होंने सभी पक्षियों की ओर देखकर कहा,
8: याद रखो, किसी को उसके रंग रूप या सुंदर पंखों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, दया और सम्मान से पहचाना जाता है। यही गुण किसी को सचमुच महान बनाते हैं।
1: सभी पक्षियों ने सहमति में सिर हिलाया। मयंक सीधे कागेश के पास गया।
6: कागेश, मैं समझ गया कि तुमने मेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए ये सब किया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। मुझे माफ कर दो।
1: कागेश मुस्कुराया।
6: दोस्त, सच्चा मित्र वही होता है जो समय आने पर हमारी गलती भी दिखा दे। आज तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
1: इसके बाद मयंक एक एक करके सभी पक्षियों के पास गया। उसने सारिका से कहा,
5: तुम्हारी मीठी आवाज पूरे जंगल को खुशियों से भर देती है।
1: पीहू से बोला,
5: तुम्हारी समझदारी और सबकी मदद करने की आदत सचमुच काबिले तारीफ है।
1: फिर वो कोकिला के पास पहुंचा।
5: तुम्हारी मधुर आवाज सुनकर मन को शांति मिलती है, तुम सच में बहुत अनमोल हो।
1: ये सुनकर सभी पक्षी खुश हो गए। धीरे धीरे मयंक का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब वो किसी का अपमान नहीं करता था, वो छोटे बड़े सभी पक्षियों की मदद करता, सबसे प्रेम से बात करता और सबका सम्मान करता। कुछ ही दिनों में वही मयंक, जिसे कभी कोई चल नहीं करता था, पूरे बोर्डलैंड का सबसे प्रिय पक्षी बन गया। राजा विहंगराज ने मुस्कुरा कर कहा,
8: अब ये जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है, क्योंकि यहाँ केवल सुंदर पंख ही नहीं बल्कि सुंदर दिल भी रहते हैं।
1: घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता सबके दिलों में जगह बना देती है। असली सुंदरता चेहरे या पंखों में नहीं बल्कि अच्छे स्वभाव, दया और सम्मान में होती है।
9: अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हो। जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: घोड़ी की जो बेली है चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आवाज

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए
2: किसी गांव में रमेश नाम का एक चतुर किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ छोटे से घर में रहता था। रमेश के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह फसल उप जाकर

0: अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश बुद्धि का बड़ा ही तेज था। वह आसमान में देखकर बता देता था कि आज बारिश होगी या नहीं। इसी कारण गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। तब एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके खेत में सुमेर सिंह नाम का गांव का जमींदार आया।
1: रमेश भाई, आखिर तुम क्यों इस छोटे से खेत में अपना पसीना बहा रहे हो? आखिर तुम कितना कमा लेते हो इस छोटे से खेत में फसल उप जाकर? मैं तो कहता हूं तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो और मेरे यहां काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी कीमत भी दे दूंगा और मजदूरी में तुम्हें 200 रुपए दूंगा।
0: जमींदार का खेत रमेश के खेत से जुड़ा हुआ था, इसलिए जमींदार रमेश की जमीन को किसी भी तरह से हथिया लेना चाहता था। लेकिन रमेश अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहता था। तब रमेश ने जमींदार से कहा,
2: जमींदार साहब, मैं इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। अगर मैं यह जमीन आपको दे दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो भूखा मरना पड़ेगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं यहाँ खेत को कभी नहीं बेचूंगा। यह खेत मेरे दादाजी की निशानी है। जमींदार साहब, मैंने एक तरकीब निकाली है। मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि मुझे दुगनी कमाई होगी। और देखना, आप भी किसी दिन मैं आपका वाला खेत भी अपने खेत में मिला लूंगा।
0: जमींदार रमेश की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा,
1: अरे बाप रे, अब ये कौन सी खेती करेगा कि इसकी फसल दुगनी हो जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। ये तो वैसे भी बड़ा चतुर आदमी है। अरे रमेश, वो सब तो ठीक है, मगर तुम कौन सी खेती करने जा रहे हो?
2: ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरे पास जमीन बहुत कम है, इसलिए मेरा हिसाब बैठ नहीं रहा है। आज रात मैं इसी खेत में आकर हिसाब लगाऊंगा।
0: इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। ये बात जमींदार के सर में दर्द देने लगा। वह सोच रहा था कि कौन सी ऐसी फसल है जो कम खेतों में दोगुनी हो जाएगी।
1: मुझे रमेश के घर जाकर पता लगाना पड़ेगा। मैं अब भी उसके घर जाता हूं।
0: शाम हो चुकी थी। रमेश फावड़ा लेकर अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है,
3: ये क्या, रात में फावड़ा लेकर कहाँ जा रहे हैं?
2: क्या सुधा, तुम शांत रहो। जोर जोर से बोलकर गांव वालों को जगा दोगी क्या? क्या तुम्हें पता है मैंने कम खेत में ज्यादा फसल होने वाली एक तरकीब निकाली है। तुम देखना, मैं इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि 5 साल में भी खत्म नहीं होगा।
0: रमेश की बात जमींदार एक पेड़ के पीछे से छिपकर सुन रहा था। जमींदार के दिल दिमाग में बेचैनी छा गई। वह सोच रहा था कि ऐसी कौन सी खेती है जो कम खेत में दुगना हो जाएगा। इसलिए जमींदार भी रमेश के पीछे पीछे खेत पर चला गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगा। रमेश ने कहा,
2: कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? यह जमींदार का खेत भी ना मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अगर मेरे खेत का फसल ज्यादा हो गया तो जमींदार के खेत में चला जाएगा और फिर जमींदार बिना मेहनत के मेरी फसल ले लेगा। इसलिए मैं जमींदार से कहूंगा कि अपने खेत में दीवार बना लो ताकि मैं फसल अपने ही खेत में लगा सकूं।
0: जमींदार यह बात सुनकर कहने लगा,
1: अच्छा बेटा, तो यह बात है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। तू खेती तो अपने खेत में करेगा, मगर फसल को काटूंगा मैं।
0: यह कहकर जमींदार वहां से अपना घर चला गया।

0: अगले दिन सुबह होते ही रमेश जमींदार के घर गया।
1: जमींदार साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था, मुझे एक जरूरी बात आपसे करनी।
2: हाँ हाँ, तुम कोई भी जरूरी बात मुझसे कहो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूंगा। ठीक है, बात खत्म, तुम जाओ अपने घर, मुझे और बहुत से जरूरी काम करना है।
1: लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो आपसे ऐसा नहीं कहा, फिर आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
2: हाँ, पता है मुझे तुम मुझसे यही कहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी कम है और तुम्हारी दुगनी फसल का हिसाब तुम्हारे वह छोटे से खेत में नहीं बैठ रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो।
0: रमेश वहां से अपने घर वापस चला गया। फिर रात हुई तो जमींदार फावड़ा लेकर अपने खेत पर जाने लगा।
2: अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत की मेड़ को काट कर आगे बढ़ा देता हूं, ताकि रमेश को पता ना लगे और वह मेरे खेत में भी फसल लगा देगा और मुझे भी इसका लाभ मिल जाएगा।
0: इतना कहकर जमींदार रात भर अपने खेत में काम करता रहा और अपने खेत की मेड़ को आगे बढ़ा दिया। अगले दिन सुबह होते ही रमेश और उसकी पत्नी अपने खेत पर काम करने के लिए जाने लगे। खेत में पहुंचकर रमेश की पत्नी ने कहा,
3: सुनो जी, आज अपना खेत कुछ बड़ा सा लग रहा है।
1: हाँ सुधा, लग तो मुझे भी लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली, अब तो और भी ज्यादा फसल लगेंगे। चलो अब खेतों में बीज बो देते हैं।
0: अब रमेश और उसकी पत्नी मिलकर दोनों फसल की बीज बोने लगते हैं। वे दोनों पूरे खेत में बीज बोने के बाद फसल होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। जब फसल तैयार हुई तो वह धान की फसल थी। पूरा खेत धान की फसल से भर गया। जब फसल काटने की बारी आई तब जमींदार ने रमेश से कहा,
2: रमेश जरा रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें पता है जिस खेत में तुमने फसल लगाई है वह खेत की बनी हुई जमीन मेरी है।
1: क्या बात करते हैं जमींदार साहब, मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी, फिर आपने अपने खेत की मेड़ को काट कर जगह बढ़ा क्यों दिया?
2: रमेश मुझे वह सब नहीं पता, लेकिन यह बढ़ी हुई जगह मेरी है, मैंने ही खेत की मेड़ को काट कर आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ मेरे खेत में आ जाए।
1: अच्छा तो ये बात है, लेकिन जमींदार साहब मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम था और कम खेत में दुगनी फसल कैसे संभव होगी, लेकिन आपने तो मेरे मन की बात सुन ली और कर भी दिया। जमींदार साहब, न मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा न आपके पास आया, तो आपने अपने खेत की मेड़ को आगे बढ़ाया क्यों? इसलिए इस फसल पर आपका कोई हक नहीं है, जहां तक मेंढ है वहां तक आपका खेत, बाकी मेरी समझ गए जमींदार साहब।
0: रमेश की बात सुनकर जमींदार आश्चर्यचकित हो गया और रमेश के दिमाग को मान गया, लेकिन फिर भी जमींदार हार मानने वालों में से नहीं था और इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। तब कुछ महीनों बाद रमेश में बीमार पड़ गया और गेहूं की फसल की बुआई होने लगी। समय निकला जा रहा था। जमींदार उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर गया।
2: क्यों रमेश, देखा ना बेईमानी का नतीजा, पड़ गया ना बीमार, अब तुम्हारे खेत को कौन जोतेगा? गेहूं की बुआई का समय निकल जा रहा है, अभी तक तो तुम्हारे खेत में हल भी नहीं चला, अब देखो तुम भूखे मरोगे, तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं होगा।
1: मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा, मेरे पास दादाजी का खेत है ना, वह मुझे कभी भी भूखा नहीं मरने देगा, ऐसा वरदान है उसे खेत में। कैसा वरदान रमेश, मैं क्यों बताऊं आपको, आप जाओ यहां से।
0: रमेश की आश्चर्यजनक बात सुनकर एक बार फिर जमींदार के सर में दर्द हो गया। जमींदार रमेश के घर से गया तो सही, मगर बाहर जाकर वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और शाम होने का इंतजार करने
4: जब
0: लगा।
4: शाम हुई
0: तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। रात में रमेश की पत्नी ने पूछा,
3: सुनो जी, दादाजी हमें ऐसा कौन सा वरदान देकर गए हैं जो हमें भूखा नहीं मरने देगा, और अभी तक तो हमारे खेत में हल भी नहीं चला है, फिर ये सब क्या है?
1: अरे तुम जोर जोर से चिल्लाओ मत, ये बात गोपनीय है। अगर कोई सुन लिया तो हमारा राज सबको पता चल जाएगा और हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, हमारे खेत में दादाजी ने सोने से भरा एक मटका छुपा दिया था जिसे हमने खोद कर निकालना है, इसीलिए मैंने अभी तक अपने खेत की जुताई नहीं की। क्या करूं, खेती करके जब इतना सारा धन मिल ही जाएगा तो।
2: अच्छा बेटा, अब तू देख, आज रात को ही तेरे खेत से सारा सोना निकालूंगा, फिर देखता हूँ कैसे तू जिंदा रहता है और क्या खाता है।
0: फिर क्या था, जमींदार रात को ही रमेश के खेत में फावड़ा लेकर पहुंच गया और पूरा खेत खोदने लगा।
2: इस तरह से खेत खोदूंगा तो मटका कभी नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ कि हल से पूरा खेत ही जोत देता हूँ, फिर आसानी से मुझे मटका मिल जाएगा।
0: फिर जमींदार ने हल चलाकर सारा खेत जोत दिया, पर कोई मटका नहीं मिला। जब रात बीती और सुबह हुई तो जमींदार गुस्से में आकर रमेश के घर गया।
2: क्यों रे रमेश, कहां है सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे खेत में सोने का मटका है। मैंने सारा खेत तो खो दिया पर मुझे कहीं भी मटका नहीं मिला।
1: कहीं नहीं मिला, पर ऐसा कैसे हो सकता है जमींदार साहब? आपने पूर्व उत्तर की दिशा में सही से नहीं देखा होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ।
2: अरे बेवकूफ, जाते कहाँ हो? मैंने सभी जगह पर खुदाई करके देख लिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पर मुझे कहीं पर भी मटका नहीं मिला।
1: क्या, आपने सारा खेत जोत दिया है? अरे ओ भाग्यवान, जल्दी से बीज लाओ। जमींदार साहब ने हमारा पूरा खेत जोत दिया है, अब मुझे हाल चलाने की जरूरत नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान गरीबों की सुन ही लेते हैं।
2: अरे ओ बेवकूफ, तुमने मुझसे झूठ कहा था, वहाँ कोई सोने का मटका नहीं है।
1: मालिक, अगर वहाँ कोई सोने का मटका होता तो मैं वहाँ सोना निकालकर गांव का जमींदार नहीं बन जाता क्या? वह तो मैंने अपनी पत्नी सुधा का दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, यह बात आपको किसने बताई?
0: जमींदार लड़खड़ाते हुए बोला,
2: मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पे था जो मुझे पता चल जाएगा? वह तो मुझे सपने में आया था, इसलिए मैं तुम्हारे खेत में सोने का मटका ढूंढने गया था।
1: अच्छा, तो यही बात है।
0: बेचारा जमींदार वहां से बेवकूफ बनकर चला गया। इस तरह से रमेश ने अपने खेत को बड़ा भी कर लिया और उसे जमींदार से अपने खेत में हल भी चलवाया। अगर बुद्धि हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी वर्ग से सभी विभाग से मिलते, तो आज हमें खुशी है राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय तलवार नाका में पहुंचे। हमेशा जब भी आते हैं कि इशारा से हमें सहयोग मिलता है, क्योंकि रेडियो मधुबन 15 साल से इस कार्यक्रम को लेकर आसपास सिरोही जिला का सभी तहसील में पहुंचते, तो आज तलवार नाका में पहुंचे क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के मिलित सहयोग से बच्चों का हुनर बच्चों का प्रतिभाएं जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि

0: कि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। तो बच्चे आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे बारी बारी, क्योंकि आपका रेडियो है थेमरा रेडियो, थेमरा वास्ते आज आए हैं, तुम्हारा आवाज रिकॉर्डिंग करके शाम को प्रसारण करते हैं। तो आज स्कूल के बच्चों का होबनहार बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे इसमें भाग लेंगे और सभी बच्चे भी साथ देंगे, और इसका श्रेय तो संस्था का संस्था प्रधान और सभी स्टाफ को जाता है। जब भी आते हैं तो हमें बहुत बहुत सहयोग मिलता है, जब भी जो भी प्रोग्राम होता है तो स्कूल को हम याद करते हैं। तो हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पहले वार्म अप कराएंगे बच्चों को, जैसे आप आवाज को सुनकर बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे। और हमारा इस कार्यक्रम को हमारा बहुत पुराना HM है जो कि संस्था का पूरा इस स्कूल का प्रभारी है, सर आपका वेलकम करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 90 साल पूरा हो गया, जो 1936 से 2026 तक 90 साल का उत्सव के तहत आज आपका स्कूल में बच्चों के साथ रूबरू होंगे। बच्चों को जो भी आवश्यकता, कुछ जो जरूरतमंद है उनको कुछ दिया गया सहयोग, और तत्पश्चात आप इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं। तो आपको कैसे महसूस हुआ, और बच्चों को थोड़ा वार्म अप कराइए, आपका स्कूल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और आपका इंट्रोडक्शन।
1: थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विद्यालय में। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निचली पीढ़ी तलवारों का नाका है इस विद्यालय। यह विद्यालय 2017-18 में कर्मोन्नत हुई थी और अभी लगभग कक्षा 1-8 क्लासेस अध्ययनरत है, और शायद आने वाले समय में ये सीनियर सेकेंडरी भी बन सकती है, क्योंकि यह नई पंचायत प्रमोट है और अभी नई पंचायत बनने वाली है, नई पंचायत के साथ विद्यालय भी प्रमोट हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर यह सीनियर सेकेंडरी बन जाएगी। तब तक अभी तक आदेश नहीं है, परंतु अभी जो पुराने आदेश है उसके तहत हम 1-8 तक कक्षा अध्ययनरत है, जिसमें 216 का नामांकन है
0: जी।
1: विद्यालय में 216 बच्चे अध्ययनरत हैं और कक्षा 1-8 तक सभी बच्चे विद्यालय में आते हैं। आज की उपस्थिति शायद 170 के लगभग है, 170 बच्चे आज उपस्थित है और लगभग 80% उपस्थित रहते भी है। तो सभी बच्चों का भी आप हमारी तरफ से और विद्यालय की तरफ से आप सभी का, आपका भी मधुबन से पधारे हमारे मेहमानों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। आप जब भी आते हैं तब हमको सहयोग देते रहते हैं, कुछ न कुछ बाबा की टोली भी मिल जाती है, कुछ बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप इतना सुंदर रूप में जानते हैं बढ़िया से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के, क्योंकि आप भी एक विद्यालय में बच्चों को सर्वांगीण उन्नति के लिए शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक सर्वांगीण उन्नति के लिए तत्पर रहते, सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी इस तरह मानसिक बौद्धिक शिक्षा में तत्पर रहते हैं। तो आज बच्चों को मौका मिलेगा बारी बारी उनका आवाज को प्रसारण करने के लिए, और इस कार्यक्रम को हमारा श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं, और अपना वॉल्यूम तेज करके कहीं पर भी इंटरनेट का माध्यम से, नेट और मोबाइल का माध्यम से, रेडियो का माध्यम से और एप्लीकेशन का माध्यम से सुन पा रहे, जहाँ भी पहुँच रहे तो जरूर स्कूल को एक बार विजिट करने के लिए आइए, और बच्चों का साथ आप भी रूबरू होइए। क्या आवश्यकता है, जहाँ जरूरत है वहाँ पर आप देंगे तो पुनीत काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक अब हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना से एक गीत, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। खास कर आज आप सब सुन पा रहे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निचली फली तलवार नाका का आवाज आप सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमारा बच्चे होवन हर बच्चे तैयार है। और कोई भी कार्य शुरू करने के पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं और देवी देवता को याद करते, भगवान को याद करते, तो उसी प्रार्थना मुद्रा में सभी बैठे हैं, हमारा बच्चे सभी प्रार्थना मुद्रा में और शुरू करते हैं प्रार्थना। हमारा गुड़िया भी सभी है, तब अपना अपना नाम बताएंगे।
1: मेरा नाम कविता है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
2: वेरी गुड।
3: मेरा नाम बसु है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम संजना है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती
2: हूँ। सभी 8वीं क्लास के बड़े बच्चे हैं।
5: मेरा नाम सीनू है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
2: क्या बात।
6: मेरा नाम काली है, मैं 8वीं क्लास में।
0: चलिए सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रार्थना।
3: माँ

0: हम अज्ञानी बालक तेरे, अज्ञान दोष को दूर करो,
1: अज्ञान दोष को दूर करो।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। खासकर बच्चों का जो भाव है, भावना है, छोटे बच्चे हैं, फिर भी अपना आवाज को माँ सरस्वती तक पहुंचाए, उनका आशीर्वाद उनका देन है, आज बच्चों तक पहुंच रहा है। और बच्चे ऐसे कम उम्र में भी इस तरह लय का साथ, लगन का साथ मगन होके अपना प्रार्थना करते हैं। और रेडियो कार्यक्रम में आज वही प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाने के लिए माँ सरस्वती तक पहुंचता ही है। और हमारा जो श्रोता भी जानते हैं, हमारे स्कूल में बच्चे कैसे सभी मिलकर गाते हैं, आज देखने को मिला तो बहुत खुशी लगा। इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब बढ़ लेते हैं सर लोग और प्रिंसिपल और हमारा HM सर और हमारा मैडम सभी सहयोग दिए, जिसका चलते कार्यक्रम सुंदर हो पा रहा है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: पे अगला प्रस्तुति के लिए पुनः हम बच्चों के पास आ गए और आप सब प्रार्थना सुन रहे थे इसका पहले ब्रेक का पहले और एक अच्छा गीत भी सुने, तत्पश्चात चलिए बच्चों का आवाज को लेकर पुनः आवाज का दुनिया में फिर आते हैं, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। तो आज और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है, तो सभी को नाम के साथ सेम ग्रुप है वंस मोर, और एक गीत गाने के लिए रेडी है सभी। ओके शुरू करिए प्लीज।
1: तुम सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना, तुम सच्चे मन से याद करो भगवान।

पे मिले डाली पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, तुम सच्चे मन से याद भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं, आकाश में मिले पाताल में मिले धरती पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, तुम सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं, सूरज पे मिले चंदा पे मिले तारों पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं, प्रभु तन में मिले प्रभु मन में प्रभु दिल में मिलेंगे कहीं ना, तुम सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं।

0: साथ में हो।
1: चलिए प्रार्थना के रूप में और एक प्रार्थना मिला, क्योंकि प्रार्थना में हमें शांति, खुशी, आनंद और हमारा दिल का बात पहुंचता है। तो इसे प्रार्थना सत्र में प्रभु को याद करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं, सभी कुल देवी कुल देवता को भी याद करते हैं, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, अपना जो भी होता है अंदर में तो बताते हैं। अचानक में आए, कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, ये एक उनके लिए मौका मिल रहा है, क्योंकि आकाशवाणी में आना बच्चों के लिए तो एक खुशी का बात है, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन छोटे बच्चे सुबर्ण अल्लाह कहते हैं उसको पूरा जोश उमंग उत्साह कुछ करने के लिए चाहते हैं। तो आज इस मंच जब मिला रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से अपना आवाज बता रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को हमारा मैम भी सुन रहे थे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के प्रति, अपना परिचय दीजिए मैम।
2: मेरा नाम संतोष साहू, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निचली फली में अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ। यहाँ के बच्चे भले ही बहुत नीचे उसमें है, इनकी लैंग्वेज भी अलग है इनकी ग्रासिया, पर फिर भी ये पूरी तरह से विद्यालय में आकर के अध्यापकों का, शिक्षक और शिक्षिकाओं का पूरा सहयोग करते हैं, हिंदी भी सीखने की कोशिश करते हैं, और कुछ बच्चे तो इतने होशियार है कि इंग्लिश सीखने की भी कोशिश करते हैं। इस हिसाब से बच्चे और कुछ बच्चे आगे जा करके यहाँ से 8th पास करके 9th-10th करते हैं, कुछ टीचर बनने की भी कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ के बहुत सहयोग देते हैं, और सभी टीचर का और विद्यालय का यहाँ पे, और यहाँ के गांव वासियों का जो है उनका भी बहुत सहयोग मिलता है। कभी भी SDMC की यहाँ पे बैठक होती है, उसमें सारे बच्चों के अभिभावक आते हैं, या किसी बच्चे के, किसी भी बच्चे को हम बोलते हैं किसी के अभिभावक, उनके कुछ काम होता है तो वो तुरंत आते हैं यहाँ पर और पूरा पूरा सहयोग देते हैं।
1: मैम एक बालिका और बालक, जैसे छोकरा और छोकरी, तो जो जेंडर को लेकर, इक्वालिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, बच्चों में इस तरह भाव भिन्न है?
2: नहीं सर, यहाँ पर सब मिलजुल कर काम करते हैं, बच्चों का जैसे यहाँ पर बालक बालिकाओं का कोई भेद नहीं है, बाल लड़कों के काम को लड़कियां भी सहयोग से करती हैं, विद्यालय की साफ सफाई में भी सारा काम करती हैं, और उसमें उस कामों में लड़के भी सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम लड़के कर रहे हैं लड़की है, ये भावना बच्चों में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है।
1: होना चाहिए, अब लड़का हो चाहे लड़की, एक बगान का दो फूल है, भगवान का दिया हुआ है, सभी बराबर है,
2: और बच्चे सारे बच्चे यहाँ पे जो टीचर कहते हैं उनका कहना बहुत मानते हैं, एक मतलब फटाफट सारा जो भी काम होता है वो सब अपने उनका पूरा सहयोग करते हैं।
1: चलिए बच्चे तो आज तो बहुत उनका महिमा हो रहा है, और बच्चे ऐसे करते तब तो महिमा होता है, बच्चे मानते हैं, इसलिए तो हमारा मैम और सर और सभी स्टाफ आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बच्चे, क्योंकि समय चंचल होने का, फिर भी चंचल को अपना कंट्रोल में रखते हैं स्कूल में भले घर में।
2: इनकी लैंग्वेज अलग है सर, बिल्कुल जैसे ग्रासी है उसमें लैंग्वेज है, पर फिर भी ये पूरी तरह से हिंदी कोशिश करने की पूरे सीखते हैं और पूरे तरह से सहयोग देते हैं बच्चे,
1: क्योंकि आदिवासी में जो गारासिया भाषा, भील भाषा, तब भी आकर हमें हिंदी में जब भी क्लास होता है, जो भी पढ़ाई होता है, शिक्षा हिंदी में होता है, फिर भी बच्चे कैच करते हैं, वो उनको चैलेंज होता है, तब भी वो चैलेंज को पार करके पूरा हिंदी समझते हैं, ये कम बात नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी बेल्ट का है जो अबरोड जो तहसील है, वो 99% पूरा आदिवासी ही मिलेगा, 100% पूरा, और आपका स्कूल में नामांकन तो 100% ही होगा आदिवासी, तो इसलिए आदिवासी जो शुरू से बात कर आते हैं उनके लिए सलाम करते हैं, आदिवासी कम नहीं है, सब चीज में आगे बढ़ेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनाएंगे। मैम आप कहाँ से प्रॉपर?
2: सर मैं आबू रोड से ही हूँ, मावी टॉकीज रोड अंबेडकर कॉलोनी।
1: जी जी, और आप बचपन में ऐसे बच्चे जैसे पढ़ाई की, आप मैम कैसे बने, बच्चे से मैम कैसे बने, मैडम बनने के लिए क्या मेहनत की है?
2: जब भी क्लास में जाती हूँ तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि जैसे हम पढ़ाते हैं और कभी ये बात करते हैं
1: जी मैम,
2: तो मैं कहती थी हमारे टीचर भी, हम जब भी हमारी भी सहेली से पास में बैठ के बात करते थे तो वो बहुत गुस्सा होते थे, वो उस समय ऐसा कहते थे जब तुम हमारी जगह आओगे जब तुमको पता लगेगा। अभी भी हम बच्चों को यही कहते हैं, पर इनको प्यार से समझाते हैं, कभी थोड़ी सी देर बात करने का भी मौका देते हैं और फिर 5 मिनट दे देते हैं, फिर ये हमारी बात पूरे पीरियड सुनते हैं, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते हैं।
1: बच्चे सब सुन लिए, कैसे हमें अपने को सजाना है, आगे बढ़ना है, और कोई मैम बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, और बच्चे पढ़ाई अच्छा करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन।

0: वंस मोर वंस मोर करते करते बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे क्योंकि सबको देख रहे, तो हमारा बड़ा भाई छोटा भाई बहन सब गा रहे, तो हम क्यों पीछे रहे। इसलिए बड़े क्लास का बच्चे के साथ साथ बीच वाले क्लास के भी बच्चे आए हैं, वो भी अपना बात को रखने के लिए, हमें खुशी है। इस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, एक को देखकर दूसरा सीख जाते हैं, बड़ों को देखकर भी छोटे सीखते हैं। तो ये मंच ऐसे ही खुला मंच है जिसका माध्यम से अपना आवाज को भले टूटा फूटा हो, कोई प्रिपरेशन नहीं हो, लेकिन एक चांस मिलता है उनका आवाज को झिझक दूर करने के लिए पहुंचते हैं। तो हमारा साथ तीन छात्रा है जो कि परिया है, तो अपना अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास में पढ़ते वो भी बताएंगे।
1: मेरा नाम आरती है, मैं कक्षा सातवीं में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड।
2: मेरा नाम प्रियंका है, मैं कक्षा सातवीं में पढ़ती
0: हूँ। क्या आवाज है प्रियंका का। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम सोनिया, मैं कक्षा सातवीं में पढ़ती हूँ।
0: और सोनिया नाम सुनते तो हर विद्यालय में सोनिया तो भरमार है, कोई ना कहीं जाएंगे तो सोनिया मिलेगा, सुरेश मिलेगा ही। तो चलिए तीनों को स्वागत करते हैं हमारा कार्यक्रम को सजाने के लिए। क्या प्रस्तुत करेंगे, हमें खुशी है क्योंकि आदिवासी बेल्ट में जो आते हैं देसी लोग के साथ मिलते, तो उनका आवाज भी सुनेंगे। शुरू करो।
4: लीली।

0: पूरा नॉन स्टॉप एक ही स्वर में पूरा लगातार पूरा एक्सप्रेस जैसे अपना कोई रुका नहीं, कोई भी स्टेशन में रुके नहीं और ऐसे रुकना नहीं, झुकना नहीं और आगे तक पहुंचना। जो उनको मिला चांस और जब चांस मिलता है तो चांसलर बन जाते हैं क्योंकि चांस मिलने का इंतजार कर रहे थे और बच्चों को ऐसे मंच जब मिलता है तो उनका अंदर में जो प्रतिभा है जो छुपी हुई चुप्पी को आज तोड़ दिए, चुप्पी नहीं रहना है। और जो मैम इशारा कर दिए बोला तुम्हारा पतंग वाला तो तुरंत उनका क्लिक हो गया ब्रेन में, चलो शुरू करते तो शुरू हो गया। और मैम को भी याद थी एक गीत, मैम एक गीत आपको भी याद था थोड़ा बहुत?
1: जी सर, मैं जब शहरी क्षेत्र से इस ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करने के लिए इधर आई, मेरी पोस्टिंग जब इधर हुई तो मेरे लिए बिल्कुल अलग एरिया था। और फिर मैंने देखा थोड़े दिन बाद ही मैंने देखा एक क्लास के बाहर से मैं निकल रही थी और सर बच्चों को ये गाना गवा रहे थे। मैंने पहली बार ही सुना ये गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका गीत। जब से जब मौका मिलता है मैं सर को बोलती हूँ सर बच्चों से वो वाला गीत गवाइए। और भी कोई बाहर आते हैं तो मैं सर बच्चों को भी बोलते हैं हम वही वाला गीत गाइए, तो बच्चे बहुत उत्साह से गातेंगे।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और सुंदर प्रस्तुति के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चे हमारा सच्चे होते और एक इशारा जैसे मैम इसे नाम लिया, मैम नाम लिया तुरंत आगे बच्चे, छोटी सी बच्ची है लेकिन प्रियंका कौन सा क्लास?
2: सातवीं।
0: सातवीं, अरे वाह, बड़ा होकर क्या बनेगी प्रियंका?
2: टीचर।
0: हाँ टीचर के लिए हमारा छोटी टीचर के लिए ताली बजा भाई, टीचर बनेगी, वेरी गुड। टीचर का काम क्या होता है?
2: पढ़ाना।
0: हाँ आज पढ़ रहे हैं कल पढ़ाएंगे। प्रियंका बोल रहे मैं पढ़ रही हूँ आज लेकिन जब टीचर बनेगी मैम बनेगी तो सबको पढ़ाएंगे पूरा, कोई किसको डॉक्टर किसको इंजीनियर किसको पायलट सब बना देंगे ये। और आज वो टीचर ही बनेंगे, पायलट नहीं बनेंगे क्योंकि टीचर का जो काम है सबको अच्छा इंसान बनाना, अच्छा व्यक्तित्व देना, अच्छा सुनाना, अच्छा सुनेंगे और अच्छा सुनाएंगे तो अच्छा लग रहा है। सभी को धन्यवाद देते हैं तो जाते जाते हमारा सर को भी धन्यवाद देते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर बच्चों को एक मंच देता है, एक स्टेज देता है, माइक देता है जिसका चलते बच्चों का आवाज को दुनिया तक पहुंचाते हैं, तो आप जाते क्या कहना चाहेंगे इस तरह कार्यक्रम का? साखी रास्ता रूप में विश्व पितामह जैसे पूरा कप्तान जैसे देख रहे थे, क्या कहना चाहेंगे?
3: जी सर, मोस्ट वेलकम टू यू सर।
0: जी सर,
3: आप सभी का ये इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उसके लिए सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं वहीं से ब्रह्मा कुमारी के पास में करौली गाँव से मैं यहाँ आता हूँ और मैंने ब्रह्मा कुमारी में इस रेडियो मधुबन में खूब प्रोग्राम भी दिए। पहले मैं 15 साल तक मैंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोलियापली ब्रह्मा कुमारी के बिल्कुल सामने स्कूल थी, मैंने ही वहाँ पे उसको बिल्ड भी किया है वहाँ पे था। उसके बाद मैं धामसा में आया, धामसा से भी फिलहाल मैं अभी गणका में हूँ यूपीएस में एचएम के रूप में और यहाँ अभी मेरा 2 साल की सेवा भाव है तो उसका निर्वहन यहीं पे करने की इच्छा है। अब आगे क्या होता है भगवान जाने, बाकी इससे ही है। हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ते हैं, सब हमारे कहना भी मानते हैं और आगे इन फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए हम उनको और प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद के लिए धन्यवाद सभी को नाम का साथ। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे पूरा मासूम होते हैं, बच्चे भोला होते हैं। आज भोला भाला बच्चे आज अपना प्रस्तुतियां दिए, सभी श्रोता उनके लिए धन्यवाद देंगे और जब मौका मिलेगा भामाशाह का हिसाब से इस स्कूल को जरूर विजिट करें और बच्चों का साथ रूबरू हो, ये हमारा भावना है। लेते हैं आप सबसे इजाजत।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन खैर मकदम है एक और नई श्रृंखला में, एक नए कार्यक्रम में, जिसकी थीम ये है कि जीना इसी का नाम है। ये गीत आपने अनेकों बार सुना होगा और हर बार सुनकर के ये दिल में तमन्ना हुई होगी कि जिसने ये गीत लिखा या जिसने इसको फिल्मांकन किया, बहुत सारी बातें हुई होंगी, बट ये एक बड़ा प्रेरणादायी गीत है। मैं बहुत बार इस गीत को गाया है मंच पर और बहुत तारीफें बटोरी है, तो न जाने क्यों इस गीत की एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी इसके अंदर तासीर है जो प्रेरित करता है कि भाई जिंदा तो सब है, सारी दुनिया में लोग जो घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो जीवित है, जिंदा है। लेकिन ये गीत कहता है किसी की मुस्कुराहटों को पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, इसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी जीना इसी का नाम है। तो आज जीना इसी के नाम में हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे, आपका साक्षात्कार कराएंगे, उनके विचारों से आपको अवगत कराएंगे। यूं तो मैं उनको बहुत अरसे से यहाँ जानता हूँ, अनेकों वर्षों से मेरा उनसे रब्ता हुआ है, बातचीत होती है, देखता रहा हूँ और बड़े करीब से देखा है, बड़े ही सरल

0: सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो कहावत है, वो कहीं ना कहीं उनके जीवन पे यथार्थ दिखाई दी है मुझे। एक बड़े ही सरल से, साधारण से दिखने वाले व्यक्ति, लेकिन उनके भीतर एक बहुत बड़ा विराट जीवन को जीने का एक ढंग, एक तरीका उन्होंने सीखा, जिसके परिणाम स्वरूप मैं ये देखता हूँ कि मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी, कभी कोई थकावट, कभी कोई चिड़चिड़ापन, हालांकि वो अनेकों लोगों से मिलते रहते हैं, हजारों लोगों से मिलते रहते हैं। जी हाँ, मैं आज इनसे आपकी भेंट करवा रहा हूँ। उनका नाम मंगेश भाई है और मंगेश भाई यहाँ ब्रह्मा कुमारी शांतिवन में पिछले अनेकों वर्षों से, हालांकि वो खुद ही बताएंगे अपना परिचय, फिर भी मैं थोड़ा सा चकाचुकी करा करके स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम में, जीना इसी के नाम में। नमस्ते मंगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते विशाल भाई,
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया और हमारे सभी श्रोताओं को ये जानने का अवसर दिया कि भाई आपने जो अपना जीवन व्यक्तित्व तो संवारा है, सजाया है, आप जैसे दिखते हैं वो कैसे बने, और आपकी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें जिन्होंने आपको परिवर्तन करने की तरफ दौड़ाया, कुछ एक ऐसे आपके हल्के फुल्के से अनुभव जानना चाहेंगे। और मैं सबसे पहले तो आपका परिचय ही जानना चाहूँगा कि आपका वास्तविक परिचय शुरुआत के तौर से, आज हम जैसा आपको जानते हैं वो एक बात है, लेकिन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता, परिवारजन, मित्रगण, उसके बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा।
1: विशाल भाई जी, पहले तो आपका और पूरी रेडियो मधुबन टीम का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा, हमें ये सेवा का चांस दिया, तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरा पूरा नाम जो है मंगेश विलासप्पा संगेकर।
0: अच्छा, इतना बड़ा नाम?
1: हाँ जी, हाँ जी, ये फादर्स नेम और सर नेम।
0: ओके।
1: अच्छा, और दूसरी बात, मैं बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, चांदूर बाजार करके तहसील आती है
0: जी,
1: ये खास गुड़ के लिए फेमस है।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब आप भी गुड़ के लिए फेमस है और इत्तेफाक से मैं जिस जगह से हूँ,
1: अच्छा,
0: मैं यूपी मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखता हूँ, आप समझते हैं, और मुजफ्फरनगर एशिया की बहुत बड़ी गुड़ मंडी कहलाता है।
1: अच्छा,
0: तो हम भी गुड़ वाले, आप भी गुड़ वाले, तो मिठास से मिठास मिलेगी।
1: वाह भाई
0: वाह।
1: तो विशाल भाई जी, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई,
0: अच्छा,
1: 12वीं क्लास तक
0: जी,
1: और मैं 10th में पढ़ रहा था।
0: ओके।
1: तब मैं ब्रह्मा कुमारीज के कनेक्शन में आया।
0: ओके।
1: और जैसे आपके इसमें पूछा गया कि भाई आपका लौकिक जीवन जो है वो किस प्रकार से था, तो घर में पहले से ही
0: जी
1: भक्ति भाव का बहुत बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था।
0: अच्छा।
1: हाँ, और इवन पूरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है गाँव में, तो शिव के बहुत अच्छे भगत है हम लोग।
0: अच्छा।
1: इवन हमारे घर में गांव के सेंटर के सेंटर में मंदिर बनाया है शिव का, बड़ा मंदिर।
0: अच्छा, केंद्र में एक बड़ा शिव मंदिर है वहाँ।
1: बड़ा मंदिर, शिव मंदिर है।
0: ओके।
1: और हमारी फैमिली की ओर से उस मंदिर के लिए खेती रिजर्व रखी गई है।
0: अच्छा।
1: उस खेती में जो अनाज आदि होगा, उसका जो आएगा बेनिफिट
0: जी,
1: वो उस मंदिर के कार्य में लगाया जाता।
0: हाँ जी, बहुत बढ़िया।
1: तो ये पहले से ही, और हमारे पिताजी वगैरह बताते हैं कि जो महाराष्ट्र के अच्छे संत थे, गाड़गे महाराज, नाम आपने सुना होगा
0: जी,
1: गाड़गे महाराज, इनका भी हमारे घर में आना जाना होता था। तो इस प्रकार से मतलब स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर जो है, भक्ति भाव, मतलब
0: घर में पहले से ऐसा वातावरण था कि जीवन यूं भी सात्विक ही था।
1: बहुत सात्विक, बहुत सात्विक।
0: तो फिर आपने पढ़ाई शुरू की होगी 10th के बाद, आगे कहां तक आपने पढ़ाई?
1: मैंने 12th किया अपने गांव में।
0: अच्छा।
1: गांव में 12th किया, फिर अब यहाँ एक टर्निंग प्वाइंट आ गया विशाल भाई
0: जी,
1: यहाँ टर्निंग प्वाइंट आ गया कि मैं सोच के चल रहा था कि मुझे 75-80% मार्क्स मिलेंगे।
0: अच्छा।
1: और मैं आगे इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा।
0: वेरी गुड।
1: लेकिन नियति जो है, वो व्यक्ति को नियति के आगे कुछ चलता नहीं, और नियति जहाँ ले जाना चाहती है। तो हुआ यूं कि मार्च 1st वीक में बोर्ड की एग्जाम होनी थी।
0: ओके।
1: हाँ, और मैंने जनवरी 1st-2nd को टाइम टेबल बनाया अपना कि इसी सब्जेक्ट को मुझे इतने इतने मार्क्स देने हैं,
0: ठीक है,
1: और इस प्रकार से मुझे 2 मास में ये सारा कवर करके इतना परसेंटेज लेना है,
0: ठीक है।
1: 4th January को मुझे टाइफाइड हो गया।
0: अरे बाबा।
1: और उस समय टाइफाइड का इतना ज्यादा मतलब इलाज भी नहीं था, तो काफी मतलब उसमें मैंने सफर किया समझो
0: जी।
1: 1 मास तक मैं बेड पे रहा, उसकी वीकनेस रही काफी, और फिर नेचुरल है वो पढ़ाई पे आ गया
0: असर आना ही।
1: हाँ, तो 60% मार्क्स मुझे मिले और मेरी लाइन चेंज हो गई।
0: अच्छा जी।
1: फिर कॉलेज एडमिशन के लिए हमने अप्लाई किया, तो इंजीनियरिंग का तो सवाल ही खत्म हो गया,
0: क्योंकि
1: घर की आर्थिक स्थिति इस प्रकार से नहीं थी कि प्राइवेट में जाके मैं कर सकूं।
0: ओके।
1: तो फिर हमने अप्लाई किया पॉलिटेक्निक को। ये भी देखो नियति कैसे है, मैं और मेरा एक फ्रेंड गए थे शहर में उस कॉलेज में। अच्छा। एप्लीकेशन दिया दोनों ने, उसका 1 मार्क्स मुझसे ज्यादा था।
0: अच्छा।
1: वो मैकेनिकल उसमें पॉलिटेक्निक में उसका सिलेक्शन हुआ, मैं रह गया।
0: अरे।
1: और फिर मैं BSc मैथमेटिक्स की तरफ आया।
0: ओके।
1: और इसी मीन वाइल ब्रह्मा कुमारीज के मैं संपर्क में आ गया था।
0: ओ, ये जो आपने ये एग्जाम दिया या इसकी तरफ गए साइंस?
1: हाँ जी, BSc मैथमेटिक्स
0: की तरफ गए। वो इस दौरान किस तरह से आपको आध्यात्मिक, तो घर में आपके वातावरण था ही, धार्मिक आप थे ही, तो फिर कैसे आपको ये ब्रह्मा कुमारीज का कनेक्शन?
1: ब्रह्मा कुमारीज का इवेंट इस प्रकार से हुआ, या कनेक्शन इस प्रकार से हुआ कि धार्मिक परिवार था और मंदिर था ना, तो उस मंदिर में बहनों को प्रदर्शनी लगानी थी।
0: अच्छा।
1: ईश्वरीय चित्रों की यह प्रदर्शनी, परिचय देने की,
0: ठीक है।
1: तो वो हमारे घर पे आए फादर से मिलने के लिए, और उस मैं 10th की एग्जाम पूरा कर चुका था और मैं वहां बैठा था छोटा उस एज में, 15-16 की एज में।
0: ओके।
1: और मैं उनकी बातें सारी प्यार से सुनता रहा। उन्होंने भी, आज भी मुझे याद है, देखो ये छोटे से, उन्होंने एक अपना सफेद पेन आता है जिसमें अलग अलग महावाक्य होते हैं, सफेद
0: घूमते थे। हाँ, हाँ, सर्कुलेट होता
1: दुख ना दो दुख ना लो, इस प्रकार के। तो सुंदर वो रहा, और यहीं से धीरे धीरे मैं ईश्वरीय विद्यालय के कनेक्शन में आ गया।
0: ओके।
1: ब्रह्मा कुमारी संस्था के कनेक्शन में आ गया।
0: अच्छा, उसके बाद फिर भी व्यक्ति का जीवन में एक आदर्श होता है, किसी न किसी को तो वो अपना आइडियल बना के चलता है, ताकि वो उसके गुणों को अपने जीवन में उतार सके, उसकी तरफ चले। आपने अपने जीवन में किसको आइडियल बनाया था?
1: सच बताऊं, आइडियल मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जब से समझ आई ना तब से हमने अपने पिताजी को देखा।
0: ओके।
1: उन्होंने हमेशा ही खादी का शर्ट और पैजामा, यही उनका देखा हमने सबसे पहले से,
0: और वो चीज आपके जीवन में आज तक मैं देखता
1: हूं। मतलब हाँ, उनकी जो सादगी है और उन्होंने जो ये किया था, तो उनके इस पे ज्यादातर गांधी जी का और विनोबा भावे का इनका प्रभाव ज्यादा था,
0: वो ही असर लगभग आपके पास भी आ गया। बहुत अच्छा। फिर आपने जैसे बताया कि आप पहले धार्मिक परिवार में तो थे, धर्म के कुछ ना कुछ आपके जो विधान होते थे वो करते होंगे, पूजा पाठ
1: अर्चना
0: और कुछ हवन वगैरह।
1: हाँ, बहुत अच्छी तरह। श्रावण मास तो मुझे इतना अच्छी रीति याद है कि श्रावण मास में तो पूरा 1 मास शिवलिंग पर सारे भाई बहने बैठ के घर में,
0: अच्छा,
1: शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये बहुत अच्छी तरह किया है।
0: मतलब अच्छी तरह अपने शास्त्र वगैरह का कुछ ना कुछ पढ़ते रहे घर में, वातावरण था, तो उनका असर आपके जीवन पे रहा। और फिर ये ब्रह्मा कुमारी ने आपको कौन सी बात ने अपील किया कि भाई मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए?
1: वैसे तो बताऊं कि ये बहुत सहज रूप से, क्योंकि बताया ना स्पिरिचुअल ये था, और ब्रह्मा कुमारीज में भी इसी प्रकार के, और ज्यादातर मैं जिसका हमारा जो आराध्य दैवत था वो शिव ही थे। तो अब इसमें क्या हुआ कि शिव जी का यथार्थ परिचय मिल गया कि वो कौन है, कैसे कार्य करते हैं, आत्मा क्या है, और किस प्रकार से परमात्मा से मेडिटेशन द्वारा शक्ति लेनी है, तो वो सारी बातें जो है कहीं मुझे धीरे धीरे अंदर जाती रही। हाँ, फिर शहर में जब बीएससी के लिए शहर गया मैं, तो शहर गया तो मैं संस्था की बड़ा जो सेंटर था, बड़ी समझो ऑफिस समझिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो वहां बड़े संगठन में आ गया मैं, तो वहां से तो और ज्यादा पिकअप ले लिया, वहां और मुझे सारा संगठन मिला। फिर तो बहुत सेवाएं की हमने, सेवाओं में हमने ड्रामास किए काफी।
0: अच्छा।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: शेयर कीजिए ना कोई।
1: छिवैया पार लगाए नैया।
0: अच्छा।
1: हाँ हाँ, और पहले सबसे पहला तो मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर ड्रामा किया था, और वहीं से शुरुआत हुई। और ये जो बताया छिवैया पार लगाए नैया, ये तो हमने काफी यहाँ मधुबन में भी उसके शोज किए थे।
0: मंगेश जी, जिस उम्र में आप थे,
1: हाँ,
0: वो एक ऐसी आयु थी जिसमें संसार की तरफ भी एक विशेष आकर्षण बनता है, मसलन घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, या जीवन में वो सारे सुख जो संसार जिसके लिए दौड़ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: और आप उस दौड़ से अपने आप को विलग कर गए, तो ऐसी कौन सी बात ने आपको टच किया, आपको कहा कि भाई नहीं, तेरे लिए ये रास्ता नहीं, तुझे तो यहाँ चलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप समझो ना कि एक तो घर से उस प्रकार का संस्कार सिंप्लिसिटी का था ही था, और फिर ये जो ईश्वरीय ज्ञान मिला, तो इसके बाद जो हमारी नियम धारणाएं हैं, तो
0: आपको कठिन नहीं लगी कि भाई ये तो बड़ी कठिन बातें हैं?
1: नहीं नहीं नहीं विशाल भाई जी, ये बहुत ही सहज लगा मुझे, बहुत सहज लगा। और बताया कॉलेज के हिसाब से, फिर मैं शहर में गया तो वहां अपना सेपरेट रूम करके अपना भोजन खुद बनाते थे हम लोग।
0: अच्छा।
1: हाँ जी हाँ जी, और फिर कॉलेज में जाते, इवन भोजन बना के उसका प्रसाद के रूप में परमात्मा को स्वीकार करा के, शिव बाबा को स्वीकार करा के, फिर खाना खाते थे, इतनी अच्छी तरह धारण।
0: तो आपके जो दोस्त मित्र थे जो आपके साथ होते,
1: वो
0: भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करते थे?
1: नहीं नहीं,
0: या वो भी आपके साथ लग गए कि नहीं?
1: मतलब वो भी
0: सपोर्ट किए?
1: हाँ, वो भी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के थे इसलिए। हाँ जी हाँ जी,
0: ऐसे बहुत बड़ी बाधा नहीं आई?
1: नहीं बड़ी बाधा,
0: मतलब जहाँ चाहे वहाँ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपने सेट कर लिया अपना,
1: जहाँ चाहा वहाँ रहा। इससे मुझे याद आया कि उस समय कॉलेज के टाइम मेरा एक स्लोगन था, दीवार पे लिख दिया था मैंने रूम पे, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी,
0: ये तो मतलब आपका, मुझे लगता है जब हम क्लोजिंग करेंगे तो ये गीत आपकी तरफ से
1: जरूर, जरूर।
0: हम कार्यक्रम में अपने श्रोताओं का अवश्य सुनवाएंगे कि भाई कितनी ये गीत कितने सालों पुराना है।
1: हाँ जी,
0: और इसने किस तरह से आपको एक प्रेरणा दे दी?
1: प्रेरणा दी, मजबूत बनाया मुझे, बहुत स्ट्रांग,
0: निश्चय से बढ़ते चले गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उससे आपकी पढ़ाई वगैरह में कोई बाधा आई जब आप ये आध्यात्मिक हो गए?
1: हाँ, बाधा नहीं आई, आध्यात्मिकता हमेशा सहयोगी बनती है, लेकिन जहाँ जैसे जोश में होश खो देता है ना आदमी, उस प्रकार से स्टार्ट लेवल पे ये हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किया तो मैं सेवाओं में बहुत ज्यादा बिजी हो गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये ड्रामास की सेवा, और दूसरा हम व्यसन मुक्ति का बहुत अच्छा चलाते थे, गांव गांव में जाकर संदेश देना, तो फिर वो उमंग उत्साह ही अलग होता है, तो उसमें परसेंटेज एकदम कम हो गई थी बीएससी। अच्छा।
0: तो फिर घर वालों ने कोई?
1: पिताजी ने बोला, और फिर जैसे ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ज्ञान माना समझ
0: जी,
1: और हमारी जो बहनें थी सेंटर्स की, उन्होंने भी मुझे समझाया कि दोनों का बैलेंस रखना है।
0: ठीक है।
1: और राजयोग या कहो या ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमको जीवन में बैलेंस करके चलना सिखाता है।
0: ओके।
1: हाँ, तो फिर एमएससी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई किया, और परमात्मा की कृपा मानता हूँ मैं, मेडिटेशन का तो इफेक्ट था ही, क्योंकि मेडिटेशन से मैं सुबह शाम दोनों टाइम एक एक दो दो घंटा मेडिटेशन जरूर करता था।
0: अच्छा।
1: हाँ, ईश्वरीय महावाक्यों का भी श्रवण करता था, ये लास्ट तक मैंने छोड़ा नहीं,
0: मेडिटेशन भी करते।
1: हाँ हाँ हाँ, तो उससे नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी।
0: ओके। हाँ, और एकाग्रता की आवश्यकता रहती है किसी भी पढ़ाई में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इतने मैथमेटिक्स के डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज इतने बड़े,
0: तो भैया मेरे तो बाल
1: तो वो कैसे वंडर है। मैं 98 एंड में एग्जाम फाइनल दे दिया
0: जी,
1: और पिताजी को एक क्लियर कट बता के मधुबन आना था मुझे।
0: अच्छा।
1: कि मुझे फर्स्ट क्लास के लिए 3 मार्क्स कम पड़ेंगे। इतना पक्का, क्योंकि मैथमेटिक्स में मार्क्स का काउंटिंग सहज हो जाता है।
0: जी जी जी।
1: और 2 मास बाद जब मैं मधुबन में ही था, पांडव भवन में।
0: अच्छा।
1: यहाँ मैं सेवा के लिए आता था।
0: कब आए थे आप यहाँ?
1: मैं 91 से ही आना शुरू कर दिया।
0: अरे वाह।
1: हाँ जी,
0: 91 में आप फर्स्ट टाइम पहुंच गए थे।
1: पहुंच गए थे। और उनको बता के मैं आ गया था। 2 मास के बाद रिजल्ट आई, और एग्जैक्ट वही रिजल्ट आई
0: जो आपने कही थी,
1: जो मैंने बताया था।
0: वाह वाह।
1: और वो 3 मार्क्स यूनिवर्सिटी देती है ग्रेस के रूप में, और ऐसे यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट क्लास दे दिया।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो फिर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए होंगे।
1: बहुत बहुत बहुत।
0: भाई कोई भी पिता प्रसन्न ही होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एमएससी एक बहुत टफ एजुकेशन लेवल है। फिर आपने जॉब वगैरह के लिए विचार किया?
1: जॉब वगैरह के लिए विचार नहीं किया मैंने, क्योंकि उस 2 मास में जब मैं यहाँ रुका था तब मेरा विचार बदल चुका था।
0: अच्छा, मतलब आपने फैसला कर लिया?
1: हाँ, मैंने फैसला कर लिया था, और मैंने पिताजी को लिख भी दिया था।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो वो नाराज हुए कि उन्होंने कहा शाबाश?
1: थोड़ा सा हुआ, क्योंकि नेचुरल है, कोई भी माता पिता होगा ही होगा,
0: जाहिर सी बात।
1: हाँ जी, हाँ जी। इतना पढ़ाने के बाद, और घर में कोई अर्निंग मतलब सोर्स नहीं था खेती के अलावा, थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन वो जो रहस्य है कि पिताजी ने इतनी आसानी से क्यों छुट्टी दे दिया, वो आज मतलब वो रहस्य जो है, वो रोमांचक क्षण जो है, वो मुझे आज 50वें साल में पिताजी ने बताया, जो मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं था। वो कहते हैं, मंगेश जब तू 2 साल का था ना, तब तुझे डायरिया हो गया था।
0: अच्छा।
1: गांव में, और गांव के डॉक्टर ने इलाज किया
0: जी,
1: तो पहले दिन कुछ मतलब कंडीशन नीचे नीचे जा रही थी
0: जी,
1: तो उन्होंने दूसरे दिन कहा कि नहीं, इसको शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा।
0: ओह।
1: हाँ, फिर बड़े हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के एडमिट हुआ
0: जी।
1: 10 दिन तक इलाज चलता रहा। 8वें दिन डॉक्टर, और इसमें माताजी, पिताजी, चाचा वगैरह मेरी केयर करते थे, मैं तो 2 साल का अपना पड़ा हुआ हूँ बेड पे।
0: ठीक है।
1: पिताजी कहते हैं कि मैं हर रोज रात को आपके पास ड्यूटी करता था, और सुबह 5-6 मंदिरों में घूमता था, परमात्मा से प्रार्थना करता था कि भाई इसको। 8वें दिन डॉक्टर ने कहा कि अगर ये 48 घंटे के अंदर होश में नहीं आया तो फिर कोई चांस नहीं है। उस दिन मैं मंदिर में गया, अंबे माँ का मंदिर फेमस है अमरावती का।
0: अच्छा।
1: हाँ, अंबे माँ के मंदिर में गया और माँ से कहा कि ये अब तुम्हारे हवाले।
0: पिताजी ने ऐसा
1: प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस कर दिया।
0: फिर
1: बस वो रहस्य मुझे आज पता चला,
0: मतलब इतने आपके इतने लंबे काल यहाँ होने का जो बीज है वो
1: वहीं पड़ चुका,
0: वहाँ तब पड़ चुका। 2 वर्ष की आयु
1: 2 वर्ष की आयु में।
0: क्या बात है, देख रहे हैं कि जीवन किस तरह से किस किस दिशा में जाकर के पहुंचता है, हमें कई दफा नहीं पता रहता चलते चलते, एक मुकाम पे जाकर के हमें पता लगता है अनेकों वर्षों के बाद, तो फिर दिल से निकलता है वहां भाई ईश्वर की जो गतमत है वो ही जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। विशेष कौन सा बदलाव आपके जीवन में आया पहले जीवन में जब आप जीते थे, और जब आपने ये चुनाव कर लिया कि मुझे इस ईश्वरीय पथ का पथगामी बनना है, मुझे ये जीवन जीना है, तो ऐसा कौन सा बदलाव आपने अपने अंदर पाया?
1: एक सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव विशाल भाई ये रहा कि पहले डरता बहुत था मैं। हाँ, इस राजयोग के अभ्यास से कहो या ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर डर निकल गया एकदम।
0: इस बात से डर लगता था?
1: डर माना स्पीच से भी डर, कोई ऐसे चिंता कि भविष्य में क्या होगा,
0: भविष्य की चिंता। हाँ, का डर।
1: और एमएससी के बाद मतलब मैथमेटिक्स जब लिया, मुझे ये डर नहीं था कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल, कि मुझे ये फेथ कॉन्फिडेंस।
0: क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज के सिनेरियो में हम देखे हैं दुनिया में, आज की आज तो क्या मतलब कितने लंबी जनरेशन इसी साये में जी रही है।
1: बिल्कुल,
0: एक भय अनिश्चितता, कल क्या होगा, कल क्या होगा।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो इस ईश्वरीय ज्ञान ने आपको ये निश्चित कराया कि कल जो होगा अच्छा ही होगा।
1: बिल्कुल 100% अच्छा,
0: और वो अच्छा है, परिणाम हम देख रहे हैं इतने एक अरसे के बाद। एक और बात विशेष, वो तो एक बात है कि आप चलते रहे ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में, जीते रहे परिवार के साथ, लेकिन एक मोड़ पर आपने ये आकर के तय कर लिया कि अब मुझे संपूर्ण रीति समर्पित होकर के यहाँ ही रहना है, घर परिवार संसार दुनिया के जो मेरे जीवन जीने के पहले तरीके थे वो बिल्कुल पलट करके अब यहाँ पर रहना है। वो कब आपने निश्चय किया और क्यों किया
1: ये बताए ना आपको, कि जैसे MSc के एग्जाम दे के आ गया था मैं, 98 की बात है
0: जी,
1: और मुझे पांडव भवन में जो निमित्त भाई थे उन्होंने कहा कि अगर आपको समर्पित रूप से, पूर्णकाल समर्पित रूप से अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ चांस है, आप माता पिता का लेटर लेके आ जाइए।
0: ओके,
1: हाँ। तो कुछ दिन बाद
0: आपने उस चांस का पूरा लाभ ले लिया, चांसलर बन गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा कहता हूँ मैं कि चांस लेकर चांसलर बनना है।
0: किसने प्रेरित किया आपको?
1: खास अपने आत्म प्रकाश भाई जी थे।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, जो उस समय सारे टोली डिपार्टमेंट का और सेवाधारियों को संभालते थे।
0: अच्छा।
1: और आत्म प्रकाश भाई जी भी हमारे ही बेल्ट के थे।
0: अच्छा।
1: उनका जो MSc केमिस्ट्री था वो नागपुर से ही हुआ था।
0: अरे वाह।
1: हाँ हाँ, तो इसलिए एक थोड़ा लगाव जुकाव
0: जुड़ा गया, कनेक्शन बन गया, वो समर्पण की होने की जो प्रेरणा मिली वो आत्म प्रकाश जी से।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आत्म प्रकाश भाई, आपने एक अमूल्य रत्न को यहाँ हमारे बीच में रखा। वर्तमान समय आप क्या सेवाएं देखते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं?
1: जब से मैं 98 से आया ना, तब से मुझे फिर परमानेंट के हिसाब से रेलवे सेक्शन दिया गया।
0: अच्छा।
1: रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस।
0: इसमें आप क्या करते हैं?
1: इसमें हम जो भाई बहने आते हैं तो उनके रिक्वेजेशंस वगैरह हम यहाँ ले लेते हैं। हमारे पास 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा रहती है, दो कंप्यूटर है। जब स्टार्ट में मैं आया माउंट आबू में तो वहाँ मैन्युअली टिकट बनते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो माउंट आबू के लिए रिजर्व कोटा रहता था, एक छोटी सी ऐसी स्लिप आती थी और वो जो बुकिंग क्लर्क है वो लिख देते थे कि इस कोच में इतना नंबर, उनके रजिस्टर में एंट्री होता था।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ से शुरू,
0: उस दौर से लेकर के आज तक आप लेकर क्या है।
1: बिल्कुल। और हमारे खास आदर्श भी रहे ओम प्रकाश भाई।
0: अच्छा।
1: जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा की पालना ली थी।
0: अच्छा।
1: और देखो, ये व्यक्ति जैसा रहता है दूसरे व्यक्तित्व भी उसके वो उन्हीं के वो भी बहुत सिंप्लिसिटी वाले रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत आदर्श जीवन रहा उनका। तो उस प्रकार से फिर जब मैं घर से छुट्टी लेके आया तो उन्होंने कहा कि शांतिवन में ऑफिस संभालना है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि यहाँ उस समय 10,000-20,000 का मेला शुरू हो गया था।
0: मतलब 10,000-20,000 लोगों से आपको वास्ता पड़ता
1: था। वास्ता पड़ता था।
0: उसमें तो बहुत एनर्जी और बहुत
1: वो भी
0: धैर्य की आवश्यकता पड़ती होगी, किस तरह से आप संभालते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बाहर जाके आबू रोड जाके वो सारे रिजर्वेशन करा के आने पड़ते थे मुझे। आज तो अभी सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, अपने घर में ही रिजर्वेशन ऑफिस दिया है
0: जी।
1: लेकिन उस समय तो वहां जाके और पब्लिक के साथ रहते भी वो सारा कार्य करना पड़ता था।
0: बहुत बहुत तरीके की समस्याएं भी आपको इस मामले में आती होंगी।
1: हाँ, आती है। वो बाबा ने कहा कि सुख दुख निंदा अपमान, निंदा हानि लाभ सब में समान रहना है। और इसमें एक फैक्टर ये देखा कि हम सारे दिन का कारोबार करते थे तो जब बाबा को रात में गुड नाइट करते थे, परमात्मा को, शिव बाबा को
0: जी,
1: तो उस समय वो सारे बोझ जो है ना, जो कुछ व्हाटएवर हैपेंड ओवर ऑल द डे, तो वो सारा बाबा को सौंप देते,
0: रिलीज कर देते थे।
1: बाबा ये गलती हो गई, ये नुकसान हो गया, इस व्यक्ति ने ये बोल दिया, किसी ने गाली गलौज किया, गाली।
0: अच्छा, ऐसा भी होता था?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल होता था।
0: उसे कैसे डाइल्यूट करते
1: थे? बहुत लोग हैटर्ड उससे देखते थे, नजर से ब्रह्मा कुमारीज वाले आ गए, अभी हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
0: ये तो चलो बाहर का था। हाँ, आपको अंदर से भी कहीं कटु अनुभव होते होंगे कुछ ऐसे?
1: अंदर से कोई खास,
0: कोई ऐसे भाई बहन है जिनका रिजर्वेशन नहीं हो रहा है या हो गया, या उनको मतलब मुश्किल थी जिसको आपको आसान करना में मदद मिलती होगी आपकी तरफ से?
1: बहुत थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत, फिर भी अपने भाई ने तो, और हम कर लेते थे वो, ना कोई वो फैक्टर बहुत ईजी रहा।
0: चलिए, ये तो कारोबार की बात रही, इसके अलावा आपकी और क्या दिनचर्या रहती है? आप किस तरह अपने आप को मैनेज करते हैं?
1: दिनचर्या तो जो हमारे को ईश्वरीय नियम मर्यादा दिन दिया उस प्रकार से सुबह 4:45 बजे उठ के अमृत वेला करना,
0: अच्छा,
1: ईश्वरीय महावाक्यों का क्लास करना,
0: ओके,
1: और एक्सरसाइज मेरा पैशन है,
0: ओके,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुबह शाम मैं अच्छी तरह एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहता है, मन भी हैप्पी रहता है,
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए शरीर का भी, जैसे ईश्वरीय महावाक्यों में भी ये बताया गया कि भाई शरीर आत्मा का ध्यान तो रखना ही रखना है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शरीर का भी ध्यान साथ साथ,
0: शरीर एक गाड़ी है, अगर आप इसका संभाल नहीं रखते तो आप यात्रा में परेशान होंगे निश्चित तौर पे, तो मतलब आपने गाड़ी का भी ध्यान रखा है, एक बहुत अच्छे ड्राइवर भी है कुशल, इस रथ को चलाने वाले रथवान भी है। मंगेश जी, आपके विचारों को सुनकर बहुत दिल को प्रेरणा मिल रही है, जैसा कि हमारा सेगमेंट था कि जीना इसी का नाम है, इससे बड़ा क्लियर हुआ है कि इंसान को सभी कर्तव्य निभाने होते हैं, करते हुए ईश्वर के प्रति अपना प्रेम अनुराग रखते हुए आगे बढ़ते रहने से सफलता आपको मिलती है, संतोष आपको मिलता है, जैसा आपने बताया,
1: परमात्मा दुआएं मिलती है। और विशाल भाई जी, जैसे आपने ये गीत सुना, ऐसे मेरा एक फेवरेट गीत था
0: जी,
1: अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जीना सीख जमाने के लिए, ये
0: तरंगों
1: में हमेशा ये गीत बजता रहा मुझे
0: तो मैं इस गीत को ले लेता हूँ और आज के इस कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करते हुए, इस गीत को देते हुए हम जाएंगे अपने सभी श्रोताओं को, और निश्चित तौर से हमारे श्रोताओं को इससे कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई होगी, पता लगा होगा कहीं ना कहीं कि जीना इसी का नाम है, जीवन का ये सौंदर्य है, जीवन को इस तरह से संवारा निखारा जाता है, और त्याग और तपस्या के रास्ते पर चल करके जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है, यकीनन जीना इसी का नाम है। बहुत खुशी हुई आपने समय दिया और अपने विचार हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू विशाल जी।
0: तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम का यहाँ पूर्णांक लगता है, अगले पड़ाव पर फिर आपसे भेंट होगी एक और ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे शख्सियत के साथ जिसने जीवन को जिया होगा और जीवन का सौंदर्य किया होगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी, यहाँ दीजिए मुझे अनुमति, इस गीत के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदाई, धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्ते।
2: नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाए थे। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, हर बार जब भी सहज स्वास्थ्य इस कार्यक्रम को लेके आते हैं तो ये बात मेरी समझ में आती है कि मैं आज कुछ नया सीखने वाला हूँ। वैसे भी ये चीज कही जाती है कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। अगर मैं ये सोच लूं कि हाँ, मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ ज्ञान का भंडार आ गया है, मैं सर्वज्ञ हो चुका हूँ, मुझे और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं है, ऐसा अगर मैं मानता हूँ तो वास्तविकता में मैं अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहा हूँ। जीवन की इस यात्रा में हर व्यक्ति को सीखने के सतत प्रयास करने हैं और जो भी अच्छी जानकारियां हम सीखते हैं उसे सीख कर जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आज स्वास्थ्य के विषय में भी हम कुछ ऐसी आवश्यक जानकारियों को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज इसी विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुट रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी पेशे से एक ऑस्टियोपैथ हैं, भारत के जाने माने स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट भी हैं, भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि इनकी मेडिकल की पढ़ाई एलोपैथी की शिक्षा होते हुए भी ये प्रकृति चिकित्सा के केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इतना वेरीड हेल्थ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। तो आज इनसे करते हैं चर्चा और समझते हैं अपने स्वास्थ्य को सहज करने के उपाय। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य कहते ही लोग ये बात समझने लगते हैं कि हाँ, हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखनी आवश्यक है। कभी कभार लोग ये कह देते हैं, अरे ये चीज हमें पहले से पता होती तो शायद ये गलती हमसे नहीं होती। और आज यही चीजें हम देखते जाते हैं कि जितनी से जितनी ज्यादा जानकारियां आज उपलब्ध होती जा रही हैं, कोई किस जानकारी को सही समझता है, कोई कहीं पर पढ़ लेता है, कोई कहीं पर कोई चीज सुन लेता है, उसके आधार पर चीजों को सही समझकर करने लगता है। ऐसे में स्वास्थ्य जगत के

0: जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो सही जानकारी है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। खासकर आज डायबिटीज जैसी बीमारियों के बारे में जब बताया जाता है, बातचीत की जाती है, तो लोग ये भी समझ लेते हैं कि डायबिटीज आ गया मतलब अब तो हो गया, तो जिंदगी भर दवाई खानी ही है। तो सबसे पहले ही प्रश्न ये उठता है जब डायबिटीज की बीमारी के बारे में, शुगर के बारे में बातचीत करते हैं, तो लोग मन में प्रश्न आ जाता है, अच्छा डायबिटीज आ गया, अब हम क्या करें, अब हमें क्या खाना छोड़ना पड़ेगा। ये चीज एक बड़े प्रश्न के रूप में उभरता है। आप क्या उसका उत्तर देते हैं?
1: डायबिटीज हमारा मेटाबॉलिज्म का एक बीमारी है। हमारी शरीर, हमारे जो शकरा है या चीनी है या कार्बोहाइड्रेट है, उसको अपनी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पा रहा है, और हमारा शरीर जो है वो चीनी से फिर भरने लगता है। ये अगर साधारण शब्दों में हम इसको समझें तो हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको काम करने के लिए चीनी चाहिए, मगर वो जो चीनी है वो कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कोशिकाओं का जो ताला है उसको खोलने के लिए जो हार्मोन चाहिए उसे इंसुलिन कहते हैं। ये हमारी पैंक्रियास में बीटा सेल ऑफ लैंगरहांस में बनता है, और हम जब भी भोजन करते हैं ये हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है, और हमारे पाचन तंत्र में जो शक्कर एब्जॉर्ब हो रही है, चीनी जो है वो भोजन से हमें मिल रही है, उसे कोशिकाओं के अंदर डालने का काम करता है। भारत हमारा ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, मगर हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमारे यहाँ इस समय सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हमारे भारत में हैं। और ये कहते हुए मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है कि जितनी भी बीमारियां, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, अस्थमा हो, गठिया हो, या आप किसी और जो नॉन कॉमन ओबेसिटी मोटापा हो, हमारे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और हमारे श्रोताओं का और हम सभी का ये दायित्व तो बनता है कि हम अपना स्वास्थ्य ठीक करें। अगर हम अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे तो हम अपने देश और अपने समाज के उद्धार के लिए काम कर पाएंगे। डायबिटीज हमें होती कब है, मतलब पहले तो ये ठीक है, आपको कोई पैंक्रियास की बीमारी हुई, आपका इंसुलिन निकलना बंद हो गया, या आपको कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपकी पैंक्रियास काम करना बंद कर दिए, या आप जब से जो आप पैदा हुए आपके में ठीक से पैंक्रियास डेवलप नहीं हो पाया तो आपका इंसुलिन नहीं निकल पाया, ये बात एक है। मगर मेजॉरिटी लोगों को अपना जीवन बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हम अनियंत्रित तेज समय भोजन और बहुत सारा मीठा भोजन करने लगते हैं। और आप एक बात समझिए कि एक हम पैंक्रियास को एक नौकर की तरह इस्तेमाल समझें कि वो हमारा सहायक है, हमारा नौकर है, या हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति है, या पैंक्रियास को हम एक कुली की तरह समझें, और हम जब भोजन करेंगे उस पैंक्रियास को काम करना है, इंसुलिन निकालना है और कोशिकाओं में डालना है। तो पता चला हम सुबेरे उठ के हमने कुछ खाया तब उसको काम करना पड़ा, हम अपने स्कूल पहुंचे रास्ते में, स्कूल में हमने एंटर करने से पहले या कॉलेज में घुसने से पहले हमने बाहर कोई दुकान थी उसमें कुछ खाया, फिर हमारे इंसुलिन को काम करना पड़ा, फिर हम निकले दो पीरियड के बाद या दो घंटे बिताने के बाद हम लोग ने कहा चलो थोड़ा चाय पी लें, जो छोटे बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं चलो कुछ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा लें, पता चला फिर इंसुलिन को काम करना पड़ रहा है। हाँ, एक बात और बोलूंगा, जिसमें चीनी ज्यादा है उसको पचाने के लिए, उसको अपनी कोशिकाओं के अंदर डालने के लिए ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो कभी भी हम जब बहुत मीठी चीज जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हुआ, आइसक्रीम हुआ, या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, या इवन गुलाब जामुन, जलेबी, ये सब खाते हैं, तो समोसा, तो तुरंत हमारे पैंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो पता चला दो घंटा हम लोग ने अपने क्लास में बिताया, फिर कुछ खाने चले गए, फिर उसको काम करना पड़ा, 12-1 बजे जब लंच हुआ तो हम लोग ने कहा चलो कुछ जल्दी से कुछ खा लें, और जो एक शब्द ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा है, कॉलेज में इस्तेमाल हो रहा है, वो है क्विक स्नैकिंग, मतलब झटपट। हाँ, और इसको पहले कि आप एक बात समझिए, फास्ट फूड, फास्ट फूड का मतलब ये नहीं कि वो फूड तेज भागता है, फास्ट फूड का मतलब वो भोजन है जो कि तुरंत बनता है, उसको बनाने में समय नहीं लगता है, इसीलिए उसको फास्ट फूड बोलते हैं। हम जितने भी नूडल्स खाते हैं या हम जो रेडीमेड नूडल्स खाते हैं वो क्या बोलता है, डब्बा खोलिए, 2 मिनट गर्म पानी डालिए और बन के तैयार, तो वो फास्ट फूड, इंस्टेंट फूड। और मैं सभी श्रोताओं से, सभी बच्चों से, सभी युवाओं से जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्लीज अवॉइड फास्ट फूड। मैंने ये नहीं बोला कि एकदम बंद कर दीजिए, मगर प्लीज अवॉइड फास्ट फूड। बंद करने को इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मन करेगा खाने का, अगल बगल वाले खा रहे हैं तो कभी कभार जरूर लीजिए अपने स्वाद के लिए, मगर इसको अपने दिनचर्या का भाग मत बनाइए। अब हम लोग 1-2 बजे भी लंच किए, लंच करके फिर निकले, फिर कुछ 2-3, 3:30, 4 बज गया, अरे बड़ी थकान हो रही है, चलो चाय पी लें, चलो कॉफी पी लें, चलो कोल्ड ड्रिंक पी लें या चलो कुछ खा लें। फिर शाम को 6 बजे जब घर पहुंचे तो माँ ने कुछ बना के दिया है वो खा लें, अरे नहीं पसंद नहीं आ रहा है, चलो कुछ खाते हुए घर चलें। तो हम दिन भर कुछ अपने मुंह में डाल रहे हैं और हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है। मैं एक राय और देता हूं कि जरा सा भी आपको अगर हल्की सी भूख लगे तो कृपा करके आधा ग्लास पानी पी लीजिए। आप अगर आधा ग्लास भी पानी पी लेंगे तो आप उतनी देर के लिए अपने पाचन तंत्र को आराम दे देंगे, आप अपने पैंक्रियास, आपके लिवर, उन दोनों को आराम दे देंगे कि वो जो अपने जूसेस बना रहे हैं उसको बनाने के लिए उनको आराम मिल जाए। और फिर हम रात में पहुंचे तो हम लोग ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल से फास्ट फूड तो ले आए, मगर हमने ये नहीं ध्यान दिया कि पूरा जो पूरा वेस्ट है वो 7 o'clock to 8 o'clock अपना खाना खा लेता है, बिकॉज they have to cook, they have to clean and then they have to sleep. हमारे यहाँ तो खाना कोई एक स्टाफ बनाएगा या कोई आदमी बनाएगा, उसके बाद बर्तन भी कोई और आके धोएगा, बिस्तर कोई और बनाएगा, वहां उनको ये काम खुद करना पड़ता है। तो they have a early dinner and they go off to sleep also after, you know, खाना खाने के 1-2 घंटे बाद सोते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग लेट खाना खाने लगे हैं और खाना खाते ही बिस्तर पे लेट जा रहे हैं, तो हम अपने पैंक्रियास को आराम ही नहीं दे रहे हैं और हम इसीलिए डायबिटीज के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम कंट्रोल्ड खाना खाएं और इवन क्वांटिटाइज करके खाएं, अगर हम ये मान लें कि हम दिन में 4-5 बार ही कुछ भोजन करेंगे, पानी हम जितना चाहें जितनी बार चाहें पी सकते हैं, 4-5 बार ही हम भोजन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा जल्दी भोजन करें, अर्ली भोजन करें, तो हम अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं।
0: ये बात समझ में आती है कि हमें जब भी डायबिटीज की बात कही जाती तो लोग यही कहते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। आपने ये चीज कहा कि हमें जंक फूड नहीं खाना है, रात को देर से भोजन नहीं करना है। अब ये बात समझ में आती है कि कुछ चीजों को लेकर लोग तो मतलब बहुत ही ज्यादा सोचने भी लगते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा ये चीजें नहीं खानी है, हमको उन चीजों को छोड़ देते, बट कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्या उस चीज का भी असर डायबिटीज से कनेक्टेड रखता है?
1: भैया छोड़ना क्या है, सबसे पहली चीज तो गन्ने से बनी चीनी छोड़ना है, सबसे पहली चीज, ऑल टाइप्स ऑफ शुगर्स। और उसके बाद जो और एक खतरनाक चीज है वो है कॉर्न बेस्ड शुगर, मतलब जो भुट्टे से, कॉर्न सिरप से बनी हुई शुगर वो है। और अगर आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा है तो भैया ये शहद या हनी है इसको भी छोड़ना है और गुड़ को भी छोड़ना है। इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम चीनी बंद कर दी है मगर हम गुड़ खा रहे हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है, अरे हमने चीनी बंद कर दिया हम शहद खा रहे हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा है तो आपको ये चीजें बहुत नुकसान करेंगी। एक चीज मैं यहां बोलना चाहूंगा कि पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि हमारे लिए नॉर्मल नंबर्स क्या हैं। हर जगह थोड़ा अलग थोड़ा नंबर अलग आता है, बट अगर आपका जो ब्लड शुगर है वो 70 से 110 या 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है, तो हम फास्टिंग को, कुछ जगह 100 भी लिखा गया है, कुछ जगह 120 तक लिखा गया है, हम उसको नॉर्मल मानेंगे। वर्ल्ड ओवर मेडिकल फील्ड ये बोलता है कि अगर आपका जो, कुछ लोग ये मानते हैं कि 100 से अगर 120 या 125 तक रहता है तो आप प्री डायबिटिक है, मतलब आपके डायबिटीज होने के चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं। और आपका अगर जो HbA1c है, जो आपके 3 महीने का शुगर आपके बॉडी में क्या है, वो अगर 5.7% से नीचे है तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैं एक चीज और बात बोलूंगा कि आपने क्या खाना खाया है, आप कितने स्ट्रेस में हैं, आप कितने बीमार हैं, आप कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या आप बहुत किसी मेंटली बहुत आप परेशान चल रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपके शुगर को फ्लक्चुएट करती हैं, तो इनका भी थोड़ा सा हम इनको भी ध्यान में ले लें। पर ये एक मोटा मोटी सब लोग जान लें कि अगर 120 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ऊपर फास्टिंग है आपका और 5.7% से ऊपर HbA1c है, तो आप एक डायबिटिक की श्रेणी में लाए हुए व्यक्ति हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, थोड़ा लोगों को सुन के अचंभा होगा कि अगर आपको डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे हुई है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फिट रहने के लिए। अगर आपका नंबर 120 की जगह 130 140 आ गया है, आपका HbA1c 6 तक आ गया है, 6.5 आ गया है, तो ये बता रहा है कि आपको अब अपने भोजन को कंट्रोल कर लेना है। और श्रोताओं मित्रों को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं, हम उसको वापस नॉर्मलसी में ला सकते हैं। वापस नॉर्मलसी में लाने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर पूरा छूट होकर जो मन चाहे वो खाते रहेंगे, आप खूब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, दिन में 7 बार 8 बार 9 बार खाएंगे, आपको लड्डू पसंद है तो भगवान को आप लड्डू चढ़ाएंगे, आपको इमरती पसंद है भगवान को आप इमरती चढ़ाएंगे, आप एक रसगुल्ला राइट हैंड के लिए खाएंगे, एक लेफ्ट हैंड के लिए खाएंगे, एक मन, नहीं सर, अगर आपका नंबर बढ़ गया है और फिर आप उसको नीचे लेकर आए हैं, नॉर्मल लेवल पे लाए हैं, आप अपने भोजन को पूरा कंट्रोल करेंगे। ये बड़ी पुरानी एक बात है, मेक योर फूड योर मेडिसिन। तो प्लीज आप अपने भोजन को अपनी दवा बना लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपका नंबर थोड़ा सा बढ़ा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप प्लीज अपने आप को सुधार लीजिए। और अगर आपने अपने आप को सुधार लिया तो ये जेन जी और जेन एक्स को ये बोलने की बड़ी बात नहीं है, बट आई कैन प्रॉमिस देम कि वो ठीक हो जाएंगे, वो दवा से छूट जाएंगे।
0: ये कितनी मजेदार बात आपने कही कि जब हम डायबिटीज रिवर्सल की बात करते हैं तो ये संपूर्ण रीति से अपने आप को स्वस्थ बनाने की थीम है। और अगर आप शुगर के मरीज हो चुके हैं तो आप वापस स्वास्थ्य तक ला सकते हैं अपने आप को, आपको हर दिन गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दोनों हाथ में लड्डू लेके खाते रहेंगे और पहले जैसे खाते थे वैसे ही सब कुछ खाते रहेंगे, वो नहीं हो सकता। ये समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि दवा से मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने भोजन को ही दवा बनाने की जरूरत है। अब आप यही सोचिए कि क्या मुझे एक दवाई खानी आवश्यक है या उस दवा से मुक्त होकर स्वस्थ रहकर स्वस्थ भोजन खाने की आवश्यकता है। यही चीज हम सहज स्वास्थ्य में समझने का प्रयास भी करते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लोग अपने शुगर के बारे में, जैसे आपने कहा कि भाई एक बार शुगर हो गया तो फिर मतलब आपको ध्यान रखना है। अब डायबिटीज के मरीजों को ये भी प्रश्न होता है कि भाई हाँ, एक बार हमने चेक कराया था तब हमें बता दिया था डॉक्टर ने कि शुगर की बीमारी हो गई थी, मगर अब फिर उसके बाद से हम जांच ही नहीं करवा रहे हैं, बस अब जाएंगे तो फिर से ही निकल आएगा, फिर से वो शुगर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसलिए कई बार लोग ये समझते ही नहीं है कि क्या हमें जांच करवाने की जरूरत है, कितने महीने में एक बार जांच कराने की जरूरत है अपने शुगर, ये भी आप बताएं।
1: अगर आपका शुगर आपको एक बार मिल गया है, एक बार आपका नंबर स्कर बढ़ा है, तो प्लीज, और अगर एक बाउंड्री लाइन ही क्रॉस हुई है 120 की जगह 140 तक आ गया है, आपका HbA1c 6 तक आया है, तब आप अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं, अच्छे से भोजन कर रहे हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी आपको 6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट जरूर कराने चाहिए। और अगर आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको हर दूसरे महीने टेस्ट कराना चाहिए। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा सारे श्रोताओं को कि अगर आपका एक बार डायबिटीज बढ़ गया है तो हमको अपने भोजन को बहुत चबा के खाना है, न कि दबा के खाना है। तो प्लीज अपना भोजन चबाइए, अपने क्वांटिटी ऑफ फूड को कंट्रोल करिए, अपनी क्वालिटी ऑफ फूड को बेटर करिए और अपने सेहत का पूरा ध्यान रखिए। ये आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। ये तो डिनायल वाली बात हो गई कि हम कहते हैं ना कि एक सामने की कोठरी में अंधेरा है, हम जाएंगे ही नहीं तो अंधेरा कैसे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे एक बात बोलते हैं ना, हम एग्जाम देंगे ही नहीं तो फेल कैसे होंगे। अब आप कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आपको तो जांच करानी पड़ेगी, आपको अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। हम लोग ने बोला अभी अपने पिछले लेक्चर्स में कि ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर शुगर बढ़ा हो। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए और आप अपने शरीर के साथ आप अपने को डिनायल में ले जा सकते हैं, पर एक चीज याद रखिए, आपका एक परिवार भी है, आपसे बहुत सारे लोग आश्रित भी हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पता ही नहीं करिए कि क्या बात है। ये तो वही वाली बात होगी श्री भैया की, आप हर संडे को मेरे बैंक वाला मेरे को स्टेटमेंट भेजता है कि आज आपके अकाउंट में 25,000 रुपए है, और मैं अपना स्टेटमेंट देखूं ही नहीं और सोचूं अरे अब तो आज मेरे अकाउंट में आज 1 लाख हो गया होगा, तो 2 लाख हो गया हो, मैं रोज खर्चा करता जाऊं। तो ये तो नहीं हो सकता भैया। जैसे आप अपने फाइनेंसिस के बारे में ध्यान रखते हैं, आप अपने नंबर्स के बारे में ध्यान रखते हैं, आप अपनी इनकम के बारे में, अपने श्री भैया आप तो स्टेप्स के बारे में बात करने लगे हैं और बड़े खुशी खुशी बताते हैं, यू नो आई वॉक 7,000 steps, आई 8,000। तो लोग अपने चलने की भी माप रहे हैं अपने आप को। तो ये तो शुगर है और जरूरी है इसको जांचना।
0: बहुत ही आवश्यक जानकारी आज आपने हमारे दोस्तों को दी कि हम अपने कितने कदम चल रहे हैं, कितना एक्सरसाइज हुआ है। इन सब चीजों को हम फिटनेस डिवाइसेस से मेजर कर रहे हैं, हमारे फोन्स पे इन चीजों के एप्स आ गए हैं, वो भी हमें एक चीज बताते हैं। ऐसे में शुगर की जांच भी करानी है, खास तौर पर तब जब आप पता चल गया है कि आप डायबिटिक हैं या आपकी उम्र बड़ी होती जा रही है, तो ये चेकअप कराना है। और अगर डायबिटिक हैं तो फिर रेगुलरली आपका ब्लड चेकअप कराना भी जरूरी है। आज बहुत ही आवश्यक जानकारियां हमें डायबिटीज से संबंधित हासिल हुई है। आशा करते हैं कि आप सभी श्रोता मित्र इन जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ अपने ही स्वास्थ्य के लिए नहीं मगर अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, मित्रों के लिए, साथ में काम करने वालों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहेंगे, उन्हें भी स्वास्थ्य की ओर एक कदम लेने में मदद करेंगे। आज की चर्चा में यही विराम लेते हैं। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों आज के सेहत स्वास्थ्य में यही लेंगे विराम, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सपनों की सैर कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और स्वागत करने के लिए मनी दीदी और परी भी आ गए हैं।
1: हाँ बच्चों, तो अभी जो परी और मनी दीदी के साथ बच्चों का सिलसिला चल रहा है वो छोटे छोटे प्रश्नोत्तर का है, सवाल और जवाब का है। और बच्चे हमें प्यारे प्यारे क्वेश्चंस अपने प्यारे प्यारे आवाज में भेजते हैं और मैं और परी कोशिश करते हैं कि आपको छोटी छोटी टिप्स बताई जाए।
0: हाँ देखो, जैसे रिधि ने ये बताया है कि जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है मुझे बहुत बुरा लगता है।
1: बात तो सही है बच्चों, हमें किसी का भी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे सामने वाले को तो दुख होता है। अभी देखो, जैसे रिद्धि को बुरा लगता है कि कोई मजाक उड़ाता है तो उसे बुरा फील होता है, ऐसे ही हमें किसी के आत्मविश्वास को कम नहीं करना चाहिए।
0: और बच्चों, यदि कोई बार बार परेशान करता है तो अपने टीचर को या घर के बड़े लोगों को बताना चाहिए।
1: हाँ, और अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ, उनकी मजाक को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
1: हाँ, तो ये आप बड़ों के सहयोग से भी, मम्मी पापा को बताकर भी इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अंदर ही अंदर ये बातें रखनी नहीं चाहिए, बड़ों से शेयर करना चाहिए।
0: रिद्धि, तुमको अपना सवाल का जवाब तो अवश्य मिला होगा हमें लगता है।
1: रिद्धि, ये बात तो जरूर ध्यान रखना कि कभी भी कोई बात अपने मन में नहीं रखना। यदि मजाक उड़ाता है कोई और बुरा लगता है तो जरूर जरूर जरूर आपको बड़ों को शेयर करना है।
0: अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर
1: सपनों की सैर को।
2: आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बनके मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना।

0: ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। और आज आपको बाघ की कहानी सुनाने वाले हैं। सुनो ध्यान से, क्या होता है बाघ का। एक जंगल में चार गायें रहती थी, उसमें तो बहुत ही मित्रता थी। वे चारों हमेशा साथ साथ रहती थी, एक साथ घूमने जाती, साथ साथ चरने जाती, वे बड़े सुख से रहती थी। कभी कोई जंगली जानवर उन पर हमला करता तो वे चारों मिलकर उनका सामना भी करती थी और उसे मारकर भगा देती थी। देखा बच्चों, गायें की यूनिटी कितनी थी और कितनी बहादुर थी। और उसी जंगल में बच्चों एक बाघ भी रहता था, उसकी नजर इन गायों पर रहती थी। वो गायों को मार कर खाना चाहता था, लेकिन उनकी एकता देखकर उन पर हमला करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। तो सोचो बच्चों, बाघ ने प्लान क्या बनाया होगा। एक दिन गायों में आपस में झगड़ा हो गया, वे एक दूसरे से नाराज हो गई। उस दिन हर गाय अलग अलग रास्ते से जंगल में चरने गई। बाघ तो बच्चों बहुत ही खुश हो गया, वो बहुत दिनों से इसी की तो ताक में बैठा हुआ था। उसने एक एक करके सभी गायों को मार डाला और उन्हें खा गया। तो देखा बच्चों, कहानी कितनी मजेदार है और हमें सिखाती है कि एकता में ही शक्ति होती है, फूट से तो विनाश होता है। तो इसीलिए बच्चों, कभी भी आपस में झगड़ना नहीं, वरना दूसरे हमारा फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए हमेशा मिलजुल के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रहना। चलो बच्चों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

बच्चों, तेनालीराम की किताब लेकर आ गई है मनी दीदी। और इसमें हम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ रहे हैं, उसका शीर्षक है मित्र की पहचान। अब जिसमें तेनालीराम को महाराज के दोनों मित्रों से पता लगाना है कि कौन उनका सच्चा मित्र है, तो तेनालीराम राजभवन में ही रात को विश्राम कर रहे हैं और उन्होंने महाराज से कहा कि मेरे ठहरने का प्रबंध इन दोनों मित्रों के कक्ष के आसपास ही करा देना। तो महाराज भी मान गए। तो अब आगे क्या हुआ, चलो चलो मैं बिना देर किए पढ़ना शुरू करती हूँ। तो शाम को तेनालीराम आया और उसे महाराज के मित्र प्रसन्नजीत और वज्रबाहु के कक्षों के सामने के एक कक्ष में ठहरा दिया गया। तेनालीराम के राजभवन में ठहरने की सूचना गोपनीय रखी गई। महाराज कृष्णदेव राय स्वयं एक बार तेनालीराम के कक्ष में आए। उन्होंने तेनालीराम से कहा, कुछ चाहिए तो बताओ। तो तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना करें कि अपने दोनों मित्रों के कक्ष में ही रात्रि का भोजन भेजें। भोजन में ऐसे पकवान हो जिनमें अच्छी सुगंध हो, सुस्वाद से भरे पकवानों की थाली जब आप अपने मित्रों के कक्ष में भिजवा दें, तब तुरंत ये समाचार फैला दे कि आपका स्वास्थ्य अचानक बहुत खराब हो गया है। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, तेनालीराम ने कहा। लेकिन इससे होगा क्या, महाराज ने पूछा। तेनालीराम ने कहा, यही तो देखना है महाराज। तो महाराज ने जिज्ञासा भरे स्वर में कहा, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है तेनालीराम। तो तेनालीराम ने महाराज को ये कहते हुए आश्वस्त किया, सुबह तक प्रतीक्षा करें महाराज। तो बच्चों, अब क्या होगा आगे, क्या तेनालीराम की ये युक्ति काम कर पाएगी, तो ये हम जानेंगे अगली कड़ी में। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। अभी कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में तो हम पहुंच गए और आज हमने तो कितनी सारी बातें जान ली मानसून से रिलेटेड, फिर कहानी भी सुनी, किताब भी पढ़ी और अब पिछली कड़ी में जो परी ने सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो जानना है ना। तो परी, पिछली कड़ी में क्या सवाल पूछा था आपने?
2: बच्चों याद है ना, अपनी डायरी खोलो और टैली कर लो आज की पहेली का जवाब। हर दिन खाओ, सेहत पाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, लाल हरे रंग में आए, बताओ कौन सा फल कहलाए।
1: बच्चों सही जवाब है एप्पल, यानी कि सेब, जिसे सफरचंद भी कहते हैं, है ना परी?
2: हाँ बच्चों, मेरा तो बहुत ही फेवरेट फल है ये।
1: अरे वाह, तो बच्चों आपका भी तो होगा ना ये फेवरेट।
2: हाँ बच्चों, तो चलो नोट कर लो आज की पहेली। जंगल का राजा कहलाए, गर्जन से सबको डराए, भारत का है राष्ट्र पशु, बताओ उसका नाम। जरूर।
1: अच्छा, तो बच्चों अब तो ये परी ने जो कहा उसे ही आप समझ गए होंगे और आपके दिमाग में आंसर भी आ गया होगा। तो चलो चलो जल्दी से उठा लो फोन और हमें 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
2: बिल्कुल बच्चों, और याद है ना, भगवान जी को सॉरी और थैंक यू लिखना मत भूलना।
1: हाँ, और उनकी गोदी में सो जाना।
2: तो हम करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट, गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

आप सबके प्यार भरे बुलावे पर फिर से श्रद्धांजलि पेश कर रही हूँ, जो श्रद्धा से अर्पित की जाती है वो श्रद्धांजलि। ये श्रद्धांजलि उन गायक गायिकाओं, कवि और संगीतकारों को तो है ही, पर उस अतीत को भी है जिसमें इस संगीत का सृजन हुआ।

मुझे याद आ रही हैं वो कलाकार जिन्हें हम सब कानन देवी के नाम से जानते हैं। उनके व्यक्तित्व और अभिनय में वंग संस्कृति और आवाज में बंगाल का जादू था।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घनी सा। माँ के चरणों से बढ़कर इस जहाँ में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। सोचिए जरा सा, अचानक मूत्र रुक जाता है या कम आता है तो सोचिए क्या करेंगे, कि कैसे इसको ठीक करेंगे। और जी हाँ, तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन छोड़ता है। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में, अभी आपको बता दूंगी तो सस्पेंस कुछ रहेगा ही नहीं, बहुत ही सुंदर रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ आलू की। अब आलू की इसके आगे क्या सिखाऊंगी वो जरा अनुमान लगा करके आप जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। और प्रश्न भी बहुत ही सुंदर पूछने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहां काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे ये पीड़ा से मुक्त होकर के प्राण त्याग दे और ज्यादा पीड़ा नहीं भोगनी पड़े। महापुरुष ने बताया कि अगर जन्नत की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। अब जन्नत की मिट्टी भला कहां से आए और कैसे लाए? महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर में लौट आया जन्नत की मिट्टी लेकर के मुट्ठी के अंदर और बोला, ये लो जन्नत की मिट्टी, इसे तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर के एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। ये चमत्कार देख करके सब हैरान थे क्योंकि जन्नत की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है भला, और वो भी एक छोटा सा बच्चा, हो ही नहीं सकता। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पे कौन सा जन्नत है जहां से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? लड़का बोला, बाबा जी एक दिन हमारे स्कूल की टीचर ने बताया था कि माँ के चरणों में सबसे बड़ा जन्नत है, उसके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं, इसलिए मैं ये मिट्टी अपनी माँ के चरणों के नीचे से लेकर के आया हूँ। बच्चे के मुंह से जब ये बात सुनी तो महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत हो ही नहीं सकता, और जिस औलाद की वजह से माँ की आंखों में आंसू आए ऐसी औलाद को नरक इस जहां में ही भोगना पड़ता है। प्यारे श्रोता बंधु, अब आप समझ गए होंगे कि माँ की जन्नत से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी रुपया पैसा जमा कर ले, आसमां की ऊंचाइयों को क्यों ना छू ले, जब तक आपकी वजह से माँ खुश नहीं है तब तक वो भगवान भी आपसे खुश नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, तभी माँ की महिमा इतनी गाई जाती है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। अगर किसी भी कारण से मूत्र रुक गया हो या फिर रह रह करके आता हो तो आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे दे रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके रखिए और इसको सुबह पीजिए, इससे लाभ मिलेगा। लगभग ऐसा सभी करते होंगे क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं इस पानी के। फिर भी ये मूत्र में भी फायदा करता है कि रात को आप तांबे के लोटे में पानी भर के रख दीजिए और इसको सुबह पीजिए नन्हे कोटे, तो फिर इससे मूत्र खुल करके आएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा नुस्खा भी आपको बहुत ही अच्छा दे रही हूँ कि भोजन के साथ छाछ को जरूर शामिल करिए। छाछ में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिए, ठीक है, गाढ़ी गाढ़ी छाछ मत पीजिए। थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल करके इसको पतली कर दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया मिला दीजिए, फिर पीजिएगा इसको, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अगला नुस्खा भी बहुत ही सुंदर है कि 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री दोनों को पीस करके ठंडे जल के साथ फाकी लीजिए। इससे रुका हुआ मूत्र खुल जाएगा और अगर मूत्र की वजह से जलन भी आती हो तो मिट जाएगी। कितनी बार जलन होती है ना, तो जलन भी ठीक हो जाएगी। ऐसी मात्रा दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है। 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री दोनों को पीसिए। पीस करके आप, मतलब इकट्ठा पीस करके भी आप रख सकते हैं इस तरह, जो मैंने मात्रा बताई ना, तो इसको बढ़ा दीजिए और एक कांच की बोतल में भर दीजिए। फिर इस तरह की समस्या हो ना तो फिर आप थोड़ा सा ले लीजिए। मात्रा यही है 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री। ज़्यादा पीस रहे हैं तो भी इस अंदाज से पीसना। फिर इतना सा ले करके आप जल के साथ, नॉर्मल सादा पानी के साथ आप फाकी ले लीजिए। इससे रुका हुआ मूत्र आ जाएगा खुल करके और अगर मूत्र की वजह से जलन हो रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी। और लास्ट नुस्खा ध्यान से सुनेंगे। एरंडी का तेल 25 से 50 ग्राम तक गर्म पानी में मिला करके पीजिए। 15-20 मिनट में ही मूत्र खुल करके आ जाएगा। जब हर प्रकार से हार जाओ ना और कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है तो ये उपाय ज़रूर काम करेगा और 15-20 मिनट में ही खुल करके बाथरूम आ जाएगा। फिर से दोहरा रही हूँ, एरंडी के तेल आप लीजिए, जिसको हम कस्टर ऑयल भी कहते हैं, 25 से 50 ग्राम तक गर्म पानी में मिलाकर पीजिए, ठीक है। 25 से 50 ग्राम की मात्रा में एरंडी का तेल लेकर के गर्म पानी में मिला दीजिए और इसको आप पी जाइए। 15-20 मिनट में देखिए आप, आराम मिल जाएगा, मूत्र खुल करके आएगा और ये नुस्खा बहुत ही सटीक है। तो ये जो नुस्खे आपको सुनाए हैं ज़रूर आप आजमा सकते हो। अगर मूत्र होता है कभी कभी अचानक ही मूत्र या तो कम आना शुरू हो जाता है या फिर एकदम बंद हो जाता है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, वहाँ पर ज़रूर जाइए, लेकिन शुरुआत में सभी घर के नुस्खे ही आजमाने की कोशिश करते हैं। फिर हॉस्पिटल जाते तो जो भी है खैर, पर इन नुस्खों का आप फॉलो कर सकते हो। और आज का प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए अकेली महिला की सुरक्षा के लिए आपके आसपास वृद्धा आश्रम या फिर नारी निकेतन है तो हाँ करिए, नहीं है तो ना करिए, ठीक है। अकेली महिला है, असुरक्षित है, उसकी सुरक्षा के लिए आपके आसपास वृद्धा आश्रम है, आपके गाँव के आसपास या फिर नारी निकेतन है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर। पुनः सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तूफान आना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, तूफान आना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब ये विषय आपको दिया है, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और आप अपने विचार के अनुसार बात बता सकते हैं कि क्या जिंदगी में तूफान आना जरूरी है। हमारे श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार। जय माता जी।
0: हाँ जी, नमस्कार। जय माता जी, कैसे हो आप?
1: बस हम अच्छे हैं। और सबसे पहले तो थोड़ा दिमाग में है कि सुरेश भाई के किसी परिवार से बर्थडे है, तो उनको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं।
0: किसके बर्थडे है?
1: इतना तो कुछ दिमाग में नहीं है, परंतु है किसी के।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है।
1: तो उनको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं
0: जी।
1: और आज का ट्रॉफिक तो बहुत सुंदर है। तूफान मतलब तूफान देखिए जिंदगी में आना चाहिए, तभी किसी की अहमियत पता चलेगा। क्योंकि देखिए जब तक अपने जीवन में कोई ऐसा नहीं होगा ना, तब तक तो सभी एक समान होते हैं
0: जी।
1: जब कोई तूफान कोई परिस्थिति डाउन होती है ना, तो कौन अपना साथ देता है और कौन नहीं देता है, वो सब कुछ अपन को पता चल जाता है
0: जी।
1: और ऐसी परिस्थिति में जो अपना साथ देता है ना, वो ही अपना सच्चा देखती है, सच्चा मित्र है।
0: ओके।
1: कोई भी रिलेशन में हो, कोई भी हो, जो ऐसी परिस्थिति में अपन से मतलब साथ बना रहे, मतलब अपन को हर सुख दुख की बातें करे
0: जी,
1: अपन को कोई रास्ता बताए, तो वो ही सच्चा देखती है
0: जी।
1: बाकी तो मतलब कि देखिए अपने पास अगर धन है ना, तो इसे बहुत घूमेंगे
0: जी। सही कहा आपने। जी जी जी, सुख में सभी साथ देते हैं, दुख में दे वो अपना।
1: हाँ, तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ सभी को, देखिए मतलब दुख में तो सभी साथ देंगे ही, भाई जो दुख में साथ देता है ना
0: जी,
1: उसका आप भी बस नेक काम करते रहिए, उसको मतलब उसको कभी भी परिस्थिति आए तो उसको भी साथ देना
0: जी जी जी।
1: परंतु ऐसा नहीं कि उसकी परिस्थिति डाउन है और उसने आपका साथ दिया और आप किसी पैसे वाले के पीछे भाग रहे हैं
0: जी,
1: ये भी नहीं हो
0: जी।
1: तो यही मैं कहना चाहूंगा। और आपका सुविचार तो बहुत सुंदर था, जो लाइनें मैंने बनाई थी वो याद दिला देता हूँ आपको।
0: हाँ जी।
1: माँ की ममता से है ना परी, सेवा कर लो सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, ओ आज से अपना वादा रहा,

0: उनकी चरणों में जन्नत है ये।
1: बहुत सुंदर सुरेश भाई, आभार आपका। सुरेश भाई कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, और बनाते हैं तो सुनाते भी है, और अच्छी बनाते हैं। बहुत अच्छे लगे माँ के ऊपर ये पिया चंद पंक्तियाँ आपने सुनाई जो, और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है कि तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। हेलो,
2: हाँ दीदी, सुप्रभात।
1: हाँ जी सुप्रभात, नमस्कार मोहन जी, आप कैसे हो?
2: बस सभी को, आरके भाई बहनों को और गुजरात के भाई बहनों को शुभकामनाएं आज के दिन की।
1: जी जी जी।
2: और हमारे सुरेश जी भाई साहब जोटाना वाले हैं
1: जी,
2: ये धर्मपत्नी है, उनका आज जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका जोड़ा अमर रहे और वो स्वास्थ्य लाभ करें, और
1: उनके लिए तालियां बजा देते हैं। भाई उनकी धर्म पत्नी का जन्मदिन है तो हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं जी।
2: और आज आरुषि बहन के उसके अंदर किसी बहन का एक संदेश आया था, बहुत सुंदर था
1: जी,
2: कि कांटे अपनी जगह पड़े हैं
1: जी,
2: लेकिन हमें बच के चलना है
1: जी,
2: उन कांटों को दोष नहीं देना
1: जी,
2: ये बीच में है या यूं है या गुलाब पे ये उगे हुए हैं
1: जी,
2: तो गुलाब के फूल हम कैसे तोड़े या गुलाब के फूल तोड़ रहे थे और हमारे कांटा लग गया। अरे सब ये प्रकृति की देन है, फूल और कांटे तो ये तो पैरेलल है
1: जी,
2: सुख दुख है ना
1: जी,
2: वैसे फूल और कांटे भी है। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परिस्थितियां प्रतिकूल, जैसे आपने बताया तूफान, तूफान तो ये तो आते रहेंगे
1: जी
2: जीवन के अंदर, यदि तूफान नहीं है तो आपको शांति का वो सुख कैसे महसूस होगा
1: जी,
2: यानी तूफान आएंगे तो व्यक्ति को शांति का महत्व मालूम पड़ेगा।
1: यहाँ पर शांति की बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर अपनों परायों का है कि अगर तूफान नहीं आएंगे जीवन में तो कैसे पता चलेगा कि कौन अपने हैं कौन पराये हैं?
2: हाँ तो दीदी, सब साथी दुख में ना होए
1: जी,
2: ये जो प्रक्रिया है कि सुख में तो अपने सब साथी बन जाते हैं
1: जी, बिल्कुल।
2: और जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मेरे को कुछ चॉकलेट दिया करती थी, मैं जेब में डाल करके जब स्कूल जाता था तो मेरे दोस्त है जो मेरे चारों तरफ घूमते थे
1: जी,
2: और वो चॉकलेट समाप्त हो जाती थी उसके बाद में वो दूर दूर रहते थे
1: जी,
2: बोले वापिस लाएगा जब अपन इनके साथ खेले गया
1: जी।
2: तो कहने का मतलब ये तो प्रकृति का नियम है कि यदि आपके पास कुछ वो कहते हैं ना, नाना अगर नातिया ने नाने ना,
1: जी ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपसे दूरियां बना करके आपके अपने भी दूरियां बना के रखेंगे
1: जी,
2: और यदि जो है कुछ है आपके पास किसी को दे नहीं रहे हो लेकिन वो आपके समाज के अंदर कसी भी पड़ेगा
1: जी
2: ये। और दीदी एक और नारी निकेतन की आपने बात कही थी
1: जी,
2: तो अपने यहाँ आसपास में नारी निकेतन मेरा ख्याल है ब्रह्मा कुमारी का ही है
1: जी,
2: और एक हमारे जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक निकेतन था वृद्धाश्रम
1: जी,
2: तो उसमें पहले पुरुष और नारियाँ दोनों रहती थी, लेकिन आजकल पुरुषों का ही वो कर दिया गया है।
1: अच्छा।
2: तो हाँ, दो एक नारियाँ ऐसी आ गई
1: जी,
2: उन्होंने मतलब जो है वो स्वभाव उनका बड़ा कड़क मिजाज था
1: जी,
2: तो वो वातावरण को उनका प्रदूषण करने लगी
1: जी जी जी,
2: तो फिर वही वो जो व्यवस्था थे उन्होंने हाथ जोड़ दिया
1: जी,
2: अपने तो भाइयों का ही रखो कार्यक्रम।
1: अच्छा, तो ये आबू में है या रोहिड़ा में?
2: नहीं, यहाँ अवरोड में है।
1: अच्छा,
2: जंगल में है इधर
1: जी जी।
2: हाँ,
1: हम भी कभी गए थे वहाँ पर।
2: हाँ,
1: लेकिन उस समय कोई नहीं था।
2: हाँ, वहाँ उस समय कोई नहीं था
1: जी,
2: या तो ये कोरोना के कारण भी उनको यहाँ से मुक्त कर दिया हो।
1: कोरोना तो बाद में हुआ, कोरोना तो बाद में हुआ, हम बहुत पहले गए थे, बोले कि पहले कुछ लोग रहते थे लेकिन अभी बंद है, कोई नहीं है।
2: हाँ, वो क्या व्यवस्थापक वो जो मार्शल थे ना गजानंद जी शर्मा
1: जी जी जी,
2: उनका भी देहावसान हो गया और उनकी धर्मपत्नी का भी देहावसान हो गया।
1: अच्छा।
2: और उनकी जो है मतलब वो संपत्ति को संभालने वाले कोई नहीं होने की वजह से वो थोड़ा विवादास्पद हो गया है।
1: जी जी जी
2: ये तो बहन कहीं आसपास में हो तो इसकी सूचना यदि अपने रेडियो पे मिले ना
1: जी
2: तो
1: जरूर
2: बहन का भला हो जाए।
1: जी बिल्कुल जरूर देंगे।
2: ये बात है ना। तो सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सुरेश भाई के विचार सुंदर है।
1: जी जी जी
2: माता ही इस संसार की धुरी है
1: जी
2: और मातृ वंदना से ही हमारा जो हमें हासिल हुआ है और इससे ही अपन को पार पड़ना है।
1: जी जी जी
2: हाँ धन्यवाद
1: जी। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई है। तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है कि भाई तूफान जीवन में नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन अपना कौन पराया। इसलिए जीवन में तूफान आना बहुत जरूरी है। तूफान बोले तो मुश्किल है जीवन में। देखिए उतार चढ़ाव मुश्किलें आएगी तो ही लगेगा ना कि कौन हमें हेल्प कर रहा है, कौन हमारी मदद कर रहा है, कौन हमसे दूर भाग रहा है। अब ये विषय तो रखा है, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हम तो सुनाते ही हैं और भी सुना देंगे, परंतु हम आपकी राय सुनना चाहते हैं। और आज का प्रश्न तो आपने सुना ही है कि अकेली महिला को सुरक्षा के लिए आसपास में आप जहां पर भी रहते हैं आपके गांव के आसपास में वृद्धाश्रम या फिर नारी निकेतन है तो हाँ, नहीं है तो ना, ठीक है ना। ये भी एक नॉलेज मिलेगी ना सभी को। एक ही समाज में जैसे कि कल इसी विषय पर बात की थी हमने कि किस तरह माताओं की हालत है, खुद हमारे लिसनर भी जुड़े और अपना अनुभव भी सुनाया। तो कहीं कहीं पर वृद्ध लोगों के साथ बहुत ही बुरा होता है तो वो एक सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि घर में ही स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। अब इस विषय पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज तो हमने प्रश्न ही पूछा है हाँ या ना में जवाब देने का। बाकी इस विषय पर चर्चा करेंगे तो कल ही हम आबू के आसपास एक गांव में जा कर के आए तो वहां के अनुभव में आपको सुनाऊंगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन वो जरूर आपको सुनाएंगे, एक दिन बात जरूर करेंगे सोमवार या मंगलवार को। परंतु आज की चर्चा यही है, प्रश्न तो यही है हाँ या ना में जवाब देना है। चर्चा यही है कि जीवन में मुश्किलें आनी जरूरी है ताकि पता चले कि कौन हमारा साथ दे रहे कौन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। बाकी जैसे कि मोहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब वो बचपन में चॉकलेट लेकर के जाते थे स्कूल तो दोस्त लोग आगे पीछे घूमते थे और जैसे ही चॉकलेट खत्म दोस्त भी दूर हो जाते थे। ऐसा ही होता है, सुख में सभी साथ देते हैं। आप पार्टी करिए, बर्थडे पार्टी मनाइए, आप किसी भी प्रकार की पार्टी करिए, जिनको बुलाएंगे सभी आएंगे। नहीं बुलाने वाले भी फोन करके कहेंगे हमको भूल गए आप, हमको तो बुलाया ही नहीं। हेलो
3: जी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई। आज बहन जी से बात करवाएंगे, उनका जन्मदिन है तो उनसे बात कर लेते हैं।
3: क्या हुआ है, मैं बात तो कराऊंगा, थोड़ी देर बात कराऊंगा, वो अभी सब्जी लेने गई है।
1: अच्छा अच्छा।
3: मैं कब से ट्राई कर रहा था, जब वो हाजिर थी तब तो थोड़ा बिजी आता था, मैंने सोचा चलो अब लगाऊ।
1: जी जी जी
3: मैं कराऊंगा बात आपसे बाद में।
1: जी जी जी
3: कोई देर में आएंगे तो बात जरूर करवाऊंगा।
1: जी जी जी
3: और बहुत अच्छी दीदी बात हो रही है, सबसे भी बहुत अच्छा रखा है आज। और आपने जो दीदी वृद्धाश्रम की बात की तो हमारे तो यहाँ कोई नारी का कोई ऐसा नहीं है, वृद्धाश्रम भी हमारे गांव में नहीं है।
1: अच्छा।
3: और हमारे मेहसाना में है लेकिन हमारे यहाँ नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
3: और हमारे दीदी बताओ
1: मेहसाना में क्या है, नारी निकेतन है या वृद्धाश्रम?
3: नहीं वृद्धाश्रम है दीदी।
1: अच्छा
3: वृद्धाश्रम में।
1: ओके ओके।
3: हम गए तो नहीं है कभी लेकिन जो हम जाते हैं रोड साइड में ही है।
1: तो महिला और पुरुष दोनों को रखते हैं?
3: हाँ दोनों को रखते हैं।
1: अच्छा अच्छा। तो
3: हमें
1: जी जी जी जी
3: हम गए तो नहीं लेकिन हमको पता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं।
1: जी जी जी जी जरूर।
3: लेकिन दोनों को रखते हैं।
1: जी जी
3: और हमारे तो यहाँ आसपास में कोई नहीं है, हमारे गांव में भी नहीं है क्योंकि दीदी बताओ तो हमारे गांव में ऐसा केसेस कोई हुआ भी नहीं आज तक।
1: गांवों में फिर भी
3: हमारे गाँव से कोई यहाँ वहाँ गए हो ऐसा तो कोई नहीं है हमारे यहाँ।
1: जी जी
3: तो ये तो सही है कि अच्छा है लेकिन देखते हैं कई प्रॉब्लम लोगों को होता है तो क्या जाना पड़ता है, माँ बाप खुद बोलते हैं कि हमको यहाँ छोड़ दे।
1: जी जी जी। और आज का विषय है कि देखिए तूफान जिंदगी में आना जरूरी है ताकि पता चले कि कौन अपने और कौन पराए।
3: जी जी जी दीदी मैं बताऊँ कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मुश्किलें नहीं आती तो ये पता हमको कैसा चलेगा
1: जी।
3: और इसमें हमको सबको पता चलता है कि हमारा रिश्तेदार कितना अच्छा है, कितना कौन कितने हैं
1: जी।
3: तो इसके जरूरी है कि जो तूफान आएगा तो हमको भी पता चलेगा। कई बार क्या होता है दीदी, लोग बोलते हैं भाई हमको पता नहीं था, लेकिन मैं बता दूं तो मुझे ये छोटा सा ऑपरेशन करवाया है ऑपरेशन,
1: हाँ जी।
3: तो कई रिश्तेदारों का मुझे कॉल आ गया, कई रिश्तेदार मुझे मेरी खबर लेने भी आ गए
1: जी।
3: तो कई बार क्या होता है, पता होता तो फिर भी अनजान हो जाता है कि भाई मुझे पता नहीं है
1: जी। जी बिल्कुल।
3: तो इस वक्त हमको पता चल जाता है कि भाई हमारे कितने लोग हैं, हमारा रिश्तेदार कितना है
1: जी,
3: हमको कितना हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है, नहीं रखता है
1: जी,
3: तो
1: जी,
3: ये सब पता चल जाता है। और सभी की बात है, कोई एक बात नहीं, हमारी कोई पैसे की मुसीबत होती है तो अभी कई बार लोग मुंह मोड़ देते हैं कि हमको तो कुछ पता नहीं होता है। तो
1: जी,
3: इस हम तो समझ जाते हैं, पता तो सबको होता है, लेकिन वो देखते फिर भी उल्टा हो जाते हैं
1: जी। जी जी बिल्कुल।
3: तो हम समझ जाते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि सभी लोग
1: समझदार के लिए इशारा ही काफी है जी। उस समय बोलने की स्थिति हमारी होती नहीं है, लेकिन समझ सब आ जाता है जी। नहीं बोलना, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा जी।
3: हम समझ आएंगे कि हमारे वक्त कौन कितना लोग काम आए थे
1: जी। जी जी,
3: हम समझ।
1: वो कहते हैं कि भूखा व्यक्ति शांत रहता है तो भी लोग कहेंगे अरे काहे बड़बड़ कर रहे हो, और जो संपूर्ण व्यक्ति है वो भले कितना भी बोलेगा तो भी कहेंगे अरे बड़े शांत है जी।
3: इसलिए इसमें शांत रहना है जरूरी। हम किसी से बोलेंगे भाई आप ऐसे हमको हमारे साथ आप नहीं आए, तो वो उल्टा उल्टा करेंगे भाई हमको क्या पता था, हमको पहलाना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, तो ज्यादा बातें आगे बिगड़ जाते, इससे हम बोले नहीं समझ जाएंगे कि कितने लोग हमारे।
1: बिल्कुल। तो सुरेश भाई बहुत बहुत आभार, बहन जी आवे तो उनसे बात जरूर करवाइएगा, ठीक है।
3: जरूर बात करवाऊंगा दीदी, जरूर बात करूंगा।
1: आभार आपका। और यहीं पर एक लेते हैं ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आप तैयार रहिएगा, सुन लीजिएगा एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। हेलो
3: हेलो शबेल जी, गुड मॉर्निंग।
2: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो?
3: बस बहन जी बहुत अच्छे है, थोड़ा बाहर गए थे तो अभी अभी आए और सुरेश भाई की बात चल रही थी, जो जोचाना से बात कर रहे थे, मैंने रेडियो चालू किया तो आवाज सुनी और सुरेश भाई के घर से रेणुका बहन का जन्मदिन है आज, तो ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, हम चोटीला मिले थे, हम गए थे वहाँ दर्शन के लिए और वो भी वहाँ आए थे, तो सुरेश भाई ने मुझे कॉल किया कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि चोटीला है, चामुंडा माता का दर्शन कर रहे हैं, तो वो भी बोले कि हमारे घर से आए हैं सब लोग दर्शन करने के लिए।
2: जी
3: तो
2: जी जी, उस समय रेडियो में आपसे बात भी हुई थी दोनों से।
3: जी। और फिर उन्होंने जो निशाने भी बताया तो हम मिला, हमको मिले थे बहन जी और सभी भाई बहन थे साथ में
2: जी।
3: तो बहुत स्वभाव बहुत अच्छा है और जीवन में तरक्की तो की है उन्होंने काफी, जो ऐसा ही घर संसार चलाए
2: जी,
3: और
2: जी,
3: हमारे सुरेश भाई भी बहुत अच्छे परम मित्र है।
2: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कंचन भाई, आपके गांव के आसपास कहीं नारी निकेतन या वृद्धाश्रम है?
3: नहीं बहन जी, हमारे यहाँ नहीं है। इसका कारण है
2: जी
3: कि कोई भी ऐसा, कल आपने बात की थी कि एक ही बेटा हो तो ऐसा होता है तो क्या करे, तो
2: हाँ जी
3: हम सुलेख करते हैं बहन जी इसका
2: जी।
3: जो तू नहीं रखेगा, माता पिता को नहीं रखेगा, तो ये सब माल मिल्कत है, जायदाद है, जमीन है, ये सब गांव वालों को मंदिर बनाने के लिए या कोई अच्छा स्कूल बनाने के लिए देने वाले है, तू क्या कहता है बोल
2: जी।
3: तो फिर वो है ना, वो आ जाता है बहन
2: जी, जी, जी
3: अपने कि नहीं मैं रखूंगा
2: जी जी जी।
3: हमारे नहीं है बहन जी, इसका कारण है कि हम सुले कर लेते हैं, करवा लेते हैं
2: जी जी। बहुत अच्छी बात है
3: जी।
2: तो आज का विषय है कि जिंदगी में तूफान आना भी जरूरी है, तो ही पता चले कि कौन अपना, कौन पराया, कौन साथ दे रहा है, कौन साथ छोड़ रहा है।
3: ये तो है ना, सभी को लागू पड़ता है, सामने हमारा संबंधी है, कोई जीवन में कोई मुश्किली आए, दुख आए तो हम न जाए और कोई खबर अंतर भी न पूछे, तो हमारा हमें भी ऐसा आने वाला है, सुख तो ये जीवन में होता ही है, तो हमारे हम नहीं जाएंगे तो हमारे वहाँ कौन आएगा, कोई खबर अंतर भी नहीं पूछेगा। और दूसरी बात कि हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा कोई हमें कोई समाज में कोई बातचीत होती है तो हमें जाकर उसको सूले से लाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा जगह मिलती है बहन जी। समाज में जाते हैं, कहीं जगह पे जाते हैं तो इधर आओ भाई, इधर बैठो, इधर बैठो, वरना हम ऐसा करेंगे तो हमें कोई बुलाएंगा भी नहीं, जाने दो नहीं इसको। तो ये बात है बेटी, मैंने तो ये बता।
2: चलिए कंचन भाई, बहुत बहुत आभार
3: जी
2: जी। और देखिए प्यारे श्रोता बंधु, अभी भी आपके सामने थोड़ा सा समय है आपके पास, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो कि मुश्किलें आती है तो कौन साथ देता है, कौन साथ छोड़ देता है। तो ये बहुत ही सुंदर विषय है कि मुश्किलों में साथ निभाता है वो ही अपना है, और जो हाथ ही छोड़ देता है, और छोड़ते हैं अक्सर, जैसा कि बताया हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं ने कि जब हमारे पास काफ़ी कुछ होता है तो लोग अपने आप बिना बुलाए भी आ जाते हैं। हेलो,
3: हाँ जी जी सुरेश भाई जटाना से।
2: हाँ जी सुरेश भाई जी, बहन जी आ गए?
3: हाँ आ गए मैं देता हूँ उसको, कोई बात नहीं, गुजराती में बोलो।
2: वांदो नहीं हूँ, बोलीस गुजराती माँ।
3: हेलो
2: नमस्कार जी, स्वागत, बहु बहु स्वागत तमारू अने रेडियो मधुबन माँ, और जन्मदिन नी ढेरो ढेरो शुभकामना तमने। केम छो तमे? તમારું નામ?
4: એકાવન વર્ષ બેઠું વર્ષ
2: અરે વાહ, 51 નું બેસ્યું કે 50 પૂરા થયા અત્યારે? અરે તો ગોલ્ડન જુબલી મનાવ,
4: ભગવાનની મહેરબાની છે, શાંતિ છે,
2: બહુ સરસ। તમારો સ્વભાવ ને બહુ વખાણ સાંભળ્યા અમે કે બહુ સારો સ્વભાવ છે, ક્યારેક મળીશું તમારાથી। સાચી વાત છે, પરિવારની દુઆ જરૂરી છે, ઓર સ્વભાવ જેનું સારું હોય ને એમને દરેકની દુઆ મળે। તો રેણુકાબેન, તમારો જન્મદિન કેવી રીતે આજે મનાવવાના છો, વિશેષ શું કરવાના છો?
4: શું મનાવે તો અત્યારે તો કઈ વિચાર્યું નથી, હવે સાંજે બાબુ આવે ત્યાં વિચારી, નોકરી ગયો છે બાબુ, સવારમાં મને કે મમ્મી હેપી બર્થડે ટુ થેન્ક યુ, બટ આ પગે લાગીને ગયો મને બાબુ મારો।
2: શું વાત છે,
4: સાચી
2: વાત છે, આવીશું ક્યારેક, હે ને, તમારા સંકલ્પ ચાલે છે તો જો સમય આવશે ક્યારેક તો
4: આવીશું।
2: રેણુકાબેન, આજનું વિષય ઉપર તમે થોડી ચર્ચા કરશો, તમારી રાય વ્યક્ત કરશો કે જો જીવનમાં તકલીફ પડે ને ત્યારે આપણા પણ પરાયા થઈ જાય છીએ, અને જયારે જીવનમાં બહુ સુખ સમૃદ્ધિ હોય ને ત્યારે પરાયા પણ આપણા થઈ જાય છે, આપણા આગળ પાછળ ફરે, શું કહેશો તમે?
4: વિષયમાં તો સાચી વાત છે બેની, તો સુખ સુખાઈ જાય તો સુખે આવે, સુખે આવે।
2: તમારા જીવનમાં ક્યારેક એવું થયું કે દુઃખમાં કોઈ તમારો સાથ છોડ્યું,

मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा हिंट तो मैंने दिया ही था कि भाई आलू की, अब आलू की के इसके आगे क्या है वो आपने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, आलू की पेटीज बना देते हैं फटाफट, ठीक है ना? पसंद है सभी को? चलिए, क्यों नहीं पसंद आएगी भाई, वैरायटी खाना बनना चाहिए ना। एक जैसा खाना रोज बनाएंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे, बड़े बोर हो जाएंगे, फिर परिवार के अन्य सदस्य भी कहेंगे अरे क्या रोज रोज ये का ये। तो फिर आपको थोड़ा सा वैरायटी प्रकार के सिखाते हैं। तो आलू की पेटीज के लिए पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, उसके बाद बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। तो आधा किलो ले लीजिए आलू, आधा किलो बोले तो 500 ग्राम, ठीक है। फिर आप लीजिए 15-20 काजू, और हरा धनिया आवश्यकता के अनुसार लेना है, खसखस 2 छोटे चम्मच, और थोड़े से लीजिएगा ब्रेड क्रम, थोड़ी सी अदरक लेनी है, फिर 2 ब्रेड की स्लाइस ले लीजिए, 20 या फिर 10-15 किशमिश ले लीजिए। देखिए आपको लेने कहीं जाना नहीं है, घर में है तो काजू और किशमिश लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं चला लीजिए, ठीक है। फिर 2 चम्मच सौंफ, कटी हुई हरी मिर्च ले सकते हैं आप आवश्यकता के अनुसार, मतलब 2-1 ले लीजिए, नमक स्वाद के अनुसार लीजिए, 150 ग्राम मटर लेना है, और आधा लीजिए नारियल, आधा चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर शक्कर। ये हो गई आलू की पेटीज की सामग्री, जिसको फिर से दोहरा रही हूँ। 500 ग्राम आलू ले लीजिए, 500 ग्राम बोले तो आधा किलो, 10-15 काजू अगर घर में है तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, नहीं तो 10-15 हो तो 10-15, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर वो कहते हैं ना कि जितना डालो उतना ही टेस्ट बढ़ता है, ड्राई फ्रूट्स हो मसाले हो। हरा धनिया आवश्यकता के अनुसार लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए 2-3, 2 चम्मच खसखस लेना है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम ले लीजिए, और थोड़ी सी अदरक लेनी है, फिर 2 ब्रेड की स्लाइस लेनी है, 10-15 किशमिश ले लीजिए, 2 चम्मच सौंफ लेनी है, और नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, 150 ग्राम मटर लेना है, आधा नारियल ले लीजिए, आधा चम्मच ही गरम मसाला लेना है, और चुटकी भर लेनी है आपको शक्कर, ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए हम गीत सुनाएंगे। परंतु आज के प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। देखिए प्रश्न सिंपल सा है कि महिला की सुरक्षा के लिए आपके गांव के आसपास कहीं पर वृद्धा आश्रम है, नारी निकेतन है तो हाँ कर दीजिए फोन करके, और नहीं है तो भी आप ना कर सकते हो फोन करके, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका रेडियो से जुड़ाव रहेगा, रेडियो से जुड़ते रहेंगे तो हमको भी लगेगा कि हमारे कौन कौन श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक तो है ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं ना कि हमारे सभी श्रोता बंधु स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो कभी कभी फ़ोन करके अपनी आवाज़ सुना दीजिएगा। बहुत लंबा समय निकल जाता है तो लगता है कि अरे क्या हुआ होगा, उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। परिवार में भी ऐसा ही होता है ना, अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नहीं आता है, बहुत समय बीत जाता है, तो हम क्या करते हैं, खुद करते हैं ना। अब यहाँ पर तो देखिए हम खुद तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये रूल्स नहीं है, रूल्स बोले तो हमारे पास नंबर भी नहीं होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे हमारे श्रोता बंधु सभी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो ठीक है, चलिए अभी तो सुनेंगे एक गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद?
3: नहीं ना। आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है ताजा ताजा आलू की पैटीज। तो सामग्री आप सभी लिख चुके होंगे, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा अपनी डायरी में। आलू, काजू, हरा धनिया, खसखस, ब्रेड क्रम। अब ब्रेड क्रम किसको कहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कि जो सूखे ब्रेड होते हैं ना उसका पाउडर कर दीजिए, उसको ब्रेड क्रम कहते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी सी अदरक, ब्रेड की स्लाइस, किशमिश, सौंफ, हरी मिर्च, नमक, मटर, नारियल, गरम मसाला और शक्कर। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ब्रेड को पानी में भिगो करके निचोड़ लीजिए और नमक आलू के साथ मिक्स कर दीजिए। फिर भरने के लिए थोड़ा सा मटर को दरदरा कर लीजिए, काजू को तल लेना है, मटर को मिला करके धीमी आंच में तलिए, और फिर सौंफ, मिर्च, अदरक, किशमिश, खसखस, इन सब को मिला लेना है। फिर गैस से नीचे उतार दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़िए। ठीक है, इसमें चीनी भी डाल दीजिए, गरम मसाला भी मिला दीजिए। फिर इस मसाले को ठंडा होने दीजिए। अब आप आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए। आलू मैंने शायद सामग्री में नहीं बोला था, नहीं बोला था ना, सबसे पहले आधा किलो आलू जिसको उबाल लेना है, उबाल करके उसके छिलके निकाल देने, हरा धनिया साफ करके रख देना है, हरी मिर्च को भी कतर देना है। ठीक है, अब आप गैस से नीचे उतार दीजिए, आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए, फिर मसाला भर करके चपटी कर लीजिए। ठीक है, और ब्रेड क्रम से लगा करके दोनों तरफ से तवे पर घी डाल करके फ्राई करिए, फिर इसको चटनी के साथ पिरसिए। तो ये बन गए आलू की पेटीज। फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बनाने का तरीका मुश्किल नहीं है, बस खाली ध्यान से सुनिएगा कि ब्रेड को पानी में भिगो करके निचोड़ लीजिए। ठीक है, फिर नमक, उबले हुए आलू, इन सभी को अच्छी तरह मैश कर दीजिए और मिक्स करना है ब्रेड के साथ। भरने के लिए थोड़ा सा मटर को भी आप दरदरा कर लीजिए। अगर सूखे मटर को भिगा रहे हो तो आप सुबह बनाते हो तो रात को भिगोइए, शाम को बनाते हो तो सुबह भिगोइए, फिर इसको दरदरा करिए। ठीक है, और काजू को तल लीजिए, फिर मटर अलग ही रखना है आपको दरदरा करके, और धीमी आंच पर इसको फ्राई करना है। फिर इसमें ही जब मटर फ्राई हो जाए तो फिर इसमें ही सौंफ, हरी मिर्च, अदरक, किशमिश, खसखस, इन सब को मिला देना है और गैस बंद कर देना है। फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ दीजिए, फिर हरा धनिया डाल दीजिए, चीनी भी डाल दीजिए और गरम मसाला भी मिला दीजिए, अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें ये अपने आलू और ब्रेड का जो मिक्स कर रखा है ना, दोनों को इसमें ये सारा मसाला मिक्स करिए, अच्छी तरह मिक्स करके इनकी टिक्कियाँ बना लीजिए। बना करके अब आप मसाला इसमें भर दिया आपने, आलू की जो मतलब छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए और मसाला भर करके चपटा करिए इसको, और इसके ऊपर आपको ब्रेड क्रम लगाना है। आप दोनों स्थिति में बना सकते हो, या तो सारे मसाले मिक्स करके फिर ब्रेड क्रम में आपको टिक्किया बना करके चारों तरफ से लपेटना है। उसके बाद आपको सेकना है घी में, फिर चटनी के साथ खा सकते हो। या फिर मसाले को आप एक तरफ रहने दो और आलू बॉईल किए हुए, जिनके हमने ब्रेड और आलू को मिक्स कर रखा है हल्का सा नमक डाल करके, इनको चौड़ा करिए, इसमें मसाला भरिए, फिर इसको एक टिक्किया की तरह बनाइए और चपटा करके, और फिर ब्रेड क्रम में आप मिक्स करिए, मतलब चारों तरफ से लपेटिए, उसके बाद तलिए, जैसा आपको भावे वैसा करिए, ठीक है। तो इस तरह आलू की पेटीज बनाई जाती है। अब ये चटनी के साथ आप पिरस सकते हो। तो चलिए, चटनी तैयार है, आपने जरूर करी होगी ना, चटनी आपने बना ली होगी, आलू की पेटीज हमने तैयार कर ली है। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप ये सभी सामग्री रखिए, और भी आपने कुछ बनाया हो तो वो भी रख दीजिएगा, और तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगा सकते हो। उसके बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा आलू की पेटीज का। हेलो,
4: हेलो बहन जी।
3: हाँ जी, कंचन भाई, नमस्कार जी, बोलिए।
4: नमस्कार, आपने जो अचार बनाना सिखाया था ना आगे
3: जी,
4: कैरी का अचार जो बनाना सिखाया था, तो मेरी बेटी ने, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था
3: जी,
4: और मेरी बेटी ने इस साल बनाया, तो थोड़ी गलती रहती थी, हर साल बनाती थी
3: जी,
4: लेकिन इसमें तेल आपने बोला था ना
3: जी,
4: सरसों का तेल बोला
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
4: हाँ वो

0: वो एक साल डाला है, हर साल तेल और तिरुपति का तेल ऐसा डालते थे। तो
1: जी
0: इस साल आपने बोला था ना कि सरसों का तेल में
1: जी जी जी
0: इतना है, तो
1: जी
0: ये किया है इसने और बहुत अच्छा बना है स्वादिष्ट।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। अचार बनाना हो तो सरसों के तेल में ही बनाइएगा, इसका टेस्ट एक अलग ही प्रकार से बहुत ही अच्छा आता है,
0: हाँ
1: तो
0: जी बहन
1: अच्छा
0: जी,
1: बनाना अचार।
0: हाँ बहुत अच्छा बना है बहन जी। पहला
1: चलिए
0: क्या रहता था तो थोड़ा दूसरा तेल था तो थोड़ा नहीं रहता था
1: जी जी
0: अच्छा
1: वो अचार का वो
0: वो।
1: जो स्वाद जो सुगंध जो टेस्ट वो नहीं बैठता दूसरे तेल से।
0: हाँ हाँ वो नहीं रहता
1: जी चलिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।
0: जी बहन जी, बताए
1: जरूर
0: थैंक
1: आपकी
0: यू।
1: बेटी को भी याद करिएगा,
0: हाँ
1: मुबारक
0: जी
1: दीजिएगा कि चलो रेसिपी को फॉलो किया उन्होंने।
0: हाँ, इसको मैं जुड़ता हूँ बहन जी, लेकिन कोई काम में बिजी रहती है ना, तो
1: जी जी जी
0: वो बोलती थी कि हम आने वाले हैं वहाँ,
1: जरूर पधारिए, स्वागत
0: जब
1: आपका।
0: माउंट आबू जाना है तो हम जरूर आएंगे वहाँ
1: जरूर
0: पे,
1: जरूर,
0: मेरे जमाईदार बेटी को लेके आऊंगा मैं साथ में
1: क्या बात है, स्वागत
0: जरूर। हाँ
1: आपका।
0: जी
1: जी जी बहुत
0: जी
1: बहुत आभार। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज का कार्यक्रम तो काफ़ी अच्छा रहा है। आपको विचार भी, हमारे श्रोता बंधुओं के फ़ोन भी आए थे, विचार बहुत पसंद आया है कि वे माँ के चरणों में जन्नत होती है। कहीं पर भी ढूंढ लो, भले चारों धाम कर लो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। और आपको नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं, तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। खुशनुमा जीवन की भी बातें अच्छी हुई है, तो रेसिपी में भी आपको आलू की पेटीज बनाना सिखाया है, आप बना सकते हो। अगर कभी गेस्ट घर पर आ गए तो एक अच्छा आइटम है, बना करके उनको खिला सकते हो। और आज का प्रश्न था कि महिलाओं की, मतलब अकेली महिला की सुरक्षा के लिए आपके गांव के आसपास कहीं पर नारी निकेतन है या फिर वृद्धाश्रम है, तो जवाब दिया है बहुत सारा, जैसे कि विषय भी बहुत अच्छा था ना, कि भाई जीवन में तूफान आना भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि कौन अपना और कौन पराया। तो इसमें भी चर्चा में भाग लिया है। नाम बताना चाहूंगी सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, उन्होंने कहा कि हमारे पिंडवाड़ा में नहीं है वृद्धा आश्रम और नारी निकेतन, लेकिन उन्होंने खुशनुमा जीवन में बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। फिर मोहन जी कुमावत आबू रोड से, उन्होंने कहा है कि आबू में है वृद्धा आश्रम, लेकिन महिलाओं को नहीं रखा जाता है, पुरुषों को रखा जाता है। अभी ये वापस खुल गया हो तो पता नहीं, पहले हम एक बार जा करके आए थे तब वहाँ पर कोई नहीं थे। और पीयूष भाई ठाकुर भगवानपुरा से आपने भी फ़ोन करके कुछ जानकारियाँ ली थी, और सुरेश भाई झोटाना से आपने कहा कि हमारे गांव के आसपास तो नहीं है, लेकिन मेहसाणा में है वृद्धाश्रम है, वहाँ पर स्त्री और पुरुष मतलब दोनों के लिए है, तो अच्छी बात है। और कंचन भाई मंडाली से आपका भी फोन आया है, आपने कहा हमारे गांव के आसपास नहीं है, और विषय में अच्छी आपने अपनी राय व्यक्त की है। और अभी उनका फोन फिर से आया कि भाई उनकी बेटी ने जो अचार आशियाना में सिखाया, बना कर सभी को खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट बना। तो चलिए इसके ऊपर तो वही तालियां बजनी ही चाहिए कि रेडियो मधुबन को फॉलो किया है। और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के लिए भी तालियां की, प्रश्न का जवाब भाई है तो है वृद्धा आश्रम और नारी निकेतन, नहीं है तो नहीं है, विषय में भी भाग लिया, इसके लिए भी शुक्रिया। और अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे किसमें, अंताक्षरी कार्यक्रम में, शनिवार है ना, तैयार रहिएगा अंताक्षरी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। किसी के काम जो आए उसे इंसान

जन है कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।

को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यो भरने को

इंसान का दिल है वे नर परमार्थ करते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम हिंसा को नो स्मार्ट संस्थान के सहयोग से। वैसे तो ये कार्यक्रम पहले भी आप सभी ने सुना था, लेकिन इस बार कुछ नए विषय और बदलाव की बातों को लेकर आए हैं हम आपके बीच। दोस्तों, अक्सर हम घर परिवार में लड़का लड़की को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। लड़का ये करे, लड़की वो करे, लड़की हो तो ये पहनेगी, लड़का है तो ये खेलेगा। हमारी सोच और नजरिए के अनुसार हम अपने बच्चे और समाज को भी ढलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी उनकी आवाज सुनने की कोशिश की? चलिए दोस्तों, आज उन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं। उन आवाजों में हमारी अपनी आवाज भी कहीं छुपी हुई तो नहीं है?

0: हूँ।
1: ए मीना, जा भाई ने बुला, यो तगारो तो कन छत पे रखन आवे।
2: माँ, भाई की कटे जरूरत है, ला मैं राखे ना हूँ छत पे।
1: अरे तू रेवा दे बेटा, तू छोरी है, अत्रो वजन थारा सु कोनी तो की।
2: अरे माँ, ये छोरा और छोरी काई होवे, देख मैं उठा ली दियो वजन।
1: ध्यान सु बेटा।
3: मजबूत बने बचपन सबका, शक्ति है स्वरूप बेटियों का।
4: दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं, आइए इसी कड़ी में आगे सुनते हैं।

0: રાતે જાગી.
1: સીમા, અરે કઈ હો જો થને આખી રાત જાગનો પડ્યો? ઓર ચિંતા વાળો ગીત ભી ગારી, ઉદાસ ભી લાગ રહી હે. બોલ સીમા, બોલ કઈ ભી હો સીમા.
0: એ મીના, મેં તને કઈ બતાવું, મારા ઘરવાળા મને આગળ પડવાય ન દે રહ્યા. હવે મેં કઈ કરું, મન તો ઠા કોની પડ રહી. તું જ બતા મીના, મેં કઈ કરું.
1: સીમા, યે વાત તો વાસ્તવ મેં ચિંતાજનક હે, પર દેખ સરકાર કી યોજના કે અનુસાર આપણને સાયકલ મિલી. જો માની ભી દાદાજી દાદીજી ઘરવાળા સબ મના કર દીધો કે યા તો છોરીએ ઇને સાયકલ ચલાવવા કોની દેની, પર મેં મારે વાસ્તે આવાજ ઉઠાઈ ઓર જિદ કરી સાયકલ ચલાવવા કી. તો દેખ લે મારે લીએ કતરો આસાન વે ગયો સાયકલ લેન, સ્કૂલ જાણો આણો ઘરરા દૂસરા કામ કરના. આજ મારા દાદા દાદીજી મને સાયકલ ચલાતા દેખ કતરા ખુશ હોવે. સીમા, આપણે લીએ તો આપને હી જ બોલનો પડી, આગે તું સમજદાર હે.
0: થેન્ક યુ મીના, અમારા સમજમાં આગી કે મારે કઈ કરવું હે.
2: જીવન કે હર મોડ પર નારી દેતી હૈ પરીક્ષા, કોઈ રોકે ના ઉસે લેને સે અચ્છી શિક્ષા.
3: અક્સર હમ ખેલ કે બારે મેં સોચતે હૈ, લડકા યે ખેલેગા લડકી યે ખેલેગી, તો કહીં યહાં પર ભી ઇસ તરહ કી બાતે તો નહીં હો રહી હૈ. સુનતે હૈ.
1: મમ્મી મમ્મી, મારે ટૂર્નામેન્ટ હૈ, મેં ક્રિકેટ મેં ભાગ લે રહી હું.
4: મીના, તું ઓર ક્રિકેટ? અરે કોઈ છોરી વાળો ગેમ પસંદ કર, યો તો ગેમ છોરા કો હૈ. એડા ઉછલ કૂદ કરવા વાળા ગેમ આપણે કોની ખેલનો, સમાજ મેં બાતા હો જાય.
5: અરે મીના કી માં, ક્રિકેટ મેં કઈ બુરાઈ હૈ? અરે ભાઈ, આપણે મિતાલી રાજને દેખ લો, રાજસ્થાન કી પહેલી મહિલા ક્રિકેટર રહી ચૂકી હૈ. આપણે મીના ભી કિકાઉ કમ કોની હૈ. જા બેટા જા, ખેલ તું પૂરી છૂટે.
1: થેન્ક યુ પાપા.
2: લડકા હો યા લડકી, દોનો કો હૈ ખેલને કા સમાન અધિકાર.
3: બેટા ઓર બેટી કે પ્રતિ કૈસી સોચ હોતી હૈ હમારી, તો આઈએ હમ દેખતે હૈ માં બેટી બેટે કે બીચ કિસ તરહ કી બાતે હો રહી હૈ.
4: અરે રાહુલ બેટા, આજ મારી તબિયત ઠીક કોની, થોડો સો સૂપ બના દે તો.
6: માં તું મીના ને બોલા પે, મારે તો એરો કોમ નહીં વે, હું સો રહો.
4: બેટા, મીના અબાણું જ આરામ કરવા ગઈ હે, ઓર યો છોરા છોરી કઈ લગા રાખ્યો. જા ફટાફટ સૂપ બના, મારે દવા લેની હે.
6: ઠીક હે માં.
4: મને મીના કા સાથ સાથ મેં રાહુલ ને ભી ઘર કો હર કામ સિખાણો પડી, તાકી કાલ કા દિન મારી બહુ કા જીવન મેં કઈ ભી સમસ્યા નહીં આવે.
2: ભૂખ સભી કો લગતી હૈ, યે જગ જાહિર હૈ, ફિર ભી મહિલા હી ખાના બનાયેગી, યે કૈસી લાચારી હૈ.
7: તો બચ્ચો, અબ ઇસ તરહ સે આપ લોગો ને જાન લિયા હોગા કી જેન્ડર ક્યા હોતા હૈ ઓર સેક્સ ક્યા હોતા હૈ. એક પ્રશ્ન કા મુજે જવાબ દો કી આદમી ઓર ઓરત મેં ક્યા અંતર હોતા હૈ.
8: મેડમ, આદમી કમાન લાવે, લુગાયા તો ઘર કો કામ કરે.
9: મેડમ, આદમી પંચાયત મેં બેઠે ઓર ઓરત બચ્ચા ને સંભાળે.
1: મેડમ, ઔરત બચ્ચા ને જન્મ દેવે ઓર પિતા પાલન કરવા મેં મદદ કરે.
7: શાબાશ બચ્ચો, આપ સભી ને ઉત્તર દેને કી અચ્છી કોશિશ કી હૈ. આજ કે સમય મેં તો ઔરતે ભી પંચાયત મેં બેઠતી હૈ, સરપંચ ભી બનતી હૈ, ઔરત નોકરી ભી કર રહી હૈ તો ઘર પરિવાર ભી સંભાળ રહી હૈ, પુરુષ ખાના ભી બનાતે હૈ તો બચ્ચો કો ભી સંભાળતે હૈ, તો યે સારે કામ મહિલા ઓર પુરુષ બરાબરી સે કરતે હૈ. इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए. सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो कार्य करते हैं उसे जेंडर कहते हैं, और महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में जो अंतर है उसे सेक्स कहते हैं.
2: नर हो या नारी, दोनों को है जीवन जीने का अधिकार, दोनों के ही शरीर की बनावट में होता है अंतर.
3: दोस्तों, आपने मुलाकात की हमारी बहादुर मीना से. इस नाटक से स्पष्ट होता है कि महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में अंतर होता है, ना कि उनके कार्य में. आइए जेंडर और सेक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं आज की हमारी जेंडर एक्सपर्ट विथिका जी से. दोस्तों, विथिका जी यादव एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिन्होंने मानव तस्करी, गुलामी, लैंगिक अधिकारों और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम किया है. वह लव मैटर्स इंडिया की कंट्री हेड है जो सभी लिंग और कामुकता के लिए प्यार, सेक्स और रिश्ता के बारे में जानकारी प्रदान करती है. चलिए सुनते हैं विथिका जी से कि वह क्या कहती है जेंडर और सेक्स के बारे में।
10: तो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हम अधिकतर जो है जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ वो उस चीज के आपके शरीर के जो अंग हैं, जो आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको रेफर करता है। और इसमें आपके जो आपके शरीर पे जो बाल हैं, जो आपके स्तन हैं, जो भी आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका यूट्रस है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सब कुछ आते हैं। और वही जब हम सेक्स की बात करते हैं तो वो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जनरली उनको यूज करा जाता है, उनका इस्तेमाल करा जाता है पुरुष और स्त्री के शरीर को अलग अलग तरीके से समझने में। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को जन्म के दौरान ही एक सेक्स असाइन करा जाता है, और वो सेक्स असाइन करा जाता है इस बेसिस पे कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और जो उनके शरीर के जो अंग जो महिलाओं के होते हैं, अगर वो उनके साथ पैदा होते हैं तो उनको लड़की बोला जाता है, और जिनके अंग लड़कों वाले होते हैं उनको लड़का बोला जाता है। लेकिन जरूरी ये समझना है कि जो हम उनको सेक्स असाइन कर रहे हैं जब उनका जन्म हुआ है, जो लिंग हम उनको दे रहे हैं, वो उससे विपरीत उनको महसूस कर सकते हैं जब वो बड़े हों, जिसको हम बोलते हैं कि बाइनरी से हटके जो जहाँ पे हम इंटरसेक्स की बात करते हैं, मानने की जो व्यक्ति जन्म में जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पुरुष के थे, हो सकता है कि वो बड़े होके महिलाओं जैसा महसूस करे, और उसी तरह से महिला जो है पुरुष जैसा महसूस करे। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसमें हमारा समाज, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चरल जो रोल्स हैं, जो हमारी बिहेवियर है, जो हमसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, चाहे मेल को लेके, फीमेल को लेके, या किसी और जेंडर आइडेंटिटी को लेकर, उसको हम जेंडर में डालते हैं। क्योंकि जेंडर, जहाँ पे सेक्स जो है वो आपके फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके देखा जा रहा है, वहाँ पे जेंडर जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज ये एक तरह से एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये जो समाज ने एक जो ढांचा बनाया हुआ है जेंडर को, उसके मुताबिक देखा जाता है। क्योंकि अधिकतर जब हम समाज की जब बात करते हैं तो ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि एक पुरुष और एक महिला की एक बहुत ही बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है जेंडर को लेकर। लेकिन जेंडर जो है वो सेक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसको, उसका अनुभव भी लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग हैं। कुछ लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, उनका जेंडर आइडेंटिटी जो है वो उससे विपरीत है जो उनको सेक्स जन्म के टाइम उन्हें दिया गया। बहुत सारे जब आजकल जिन टर्मिनोलॉजी की बात बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें हम जेंडर फ्लूइड होने की बात करते हैं या फिर जेंडर क्वेयर होने की बात करते हैं, ये वो वाली आइडेंटिटीज हैं जो अपने आप को केवल पुरुष और महिला वाले सेक्शंस में नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ अलग अपने आप, अपना जेंडर जो है वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सेक्स, जहाँ पे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, आपका शरीर की जो बनावट है, जो आपके शरीर के अंग हैं, उनको लेकर ज्यादा रेफर करा जाता है, वहीं जेंडर जो है वहाँ पे समाज का, कल्चर का, हमारी सोच का, हमारे बिहेवियर का रोल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसकी डाइवर्सिटी को, विपरीतता को हम समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे जो लेबल्स हैं वो सेल्फ आइडेंटिफाइड लेबल्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, और उसके लिए हमारे

0: में बहुत ज्यादा जगह नहीं है। तो जेंडर सिर्फ पुरुष और महिला वाला जेंडर नहीं होता, जेंडर उसके बियॉन्ड भी होता है।
1: दोस्तों, अभी हमने सुना विथिका जी को। उम्मीद करते हैं कि आप भी जेंडर और सेक्स के बीच के अंतर को बेहतर समझ सके होंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम अभी भी बाकी है। आरजे उषा आए और गीत ना गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए 107.8 FM पर सुनते रहिए रेडियो मधुबन को और कहिए
2: सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे, सफलता बनाएंगे। पूरा करेंगे जो हुआ शुरू।

0: शांति बाबा शिव इस संस्थान के प्रति जो है, मैं पीछे कवाली गाई थी
1: जी,
0: दो लाइन सुनाता हूँ। आओ जहानवा

0: चलो। मैं सुभाष अरोड़ा दिल्ली NCR फरीदाबाद से हूँ, सेक्टर 11 फरीदाबाद जो हमारा BK सेंटर है, उनके साथ अटैच्ड हूँ।
1: क्या बात है।
0: आई एम रिटायर्ड चीफ मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा और मैं 1975 से हारमोनियम पर गा रहा हूँ और मेरा शौक है भजन गाना। मैं सभी प्रकार के भजन गाता हूँ। अभी BK सेंटर शिवरात्रि वाले दिन ये हमारे बैठे हैं तो वहाँ भी हमने गाए और यहाँ आकर ऑर्गेनाइजेशन की इस संस्था की ब्रह्म कुमारी की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। सबसे बड़ा क्या है, मेंटल स्ट्रेस से फ्री करना, शांति देना, खुशी रखना, यही उनका उद्देश्य है और यही हम सबको चाहिए। यही हम सबको चाहिए। आज धन की दौलत, धन दौलत की कमी किसी के पास है या नहीं है, लेकिन इस चीज की कमी जरूर है, दिमाग की शांति, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। शीज माय वाइफ अरोड़ा,
1: स्वागत है।
0: शीज आल्सो ए रिटायर्ड असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
1: अरे वाह।
0: हम दोनों धार्मिक प्रोग्राम में ही भजन गाते हैं। हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, उनको अपने आप में मस्त रहने दो,
1: हम अपने अपने
0: आप में मस्त रहते हैं। तो यहाँ आने के लिए जो BK सेंटर सेक्टर 11 ने हमको अवसर प्रदान किया, मैं BK सेंटर 11 C का भी, फरीदाबाद का भी
1: जी, जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और यहाँ की संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतने वक्त, इतना साफ सुथरा, अभी शिवानी जी को सुना मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी जी, शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे?
0: हाँ, सुनने वालों को जो मैंने अभी आपके सामने गाया,
1: जी, जी।
0: आओ जहान वालों इस दर पे सर झुकाए,
1: जी जी।
0: जिनको नहीं भरोसा आ करके आजमाए, अरे एक बार आके देखिए, आपको अवश्य मिलेगा, दिमाग की शांति मिलेगी, आनंदमय जीवन मिलेगा।
1: बहुत
0: यही
1: बहुत
0: मेरा सबको
1: संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
0: मुझे रेडियो मधुबन पे अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: मैं आगे अवसर की तलाश करूंगा कि मैं कैसे
1: जुड़ू
0: शांति वन में आऊं।
1: बस आपको तो सर भाई साहब को मिलना है और फिर बोलना है चलिए।
0: मेरा विशेष होगा, मेरी विशेष रुचि होगी कि मैं शांति वन के संगीत जो आपका डिपार्टमेंट है
1: जी, जी,
0: उसके
1: जी।
0: साथ अटैच हूँ और मैं जो भी मेरे अंदर है मैं वो
1: बिल्कुल बिल्कुल आप अपने घर से भी जुड़ सकते हैं। बाबा ने आपकी सुन ली है और ऑनलाइन भी आप जो है हमारे साथ गीत गाने के लिए जुड़ सकते हैं। रोज 5 मिनट रात को 8 से 9, ठीक है, मैं आपको जोड़ूंगा। 5 मिनट आप रोज एक गाना तैयार कर लीजिए, उसमें जोड़िएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आपने जो अनुभव सुनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका भी रुचि बन गया और कि मुझे भी शांतिवन जाना है, तो स्वागत है आपका, आइए।
2: मेरा परिचय तो दे ही दिया।
1: जी जी जी
2: जी।
1: अच्छा अच्छा,
2: दो लाइन तो मैं
1: सुनाइए सुनाइए।

0: दिल से बुला के दे, दिल में तू ब्रह्म नाम की। ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर गीत आपने।

0: अनिल सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा कि आप अपने ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
1: मैं एक्चुअली 2015 में पहली बार मैंने शिवानी दीदी को सुना था मुंबई में, तो उनसे थोड़ा सा काफ़ी इंस्पायर हुआ था। उसके बाद अभी दिसंबर में मैं थोड़ा सा फर्स्ट स्टेशन की तरफ जा रहा था।
0: जी,
1: तो मैंने कुछ सर्च करके सेक्टर 11 में मेडिटेशन के लिए प्लान किया था। मैंने वहाँ ज्वाइन किया और कुछ एक हफ्ते की क्लास थी मैंने, और उसके बाद मेरा माइंड कूल होता चला गया। फिर ये प्लान था कि भी माउंट आबू आने का, तो वो मौका भी साथ साथ ही मिल गया। और उसके बाद फिर यहाँ आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा।
0: जी,
1: यहाँ आने के लिए
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और जिस तरह से आप कनेक्टेड हैं मुंबई से शिवानी दीदी को सुनने के बाद, आपका मन जो है इस तरफ आकर्षित हुआ, तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे सबके लिए?
1: जो मैंने यह देखा आने के बाद, या मैंने कभी एक्सपीरियंस लिया है कि अगर मन शांत है तो सब कुछ शांत है। तो शांति के लिए अगर किसी को चाहिए शांति, तो यहाँ के जो
0: क्या बात क्या?
1: सबसे ज्यादा सबसे संदेश है।
0: जी शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। अपने जीवन में इस आध्यात्मिकता को बनाए रखें और इसका आनंद उठाइए।
1: धन्यवाद।

0: बहादुर जी अपना अनुभव साझा कीजिए ग्लोबल समिट का।
1: जी मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा
0: हूँ। अरे वाह,
1: मैं यहाँ से इस राजयोगा में पीएचडी भी कर रहा हूँ। एक बार कोर्स वर्क में आया, दूसरी बार बाबा मिलन में, अभी ग्लोबल समिट। जितनी बार भी आऊँ
0: उतना मजा आई
1: करता है।
0: क्या बात है।
1: और मुझे सबसे बड़ा अनुभव इधर क्या होता है कि घर की याद नहीं आती। जब मधुबन में होता हूँ घर की बिल्कुल याद नहीं आती, यही आनंद आता है।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आपका मन यहाँ लग जाता है, आप बार बार यहाँ आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही एक लगन है, परमात्मा के साथ प्यार है आपका, तो ये दर्शाता है। और एक मैसेज रेडियो सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे आप?
1: जो सुन रहे हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूँगा, एक बार मधुबन आइए, राजयोग का अनुभव लीजिए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, स्वच्छ बनाइए, पवित्र बनाइए, और इस भारत को, भारत वर्ष को, भारत भूमि को स्वर्ग स्थापना करने का जो कार्य था बाबा का,
0: जी जी
1: हाथ बटाइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।

0: तो आइए नेपाल से एक और शख्सियत से आपकी बात कराते हैं, हिम्मत सिंह हेरी।
1: मैं नगर नेपाल से।
0: नेपाल से हैं आप, तो ग्लोबल सबमिट के बारे में बताइए।
1: मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पहले से बहुत पहले से आने का
0: विचार था।
1: मैंने अब टाइम नहीं मिला, हम जॉब में रिलेटेड हैं, तो आने की सोच था। तो मेरे से पहले मेरे मिसेज उन्होंने ये कोर्स करके इससे पहले अगले साल वो आके गई 7 दिन के यहाँ कार्यक्रम में।
0: अच्छा।
1: उसके बाद हमारे घर में ऐसा हो गया तो फिर खान पीन हर चीज
0: बदल गया,
1: मतलब बदल गया, लाइफस्टाइल ही बदल गया। और सुबह शाम स्मरण करना और भजन कीर्तन सारा चीज
0: चालू हो गया।
1: तो मैंने भी ऐसे वो किया कि अब विश्व शांति के लिए जो ये राजयोग यहाँ से हो रहा है काम, तो इसमें एक थोड़ा सा हमारा भी योगदान रहे। स्कूलों में हम 30-35 साल से पढ़ा रहे हैं।
0: अरे वाह।
1: तो फिर भी जो दिन प्रतिदिन जो है उच्छृंखलता बच्चों में जो दिखाई दे रहा है, अनुशासनहीनता, फिर जो मन में लगा वो बोलना, चलना, फिरना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, इसके लिए इन लोगों को जो बच्चों से ही इनको पहले हमें शांति स्थापना करना है। इसके लिए कोई न कोई सूत्र होगा, कोई न कोई फॉर्मूला होगा। इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त हो तो हम पास सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसलिए मैं बड़ा कोशिश करके यहाँ आया। तो जब यहाँ आया मैं तो मुझे लगा ये तो स्वर्ग यही है। स्वर्ग है
0: जी।
1: स्वर्ग में आके जब मैं आने के लिए सोच रहा था कैसे कहाँ क्या, जब यहाँ आया तो ऐसा लगा। मेरे मिसेज तो कहती थी वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं करता है, तो मैं ये क्या मजाक कर रही जैसे लग रहा था उस टाइम।
0: जी जी।
1: जब मैं खुद आया यहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं बैठ के सेवा करके बैठूंगी जैसा लग रहा है।
0: जी जी।
1: क्या करें, हम गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं
0: तो जाना तो पड़ेगा,
1: इसलिए ये हमारा अनुभव रहा है।
0: बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और आप अपना फ़र्ज निभाते हुए वहाँ सेंटर से कनेक्ट हो जाइए तो ये जो सुख है वो आपके लिए हमेशा याद रहेगा। और जैसा समय मिलता है बीच बीच में छुट्टी लेकर ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति।

0: विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना अनुभव साझा कीजिए हमें।
1: देखो सर, आने से पहले ये सोच रहे थे पता नहीं वहाँ पर
0: क्या है
1: क्या नहीं है, लेकिन यहाँ आने के आज दो दिन हो गए, बहुत अच्छा फील हो रहा है और खाना है ना बहुत ही अच्छा। ऐसे सोच रहे कि इतना बनता भी कहाँ से होगा, फिर रसोई वगैरह देख के सारा देखा, बहुत ही अच्छा। और यहाँ की जो दीदियाँ जो बातें बताती है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं, जीवन में उतारनी चाहिए।
0: जी
1: के शिवानी दीदी ने बहुत अच्छा बताया, अगर वो जीवन में उतार ले तो कोई प्रकार की परेशानी मेरे हिसाब से तो आने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और यहाँ का जो वातावरण देखा तो विश्व में कहीं पर भी नहीं है।
0: जी चलिए, बहुत ही सुंदर अनुभव है आपका और मैं चाहूँगा कि इस अनुभव को क्या होता है, ये आध्यात्मिक अनुभव है, ये अनसीन एनर्जी है ना, आप बता रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होगा। चलो मैं यहाँ हूँ, हम सभी अनुभव कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि मेरा अनुभव है, लेकिन जब आप दुनिया में बताने जाएंगे तो लोग कोई भी आपके बातों पे, आप कितने भी खुशी से बताएंगे, लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो उनके कन्फ्यूज़न का असर आप पर ना हो, आपकी जो ये खुशी है इसको बरकरार रखने का, इसको प्रोटेक्ट करने का आपका काम है। तो मैं चाहूँगा कि इस खुशी को बरकरार रखें, कोई आपको सुने या माने या ना माने, क्योंकि जब हम लोग इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे तो कुछ समय के बाद लोगों को ज़रूर पता चलेगा, नहीं ये आदमी सही था। और अगर आपके कहने पर या श्री राम जैसे लोग उनको पकड़ के लेके आए तो उसके बाद उनको एहसास होगा कि अरे उन्होंने तो बहुत पहले बता दिया था, मैं कितना लेट हो गया, ये ज़रूर उनका अनुभव होगा। लेकिन यहाँ पर हमारी अपना एक बहुत सुंदर खुद पे काम करना है, खुद की खुशियों को बना के रखना है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे?
1: रेडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस अनुभूति का एक्सपीरियंस कीजिए एक बार, यहाँ मधुबन आइए और फिर उसको हर जगह बताइए, हम वहाँ गए और हमारे को ये मिला, पवित्रता सब बहुत अच्छा है यहाँ पर, पीस लव हैप्पीनेस सब बहुत बढ़िया है। तो लोगों को मैं ये मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार इसका मधुबन का अवश्य
0: अनुभव कीजिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: नमस्कार, अभी महिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महिपाल जी कैसे हैं आप? जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आपका ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस कैसा है, थोड़ा सा सुनाइए।
1: बहुत शानदार रहा सर, जैसी शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आभास यहाँ करके हुआ। पहली बार ही मेरा आना हुआ शांति।
0: जी जी जी,
1: संस्था से मैं काफ़ी इनसे जुड़ा हुआ हूँ, आने का सहयोग नहीं बना, मगर यहाँ आकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत पहले आना चाहिए था। और एक अच्छा संदेश जो है वो बीस का आध्यात्मिक व्यक्ति का ज्ञान के बाद प्राप्त।
0: जी ठीक है। महिपाल जी वैसे करते क्या आप?
1: मैं प्रिंसिपल हूँ सर स्कूल में।
0: अच्छा, कौन से स्कूल में?
1: झुंझुनू से 15 किलोमीटर दूर है हमारा, 103 साल पुराना स्कूल है, सेठ सिंह का स्कूल।
0: अरे वाह,
1: 1922 का फाउंडेशन।
0: क्या बात,
1: 29 साल से मैं वहाँ से रहा।
0: जी जी जी, चलिए मैं चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल में भी आप इस बात को ज़रूर प्रयोग में लाइए, क्योंकि आज समय है बच्चों के, अगर हम लोग दिलो दिमाग में आध्यात्मिकता का सही परिचय दे देंगे तो उनका जीवन वैसे ही सुंदर बन जाएगा और आगे चल के वो देश के काम आएंगे।
1: जी
0: जी जी, चलिए, हमने आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आप किया है, तो ये गारंटी है कि आप जाके खाली नहीं बैठेंगे और बच्चों को निश्चित तौर पे ये अंजलि ज़रूर देंगे, ऐसी शुभ आशा के साथ बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत मंगल
1: का। बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का और
0: शुक्रिया महिपाल जी, थैंक यू, धन्यवाद।

0: आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे साथ झुंझुनू के ही गांव से जुड़े हुए हैं श्रीराम क्रीडीवाल, इनसे हम लोग बात करने वाले हैं। तो श्रीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? तो मैं चाहूँगा कि इस ग्लोबल सबमिट का जो अनुभव है वो अपने अनुभव को साझा कीजिए, ताकि हमारे रेडियो लिसनर भी इसको समझ सके। जी जी जी, जी जी जी, मुझे लगता है ज्ञान की जो बरसात। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, पुण्य का काम किया है। और मुझे लगता है उनके आने पर उनको अगर खुशी मिल रही तो वो खुशी का शहर आपको भी जा रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम जी, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप हरियाणा भिवानी से बिलोंग करते हैं, और इस ग्लोबल सबमिट में आकर आपको क्या अनुभव हुआ जरूर बताइए।
1: जो भी दर्शक मेरी सभा को सुन रहे हैं, सबको पहले तो ओम शांति,
0: ओम शांति,
1: ओम शांति।
0: जी जी जी,
1: मेरा यहाँ ये दूसरी बार आना हुआ है। मैं लास्ट ईयर भी आया था, सितंबर में मानसरोवर में रुका था। और अलौकिक रूप से मेरी एक सिस्टर बहादुरगढ़ सेंटर को समर्पित है।
0: अरे वाह।
1: उन्हीं के प्रयास से मैं यहाँ आया था। यहाँ जो भी बात बताई जाती है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती उसमें।
0: जी जी जी,
1: हर बात को प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है। भाई किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कैसे हो सकता है, सिद्ध कर दिया जाता है।
0: जी जी जी,
1: मैं अक्सर गीत गाया करता हूँ, सिंगर भी हूँ।
0: अरे वाह।
1: और वो दो लाइनें मैं कहूँगा, है वो इसी टॉपिक पे ही।
0: जी जी जी,
1: जान सके तो जान, तेरे मन में छुप कर बैठे, तेरे मन में

0: जो शब्द मैंने कहे वही आज शिवानिधि जी ने समझाया मस्तिष्क पे क्या है
1: समझो
0: वही परमपिता परमात्मा हर जीव के अंदर विराजमान है उसकी खुद इंसान को पहचान करनी चाहिए
1: बिल्कुल
0: मैं आत्मा हूँ सामने वाले आत्मा है जब ये प्रयास करेंगे एक दूसरे को समझने का विश्व का कल्याण होगा अपना स्वयं का भी होगा
1: क्या बात क्या
0: यही हमारा ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट जो विश्व में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है यही सब बातें समझाता है इसके लिए मैं सभी बहनों का बुजुर्गों का माताओं का सबका धन्यवाद करता हूँ इतनी कोऑपरेशन देते हैं कोई भी यात्री कोई भी भाई यहाँ किसी भी भाव से आता है सबकी इतनी सेवा करते हैं इतनी कोऑपरेशन मिलती है इतना प्यार मिलता है मन करता है कि यहीं रुक जाएं लेकिन गृहस्थी जीवन है जाना पड़ता है
1: जी जी जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया बहुत बहुत साधुवाद आपको और मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा इन अनुभवों को सुनकर अन्य लोग भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और अपने आप को आत्मा समझने का प्रयास थैंक यू बहुत साधुवाद ओम शांति

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: श्री विश्वास चव्हाणे. मैं 26 साल टीचर अभी सेवानिवृत्त हुई है.
1: टीचर किन बच्चों को पढ़ाते थे आप?
0: हम पांचवी से सेवन तक.
1: अच्छा, फिफ्थ टू सेवन्थ के बच्चों को पढ़ाते थे. अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे अभी यहाँ ग्लोबल में आए हैं सबमिट में, तो यहाँ आकर आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझा आपने?
0: यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद मिला.
1: और क्या सीखा आपने, क्या नया बात सुना?
0: मैंने योग साधना कैसे होती है ये सब सीखा.

0: आइए आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। अंजना जी हमारे साथ हैं। अंजना जी बताइए अपने बारे में।
1: मैं 25 साल से ज्ञान में हूँ। पहली बार मुझे इसे जब भी बाबा का ज्ञान मिला तो मुझे बहुत ऐसे मुझे लगा कि मुझे कुछ तो नया मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे मिला है। तो मैंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया। सुबह 7 बजे में जाके क्लास में हो गया। उसके बाद मुझे बहुत ऐसा मधुबन आने का मुझे बहुत उत्सुकता निर्माण।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मैंने जो बाबा का फोटो देखा ब्रह्मा बाबा का, मैंने बोला कि मुझे अभी वहाँ जाना है तो कोर्स करने के बाद जाएंगे। कोर्स किया फिर मैं फिर मधुबन में आई। तो ऐसे बीच में प्रोग्राम कुछ नहीं था, परिवार को लेके आना था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनको छोड़ के भी नहीं आ सकते थे, लेकिन मुझे मधुबन में आना था। तो मैंने क्या किया, सबको लेके आई परिवार को और अकेले निकली।
0: अच्छा अच्छा।
1: मालूम तो नहीं था इधर का कुछ। और आई तो बस से आई, ट्रेन का भी टिकट नहीं था। बस से आई परिवार को लेके, बच्चे छोटे थे और मिस्टर और हम चारों जन आए। फिर अहमदाबाद उतरे, अहमदाबाद से टमटम पकड़ी, टमटम से हम महसाना, महसाना से फिर अब यहाँ आए।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से हम मधुबन में पहुँचे।
0: बहुत
1: उसके बाद जाते समय हमारे पास टिकट नहीं था। फिर अभी इधर बैठे हमें बाबा के सामने उधर, तो अभी जाना है, कल जाना है, तो अभी टिकट का कुछ करना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: तो रेलवे ऑफिस में गई अपने इधर के और उनको बोला मैंने हमें टिकट चाहिए, हमारे पास टिकट नहीं है। तो बोले क्या माता जी आप चिंता करते हो, बाबा ने तो आपके लिए ट्रेन चालू की है। और उसी दिन जो हड़पसर कौन सी ट्रेन है ना, जोधपुर हड़पसर कुछ
0: जी जी जी जी,
1: तो वो ट्रेन उस दिन से चालू हुई।
0: अरे वाह।
1: तो हम बाबा ने मेरे लिए, हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए ट्रेन चालू की। मतलब इतना बड़ा, ऐसे बड़े बड़े अनुभव, इतनी खुशी हुई कि हम ट्रेन में किधर भी बैठते थे ऐसे ट्रेन थी। इतना मजा करते हम पूरा
0: पहुंचे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: मुझे बहुत अच्छी
0: फीलिंग आ रही है। जी जी जी। चलिए ग्लोबल
1: मुरली में आया था कि अभी मुझे थोड़ा लगता है ना कि मैं जा रही हूँ मधुबन, परिवार को लेके जा रही हूँ, मालूम ना पहली बार के साथ है। मुरली में आया, बाबा बोले कि शेर कभी डरता नहीं है, हाथी झुंड में रहता है और शेर अकेला घूमता है। तो और ज्यादा मुझे ताकत आई।
0: जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने अनुभव सुनाया। और ग्लोबल सबमिट में आए हैं तो ग्लोबल सबमिट की कुछ अभी की जो बातें हैं वो बताइए।
1: तो ग्लोबल सबमिट में अभी आए हम तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारे लोग आए हैं। इन सब लोगों से हम ऐसे नहीं मिल पाते ना, तो एक जगह बाबा ने इन सब लोगों से हमें मिलाया। बहुत कुछ बातें इन लोगों को भी नया, हम तो जानते थे कि
0: जी जी
1: नए लोगों को ले आए, तो उनको भी कुछ बहुत सीखने को मिला, देखने को मिला।
0: जी जी। अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया। बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ज्योति टेकाड़े हमारे साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: अच्छे हैं।
0: जी जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में।
1: मैं हड़पसर में रहती हूँ। मेरे दो एक बच्चा है, वो कनाडा में पढ़ता था, जॉब हो गई उसकी, बच्चे भी हो गई उसको। अभी हम एक साथ पुणे में रहते हैं। अभी मैं हाउस वाइफ हूँ। उसके पहले मैं बिजनेस बनाती थी, सब घर में बेचती थी। अभी मुझे पता चला मधुबन में कि अच्छा कार्यक्रम होता है, तो मेरी बहुत इच्छा थी मुझे आने के लिए, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड को बोला। तो मुझे बोले चलो अपन जाएंगे। वैसा तो नहीं जाने देती किसी को, ऐसे जो साधना में रहते हैं उन्हीं लोगों को ले जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में, पर मैं ले जा सकती हूँ। इसलिए हमने पहले टिकट बुक किया था।
0: अच्छा,
1: तो बीच में चीन का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, फिर से हमने कैंसिल करा लिया। उसके बाद में फिर से अभी हम बाबा था, ऐसा था कि हम आए बच्चे उनके, इसलिए हमें फिर से आने के टाइम मिला और अच्छा हो गया। और यहाँ आकर मुझे आप लोगों की साफ सफाई, खाना पीना, लोगों की बातचीत करना और सब बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी।
1: जैसे हम एक अपन गांव में दूसरे जाते हैं, मायके में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, तो उनसे भी ज्यादा मुझे यहाँ खुशी मिले कि मैं मेरे मायके में आ गई, मेरे बाबा जी का घर यानी मेरे पिताजी का घर। आप लोग जैसे भाई बहन उन वो मेरे सखे ऐसे लगे मुझे, और बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा
1: लगा। ये कार्यक्रम बना है तो ये भी बहुत, उसमें से हमने बहुत सीखा, बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर अनुभव सुनाया आपने। बहुत बहुत साधुवाद। और जो कुछ आपने सीखा है यहाँ पर, उसे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, सेंटर पे रोज जाएं। ओम शांति।

0: मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: पकाए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। जी हाँ, वही कार्यक्रम दोस्तों जिसमें हम आप सबसे दिव्यांग साथियों को रूबरू करवाते हैं, उनके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को, कुछ ऐसी बातों को जो शायद हम कभी सोचते नहीं, कल्पना नहीं करते हैं, उनको आप सबके सामने रखने का प्रयास करते हैं। और आमतौर पर सफलता की कहानियां बहुत सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन संघर्ष की बातें शायद नहीं हो पाती। तो संघर्ष कौन सा? जिंदगी जीने का संघर्ष, अपने जीवन साथी को ढूंढने का संघर्ष, और उसमें समाज और परिवार के साथ जो संघर्ष होता है वो एक अलग ही तरह का संघर्ष। इस सब के बीच में कैसे हमारे मेहमान सफलता प्राप्त करते हैं और अपनी जिंदगी को, चुनौतियों को अपनी ताकत बनाते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, बस यही जानने समझने का नाम है हमराही। तो स्वागत कीजिए आज हमारे साथ राजस्थान की राजधानी यानी गुलाबी नगरी जयपुर से जुड़ रहे हैं ननिता मैम और पीयूष जी। तो ननिता जी और पीयूष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज इनवाइट किया और ये मौका दिया आपके साथ बात करने का। रेडियो मधुबन और आपके हमराही प्रोग्राम की हम लोग अक्सर तारीफ करते हैं कि ये यही एक अकेला प्रोग्राम है जो हम लोगों के लिए बना है, हमारे जैसे दोस्तों की स्टोरी सुनने के लिए बना है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया आज हम आपके साथ अपनी स्टोरी भी कुछ बात कर सकें।
2: क्या बात है पीयूष भाई, थैंक यू सो मच, आपने पूरे कार्यक्रम की एक तरह से रूपरेखा अपनी इस बातचीत में प्रस्तुत कर दी, जबरदस्त। बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आप दोनों को। हम चाहेंगे ननिता जी हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, पहले आप हमारे श्रोताओं को जरा अपने बारे में बताएं कि आपको कौन सी परेशानी है शारीरिक रूप से, और वर्तमान में आप क्या कर रही हैं, आपका एजुकेशन अभी तक का क्या रहा है, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड। जी ननिता जी।
4: जी बिल्कुल संदीप जी, मधुबन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा नमस्ते।
2: जी
4: अग्रवाल, आई एम फ्रॉम जयपुर, और सर मेरी एजुकेशन फाइनल 2006 में हो चुका था
2: जी।
4: उसके एम कॉम थोड़ा सा ड्रॉप हो गया प्रीवियस के बाद, फाइनल नहीं हो पाया।
2: ओके।
4: और बेसिकली उसके बीच में काफी अप हो गया, इस बीच तो बस ट्रीटमेंट में लगे रहे, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, भैया भाभी है और एक भतीजी है मेरे। मैं प्रॉपर जयपुर से बिलोंग करती हूँ सर। 2000 कंप्यूटर विथ स्क्रीन रीडर सीख आगे जॉब कंटिन्यू किया था, जॉब 2017 हमारी शादी हुई थी और उसके बाद अभी जॉब ड्रॉप किया हुआ है, अभी मैं घर पे हूँ एज अ होममेकर आई एम वर्किंग।
2: बहुत खूब। तो ननिता जी, आपने बताया कि 2007 में आपकी आंखों की रोशनी चली गई, तो क्या रीजन रहा उसका?
4: सर मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी की प्रॉब्लम है।
2: ओके।
4: बट तब तक इतनी डायग्नोस नहीं थी, मुझे भी एक्चुअली में पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है। के बाद ट्रीटमेंट में धीरे धीरे डॉक्टर्स ने क्लियर किया कि आरपी की प्रॉब्लम है, और उस वक्त विजन था लेकिन काफी लो होते होते धीरे धीरे डे बाय डे कम हो गया था। और तो 2015 में तो मैंने एज अ ब्लाइंड ही कंप्यूटर ट्रेनिंग ली, और उसके बाद
2: कहाँ से सीखा आपने ननिता जी कंप्यूटर?
4: मैंने जयपुर में ही आरएनके करके राजस्थान नेत्र कल्याण संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मैंने 2015 में कंप्यूटर ट्रेनिंग ली थी।
2: तो ननिता जी, आजकल आप वापस जॉब ज्वाइन करने वाली हैं, राइट?
4: जी सर, कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं।
2: ओके। कभी गवर्नमेंट जॉब की कोशिश नहीं की आपने?
4: सर एक दो बार ट्राई किया था, बट 15 में कंप्यूटर ट्रेनिंग की, उसके बाद ट्राई किया, वो 16 में जॉब में आने के बाद, प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने के बाद इतना टाइम ही नहीं रहा, जॉब में इन्वॉल्व हो गए, 17 में शादी हो गई।
2: क्या बात। तो मतलब हम ये मान करके चले कि कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के दौरान ही पीयूष जी से मुलाकात हुई आपकी?
4: जी सर, मेरी उसी दौरान।
2: चलिए, हमारा अनुमान ठीक निकला, लेकिन वो आगे आपसे हम जानेंगे। बहरहाल इनवाइट करते हैं पीयूष जी को। तो पीयूष भाई, आप भी हमारे सुनने वालों को अपने बारे में प्लीज बताएं।
3: जी संदीप जी, मेरा नाम पीयूष परडिया है, मैं जयपुर से हूँ। मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। डिपार्टमेंट में CSR का कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा डिपार्टमेंट है। तो रेगुलर नए लोगों से और नए इंस्टीट्यूशन से, NGO से मिलने का मेरा काम रहता है। और इस कंपनी में मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ।
2: ओह माय गॉड, 20 सालों से, क्या बात है।
3: ये मेरी एक्चुअली कॉलेज के बाद फर्स्ट ही मेरी जॉब है। उस टाइम मैं साइटेड था, मेरी रोशनी नजर थी। 2011 में आई साइट में प्रॉब्लम हुई, मुझे रेटिना मेरे डिटैच हो गए और फिर वो इतने फ्रेजाइल हो गए कि उनमें रोशनी बन नहीं पाई।
2: इसको कहते क्या है, जो आपको आंखों की जो परेशानी है, इसका नाम क्या है मेडिकल लैंग्वेज?
3: एक्चुअली ये मेरे हाई मायोपिया था।
2: अच्छा, हाई मायोपिया, ओके।
3: रेटिना बहुत पतला होता है, धीरे धीरे एज के साथ पतला होता जाता है। तो वैसे आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक हल्का चश्मा था जो नजर का। और 2011 में मैं दुबई को आया हुआ था घूमने के लिए। वहाँ अचानक थोड़ा लगा कि कुछ रेड आँख के बीच में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, साइड से दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से भी नहीं आया, 2-3 दिन वहाँ थे। मैंने कहा जयपुर जाके हम लोग वापस ट्रीटमेंट लेंगे। तो जैसे ही दुबई से वापस जयपुर आए, डॉक्टर के पास गए यहाँ, तो यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि आपका रेटिना में होल हो गया है, रेटिना डैमेज है। तो फिर डॉक्टर्स ने यहाँ कहा कि इसका बेस्ट इलाज यहाँ जयपुर में नहीं है, आप चेन्नई या अहमदाबाद कहीं जाएं। तो हम लोगों ने चेन्नई में शंकर नेत्रालय हम लोग नेक्स्ट डे ही चले गए थे। और वहाँ 2-3 बार उन लोगों ने ऑपरेट किया। फर्स्ट टाइम किया, रोशनी नहीं आई। फिर 1 महीने बाद दोबारा किया ऑपरेट, फिर भी नहीं हुआ। तीसरी बार में भी वो रेटिना तो अटैच हो गया, पर वो इतना फ्रेजाइल हो गया, कमजोर हो गया कि उनमें फिर रोशनी नहीं बन पाई। तो यही स्टोरी है कि AU में रहते हुए ही ये प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद फिर यहीं वापस अपने आप को संभाल के आपके साथ जुड़ गए। और मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा ही हुआ मेरे साथ कि ये हुआ, तो मैं आप लोगों से मिल सका, नमिता से मिल सका और बाकी लोगों से मिल सका।
2: क्या बात है। और कहीं ना कहीं इतने सारे NGOs की जो हेल्प की है आपने, उनके जो काम आए हैं, आप CSR के तहत आप जॉब कर रहे हैं, तो ये भी एक कहानी है, मतलब कहीं ना कहीं। जी, कुछ कह रहे थे आप?
3: इससे पहले, ब्लाइंड होने से पहले मैं सेल्स में था। आई वॉज वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर जयपुर।
2: जी जी जी।
3: और CSR का तो नामो निशान भी नहीं था और सोशल सेक्टर के बारे में जानते भी नहीं थे उस टाइम।
2: जी जी जी।
3: तो अब ये जब ब्लाइंड हो गए, तो अब ऐसा लगा कि फील्ड मूवमेंट वगैरह कम होगा, तो कोई बैकएंड का काम या जो ऑफिस से या कंप्यूटर से काम स्टार्ट हो सके वो करते हैं। तो ये भी आप सही कह रहे हैं, कोइंसिडेंट था कि मुझे वापस ये CSR ब्लाइंडनेस के कारण ही मिल पाया कि मैं इस फील्ड में आ सका।
2: और मेरी जानकारी जहाँ तक है पीयूष भाई, बाकी तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि इस डिपार्टमेंट में और काम करते हुए आपने बहुत सारे NGOs की हेल्प की है और बहुत अच्छी खासी हेल्प की है।
3: इसमें भी एक स्टोरी है, अगर आप
2: जरूर।
3: जब ये ब्लाइंडनेस की मुझे प्रॉब्लम हुई, तो लगभग 1.25 साल मैं घर पे ही था और थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता था। कुछ दोस्तों ने और फैमिली ने मैं मोटिवेट किया कि यार ऐसे नहीं होगा, ब्लाइंड लोग भी भाई काम तो करते हैं, जिंदगी जीते हैं, तुम तो ऐसे निराश होकर क्यों बैठे हो।
2: बिल्कुल।
3: तब तक शायद हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं, या मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। और फिर जब एक्सेप्ट कर लिया, तो हम लोगों ने आसपास में देखा, भाई कौन हमारे फैमिली में या कोई रिलेशन में कोई ऐसे नहीं थे जिनकी नजर ना हो। फिर ऐसा ध्यान आया कि कोई एक दूर के कोई रिश्तेदार है, उनके घर के आसपास हम जाते थे, वो देखते थे। मेरे फादर ने कहा कोई ब्लाइंड थे, देखा था किसी को।
2: अच्छा।
3: हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने हमें रेफर किया कि राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ है, वहाँ जाके मिली है
2: जी।
3: तो हम लोग वहाँ गए, उन लोगों ने मुझे बताया वहाँ, मैं पूरा सब समझा कि क्या करते हैं। उन्होंने कहा आप कंप्यूटर सीखो क्योंकि आप जॉब में थे और पहले आपको नॉलेज है
2: जी।
3: पर वहाँ मैं एडमिशन नहीं ले सकता था क्योंकि मैं जयपुर लोकल का ही था। वो बोले कि आपको दिल्ली आना जाना पड़ेगा। उस टाइम तो मैं घबरा गया, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि दिल्ली आऊंगा जाऊंगा कैसे भाई।
2: थोड़ा सा बड़ा मुश्किल दौर होता है जी।
3: वक्त तो यही लगता था कि दिल्ली आना जाना तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो घर में ही रह रहा था। और आज के दिन मैं आपसे याद भी करना चाहूंगा, आप भी जानते होंगे एक बहुत हमारे अच्छे मित्र थे, आपके तो हैं शायद, थे
2: जी। ललित जी से बहुत अच्छा परिचय रहा, बस इस कोरोना ने जिन लोगों को छीना है उनमें से वो भी एक है।
3: वो बहुत बड़ा लॉस है शायद मेरे लिए भी
2: जी।
3: और क्योंकि वो एक बहुत ही मेरे वेलविशर थे, शुभचिंतक थे। तो जैसे ही उन्हें खबर लगी कि कोई रिसेंटली ब्लाइंड हुआ है, तो वो और उनकी श्रीमती जी हमारे घर आए
2: जी।
3: और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे साथ क्या हुआ, प्रॉब्लम समझी। फिर मैंने कहा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने मुझे रेफर किया कि AIC भी जाओ आप, वहाँ रह के ट्रेनिंग ले लो। तो फिर मैं एक महीने के लिए दिल्ली गया था AIC भी, वहाँ हॉस्टल में रह के कुछ जॉब के थ्रू कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करना थोड़ा प्रैक्टिस किया। और फिर आके मैंने AU में वापस ज्वाइन किया और कॉन्फिडेंस से कहा कि सर अब मैं काम कर सकता हूँ।
2: क्या बात है, वाह जी।
3: तो इसी बीच में फिर मैंने, जब मैं कुछ वापस बैकएंड में काम करने लगा, तो मैंने उस टाइम, आपको ध्यान होगा 2013-14 में ही CSR का लॉ आया था।
2: जी जी जी बिल्कुल, इसी समय आया
3: था। मैं बैक ऑफिस ऑपरेशंस में था, तो मैंने हमारी CSR टीम को रेकमेंड किया कि भाई ब्लाइंड लोगों का एक स्कूल है, हॉस्टल है, आप वहाँ काम क्यों नहीं करते, शुरुआत वहाँ से करें, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो वो टीम को मैं लेके गया वहाँ, CSR टीम को लेके गया। तो वहाँ उन्होंने देखा और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल को रिनोवेट किया वहाँ के
2: जी जी जी।
3: और कुछ किचन वगैरह, मैस वगैरह जो थे उस पर काम किया।
2: क्या बात,
3: तो यहीं से शुरुआत हुई और यहीं से शायद CSR और NGO सेक्टर को लेकर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। पर हालांकि मैंने ज्वाइन उस वक्त नहीं किया था CSR, CSR को मूव किया था 2018 में। एक और यहाँ जयपुर में ही ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है जो लुई ब्रेल शिक्षा है, हमने हॉस्टल का और स्कूल का निर्माण करवाया ब्लाइंड बच्चों के लिए।
2: बहुत
3: में लगभग 1 crore का हमने CSR फंड स्पेंड करवाया इन दोनों
2: में मिला के। वाह, बहुत। और मुझे जहाँ तक ये भी ध्यान है पीयूष भाई कि आपके AU में सक्सेसफुली जॉब करने के बाद AU ने कुछ और ब्लाइंड साथियों को जॉब दिए, राइट?
3: हाँ, वो भी ठीक बात है। और आप मतलब इसको समझे कि शायद इसी कारण से नैनीता जी से भी मिलना हो पाया मेरा।
2: क्या बात है, वाह गजब। तो इसी पर आ जाते हैं, कैसे मिलना हुआ नैनीता जी से आपका?
3: मैं ही जवाब दूँ?
2: आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फिर नैनीता जी को बुलाएंगे।
3: एक्चुअली मैं जब वहाँ RNKS में जाता था इस चीजों, इन कार्यों को लेके और देखने के लिए, तो मैं वहाँ फिर रेगुलर जा रहा था। और फिर वहाँ मुझे वर्किंग कमेटी में भी वहाँ के जो कार्य समिति के सदस्यगण थे उन्होंने मुझे शामिल किया था। एक या दो बार मैं वहाँ जाता था, तो सब वहाँ स्टूडेंट से मिलता था, मैथ में जाता था, जहाँ काम चल रहा है वहाँ जाता था। वहीं पे नैनीता जी उस वक्त ट्रेनिंग ले रही थी, तो हमारी बातचीत हुई हम लोगों ने कि अनाउंसमेंट से भी मिला था कि क्या होता है, क्या करते हैं। तो बस ये है कि हमारी बातचीत फिर वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ गई, हम लोग उधर बात करने लगे। और
2: पहली मुलाकात में नंबर नंबर लेना और ये सब हो गया था क्या?
3: ऐसा नहीं हुआ था एक्चुअली, तो शायद बस यही था कि मैंने एक नए ट्रेनी है और नए स्टूडेंट हैं और इनकी स्टोरी भी मेरी जैसे ही थी लगभग।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: एक्चुअली मैं भी लेट ब्लाइंड था और ये भी लेट ब्लाइंड ही थे, और ये 2007 में इनके प्रॉब्लम हो गई थी, पर इन्होंने थोड़ा घर में ही रहे थे। तो 2015 में जब इन्हें पता चला था तब RNKS ज्वाइन किया था ये, और मैं भी लेट ब्लाइंड था। तो ये हम लोग आपस में बात करते थे, ये समझते थे कि कैसे आप काम करते हैं, क्या काम, या थोड़ा सा मैं भी, मेरा भी ये था कि मैं लोगों से बात करता था जो लेट ब्लाइंड हुए हैं, शायद ये कर सकूं, बात कर सके।
2: बिल्कुल,
3: इस तरह हमारी बातचीत हुई। फिर नैनीता जी ने AU बैंक में ही ज्वाइन किया था, वहाँ भी कुछ जैसे कुछ वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती थी तो मैं उन्हें सपोर्ट करता था
2: जी।
3: तो यहीं से हमारी बात शुरू हुई। और
2: क्या बहुत खूब जी ननिता जी, तो आप बताएं जरा कि आपको याद है आज भी पीयूष जी से जो पहली मुलाकात रही है आपकी?
4: जी सर, 2015 में अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था कंप्यूटर ट्रेनिंग आरएनकेएस में। तो लगभग अगस्त के करीब स्टार्ट हुआ था हमारा, मतलब बात हुई थी, फर्स्ट टाइम बात तभी हुई थी। फिर उस दौरान जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग में और जॉब भी करने का था तो फिर एयू में ज्वाइन किया आगे, तो इसलिए भी बातें होती थी इनसे। तो बातें होती थी तब कोई विजन नहीं था, शादी का भी नहीं था और कुछ नहीं था, रिगार्डिंग वर्क और रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड अपनी स्किल्स प्रॉब्लम जो भी थी उनके रिगार्डिंग ट्रेनिंग सब कुछ था। 2016 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर हम वर्किंग में आए तो थोड़ी बातें और बढ़ती गई। तो ऐसे बातें करते करते फिर हमें 16 एंड में वी डिसाइडेड कि हम मैरिज कर सकते हैं।
2: अच्छा, यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा नानीता जी कि जीवन साथी एक दूसरे को बनाने का डिसीजन लेते समय कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है कि यार हम दोनों की कहानी तो सेम है, ये भी लेट ब्लाइंड मैं भी लेट ब्लाइंड, ऐसा भी कुछ रहता है मन में?
4: बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं था। एक्चुअली में जब मैंने शादी के लिए डिसीजन लिया था तब तक तो मेरा शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था। मतलब कभी सोच शादी भी करूंगी बट या तो शायद इस एनवायरनमेंट में रहते रहते ब्लाइंड्स लोगों को जाना और घर में स्पेंड किए तो लगा कि इस कम्युनिटी में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, कुछ प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। तो धीरे धीरे बात करते करते हमें लगा कि शादी कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे, एक दूसरे की फीलिंग सेम थी, तो फिर हमने डिसाइड किया अपनी लाइफ को आगे लीड करने।
2: अच्छा, पहला प्रपोजल किसका था?
3: मैं आपको इसमें एक बार इंटरप्ट करूंगा।
2: जी जी जी,
3: मैं आपको जैसे ललित जी की बात बता रहा था।
2: जी जी,
3: 2015 में जब इन्होंने वहाँ कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया होगा
2: जी,
3: तो वो शायद किसी ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे।
2: ओके,
3: मुझे फोन किया वहाँ से।
2: अच्छा,
3: मैं एक ब्लाइंड लड़की है, तुम्हारे लिए

0: ठीक है, वो उन्होंने लगता था कि हम सिमिलर कास्ट के हैं, ये अग्रवाल थे या मैं जैन था, तो उसका वो भी बनिए हैं, तो बात करने को आते। मैंने कहा नहीं यार, ब्लाइंड में हम लोगों को शादी भी करनी है, ब्लाइंड का कैसे शादी, दो ब्लाइंड कैसे शादी करेंगे, और मेरी फैमिली भी मानेगी नहीं, ब्लाइंड ब्लाइंड शादी नहीं कर पाएंगे। और तो नमिता से भी बात की थी
1: जी
0: कि तुम्हारे पेरेंट्स से मैं मिल सकता हूँ, तुम चाहो तो, एक लड़का है।
1: ओके
0: और
1: अच्छा
0: उन्हें आउटरेजियसली मना कर दिया था कि नहीं सर, मुझे शादी नहीं करनी,
1: ओ
0: ब्लाइंड कैसे शादी करेंगे
1: क्या
0: ब्लाइंड।
1: बात है। जैसा कि नंदिता जी ने अभी कहा कि कोई इरादा ही नहीं था शादी का।
0: मतलब आप कह सकते हैं उन्होंने, और फिर ये बात जब हमने कर ली थी शादी, उन्होंने हमें दो तीन बार आके मुझे बोला भी, तो बोला मैंने तुम्हें बताया था तब तुम माने नहीं। तो ये, और जैसा आपने पूछा कि प्रपोज किसने किया था, तो शादी का डिसीजन लेना हमारे टफ हो रहा था, क्योंकि बहुत टफ इसलिए था क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे।
1: अच्छा
0: आप कहेंगे कि हमारे, हमने अपने आप को मनाया था, क्योंकि पहले तो हम भी यही मानते थे कि ब्लाइंड से नहीं, दो ब्लाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हम खुद जूझ रहे थे उन चीजों से, मतलब नए
1: बहुत
0: नए
1: सारी
0: थे।
1: बातें कि मतलब दोनों ब्लाइंड, दोनों का मतलब सेम प्रॉब्लम, और जॉब भी प्राइवेट सेक्टर में करने का कहीं ना कहीं एक डिसीजन।
0: तो कॉन्फिडेंस नहीं था, पर फिर थोड़ा बात करते थे और लगता था, और मेरे मतलब सर कहना तो ये चाहिए, मेरे से ज्यादा यकीन शायद नंदिता को था कि नहीं आप कर सकते हैं।
1: क्या बोलते हैं, वेरी कुल मिलाकर के पहला डिसीजन नंदिता जी का लगता है था।
0: उन्होंने कॉन्फिडेंस लाया, हालांकि प्रपोज मैंने किया था कि हाँ चलो आपको शादी करते
1: अरे
0: हैं।
1: वाह क्या मानते हैं।
0: और पेरेंट्स को मनाना एक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वो था हमारे लिए।
1: मैं उसी पर आना चाह रहा हूँ भाई कि जब आप दोनों ने तो तय कर लिया, लेकिन अब पेरेंट्स से तो बात करनी थी, तो आपने कैसे बात चलाई अपने फैमिली में कि भाई ऐसे ऐसे कोई लड़की है, मैं उसको पसंद करता हूँ और अब शादी करना चाहता हूँ।
0: पहले मैं बताता हूँ, मेरे का बताता हूँ आपको।
1: जी
0: अब मैं जैसे फील्ड से जुड़ा हुआ था और ब्लाइंड कम्युनिटी से, वहाँ आरएनपीएस में जुड़ा था, तो मेरे फैमिली भी रेगुलर टच में रहती थी, जो यहाँ सीनियर लोग थे, तो उनमें से एक दो, तो उन्होंने कहा, मेरे फादर ने उनसे बात की कि आपने शादी कर रखी है, साइटेड हैं, कैसे करी, तो क्योंकि उनके ही तो दिमाग में यही था कि साइटेड से ही करनी है भाई। अब वो चाहे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है, तो वो हम लोग एग्री थे कि या कुछ इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रोमाइज होगा कि हाँ ठीक है, वो थोड़े कम पढ़ी लिखी हो या कुछ हो, या कुछ मतलब पुअर बैकग्राउंड से भी हो तो भी चलेगा, पर हम शादी मतलब साइटेड ही देखनी है
1: तो
0: कोई।
1: उनके दिमाग में बिल्कुल कहानी वही फिक्स थी कि भाई साइटेड लड़की इसको जो है अच्छे से संभाल लेगी, ये होता आम तौर पे दिमाग में पेरेंट्स।
0: और आरएनपीएस वगैरह में जहाँ थे, वो वहाँ जो आसपास ब्लाइंड लोग थे, उनके भी स्टोरी वैसी थी कि वो बहुत कम थे, मतलब कोई थे ही नहीं जो दोनों कपल या मतलब कपल ब्लाइंड हो, मतलब जयपुर में हमारे आसपास उस टाइम जिनको हम जानते थे।
1: जी।
0: तो फिर उनको कन्वेंस करना बड़ा मुश्किल था, और जब मैंने बताया उन्हें कि भाई मैं किसी को देख रहा हूँ वो ब्लाइंड है, तो सब तो उन्होंने और ज्यादा प्रयास चालू कर दिए थे। मेरे फादर, मतलब आपको बता दूँ, एक बार
1: अच्छा मतलब जब आपने घर वालों को बताया कि भाई किसी को आप देख रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश और तेज कर दी। अरे
0: और तेज कर दी उन्होंने बहुत, मैं ये कह रहा हूँ वो महाराष्ट्र का भी एक चक्कर लगाया है।
1: बाप रे बाप, मतलब उनको लगा कि लड़का गया हाथ से। जी, आगे बताएं। जी
0: हालांकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ कह रहे थे वो रुको थोड़ा, पर मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि नहीं अब आप एक बार मिल लीजिए, और फिर किसको एक मौका देख के, कोई छोटा सा एक गेट टुगेदर था, तो मैंने वहाँ नंदिता को भी इनवाइट किया था, और वहीं मेरे पेरेंट्स को उनसे मिलवाया था, मेरी मदर को, और वहीं से फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उनसे कि हाँ नंदिता से मिले, और नंदिता भी तैयारी करके तो गई थी।
1: जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन।
0: तो
1: जी
0: थोड़ा बहुत वो रहा, कुछ तैयारी की, फिर बाद में और थोड़ा कन्विंस करना पड़ा, उन्हें मनाना पड़ा। तो जैसा अभी हम कह रहे थे ना कि हमारी शादी में हमने किसी को, मतलब हम लोग सिर्फ हमारी दोनों तरफ की फैमिली ही थी और कोई लोग नहीं थे।
1: अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट।
0: हाँ मतलब टोटल 50 लोग भी नहीं
1: जी जी
0: थे।
1: नंदिता जी, तो पीयूष जी ने बहुत अच्छे से बताई अपनी स्टोरी, खासकर फैमिली के
2: को आपसे इंट्रोड्यूस कराने की। और इधर आपकी फैमिली में क्या सीन चल रहा था?
3: सर मेरे तो यही था कि जैसे मेरा तो खुद का ही विजन ही था कि शादी मुझे करनी है, मुझे प्रॉब्लम के साथ शादी करके क्या करेंगे, मतलब आज अपन परेशान है कल अपने साथ में कोई और भी परेशान होगा, तो सिमिलर चीजें फेस कर रहे हैं, किसी और को करनी पड़े वो नहीं चाहते।
2: आपके मन में क्यों थी मैम, कॉन्फिडेंस की वजह से थी या कोई और, मतलब
3: ब्लाइंडनेस की वजह से, ओनली ब्लाइंड क्राइसिस है लाइफ में कि जिस चीज को अपन फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं तो इतने साल घर में ही रही ना सर, मेरा तो एक तरह से लिमिटेड दायरा हो गया था कि घर में ही रहना था, तो कुछ नॉलेज नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, किससे मिले नहीं, तो एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस तो 2015 के बाद ही मिली थी, जब कंप्यूटर सीखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कुछ कर सकते हैं, एज ए ब्लाइंड भी कुछ अपन कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर सबसे बातें होने लगी, तो एक्चुअली में इस कम्युनिटी में आके ज्यादा खुश रहने लगी थी मैं, तब मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस आया कि शादी भी कर सकते हैं और एज ए ब्लाइंड कपल बहुत अच्छी लाइफ लीड भी कर सकते हैं।
2: वेरी नाइस।
3: तब तब मैंने ये डिसाइड, हम लोगों ने मिलके डिसाइड किया, मैं मुझे लगा कि हम आराम से शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस डिफिकल्ट टास्क यही था कि फैमिली को कैसे एग्री करें।
2: मुद्दा वही है
3: एक्चुअली में, क्या मम्मी पापा के लिए ये भी शॉकिंग था कि आज तक जिसे शादी नहीं करनी थी अचानक एक ही दिन में उसे शादी करनी है, जब उन्हें ये बताया आज तक जो हम शादी करते थे शादी शादी शादी, शादी तो बस नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, अब एक दिन में और करनी है, तो फिर जब ये बताया कि ब्लाइंड से करनी है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए कि इतना बड़ा तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो, तो प्रॉब्लम तो काफी आई मम्मी पापा के लिए, तो एक तरीके से
2: थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जैसे उस दौरान क्या क्या बातें रही, मम्मी का ज्यादा विरोध रहा, पापा का रहा कि सिमिलर था, क्या था मतलब क्वेश्चंस क्या थे उनके, आपने कैसे उनको हैंडल किया?
3: क्वेश्चंस मीन तो ये दोनों ही ब्लाइंड हो कैसे हैंडल करोगे, अदर डिसेबिलिटी होती तो एक बार के लिए फेस कर लेते, और कैसे सोशल फैक्टर को बैलेंस करेंगे लोग, मतलब
2: मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ बीच में, ये बात हमें 90% सुनने को मिलती कि यार अच्छा कोई भी और डिसेबिलिटी होती ना तो चलो ठीक है इट्स ओके, तो ब्लाइंडनेस को क्या मतलब डिसेबिलिटी में भी सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक माना जाता है क्या, क्या है ये, क्योंकि हमने यही अक्सर यही सुना है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस मामले
3: में? मुझे नहीं लगता ब्लाइंडनेस, तो बल्कि मुझे लगता है कि ऐसी डिसेबिलिटी
2: सबसे इजी होना चाहिए, ये तो मेरे ख्याल से
3: बिल्कुल सर, मुझे तो नहीं लगता कि डिफिकल्ट है, बट लोगों का विजन ऐसा नहीं है ना, लोगों को लगता है कि तुम दोनों ही ब्लाइंड हो, अगर एक ब्लाइंड होता और एक कोई अदर डिसेबिलिटी होती तो वो उसकी कमी को पूरा कर देता और वो उसको फुलफिल कर देता, यही लगता था पहले तो, उन्हें यही था ना कि भाई अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम शादी के लिए एग्री हैं, बट हम लड़के तुम्हारे लिए, वो तो वैसे तो नॉर्मल साइटेड लड़का ही आते थे, वो बोले हमें टाइम दो हम ढूंढते हैं, लेकिन हाँ मम्मी पापा दोनों ही एग्री नहीं थे, भैया थोड़ा समझा था, फिर उसने मम्मी पापा को मनाया समझाया, सारे विजन दिखाए कि जब ये लोग डिसाइड कर चुके हैं मन बना चुके हैं तो अगर कहीं और भी करेंगे तो ना तो ये करेंगे और ना एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि 2015 से पहले सर मैंने भी मेरी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं किया था, कहीं ना कहीं फोबिया ही था कि किसी को बताना नहीं, बस अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो वो चीजें फेस करना बहुत मुश्किल
0: मतलब
3: था
0: सर। इनको मैं बताऊं आपको वालों को भी पता नहीं था कि इनको नजर नहीं आता।
2: अच्छा
0: क्योंकि ऐसे चेहरा देख के तो लगता नहीं है कुछ
2: जी।
0: और क्रीम वगैरह कुछ यूज करते नहीं थे, और आपको पता है गर्ल्स की स्टाइल होती है, हाथ पकड़ भी रखा है तो भी ऐसे छुपा लेते थे कि किसी का हाथ पकड़ रखा है इन्होंने, चलते थे मदर को,
3: ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन
2: इतनी बारीक से बारीक चीजें हमारे दोनों मेहमानों ने एक दूसरे के लिए समझ करके रखी है, ये होता है अंडरस्टैंडिंग करने वाला। जी जी बताइए।
3: लेकिन सर ऐसा तो

0: अकॉर्डिंग मिलेगा तब करेंगे। तो कुछ ये था कि पेरेंट्स को मैं मना करती थी तो वो ये रीजन दे देते थे कि हाँ इसे करनी ही नहीं है, जब ये रेडी होगी तब करेंगे, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना।
1: Right.
0: तो एक था, तो, और मुझे यही था सर कि जिस गाइड

0: और अब उन्हें भी ये चीज एक्सेप्टेड है कि हाँ ये लोग खुश हैं।
1: चंदन जी पूछ रहा, जब वो मिले थे तब क्या हुआ था बताओ
0: जब पेरेंट्स तो
1: जी।
0: सर उनके लिए वो बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन थी।
1: वो एक दूसरे को कन्वेंस कर रहे थे कि ये मना कर दे, वो इधर वाले देख कर
2: ये थोड़ा डिटेल में बताओ यार, ऐसे फिर मजा नहीं आएगा देखो।
0: कि देखो इसका ऐसे है। उनको ये था कि ये लोग सामने से मना कर गए कि
2: अच्छा
0: हाँ हम नहीं करेंगे शादी, तो हमारी बेटी अपने आप शादी करेगी।
2: अच्छा हाँ मतलब फैमिली नहीं मानेगी तो बात वहीं खत्म हो जाएगी।
0: हाँ सामने वाले की फैमिली नहीं मानेगी तो तुम जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकते ना।
1: लोग बता रहे थे कि देखो ये ऐसे काम करती है, नहीं आता है कल बनवाना।
0: बट ऐसा कुछ नहीं था सर, एज ए ब्लाइंड कुछ नहीं किया था, साइडेड लाइफ में सब कुछ किया हुआ था। तो मैंने एज ए ब्लाइंड तो सब कुछ यहाँ आफ्टर मैरिज ही किया, बट मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब इजीली मैनेज। आज हम बहुत खुश हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: पर उस टाइम तो ये बोला था ना कि खाना बनाना नहीं आता।
0: उस टाइम तो यही बोला था कि वो इसीलिए ना कि सामने से रिस्पॉन्स नेगेटिव हो जाए।
2: मतलब कि इसको खाना बनाना नहीं आता है, ये
0: एक
2: काम कुछ भी नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली
0: रीजन ये भी था ना कि सामने वाला एक्सपेक्टेशंस ना रखे, क्योंकि
2: हाँ ये भी हो सकता है, ये बात भी सही है।
0: हाँ
1: संदीप जी मेरे से ये बोला था कि ये तो इनकी उम्र हो गई, अब शादी बड़े हो गए, बड़े लगते हैं।
2: मतलब ये क्या बोलते हैं कि ओवर एज हो गए मतलब है।
0: सर सब कुछ ओवरऑल देखा जाए तो कोशिश यही थी कि वो लोग चाहते नहीं थे कि ये शादी हो, बट हमारी खुशी के लिए दोनों ही फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज की है।
2: कॉम्प्रोमाइज किया और आज दोनों ही फैमिलीज जो है वो बहुत ज्यादा खुश है राइट।
0: सर हमें कॉन्फिडेंस था, हमने तो आगे के लिए सोचा ही नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे, बस एक ही सोचा कि शादी के बाद जो होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, डिफिकल्टीज आएगी, सब मिलके सॉल्व करेंगे और फेस करेंगे लाइफ को। बस
2: आपकी फैमिलीज को समझाने में किसी हमारे वीआई साथी को भी बीच में आना पड़ा या नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी।
1: मतलब बीच में आना मतलब इस तरह रहा कि एक्चुअली दो तीन लोगों को हमने ही बोला कि आप जाओ तो इनके यहाँ, आप
0: सर?
1: जानते होंगे चेतन शर्मा सर,
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ओबीसी में थे जी।
1: उनको भी एक बार बोला कि आप देगा, और भी एक दो तो लोग थे जिनको हमने बोला कि
0: एक्चुअली सर मेरी फैमिली कभी किसी ब्लाइंड से मिली ही नहीं थी, फर्स्ट
2: ओके।
0: टाइम मिली, तो उनसे हमने कई ब्लाइंड लोगों से मिलवाया था कि ये दिखाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ इजीली होता है, एक दो लोगों से मिलिए। बट वो ही है ना, उनका तो माइंड स्टेटस वही था कि ब्लाइंड।
2: अच्छा जी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मतलब फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि जब एक अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की और कॉलेज कर लिया जिसने इतना फैमिली का सपोर्ट करने वाली लड़की, अचानक एक दिन जब घर पर बैठ जाती है अपनी आंखों की वजह से, थोड़ा सा वो याद कीजिए कि फैमिली का क्या माहौल था उस समय, मतलब बड़ा।
0: सर लाइफ का सबसे जो पुअर पार्ट रहा है ना, वो मेरी लाइफ में यही रहा है। जब मेरे धीरे धीरे विजन लो होता गया 2007 के बाद, एजुकेशन भी ड्रॉप हो गई, नहीं तो शायद एम कॉम के आगे बढ़ते, बट छोड़ना पड़ा। तो मम्मी पापा तो बहुत हर्ट थे, उन्हें तो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं थी कि हमारी बेटी ब्लाइंड नहीं हो सकती। डॉक्टर्स भी यही कहते, नहीं आंखों की रोशनी आ जाएगी, आसपास के लोग रिलेटिव सब यही कहते कि नहीं ब्लाइंड नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्हें तो ये एक्सेप्ट ही नहीं था। एक्चुअली मैंने खुद ने भी अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर तो निकले ही नहीं थे, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फैमिली भी बहुत सपोर्टिंग है, मम्मी पापा भैया भाभी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग और केयरिंग है। कोई प्रॉब्लम आने से पहले वही फेस कर लेते थे, मुझ तक तो कभी कुछ पहुंचने ही नहीं दिया।
2: पहुंचने ही नहीं दिया, बिल्कुल सही है वही। तो 2007 से 15 तक आपने बताया कि आप घर पर ही थे,
0: घर पे रहे, घर
2: वो 8 साल तो मतलब बड़े, यानी हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो 8 साल आपने कैसे एक एक दिन बिताया हो।
0: असल मम्मी पापा भी बहुत डिस्टर्ब थे, मैं भी थी, मैं उनके सामने खुश रहने का नाटक करती थी, वो मेरे सामने खुश रहते थे कि ये रहे, हम टूट जाएंगे तो इसे कौन संभालेगा, और मुझे लगता था मैं कमजोर पड़ूंगी तो इन्हें कौन संभालेगा। तो बस दौरान ये सब कुछ चलता रहा, बहुत ट्रीटमेंट कराया, आउट ऑफ इंडिया भी कराया, और इंडिया में भी चेन्नई हैदराबाद कई जगह गए सर, बट आज भी का ऐसा कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट हमें मिला नहीं। तो सर वो टाइम पीरियड तो बहुत ही क्रिटिकल था।
2: आपके आपके जिंदगी में तो पहले और आखिरी ऑप्शन के रूप में पीयूष जी आए राइट।

0: मतलब मुझे तो शादी नहीं करनी थी ना सर, तो कभी किसी से मिली ही नहीं, कभी किसी से बात ही नहीं, फर्स्ट और लास्ट यही रह गए
1: वाकई
0: चॉइस
1: में मतलब बड़ा हमारे, मैंने कहा ना जैसा कि हम लोगों के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते कि इतने साल एकदम से जिंदगी जिसकी चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी, वो जिंदगी अचानक थम जाए। तो
0: उससे पहले लाइफ एकदम परफेक्ट थी, सारे काम खुद करते थे, व्हीकल भी ड्राइव करते थे, स्कूल कॉलेज सब बहुत इजी गोइंग था, आसपास की दुनिया अच्छी थी, लोग सामने से इन्वॉल्व होते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद आप तो समझ ही सकते हैं धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती है, लोग किनारा करने लग जाते हैं कि
1: हाँ,
0: यार
1: मैं उसी
0: इन्हें
1: पॉइंट पे आ रहा था कि जो आपके फ्रेंड्स रहे होंगे वो भी मतलब खत्म चले गए होंगे उसके बाद तो।
0: हाँ सर कुछ एक फ्रेंड्स है जो आज तक साथ हैं, बाकी तो सब दूर होते गए जब उन्हें ये पता चला कि मुझे अचानक ऐसी कोई प्रॉब्लम है।
1: अच्छा ननिता जी, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थोड़ा सा अलग, मेरे से रहा नहीं जा रहा है पूछे बिना। कॉलेज में जब पढ़ते हैं और एम कॉम होते होते तो मतलब दोस्ती भी हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह सब हो जाता है, तो आपके लिए कुछ था ऐसा माहौल कभी बना कि नहीं बन पाया?
0: नहीं सर, मेरे लिए ऐसा था कि विजन तो मेरा डे बाई डे कम हो रहा था, वो मुझे पता था,
1: ओके,
0: विजन तो था ही नहीं, तो कभी इस चीज के तरफ मन गया ही
1: कभी
0: नहीं,
1: सोचा ही नहीं आपने ऐसा कुछ?
0: सोचा ही नहीं सर, बस एजुकेशन और अपनी लाइफ कैसे करनी है वो ही था, बस कभी सोचा नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था सर, कभी कॉलेज लाइफ तक कभी कुछ आया ही नहीं, और एम कॉम के बाद तो घर में ही रहे सर
1: ननिता
0: तब
1: जी,
0: तो
1: बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में ना टूट जाते हैं,
0: बिल्कुल सर
1: लेकिन
0: टूटे ही
1: आपने
0: थे।
1: आपने हिम्मत कैसे रखी? मतलब फिर भी फेस तो किया ना आपने, कैसे अपने आप को संभाल करके रखा आपने?
0: 2015 में मैं आरएन केस आई थी, तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर पाऊंगी, मुझे लगा कि मम्मी पापा मेरे लिए कोशिश करना चाहते हैं, किसी रिलेटिव ने उन्हें बताया था, उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने उनकी इच्छा थी कि तुम ज्वाइन करो, तो मैं भी करना तो चाहती थी, तो मैंने ज्वाइन किया, तब भी मुझे लगता था कि ठीक है अपन कोशिश करते हैं होगा तो ठीक है, बट यहाँ की लाइफ चेंज हो गई क्योंकि एक इंटरेस्ट ही डेवलप हो गया, ऐसा लगा कि आप कुछ नया सीख रहे हो, एज ए ब्लाइंड होके भी कंप्यूटर सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, उससे पहले तो सर यू कहो कि टाइम भी पूछना हो तो किसी से पूछना पड़ता था, और उसके बाद तो मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर सबने लाइफ ही चेंज कर दी, फिर 16 में जॉब ने और ज्यादा लाइफ चेंज कर दी, 17 में शादी ने और ज्यादा लाइफ चेंज कर
1: फिर उसके बाद भी 18 में भी चेंज हुई होगी।
0: बिल्कुल सर यही मैं कहना चाह रही हूँ, अब हमारी एक बेटी है तो उसने और ज्यादा
1: क्या बात है, मतलब वही क्या नाम है बेटी का? अनायरा,
0: अनायरा जैन
1: वाह वेरी नाइस गुड न्यूज। तो अनायरा के आने के बाद लाइफ और चेंज हो गई। अच्छा चलिए, पीयूष जी, पीयूष भाई, बहुत देर से आप सुन रहे हैं
2: जी
1: ननिता जी को,
2: सर
1: तो वैसे भी मुझे लगता है कि ज्यादा काम आपका सुनने का ही रहता होगा।
2: वो नेचुरली होता आप
1: खैर, लेकिन पीयूष भाई आज बताएं, फैमिली मतलब सब बैठते होंगे आपस में, कभी बात होती होगी, आज दे आर सेटिस्फाइड ना कि मतलब ठीक है, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम खुश हो, हमें कोई शिकायत नहीं है?
2: जी। एक्चुअली संदीप जी, मैं वही कह रहा था आपको, उन लोगों को या जो मतलब हमारे पेरेंट्स हैं वो चाहते तो हमारा अच्छा ही है ना,
1: जी बिल्कुल
2: उन लोगों को उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था या कॉन्फिडेंस नहीं था कि
1: राइट।
2: कैसे हो।
1: नहीं, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है पीयूष?
2: जब पिछले दो साल 3 साल हो गए थे जब हमारी शादी को, या एक या ये कहें कि 6 महीने बाद ही मतलब चीजें समझ में आने लगी थी कि नहीं ऐसे कर सकते हैं, जैसे जैसे मेरी फैमिली को बारे में बताऊं कि मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता था कि ऐसे लैपटॉप पे हेडफोन लगा के फोन काम कर लेता है, ये मोबाइल है जो टॉक टॉक टॉक करता है, ये किससे काम चल जाता है, पर ननिता को देख के थोड़ा 6 महीने वो कैसे किचन में काम करती है, मतलब शुरुआत में तो ये होता था मेरी मदर सामने आके खड़ी रहती थी चुपचाप देखते रहती थी लेकिन
1: अच्छा
2: कर रही है कैसे, कुछ सही से कर रही है कि नहीं, बाद में आके ये पापा को या मेरे को बताती थी कि अरे वो सही कर रही है, एकदम ऐसे रखती है, ऐसे ऐसे चीज को चेक करती है कि कितना
1: क्या
2: इसमें
1: बात
2: क्या,
1: है, अरे वाह बहुत खूब जी।
2: वो फेज था एक, पर वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा, और एक्चुअली बस किसी का वो अप्रिहेंशन कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि कंफ्यूज थे या डाउटफुल थे कि कैसे आगे बढ़ेंगे, तो थोड़े टाइम बाद ही फिर तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, उन्हें लगा नहीं सब ठीक है, हम लोग फिर मतलब पहले तो ये होता था कि मैं हम लोग शुरुआत में अकेले नहीं जा पाते थे, वो हमारे साथ जाते थे कहीं बाहर जाते थे, तो
1: आप दोनों की लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं पीयूष भाई, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एयू में आपकी जो जॉब है अब उस पर थोड़ी सी बात की जाए आपसे। जब आप ब्लाइंड नहीं थे तब और जब दोबारा आप गए, उन दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस लगा आपको?
2: मैं आपको जैसे मैं बताऊं, शुरू में मैं सेल्स में था। सेल्स में तो आप समझते हैं कि दिन भर मार्केट में रहना, क्लाइंट से मिलना, करना, अपॉइंटमेंट्स लेके जाना, बात करना, ड्राइव करना, ट्रैवल था मेरा। तब ये सिचुएशन हुई जब मैंने जैसे आपको बताया, फिर मैंने एक डेढ़ साल घर पे ही रहा, फिर वापस ज्वाइन किया कंप्यूटर सीखने के बाद, AICD में ट्रेनिंग लेने के बाद। तो फिर वहां जाके बोला भाई मुझे अब काम दो। क्या क्या काम करोगे? मैंने कहा मैं ट्रैवल का काम या बाहर का काम तो कर नहीं सकता, बैक एंड का काम ही मुझे। तो उन्होंने वहाँ मुझे, मतलब मैं ऑन द रिकॉर्ड वैसे पहली बार ही बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे वो काम दिया जो लीस्ट इम्पोर्टेंस वाला था। जो मतलब शुरुआत में उनको एक्चुअली होता है ना कि उनको भी पता नहीं भाई क्या दें,
1: उनको भी एहसास नहीं था। लेकिन पीयूष भाई इससे पहले प्रश्न ये आता है कि किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अब तो आप नहीं हमारी कंपनी में, यू आर नॉट वर्किंग विद अस?
2: नहीं, ऐसा नहीं कहा गया मुझे।
1: और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने वाली बात रही कि आपको पता ही था कि नहीं नहीं मैं तो कंपनी में ही हूँ
2: जी। और मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे ललित जी ने AICD का कहा था
1: जी,
2: उसके बाद मैं फिर, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि एक महीने की छुट्टी लेके जाऊंगा वहाँ, मैंने फिर हमारे HR ने बात की तो वहाँ से एक बार थोड़ा वो हुआ, फिर मैं सीधे हमारे जो कंपनी के ओनर है MD अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने गया। उनको मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे ये सीख सकते हैं, वो काम ऐसे ब्लाइंड लोग ऐसे काम करते हैं, मोबाइल भी आजकल, वो मैंने उनका ऐसे बोला कि बोलने वाले आ गए, मोबाइल लैपटॉप भी तो है और काम हो जाता है, मैं ऐसे कर दूंगा। तो वो बड़े खुश हुए, उन्हें भी लगा कि यार अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो जब उन्होंने मुझे कहा तो ठीक है तू जाते हो क्या करना है, और तेरे को मतलब ऐसा नहीं पेड लीव्स दे रहा हूँ मैं तेरे को, तू जा जो तेरे को ट्रेनिंग लेनी है। और उसी टाइम मतलब ट्रेनिंग नहीं ली थी उस पर, मैंने कहा था मुझे लैपटॉप सीखना है, उन्होंने मुझे हाथों हाथ एक लैपटॉप मंगा के दिया।
1: क्या बात है, वाह जी,
2: मंगा के दिया और सैमसंग का फोन भी दिया मुझे साथ में लेके जा। AICD जब मैं गया तो लैपटॉप खुद का लेके गया था।
1: और मतलब MD बहुत ज्यादा लगता है कि आपके प्रति मतलब काफी अच्छा उनका रिस्पांस था जी।
2: इस मामले में यही कहता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी हुआ पर मेरे साथ वाले लोग मेरे साथ, मैं खुशनसीब हूँ, बहुत ही ऐसे लोग थे, अजूबे तरह के लोग थे मेरे साथ, तो यही एक कारण था। और जब वो मैं वापस आया तब भी मैं, फिर मैंने HR में बोला कि मुझे अब ये काम देना है, तो आप ये कहें कि मैं वापस आके उनसे नहीं मिला, मैं सीधे HR में मिला, वरना वो मिलते तो शायद और मुझे कुछ है।
1: हाँ, है कि वो जो एक लाइन अभी आपने कही शायद आज वो कहने की नौबत नहीं आती।
2: तो पर ये नहीं था ऐसा, मतलब वो जो मुझे काम दिया गया बैकग्राउंड से तो वो मैंने लीस्ट इम्पोर्टेंस काम मैं कह रहा हूँ, पर वो ऐसा नहीं था कि फिर उसमें मैंने डिलीवर करके दिया कुछ, दो तीन साल मैंने उसी फील्ड में था, मैं बैक ऑफिस में, मेरे पास एक टीम थी जो कस्टमर कॉलिंग वगैरह करती थी और रिपोर्ट्स वगैरह बना के हम लोग भेजते थे। तो इस तरह से ये ऐसा कुछ हुआ। और फिर 2018 में जब 2017 में AU बैंक बन गया था, पहले ये AU फाइनेंस कंपनी थी, जब बैंक बन गया तो एक CSR को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करा, उसे स्ट्रक्चर्ड किया। पहले तो वो एक फिलान्थ्रोपिक वे में होता था कि हाँ जो कंपनी को पसंद आ गया या मैनेजमेंट को सही लगा वो काम कर दिया, जैसे हॉस्टल बना दिया या जगह जगह वाटर कूलर्स लगाए या किसी SMS हॉस्पिटल में कुछ भी तरह के, कई तरह के काम किए, वार्ड बनवा दिया
1: जी जी।
2: 2018 में ऐसा हुआ कि इसे स्ट्रक्चर किया गया कि CSR का एक डिपार्टमेंट बनेगा अलग, वहाँ चार पांच लोग होंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर इससे मुझे कॉल आया कि आप लोग, आपको भी इसमें शिफ्ट होना है, इसमें मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस था उनका, उनको लगता था कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज है और मैं क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ कुछ NGO से, तो मुझे आगे बढ़ के ये ऑफर दिया गया कि आप CSR में आओ। और जैसा आपने कहा ना, MD सर ने जो हमसे देखा था या समझा था मुझे, बाद वो जब मैं उन्हें एक बार RNKS लेके गया था और वहीं पे उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो चेयरमैन थे कि मैं 5 ब्लाइंड लोगों को AU में जॉब दूंगा।
1: क्या बात है,
2: तो आप मुझे जहाँ तक ध्यान है आप एक दो लोगों से परिचित भी हैं।
1: आलोक जी हमारे अजमेर में जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और एक हाल ही में मैं मिला, पवन जी हैं उनसे मैं मिला, वो भी AU में जॉब कर रहे हैं।
2: और पहले भी एक भारत थे, भारत माली, वो अब
1: गवर्नमेंट जॉब माली को भी मैं जानता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने मतलब इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि आज वो खुशी खुशी तो किसी भी कैपेबल ब्लाइंड पर्सन को जॉब देने के लिए रेडी है।
2: वो उन्हें कॉन्फिडेंस आया, उन्हें दिखा कि भाई ये काम ऐसे होता है। और क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, एक विजनरी, वो एक विजनरी है मैं मानता हूँ उनको, वो एक बार देखने में समझ गए। मतलब एक बार होता है ना कि एचआर वाले किसी पर्सन को भी आप कहो ना कि ब्लाइंड क्या काम करेंगे, वो कहेगा अरे ब्लाइंड देखना पड़ेगा क्या काम है, सब कुछ हमारे पास काम ही नहीं है। और एक होता है विजनरी, वो खुद देखते समझ आता है ये लोग ये काम कर सकते हैं, खुद बता देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात,
1: क्योंकि हर
2: काम है जो मतलब बिना साइट के भी हो सकते हैं। जॉब आइडेंटिफिकेशन करना एक इम्पोर्टेंट है, और वो उसे कौन कितनी इम्पोर्टेंस देता है वो बड़ी बात है।
1: बिल्कुल,
2: कितनी इच्छा है इसको आइडेंटिफाई करने की और एक्टिविटी करने की।
1: अच्छा पीयूष भाई, मतलब सेम सिचुएशन मुझे आपके साथ भी लग रहा है कि पूछनी चाहिए कि जब आप साइटेड थे तो फिर आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? मतलब कोई आपके भी दोस्त लोग तो हुए ही होंगे ना उस समय भी?
2: हाँ नहीं,
1: क्या पूछना चाह रहा हूँ
2: जी वो भी एक
1: कहानी है
2: उन चीजों का भूल जाए पीछे छोड़ दें वही अच्छा है।
1: क्या बात, नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई।
2: तो ये था कि एक अलग लाइफ थी पहले, और फ्रेंड्स भी थे, सब थे, और वो एकदम से चेंज हो जाती है चीजें जब आपकी लाइफ में चेंज आता है।
1: लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग
2: आप
1: बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और पीयूष भाई बताएं जरा कि अब जो है आप दोनों का जीवन कैसा चल रहा है? ये सब बातें तो हो गई, लेकिन फिर भी आप दोनों खुद के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं?
2: सच बताऊं संदीप भाई, अब तो वक्त हमारा हमारी बेटी के साथ जा रहा है ज्यादा।
1: जी जी जी, गुड गुड।
2: एक्चुअली 2017 में जब शादी हुई थी उसके बाद हमको डिसीजन लेने में भी टाइम लगा कि हमको बिग भी करना है कि नहीं।
1: ओके ओके ओके,
2: बात है जो शायद मैं
1: आप रीजन कहीं ना कहीं आरपी था
2: जी, मुझे आरपी नहीं था पर इन्हें आरपी था, और वो भी एक मतलब जेनेटिक में है।
1: हाँ जी,
2: बीमारी भी हाई मायोपिया था जो भी जेनेटिक में ही आती है।
1: अच्छा, ओहो, ये बहुत सारे लोगों के साथ मतलब है कि कई लोग इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैं जानता हूँ लिटरली कुछ लोगों को। फिर आप लोग कैसे मतलब इसमें पहुंच पाए, इस डिसीजन तक?
2: मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत टाइम लगा कि हमें फिर हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया। कुछ कंसल्टेंट से भी हम लोगों ने कंसल्ट किया, जो डॉक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक थेरेपी वगैरह पे काम करते हैं। हम लोगों ने मतलब एक टेलीफोनिक काउंसलिंग भी ली, एक सेशन भी अटेंड किए एक दो।
1: ओके,
2: यही रहा कि नहीं इसमें बहुत कम चांसेस है, और मतलब जिसमें होता है तो उसका तो कुछ वो भी नहीं है कि कोई अगर कह भी रहा है कि वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो भी कोई सच नहीं कह रहा है,
1: वो कोई श्योर नहीं है मतलब।
2: फिर हमने मतलब ये आप मानिए, हम लोग जब हमने ये डिसीजन लिया प्लान, तो बहुत वो था कि बहुत डाउटफुल थे हम कि यार क्या होगा कैसे होगा। मतलब बेबी हमने जब लास्ट ईयर बेबी हुई हमारी, तो भी हम लोग थोड़े एक दो महीने तो यही थे कि इसको अब एक बार ये थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, इसकी आंखें चेक करवानी है। तो ये था, पर सब ठीक है और अब हम बहुत खुश हैं।
1: चलिए, उस गंदी सी बड़ी के साथ वक्त बिताने का अच्छा अवसर मिल गया।
2: बैंक है तो फिर भी जून में ही ज्वाइन करना था वापस। अब हमारी लाइफ काफी चेंज है, हम टाइम जब वो सो जाती है तभी थोड़ा हम लोगों का आपस में बात करने का और आगे के जो भी सोच है हमारे उस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो हमें लग रहा है हमारा टाइम है, और इसे और जो भी टाइम मिल रहा है उसे क्वालिटी के साथ स्पेंड कर रहे हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है मेरे दिमाग में पीयूष भाई, कि जैसे नंदिता जी ने कहा कि उन्होंने तो ये सोच रखा था कि मतलब शादी करनी नहीं है, कहीं ना कहीं ये ब्लाइंड होने के बाद आपके भी मन में ऐसे ही ख्यालात थे या इस बारे में कभी वक्त ही नहीं मिला सोचने का?
2: टू बी वेरी फ्रैंक संदीप जी, मेरे तो मतलब जब जैसे थोड़ा मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस आ गया, एक्सेप्ट कर लिया ब्लाइंडनेस है
1: जी,
2: तो एक होता है कि आपको एक फ्रेंड की या उसकी जरूरत होती है जिससे आप बात कर सके।
1: बिल्कुल,
2: मतलब होता ना कि एक आपको हाँ चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कर सको,
1: पेन शेयर करें जिसके साथ आप।
2: वो मुझे तो लगता था और जैसा मैंने कहा, मुझे तो मतलब मेरे फैमिली को पहले तो यही था कि मैंने कह रखा था कुछ देखना है तो आप देखो शादी, और मैंने जैसे कहा ना कि वो पहले, फिर वो इसलिए देखते थे कि ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड के अलावा देखते थे।
1: अच्छा।
2: तो मैंने भी उस वक्त यही कहा था कि नहीं, मुझे इंटेलेक्चुअली तो कंपैटिबल चाहिए, जो जिनके साथ मैं, जैसे हम लोग अभी नहीं था ने कहा था हमारी कंपैटिबिलिटी हमको लगती
1: है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। बहुत सही
2: कहा आपने। बस वही है, क्योंकि हमें लगता है कि हम चाहे ऐसी प्रॉब्लम है पर हम एक दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं अपने बातें, एक मन की बातें शेयर करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस होती है, वो हमारी एक सी होती है तो हम खुल के बात कर पाते हैं, और वही सबसे सही डिसीजन था मुझे लगता है। तो वो हमें एक कंपैटिबल हमारे हमको नैनीताल जी मिल गई, तो हमने मौके को जाने नहीं दिया।
1: तो नैनीताल जी क्या क्या शौक है आपके, हॉबीज क्या क्या है?
0: सर, हॉबी मेरी कुकिंग और डांसिंग है।
1: अच्छा, वाह क्या बात। तो अभी तो डांस वांस आप करती हैं या छोड़ दिया सब?
0: नो, बट जिस लेवल पे पहले किया करते थे उतना नहीं हो पाता।
1: अच्छा, अनायरा के बर्थडे में करते हैं कि नहीं?
0: जी,
1: अनायरा के बर्थडे में करते हैं या नहीं करते?
0: जी बिल्कुल सर। वो हमें रातें नचा ही रही है उसके साथ। मुझे लगता है कहीं ना
1: कभी पीयूष जी को कोई गाना वाना सुनाया कि नहीं आपने?
0: हाँ सर, मैंने तो सुनाया, इन्होंने भी सुनाया, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: अच्छा, कौन सा सुनाया आपने और जो पीयूष जी को बहुत पसंद हो?
0: वो तो यही बता सकते हैं सर।
1: जी सारा ही पसंद है। क्या बात है, सुना दीजिए दो लाइने। आज एक बार फिर दो लाइने गुनगुना दीजिए।
0: ओके सर, आई एम ट्राइंग।
1: जी जी जी।

0: ऊहं न वा न कोई था न कोई जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना मेरा ऊहं न वा।
1: तो पीयूष जी भी गुनगुनाते हैं, तो आज हमको भी आज पता चला।
2: मैंने गुनगुनाता है कभी भी नहीं,
0: थोड़ा बहुत बस वैसे नहीं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ ही।
2: जी
1: बहुत खूब जी, बताएं पीयूष जी।
2: तो मैं कह रहा था जितना अच्छा आप गाते हो ना, हमें पता है, मैंने आपको सुना है आपकी कविताएं और गाना, तो उसके सामने मैं बहुत, आप शर्मिंदा फील करेंगे मेरे गाने को सुन के, बोलेंगे
1: नहीं। लेकिन आज रेडियो मधुबन ने जो है मुझे इसलिए बिठा रखा है कि मैं आपको गवा सकूं। जी तो हो जाए दो लाइन पीयूष भाई, कोई बात नहीं, तो मस्ती का माहौल है।
2: नहीं संदीप जी, मुझे लग रहा है मैं फिर भी दो लाइन गा सकता हूँ।
1: हाँ दो ही लाइन, दो ही लाइन।
2: तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, मुझे याद नहीं है।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने जो है आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना कि मैं गाने वाने की भी बात करूंगा। तो नंदिता जी, कुकिंग में क्या क्या है फेवरेट आपका?
0: कुकिंग में सर बेसिकली
1: बना लेती हैं आप?
0: मैं साउथ इंडियन बना लेती हूँ, चाइनीज बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत इटालियन, और बाकी अपना बेसिक फूड, इंडियन फूड, ये सब मैं कुक कर लेती हूँ सर।
1: अरे वाह, अच्छा आप लोग कोई जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं गैजेट्स वगैरह, उसका भी कुछ इस्तेमाल करते हैं?
0: हाँ सर, इनिशियल लेवल पे हम लोग करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक में, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, नॉर्मली जनरली फ्रिज वगैरह तो अपने घर में सबके होते ही हैं,
1: तो कोई इशू है ही नहीं उसमें तो। जी
0: और इंडक्शन यूज करते हैं सर,
1: माइक्रोवेव भी टॉकिंग है पूरा मतलब?
0: जी सर टॉकिंग है सर, हमारे पास एंड्रॉइड बेस्ड टीवी है टॉकिंग, और कई गैजेट्स हैं जो टॉकिंग यूज करते हैं और नॉन टॉकिंग भी यूज करते हैं सर।
1: फैमिली फंक्शंस में जब जाना होता है आप दोनों का, तो जनरली क्या माहौल रहता है
0: सर? फैमिली फंक्शंस में तो माहौल थोड़ा नॉर्मल रहता है।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

शांति। आज 16 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जले न क्यों परवाना। बाबा कहते हैं ये परवानों का गीत है क्षमा के लिए, कि क्षमा पर हम क्यों न जले, अर्थात क्यों न जीते जी मर जाए, बाप के बन जाए। भावार्थ यही है कि हम परमात्मा की शरण में आए हैं। पुरानी दुनिया विकारी बंधन वाली दुनिया है, वहां से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए बाप की शरण में आते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर तुम अपने तन मन धन से क्या करते हो।

ममत्व को मिटाना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, रहना इसी दुनिया में है, सब कारोबार आदि भी करना है, लेकिन बाबा जैसे कहे डिटैच होकर के करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पुरुषोत्तम बनने का युग है तो जरूर है, उसको वरदान है, तो ऐसे समय में पाप कर्म नहीं करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, सबसे बड़ा पुण्य है स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा, यह है परवानों के दिल की क्षमा के प्रति महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहां ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं, इसलिए उसको जीते जी कहा गया, क्योंकि बाबा आकर हमें एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे और अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरी। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, अर्थात जलवा दिखाए। प्रभु की शरण में तब आएंगे जब अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। बाबा में ही सारी कशिश अर्थात आकर्षण भी है ना। सब कुछ छुड़ा देते हैं, बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। जो बाबा के बच्चे बनते हैं जरूर है उन्हें आसुरी संप्रदाय का संबंध बंधन लगने लगता है। कहते बाबा कब ये संबंध छूटेंगे, अर्थात कब ये बंधन छूटेंगे। यहां ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। दुनिया में जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो बंधन खलास हो जाते हैं। तो इस समय दुनिया के सारे संबंध ही एक प्रकार से बंधन का अनुभव कराता है। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है ये सब है विकारी बंधन। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा, फिर सतयुग में हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी भी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। पुरानी दुनिया में है रावण और यहां है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है ये कोई समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, वह अब नहीं है, परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं।

जो कहते हैं मनुष्य कि राम राज्य में पवित्रता सुख शांति थी अब नहीं है, तो उस चीज को महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है ये आत्माएं सब सीताएं हैं, एक सीता की बात नहीं है, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है, यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं, तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। बाबा कहते तुम्हारे लिए भी कहा जाता तुम सब अर्जुन मिसल हो, तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूं। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखा दिया है, इसको अज्ञान कहा जाता है। कहा स्थूल में दिखा दिया और परमात्मा आकर के सूक्ष्म आधार लेते हैं इस शरीर रूपी रथ का। उन्होंने घोड़े गाड़ी का दिखा दिया तो उसको अज्ञान ही कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के है, हर एक बात के पीछे रहस्य है। ये बातें कोई समझ ना सके जब तक सात रोज समझने का कोर्स न ले। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है, स्थूल में त्याग कर देते हैं। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, सिर्फ कहते हमने घर बार को छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यथार्थ बात यह है। बुद्धि से वैराग्य करने की बात है, स्थूल के खाली नहीं, वह है हद की बात। इस नियम को हठ योग हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें। इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास, यह है बेहद की बात। वो हद का पुरुषोत्तम मास है, यह बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे बल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप में मर गई दुनिया, तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएगा। हम बाप के बने हैं किस लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्य में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम चाहिए। जब आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो उनका रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है, इतना बड़ा महल है, बगीचा आदि है। यह हुई यहां की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, वहां तो महाराजा महारानी राज करते हैं, तो उनका महल कितना बड़ा होगा।
तुम सत्योगी पुरुषोत्तम बनते हो फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सत्योगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्म के लिए। एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। वहां पर कोई भी तमो प्रधान आत्मा नहीं रहेगी। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आज कल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। बाबा कहते आज कल तो समय का भी कोई भी भरोसा नहीं। अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। क्यों? तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। यह है विनाशी सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कैसे? श्रीमत पर। हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, तभी तो महिमा गाते पूजा होती है। यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी उत्तम है या राज राजेश्वरी उत्तम है? आत्मा एक ही है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगत अम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगत अम्बा के मंदिर बहुत छोटा है। बाबा कहते जगत अम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। श्रीनाथ द्वारे में, श्रीनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोंटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है। अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है। बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा तो, इसीलिए बाबा कहते अंदर जब जाते इतना तेल पानी होता है, बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, जगत अम्बा का छोटा क्यों? अभी तो जगदम्बा का मंदिर भी अम्बाजी में बहुत बड़ा हो गया है। बाबा कहते जगदम्बा गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है। वह शाहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है बॉम्बे में, महालक्ष्मी का मंदिर भी है। यह भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। महालक्ष्मी में लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है, चार भुजाधारी दिखाया है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न। धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। बाबा कहते सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है।
दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूं, ये मंत्र बाबा जो देते हैं वो भी क्यों देते हैं, क्योंकि तुम पतित हो ना, मामेकम याद करेंगे तभी तो पावन बनेंगे, ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ना सके। इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, ये स्मृति आई है पूछते बाबा, 5000 साल पहले भी बाबा ने मंत्र दिया था ये स्मृति आई है, अभी तुम सन्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं, वह क्या करके गए, धर्म की स्थापना करके गए। क्राइस्ट ने क्या किया, धर्म की स्थापना किया। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, श्री कृष्ण क्या करके गए, श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं, शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए, शिव बाबा राजयोग सिखा कर गए, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं, जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, खुद शिव बाबा नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। जरूर श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। बाबा कहे वास्तव में श्री कृष्ण की वंशावली तुम बच्चे हो। राजा रानी को मात पिता अन्नदाता कहते हैं, राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं के कितनी मान्यता होती है, आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी, कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है, इसलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहां पाप होता नहीं है, सतयुग में पाप होता नहीं है, सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। उच्च पद वालों को सुख भी बहुत रहता है, यहां तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकरूर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान था, भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है और न राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था, यहां तुम्हारी है पढ़ाई। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हैं। दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जिससे कोई राजा रानी भी बने, वो तो दान करने से टाइटल ले लेते हैं। बाबा कहते यहां तो वास्तव में तुम पढ़ाई से विश्व का महाराजा महारानी बनते हो, राजा रानी भी नहीं। राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है, तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे, ईश्वर। कैसे बनाएंगे, राजयोग और ज्ञान से, राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है, बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर, हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उनको संगम पर पद मिलता है, इसलिए उसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप इतना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कहते भी है परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उनमें कौन राज्य करते हैं ये किसको भी पता नहीं है।
तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलियुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते मैं आता ही हूं संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूं। सत्य नारायण की कथा भी यह है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया झाड़ तब कहेंगे जब स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहां होती है। स्थापना वहां नहीं होगी, स्थापना यहां होती है। यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। संगम युग ही है पुरुषोत्तम बनने का युग। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंद को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंद में है। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे फिर जीवन बंद। आधा कल्प जीवन मुक्त अर्थात जीवन में रहते हुए विकारों से बुराइयों से मुक्त, और जीवन बंद यानी जीवन में रहते हुए विकारों के बंधन में है, उसको जीवन बंद कहा जाता है। ये तुम समझते हो तुम्हारा व्रत नियम क्या है। बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा कहे भले कारोबार करो, कर्म करो, गृहस्थ संभालो, लेकिन एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी, इतना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होने चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अब बाबा कहते कर्मेंद्रिय से कोई पाप कर्म नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, गर्भार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है, दूसरों को भी पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना यही सहज योगी बनने की विधि है, जिनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तु आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जिनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी तु आत्मा योगी तु आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो
उसमें सहयोगी बनो। तो यह भी योग है। जब हो ही

आपके तो बाप और आप, तीसरा न कोई। बाबा कहते तो बाप और आप तीसरा कोई न हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है संगम पर सहन करना, अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। आज का व्यक्त इशारा है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो। लगन है इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है वह आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। अच्छा ओम।